दिन माइकल को रात को सेठ नहीं सोता, खुद चोरी करता है लेकिन चोर से डरता है, फिर न कहना माइकल दारू पी के दंगा।

कितना पैसा चाहिए आखिर जीने के लिए। लोग दीवाना है जो यूं इस पैसे पे मरता है, फिर न कहना माइकल दारू पी के दंगा करता है।

0: आवाज सामाजिक व सांस्कृतिक माहिती देणारे आपले रेडिओ स्टेशन ऐकत रहा 107.8 FM। आनंदी रहा आणि आनंद लुटा।
1: आइए आइए, दरवाजे पे क्यों खड़े हैं? अंदर आइए, ये घर है मुस्कुराहट का, यहाँ बसती है खुशियाँ। ये है पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: ये गुस्से वाले हैं, इनसे दूर रहना चाहिए। तो मैं तो बच गई, लेकिन आप अपने आप से दूर कैसे रहेंगे? आप सारा दिन अपने आप को कितना चीट कर रहे हैं। किसी को चीट करना क्या होता है कि किसी का नुकसान करना ना, किसी के साथ धोखा करना, किसी का गलत करना, उसी को आप चीटिंग कहेंगे। अपने मन का पल पल पल नुकसान करना, अपनी फीलिंग्स का नुकसान करना, अपनी खुशी को, अपनी शांति को हर थॉट में खत्म करते जाना। दूसरा अगर चीट करता भी, किस चीज के लिए चीट कर लेती? पैसों के लिए कर लेती, बिजनेस में कर लेती, कुछ आप मेरे पे विश्वास करते, मैं झूठ बोल देती, इतना ही तो चीट कर सकते हैं। सामने वाला कितना चीट करेगा, हमें क्या चीट करेगा? दूसरे तो हमसे बच गए, दूसरे हमसे डर गए, दूसरे हमसे दूर रहने लगे, लेकिन हमें तो अपने साथ रहना है। द पर्सन हु आई हैव टू लिव विद 24/7, आई नीड टू बी कम्फर्टेबल विद दैट पर्सन, आई हैव टू लिव विद माई सेल्फ। दूसरे तो अपना संभाल लेंगे, सो वी नीड टू से।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

शिवाजी की तलवार है, लावरी बेमिसाल है, टेक्नोलॉजी के साथ संस्कार है। मराठी करती स्वागत हर भाषा का, यहाँ भूमि अपनाती हर त्योहार है। सुनिए पुनेरी आवाज 107.8, खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: जब तक हम चाहिए चाहिए करते हैं तब तक हम औरों पे डिपेंडेंट हैं। अब हमें समझ में आ गया कि हम खुद भरपूर हैं, हमें उसका सिर्फ ध्यान रखना है। जैसे ये कप है, अब अगर मुझे लगे कि ये जो मेरा कप है ये खाली है, तो आई विल कीप टेलिंग यू कि इस कप को भरिए। तो आई एम डिपेंडेंट, जब आप भरेंगे तब, और अगर आप भर पाए, और अगर आपके पास है उसको भरने के लिए, यू नो यू हैव टू हैव दैट लव टू गिव इट टू मी, नहीं तो आई कैन कीप वेटिंग टिल द एंड ऑफ माई लाइफ फॉर पीपल टू फिल माई कप, इट विल नेवर गेट फिल्ड। एंड राजयोग से हमने ये रियलाइज किया कि मेरा जो कप है ये ऑलरेडी भरा हुआ है, मैं हूं ही प्रेम स्वरूप। अब मुझे सिर्फ ध्यान रखना है कि इसको बहुत संभाल के चलना है, कि आपका कोई शब्द, कोई और परिस्थिति मुझे उस व्यर्थ चिंतन की तरफ ना ले जाए जिससे मेरी खुशी गायब हो। हम यू वर्ड भी ये यूज करते हैं कि मेरी खुशी को वो छीन गई, मतलब वो मेरे पास ऑलरेडी थी। उतना ध्यान हमें रखना है कि इस भरे हुए कप को अंदर भरा हुआ ही रहने देना है। जब तक उसको खाली समझेंगे मांगते रहेंगे, एंड दैट जर्नी जस्ट गोज ऑन लाइक दैट।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: फॉर मोर एंटरटेनमेंट लॉग ऑन एंड सब्सक्राइब।
1: खुशियों की फुहार लाएगी हर दिन त्योहार, अब हर दिन बजेंगे मन में ढोल, अपने पन के रंग में अब रोज रंगेंगे, उड़ान भरेंगे सपनों के रॉकेट में, सिर्फ पुनेरी आवाज में 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

आवाज 107.8 FM वर्ल्ड रिन्यूअल स्पिरिचुअल ट्रस्ट का सामुदायिक रेडियो स्टेशन। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: नमस्कार। खुद को पहचानने की ये जो हमने श्रृंखला शुरू की थी, आज इतना लंबा सफर तय करके हम उस मुकाम तक पहुंचे हैं जब हम इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पूरी और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में आज फिर आप सबका हार्दिक स्वागत। और अगर हम देखें तो खुद को पहचानते हुए, परमात्मा की पहचान करते हुए, समय चक्र को समझते हुए हमने एक बहुत इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट देखा था कि किस तरह से परमात्मा स्वयं अवतरित हुए और वो अवतरण जो था वो कितना रियल भी लग रहा है और उतना ही मिराकुलस, चमत्कारी भी नजर आया। याद होगा कि हमने इस बात पर छोड़ा था कि जब ऑर्गेनाइजेशन बना माउंट आबू में 1952 में उनके हेडक्वार्टर्स ट्रांसफर हुए और वहां से ये सफर पूरे विश्व तक फैला। आगे इस बात को बढ़ाते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ और बदलाव आते गए, लेकिन खास बात यह है कि जो मकसद था पूरे ऑर्गेनाइजेशन का वो वही रहा। और इस पूरी बातचीत में हर बार की तरह हमारी हम सफर है ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। ओम शांति।
1: ओम शांति।
0: एक बात बहुत से लोगों का भी ये सवाल है कि ये नाम ईश्वरीय विश्वविद्यालय, ठीक है, ईश्वर द्वारा, ईश्वर ही वाइस चांसलर है, उसके कर्ता धरता है, सारा ज्ञान वही दे रहे हैं, नाम ब्रह्मा कुमारीज कैसे पड़ा?
1: जैसे हमने पिछली बार भी देखा कि निराकार परमात्मा शिव ने जब इस सृष्टि पर अवतरण लिया, क्योंकि हम कई बार कुछ भाई बहने कहते हैं अवतरण भी लेने की क्या जरूरत थी, परमात्मा को सृष्टि पर आने की क्या जरूरत है, भगवान इतना शक्तिशाली है तो वहीं से हमें ज्ञान दे दे। तो परमात्मा तो शक्तिशाली है, द ट्रांसमिटर इज वेरी पावरफुल, बट रिसीवर्स का क्या हालचाल है? तो परमात्मा की प्रेरणा को कैच करना वो हमारी इस समय कैपेसिटी नहीं है, और इसीलिए परमात्मा को डायरेक्ट आकर और एक मीडियम को फिर यूज करना पड़ा, और जिस मीडियम के मुख द्वारा जब हमें समझाना शुरू किया तब हमें धीरे धीरे वो समझ में आया, और तब भी वो सोल कॉन्शियसनेस की अवेयरनेस में जाना उसमें टाइम और एफर्ट लगता है। अगर हमें सिर्फ प्रेरणा से वो नॉलेज मिल गई होती तो इट्स नॉट पॉसिबल, इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। तो परमात्मा स्वयं इस सृष्टि पर आए और एक मानव तन का आधार लिया, एक ह्यूमन बॉडी, एक इंस्ट्रूमेंट जिसको हम रथ भी कहते हैं, दादा लेखराज जो हमने पिछली बार भी देखा, एक डायमंड मर्चेंट परिवार में रहने वाले, बहुत ही धार्मिक विचारों के, लेकिन एक परमात्मा की खोज, तो जैसे कि एक आइडियल इंस्ट्रूमेंट जिसके पास सारे जीवन का अनुभव भी था, क्योंकि उस समय उन्होंने 60 वर्ष की आयु को क्रॉस कर लिया था, और डायमंड मर्चेंट होने के कारण उनकी परखने की शक्ति बहुत अच्छी थी, वो डायमंड्स को बहुत अच्छा परख सकते थे। तो इतने अनुभवी रथ को परमात्मा ने जैसे सिलेक्ट किया, ड्रामा अनुसार वो उनका रोल था, और दादा लेखराज के द्वारा ये ईश्वरीय ज्ञान आत्माओं तक पहुंचना शुरू हुआ, और जिस आत्मा ने उस तन में बैठे हुए परमात्मा को पहचान लिया कि ये ज्ञान इस आत्मा का नहीं लेकिन इनके द्वारा कोई शक्ति दे रही है, वो परमात्मा खुद दे रहा है, उसकी फिर यात्रा शुरू हो गई, क्योंकि सारा ज्ञान मिला ना, मैं कौन, वो कौन, और समय कौन सा चल रहा है।
0: इनफैक्ट अगर हम देखें तो ये दादा लेखराज का ज्ञान नहीं है, ये डेफिनेटली हमें समझ में आ रहा है, और ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये भी उसका मकसद अगर देखें तो ज्ञान को पहुंचाना है।
1: क्योंकि समझ में आ गया ना, किसी व्हेन वी सो द साइकिल, वी सो कि हम आत्माएं परम धाम से आए थी सत्युग में, जब हम आए थी तो हम कितनी प्योर थी और हमें नॉलेज थी कि मैं आत्मा हूँ, इस शरीर के द्वारा कार्य कर रही हूँ। आज 5000 साल के बाद मैं आत्मा अंदर सो गई हूँ और ये मशीन ही अपने आप काम कर रही है। परमात्मा का रोल आकर उस ड्राइवर को फिर से जगाना, यू नो, इनसाइड, वेक अप एंड टेक कंट्रोल ऑफ योरसेल्फ, क्योंकि आने वाले समय की तैयारी। तो परमात्मा ने दादा लेखराज के मीडियम को यूज किया, उनके द्वारा आत्माओं को ये ज्ञान मिला, जिन आत्माओं ने अपने जीवन में वो परिवर्तन किया उन द्वारा फिर अनेक आत्माओं को मिला।
0: अगेन अनदर थिंग विच बिकम्स क्लियर इज कि वो कुछ हमारी जिंदगी में नहीं ट्रांसफॉर्म कर रहे, ट्रांसफॉर्म मेरे अंदर ही होगा. वंडरफुल.
1: दिस इज वेरी क्लियर विच वी हैव बीन शेयरिंग राइट फ्रॉम द बिगिनिंग. व्हाट इज गॉड्स रोल? जो आज दिन तक हम कहते हैं भगवान ये कर सकते हैं, भगवान वो कर सकते हैं, नहीं, भगवान का इस सृष्टि पर रोल क्या है? आत्माओं को फिर से
0: उनकी अपनी सही पहचान देना. जैसे आई रिमेम्बर एक स्टोरी थी कि हनुमान जी को अपनी ही शक्ति के बारे में नहीं पता था, सो
1: तो वो अवेयरनेस लाना. हाँ. सेम, हम ही तो वो आत्माएं हैं जिनको अपनी ही शक्ति के बारे में नहीं पता. तो परमात्मा आकर हमें ही वो शक्ति की जागृति लाते हैं, और फिर जो आत्माएं उसको पहचान लेती हैं, मैजिक नहीं है. देयर इज नो मैजिक कि परमात्मा आए और एक सेकंड में सब परिवर्तन हो जाए. नहीं, वो आकर परिचय देंगे, फिर हम सबकी अपनी अपनी यात्रा होगी. ये जो जितना उस परमात्म महावाक्य को अपने जीवन में धारण करते जाएंगे, उनसे संबंध जोड़कर अपने आप को परिवर्तन करते जाएंगे और शक्ति को अपने अंदर इकट्ठा करते जाए. सो ईच वन्स जर्नी विल बी देयर ओन. और इसी तरह इस पूरी यात्रा पर जहाँ इतने सारे लोग थे, तो दादा लेखराज भी उनमें से ही एक थे. लेकिन विशेष आत्मा तो विशेष रोल. तो दादा लेखराज ने उस यात्रा को बहुत ही खूबी से पूरा किया और वो सोल कॉन्शियसनेस की परफेक्शन की स्टेज को रीच किया. लेकिन उससे पहले जब उनके मीडियम को यूज किया गया, तो शिव बाबा ने उनका नाम रखा प्रजा पिता ब्रह्मा. ब्रह्मा क्योंकि ब्रह्मा सृष्टि का रचयिता. आज दिन तक हम जो सुनते हैं कि ब्रह्मा द्वारा सृष्टि की रचना हुई, तो रचना मतलब कोई नई सृष्टि क्रिएट नहीं हो रही है, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन इज ऑल्सो लाइक अ क्रिएशन ऑफ अ न्यू वर्ल्ड.
0: अवेयरनेस,
1: यू नो, यू आर क्रिएटिंग अ न्यू वर्ल्ड. शिव बाबा ने दादा द्वारा जो नई सृष्टि की रचना का कार्य किया, तो दादा का नाम रखा प्रजा पिता ब्रह्मा. मतलब प्रजा का पिता. ये सब बच्चे हैं, शिव बाबा के बच्चे हैं, लेकिन उनको भी जैसे संभालने के लिए ये प्रजा का पिता. तो प्रजा पिता ब्रह्मा, और ब्रह्मा के मुख द्वारा जो बच्चे अडॉप्ट हुए. ये हमारा एक नया जन्म था ना, एकदम नया ईश्वरीय जन्म हम इसको बोलते हैं. तो वो जो बच्चे अडॉप्ट हुए, वो हुए ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी. ब्रह्मा के जैसे जो बच्चा होता है, हम कहते हैं ना कुमार और कुमारी, मास्टर सो एंड सो, मिस सो एंड सो. तो ब्रह्मा के द्वारा जो बच्चे अडॉप्ट हुए, वो बने ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी. कई बार लोग कंफ्यूज कर जाते हैं और कहते हैं ब्रह्म कुमार, ब्रह्म कुमारी. तो इट्स नॉट ब्रह्म कुमारी, इट्स ब्रह्मा कुमारी. ब्रह्मा द्वारा जो कुमारी अडॉप्ट हुई, और फिर क्योंकि बहनों को आगे रखा एडमिनिस्ट्रेशन के कार्य में, तो इसीलिए विद्यालय के नाम में ब्रह्मा कुमारी जाता है कि प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय. लेकिन अदरवाइज इक्वल है within the administration, everything is equal. कि भाई और बहने कट्ठे मिलकर पूरे विद्यालय की संभाल कर रहे हैं, लेकिन फिर भी बहनों को आगे रखा, तो विद्यालय के नाम में वो ब्रह्मा कुमारी जाता है. तो दादा का नाम पड़ा प्रजापिता ब्रह्मा. और जो कराची में 14 साल भट्टी चली, तो उस समय जो छोटा सा संगठन था 350 का, उस समय उसका नाम था ओम मंडली, क्योंकि ओम की ध्वनि लगाते थे. आज भी ओम शांति जो हम कहते हैं. लेकिन फिर जब शिफ्ट हुआ 1952 में, तो ऑर्गेनाइजेशन का विधि पूर्वक नाम पड़ा, तब ब्रह्मा कुमारीज नाम ये हुआ. और फिर 1952 से तो कार्य फैलता ही गया, क्योंकि 14 साल की भट्टी पूरी हो चुकी थी, तो आत्माएं जैसे कि
0: परिपक्व हो गई, एकदम पक्की हुई, तैयार थी.
1: वो ज्ञान जो परमात्मा दे रहे थे, वो सिर्फ समझ नहीं आ गया था, लेकिन उसका स्वरूप बन चुके थे. मैं आत्मा हूँ वो समझ नहीं, लेकिन सोल कॉन्शियसनेस का स्वरूप, वो कॉन्शियसनेस आ गई थी. तब 1952 के बाद शिव बाबा के डायरेक्शन अनुसार, क्योंकि हर कार्य परमात्मा की श्रीमत के अनुसार होता, तब माउंट आबू से निकल अलग अलग शहरों में जाना शुरू हुआ. और किसके निमंत्रण पर? परिवारों के निमंत्रण पर. जो बहने उस समय अपने परिवार से छूटकर आई थी और 14 साल उन्होंने अपने जीवन को परिवर्तन किया, जब वो इंडिया आ गए, तो उनके परिवार यही थे. वो भी शिफ्ट हो गए थे पार्टीशन के दौरान. तो उन्होंने अपनी बेटियों को इनवाइट करना शुरू किया कि हमारे घर पर आओ, इतने साल से घर नहीं आए हो। और तब ब्रह्मा बाबा, प्रजापिता ब्रह्मा, उनको हम प्यार से, क्योंकि वो भी फादर है तो हम ब्रह्मा बाबा कहते, तब बाबा ने उनको फिर अपने घर भेजना शुरू किया कि आपको जो मिला है अब जाकर सबसे पहले अपने परिवार के साथ ये शेयर करो। और ये कन्याएं जब अपने घर पहुंचे तो परिवार को लगा कि ये तो कुछ और ही बनकर आ गई है, क्योंकि एक ऑर्डिनरी गर्ल एंड आज एकदम सोल कॉन्शियस स्वरूप में जब अपने परिवार के सामने पहुंचे तो उनको लगता जैसे तो ये वो है ही नहीं जिसको हमने भेजा था। और फिर उन्होंने ज्ञान शेयर जब उनके साथ किया तो परिवार वालों को अच्छा लगने लगा, आस पड़ोस संबंधी जुड़ने लगे, सबको अच्छा लगने लगा। तो जब बहनों ने कहा कि अब हमें वापस जाना है माउंट आबू, तो उन्होंने कहा ये ज्ञान सबके साथ कौन शेयर करेगा, आप यहीं रुक जाओ। और तब धीरे धीरे सेंटर बनना शुरू हुआ कि आप सब लोग अगर माउंट आबू चले जाओगे तो यहाँ हम सबको कौन संभालेगा, हम सबकी पालना कौन करेगा। तब सेंटर्स बने,
0: वहां तक पहुंचने की बजाय ज्ञान लोगों के घर घर तक पहुंचे,
1: क्योंकि वहां तक नहीं पहुंच सकते। परमात्मा स्वयं इस सृष्टि पर आए थे अपने बच्चों से मिलने के लिए, तो परमात्मा का ज्ञान घर घर तक पहुंचाना था। आप देखो आज दिन तक हमने भगवान को ढूंढने की बहुत कोशिश की है, जप तप संन्यास उपवास सब कुछ किया, एक क्षण का साक्षात्कार हो जाए, लेकिन जब परमात्मा स्वयं इस सृष्टि पर आएंगे और वो हमें ढूंढेंगे, वेरी इजी।
0: और वो 8,000 सेंटर्स में परिवर्तित हो गया।
1: कैसे हुआ? तो फर्स्ट सेंटर्स खुले दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, और बस दैट वॉज जस्ट द बिगिनिंग। एंड आफ्टर दैट देर वॉज नो स्टॉपिंग द ग्रोथ, इट जस्ट वेंट वन टू द अदर एंड टू द नेक्स्ट। एंड तब का शुरू हुआ 52 में, आज सिर्फ दिल्ली शहर में 150 सेंटर्स आर देयर, हर विद इन 5 to 10 किलोमीटर्स एक सेवा केंद्र है, क्योंकि बाबा ने कहा कि ये ज्ञान हर आत्मा तक पहुंचना है, हर आत्मा को पता लग जाना चाहिए कि परमात्मा आ चुके हैं। नहीं तो उनकी क्या गलती अगर उन्हें पता नहीं चला, और एंड में अगर उनको पता चला तो वो कहेंगे हमें तो पता ही नहीं था। अगर हमें पता होता तो फिर हम भी तो अपना पुरुषार्थ करते, हम भी तो आकर वो कनेक्शन जोड़ लेते।
0: वही है, पता होगा फिर उसके बाद डिसीजन उस आत्मा का है,
1: यस,
0: कि किस रास्ते पे चलेंगे।
1: आज भी तो ये संदेश क्या कर रहे हैं हम, ये संदेश हरेक तक पहुंचा रहे हैं। अब घर बैठे भी जो लोग सुन रहे हैं तो उन सबको ये परिचय मिल रहा है कि परमात्मा स्वयं इस सृष्टि पर आकर एक एक बच्चे को अपनी पहचान दे रहे हैं। अब उधर से आगे अपनी जर्नी शुरू करना, ये हर आत्मा की अपनी यात्रा होगी।
0: सिस्टर शिवानी, यहाँ से सिर्फ भारत तक सीमित न रहकर विदेश पहुंची ये यात्रा, इस पे बात करेंगे इसके बारे में, ऑर्गेनाइजेशन का किस तरह से ये फैलाव हुआ। लेकिन उससे पहले बहुत से सवाल हैं हमारे दर्शकों के जो कि इन सेंटर से ही जुड़े हैं, कि जब हमें ये ज्ञान यूं घर बैठे भी मिल रहा है, एक बार हमें पता भी चल गया, तो वो जो मेडिटेशन की जो टेक्निक है वो हम या एक जुड़ने की या एक सशक्त होने का जो पूरा रास्ता है वो हम घर पे आराम से कर पाते हैं, तो फिर हमें क्या सेंटर का क्या महत्व है एक्चुअली?
1: जो ज्ञान ब्रह्मा बाबा के मुख द्वारा शिव बाबा ने दिया वो ज्ञान सारा नोट डाउन हो गया है, जिसको हम अपनी स्पिरिचुअल क्लास या ईश्वरीय महावाक्य कहते हैं। तो ये ईश्वरीय महावाक्य रोज सेंटर पर सुनाए जाते हैं, और जिसको हम मुरली क्लास भी कहते हैं। और इसकी विशेषता ये है कि ये सारे वर्ल्ड में, आज हमारे 8,500 सेंटर्स हैं, सारे वर्ल्ड में हर सेंटर पर सेम मुरली क्लास रोज होती है, क्योंकि ये माउंट आबू से हर सेंटर पर पहुंचती है, जैसे कि 15 दिन की क्लास पहले पहुंच जाती है, तो हर सेंटर पर सेम स्टडी रोज हो रही है, इतना वेल कोऑर्डिनेटेड वो पूरा सिस्टम है। अगर हमें सिर्फ एक बार ये मैसेज मिल जाए कि मैं आत्मा हूँ और मैं घर बैठे उसको प्रैक्टिस करूं, आई विल नॉट बी एबल टू डू इट फॉर मोर देन अ कपल ऑफ डेज, क्योंकि चारों तरफ का जो वायुमंडल है वो बहुत नेगेटिव है,
0: वो बार बार खींच
1: देता है। इट्स लाइक द सेम थिंग कि अगर सब लोग सोए हुए हैं और मैं उठने की कोशिश करूं तो धीरे धीरे मुझे भी नींद आ जाती है फिर से, और नई भी आ रही हो तो चार लोग और मुझे खींच के सुला देते हैं। तो बीच बीच में आवश्यकता होती है ऐसे स्थान पर जाने की जहां और लोग भी जग रहे हैं, तो एक वायुमंडल बनता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि रोज जब हम सेंटर पर जाते हैं या जब भी समय मिले तो हमें वो ईश्वरीय महावाक्य सुनने को मिलते हैं। इन्फॉर्मेशन विल क्रिएट थॉट्स, वो पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन। तो जब तक हम वो इन्फॉर्मेशन नहीं लेंगे तो वो थॉट्स नहीं क्रिएट होंगे, कॉन्शियसनेस नहीं बनेगी। तो सिर्फ एक बार मैं आत्मा हूं समझने से सोल कॉन्शियसनेस नहीं आएंगे। तो हम रोज जब क्लास में जाते हैं तो रोज शिव बाबा के महावाक्य के परमात्मा क्या कह रहे हैं हम आत्माओं से, वो रोज सुनने को मिलते हैं। तो इट्स लाइक गॉड्स लेटर विच कम्स फॉर मी every day at the center. It is what God has to say to me. So obviously I would want to go to the center to listen to that. तो हम जब सेंटर पे जाते सबसे पहली बात हमें वो ईश्वरीय महावाक्य मिलते which is the most valuable treasure. उससे ऊपर कोई और चीज नहीं। Second, हमें एक बहुत अच्छा परिवार मिलता who are all on the journey together, you know, and वो ही परिवार जो हमारी तरह working है, family में है, बच्चों के साथ है, and they're all facing the same challenges which I am facing. So a lot of experience sharing, lot of learning, and a lot of, you know, everyone being on the journey together instead of alone. तो वो भी जाने से हमारा motivation level और बढ़ता है। और तीसरा, हमें बहनें मिलती हैं जो हमारी बहुत अच्छी पालना करती हैं। बहनें हर सेवा केंद्र पर होती हैं जो इतने सालों से इस राज्यों का अभ्यास कर रहे हैं। सो दे हैव दैट एक्सपीरियंस, दे हैव दैट नॉलेज, उन्होंने उस ज्ञान को बहुत अच्छी तरह से समझकर अपने जीवन में धारण किया है। सो दे बिकम आर गाइड्स, नॉलेज इज हिज बट दे बिकम आर गाइड्स टू टेक अस ऑन द जर्नी। एंड हमें एक बहुत अच्छा वातावरण मिलता है। सेंटर का जो वायुमंडल होता है इट इज वेरी वेरी चार्ज्ड, क्योंकि वहाँ सभी लोग इकट्ठे मेडिटेशन करते हैं। यू नो, अकेले मेडिटेशन करो और इकट्ठे सबके साथ बैठ के मेडिटेशन करो, इट्स जस्ट मच मच इजियर बिकॉज यू गेट अ रेडीमेड चार्जर। तो सेंटर का वायुमंडल भी बहुत अच्छा होता है। 1952 से ये सारे सेंटर्स धीरे धीरे धीरे इंडिया में खुलने शुरू हुए, बहुत तीव्र गति से सारी सेवा शुरू हुई। एंड 1969 में 18th January 1969 ब्रह्मा बाबा रीच्ड द स्टेज ऑफ कम्प्लीशन, जिसको हम कहते हैं परफेक्शन, जो एम था कि बॉडी कॉन्शियसनेस से 100% सोल कॉन्शियसनेस को जाना, उस एम को उस फर्स्ट आत्मा ने अचीव कर लिया। और उसके बाद शिव बाबा की ही श्रीमत से, शिव बाबा के ही डायरेक्शन से दादी प्रकाशमणि जी को विद्यालय का चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव हेड घोषित किया गया। और 2007 दादी प्रकाशमणि जी ने भी अपना पुराना शरीर त्याग दिया और वर्तमान समय दादी जानकी चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन है। और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हम देखें कि जो फाउंडर है जब वो अपना शरीर त्याग देते हैं तो कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन में एक थोड़ा सा परिवर्तन जरूर आता है,
0: क्योंकि he is that, you know, force which
1: he is the force which started the organization. It is his knowledge which is being shared with everybody. तो जब वो सोर्स हट जाए तो थोड़ा सा उथल पुथल जरूर आता है। लेकिन ब्रह्मा कुमारी विद्यालय में जब हम देखते कि ब्रह्मा बाबा गए, अभी दादी प्रकाशमणि भी गए और कई बड़े दादियां और भाई अपना पुराना शरीर त्याग दिया, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन ओनली ग्रोज एंड ग्रोज एंड ग्रोज बिकॉज इट इज नॉट द वर्क ऑफ अ ह्यूमन बीइंग। अगर ये ब्रह्मा बाबा का कार्य होता या दादी का होता तो उनके जाने के बाद परिवर्तन आता, लेकिन ये तो शिव बाबा का काम है। और इसीलिए कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी में भी आने का कोई क्वेश्चन ही नहीं होता, डायरेक्शन मिला एंड इट इज फॉलोड। सो दैट्स व्हाई द वर्किंग गोज वेरी वेरी स्मूथ। तो ब्रह्मा बाबा लेफ्ट द बॉडी इन 69 एंड 70-71 ऑनवर्ड्स इंडिया से बाहर इस विद्यालय का ज्ञान पहुंचता गया। इट स्टार्टेड फ्रॉम लंदन and London till date is the international coordinating office, and from London today it is in 120 countries. So 120 countries रिलीजन्स, डिफरेंट कल्चर्स, डिफरेंट कास्ट, एवरीबडी, क्योंकि राजयोग ज्ञान है. इसका कोई धर्म, कोई जाति से कोई कनेक्शन नहीं है. हर एक जिस धर्म का है वो उसी धर्म में रहता है, कोई कन्वर्ट नहीं हो जाता, लेकिन अपने सत्य धर्म को पहचान लेता है कि माय ओरिजिनल रिलीजन इज द रिलीजन ऑफ प्योरिटी, रिलीजन ऑफ ट्रूथ, दैट सोल कॉन्शियसनेस. सो टुडे इट इज इन 120 कंट्रीज, 8,500 सेंटर्स स्प्रेड ऑल ओवर.
0: अमेजिंग. सो शिवानी, इफ वी टॉक अबाउट मूविंग आउट ऑफ इंडिया, जो यूनाइटेड नेशंस के साथ जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका गठबंधन है, लाइक यूनाइटेड नेशंस अगर हम सोचते हैं तो एक पीस के लिए जो फॉर्म किया गया था वो एक ऑर्गेनाइजेशन सामने आता है, जहां कोई भी आध्यात्मिक ऑर्गेनाइजेशन कैसे जुड़ सकता है, क्या है ये रिश्ता?
1: 1980 में ब्रह्मा कुमारीज का अफिलिएशन हुआ UNDPI, यूनाइटेड नेशंस डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंफॉर्मेशन. फिर 1983 में इसे कंसल्टेटिव स्टेटस मिला इकोसॉक के साथ, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल ऑफ द यूनाइटेड नेशंस. एंड 1988 में फिर कंसल्टेटिव स्टेटस मिला यूनिसेफ के साथ. और तीनों में जो कार्य था, जो आपने कहा यूनाइटेड नेशन वर्क्स एट द लेवल ऑफ पीस एंड सो डज द ब्रह्मा कुमारीज. You know, and when a lot of groundwork goes into finding out what the organization is doing, but when they realized that they are genuinely working towards creating peace in the world, because self transformation. Difference sirf yahi tha ki bahar world mein you try to create peace in the world, and Rajyoga teaches us create peace in the self. And when you create peace in the self, you automatically creating peace in the world. If I am peaceless and I try to create peace in the world, it's not possible. तो वो, एंड जब भी यूनाइटेड नेशंस का कोई भी प्रोजेक्ट होता है अबाउट यू नो अवेयरनेस ऑफ क्रिएटिंग पीस, ब्रह्मा कुमारीज इज ऑलवेज देयर विद देम एट एवरी स्टेप. एंड क्योंकि आज 120 कंट्रीज में इतने सारे सेंटर्स हैं, सो दीज सेंटर्स बिकम लाइक द हब, यू नो, फ्रॉम वेयर द प्रोजेक्ट इज कैरिड आउट ऑल ओवर द वर्ल्ड. तो तब से दिस ऑर्गेनाइजेशन द ब्रह्मा कुमारी वेरी क्लोजली कनेक्टेड विद द यूनाइटेड नेशंस. एंड हर प्रोजेक्ट में उनके, जैसे 2000 में भी ईयर ऑफ कल्चर ऑफ पीस, तो उसमें ऑल ओवर द वर्ल्ड पीस क्या है एक्चुअली, ये अवेयरनेस आत्माओं तक पहुंचाना. और यूनाइटेड नेशंस ने ये भी देखा कि कितनी बड़ी टास्क फोर्स है, द नंबर ऑफ पीपल हु हैव गॉट टुगेदर, क्योंकि आज लाखों परिवार हैं जो ब्रह्मा कुमारीज के साथ जुड़े हुए हैं, घर गृहस्थ में रह रहे हैं, बच्चे भी हैं, युवा भी हैं, फैमिलीज हैं, कपल्स हैं, एवरीबडी. And everyone wants to share with the world what they have got. क्योंकि जब आपका जीवन परिवर्तन होता है और आप देखते हैं कि आपके आसपास लोग दुखी हैं, अशांत हैं, you want to share it with them.
0: Actually, it's natural.
1: You know, so that is the biggest motivator. And that dedication जो हर आत्मा के अंदर है कि परमात्मा शिव बाबा आ चुके हैं, I want to tell the world. You know, so every individual here serves the world with a lot of dedication. You know. All voluntary. Koi bhi, nobody is paid to do what they're doing. But they're ready to do anything just to give the message to the world. So, ek bahut badi task force hai, ek bahut bada infrastructure hai, spread all over the world. And jo karya kar rahe hain, wo bhi bahut hi purity aur bahut hi peacefully se ho raha.
0: And in fact, wo possible hai. The biggest thing about the whole philosophy is that it is possible.
1: Yeah.
0: You know,
1: because you practically can see the result.
0: ये impos ऐसा नहीं लगता कि किसी और के लिए कही जा रही है बात, ये मेरे पर लागू होती है. In fact, जब मैं situations को देखूं तो वो वही situations है जो सबके साथ है, लेकिन उनकी transformation मुझ पे लागू, and it's not that difficult.
1: No, it's very easy.
0: Yeah, that's the whole point.
1: That's very easy.
0: Okay, we move from UN to multinationals.
1: Right.
0: Again, a sector which works on profits. मतलब उनका, अगर मल्टीनेशनल्स की फिलॉसफी, जिस तरह का सिनारियो क्रिएट होता है आज, कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है, दे आपको अगर ये कहा जाता है कि अगर आपको वो 5 लाख रुपया महीना दे रहे हैं तो आपसे 10 लाख का काम निकलवाएंगे, तभी दिया जा रहा है. और ये पूरे मल्टीनेशनल का जो सेटअप है, चाहे वो भारत में है या विदेश में, उनके साथ की कॉन्फ्रेंसेस, अगेन अ सेक्टर विच इज लाइक totally into profit making, right. And there is this sector which is so spiritual,
1: right.
0: Which is talking about peace.
1: Till the 1980s, or let's say 1990 beginning, this was only hardcore spiritual knowledge. आत्मा की पहचान, परमात्मा का परिचय, समय, कार्मिक फिलोसफी, वी डिडंट गो एनीवेयर बियॉन्ड दैट, एंड वैल्यूज, वैल्यूज को अपने जीवन में कहाँ धारण करना. लेकिन जैसे जैसे लोग जुड़ते गए, कॉर्पोरेट्स जुड़ते गए, ऑन एन इंडिविजुअल लेवल वो जुड़ते गए, उनके जीवन में परिवर्तन आया, तो उन्होंने देखा कि ये सारा ज्ञान हमारी कंपनी के सब लोगों के लिए बहुत यूजफुल है, बट ये मालूम था कि ये इसको ऐसे का ऐसे हम नहीं शेयर कर सकते हैं, यू नो, द नॉलेज विल हैव टू बी इन अ वे विच इज एप्लीकेबल टू माय प्रोफेशनल लाइफ. तब कई कोर्सेज डेवलप हुए, जैसे कि सेल्फ मैनेजमेंट, लीडरशिप, स्ट्रेस मैनेजमेंट, रिलेशनशिप्स, लॉट इमोशनल इंटेलिजेंस, फिर अब स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस, एटीट्यूडनल ट्रांसफॉर्मेशन. ये सारे कोर्सेज क्या डेवलप हुए, ज्ञान वही था, बेसिक फाउंडेशन वही है, मेडिटेशन वही है, लेकिन इसको प्रोफेशनल लाइफ में कैसे अप्लाई करेंगे.
0: गॉड से इंस्पिरेशन लेके ही,
1: एब्सोल्युटली
0: गॉड ने
1: कार्य उसी की श्रीमत से,
0: जो भाषा आपको आती है उसी भाषा में मैं आपको बता रहा हूँ. फाइनली आगे आपने भी यही
1: उसी तरह से
0: जो भाषा उनको आती है उसी भाषा तक.
1: तो फिर बहुत सारे कॉर्पोरेट्स जुड़ गए, और मेन चीज ये थी क्योंकि नॉलेज को प्रैक्टिकली ट्राई किया था पहले, तब जब हम औरों के साथ शेयर करते हैं तो उनके लिए भी उसको अपने जीवन में अप्लाई कर पाना ईजी हो जाता है. और उन्होंने देखा कि कितना कल्चर ही बदल जाता था. आज बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बहुत सारे कॉर्पोरेट हाउसेस हैं, जिनका टोटल वर्क कल्चर बदल गया, जिनके इम्प्लॉयज की पर्सनल क्वालिटी ऑफ लाइफ चेंज हो चुकी है, टीम स्पिरिट. कई ऐसी कंपनीज हैं जहां बहुत हड़ताल हुआ करती थी, वो सब जब ठीक हो गया है, रिलेशनशिप्स ठीक हो गए हैं, प्रोडक्टिविटी जिसकी हम बात करते हैं वो ऑटोमेटिकली बढ़ गई है, जस्ट बिकॉज वी स्टार्टेड वर्किंग ऑन आवरसेल्व्स. द सेल्फ मैनेजमेंट दैट बिकेम द टूल, यू नो दैट अनलेस यू मैनेज योरसेल्फ यू कैन नॉट मैनेज अ कंपनी, यू कैन नॉट मैनेज अ टीम. तब ये प्रोग्राम्स बने, और आज तो देश में भी और विदेश में भी बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस में ये प्रोग्राम्स रेगुलरली कराए जाते हैं. प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ स्पिरिचुअलिटी इन योर प्रोफेशन. अंडर द राजयोग एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन वी हैव 18 विंग्स, वी कॉल देम विंग्स, टू केटर टू डिफरेंट सेक्शंस ऑफ सोसाइटी. सो वी से एडमिनिस्ट्रेटर्स विंग, एजुकेशन विंग, मेडिकल विंग, के उस प्रोफेशन में नॉलेज को कैसे अप्लाई करें.
0: There are a lot of aspects still pending. There are a lot of questions still with the organization, about the organization. Lot of, you know, those myths which are attached. So there are still more questions.
1: Sure.
0: But वो हम अगली कड़ी में जरूर शामिल करेंगे. आज की इस पूरी बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद.
1: ओम शांति.
0: ओम शांति. सच पर अगर आधारित हो तो सचमुच, और एक जैसे कहते हैं कि बीच में अगर जान है या बीच में सच्चाई है तो वो इतना बड़ा पेड़ बन सकता है. जिस तरह से ये पेड़ बना है, जिस तरह से फैला है ये ऑर्गेनाइजेशन, और किस तरह से उसी ईश्वर का वो ज्ञान वो स्वयं इन ऑर्गेनाइजेशंस, इन पूरे सेंटर्स के माध्यम से आप तक पहुंचा रहे हैं, इट्स अमेजिंग एक्चुअली. अगर हम ये जर्नी देखते हैं तो आपके पास कोई ऐसी बात है जो आप हमारे साथ शेयर करेंगे, या कोई सवाल जो अभी भी परेशान कर रहा है, स्वागत है. आप हमें मेल कीजिए या फिर फोन पर संपर्क कर सकते हैं. हमारे फोन नंबर है 9999344555, 9999344666, 9873666555, और हमारा ईमेल आईडी है omshantistudio@gmail.com. आंतरिक तौर पर अगर मैं उस सोल कॉन्शियसनेस पर पहुंचने का प्रयास कर रही हूं, कुछ लेवल तक पहुंच भी गई हूं, लेकिन बाह्य तौर पर बहुत सी ऐसी बातें हैं जो मुझे खुद को लगने लगा है कि मुझे ट्रांसफॉर्म करनी चाहिए. क्या है वो बातें, और कुछ और बातें जो इस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ी हैं, कुछ सवाल जो आपके ही हम तक पहुंचे हैं, उन्हें उठाएंगे अपनी अगली कड़ी में. अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी, इसमें फिर होगी आपसे मुलाकात. ओम शांति.

0: गुरुदेव?
1: अवश्य। सदा सुहागन रहो। अब जल्दी से भोजन ले आओ कन्या, हम साधु लोग और बाट नहीं देख सकते।
0: बस थोड़ी देर और बैठिए गुरुदेव, वो आते ही होंगे।
2: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
3: किसी की एक लाइन मेरी मन, फीलिंग्स, वर्ड्स, एक्शन, रिलेशनशिप एंड बॉडी, छह चीजों पर असर हुआ मेरे। एक घंटे तक ये पूरी साइकोलॉजी, फिजियोलॉजी सब डिस्टर्ब्ड रही, रिश्ता डिस्टर्ब हुआ, रात को भी वो बात याद आई। एंड डेफिनेटली जब ये चीजें दिन में इतनी देर माइंड पे रही होंगी, ये नींद में जरूर चले होंगे, क्योंकि जो थॉट्स एक्टिव ड्यूरिंग द डे चलेगी ज्यादा, ये नींद में जरूर चले होंगे। नींद का नुकसान इसलिए क्योंकि आपने रात को सोने से पहले भी उस बात के साथ रिजोल्व नहीं किया अपने आप को, आप वो अनरिजोल्व्ड बात के साथ सो गए। तो मन क्या करता है, रात को सारा दिन की हुई बातें या जो कुछ हमारे माइंड पे है, देखो कोई प्रॉब्लम है, क्यों लोगों को नींद नहीं आती व्हेन दे आर अंडर स्ट्रेस, कोई प्रॉब्लम है, नींद नहीं आती, क्यों नहीं आती है? क्योंकि मन सोचना बंद नहीं करता है। सोने के लिए द माइंड नीड्स टू स्लो डाउन। इफ आई एम डिस्टर्ब्ड अबाउट समथिंग द माइंड जस्ट गोज ऑन एंड ऑन। आपके साथ एक बच्चा बैठा है, वो पूछता जाएगा जब तक आप उसको आंसर नहीं देंगे। आंसर दिए बिना ही सो गए तो वो तो रात को भी सोचता रहेगा। एंड इसीलिए मोस्ट ऑफ अस टुडे एक्सपीरियंस कि हम अपने 6 घंटे तो सो रहे हैं, 6 घंटे, 8 घंटे, जितना सोना है, लेकिन जब हम सुबह उठ रहे हैं द माइंड इज नॉट एज फ्रेश एज इट नीड्स टू बी।
2: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: ओम शांति अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी में आज फिर आप सबका स्वागत करते हैं। इन दिनों हम बात कर रहे हैं सेल्फ मैनेजमेंट की, यानी अभी तक तो हम बहुत सी चीजों को मैनेज कर रहे थे, स्ट्रेस को मैनेज कर रहे थे, लाइफ को मैनेज कर रहे थे, अपनी कंपनी को मैनेज कर रहे थे, अपने प्रोफेशन को मैनेज कर रहे थे, लेकिन जब खुद के ऊपर नजर गई तो सेल्फ मैनेजमेंट के बारे में समझा और अपनी सही पहचान करते हुए क्या वो सिचुएशंस हैं, किस तरह से अपने आप को मैनेज करना है, इस पर कई सारी बातें हम कर चुके हैं। आज भी इस बात को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। ओम शांति।
1: ओम शांति।
0: अगर पिछली कड़ी को हम देखें सिस्टर शिवानी, तो कई सारे एस्पेक्ट्स हमारे सामने आए थे कि जब सिचुएशन आ जाती है तो एक छोटा सा रिकैप लेकर हम आगे बढ़ते हैं कि व्हाई एक्चुअली वी नीड टू मैनेज द सेल्फ।
1: वी जस्ट सॉ लास्ट टाइम के परिस्थितियां बहुत सारी हैं हमारे सामने जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो कठिन से कठिन परिस्थिति में भी एक ही चीज है जो मेरे कंट्रोल में है, दैट इज माय रिस्पांस। सो वी शिफ्टेड द फोकस के सिचुएशन को कंट्रोल करने की बजाय क्यों ना अपने ऊपर ध्यान देना शुरू करें, तो सिचुएशन अपने आप संयम में आ जाएगी। तो अपने ऊपर ध्यान देने के लिए कुछ एक बातों के बारे में हमने विचार किया। एक था साक्षी दृष्टा, डिटैच्ड ऑब्जर्वेशन, जो हम उलझन कहते हैं ना, बहुत उलझन है क्योंकि हम उलझ जाते हैं उसके अंदर। तो अगर हम एक मिनट निकाल के भी स्टेप आउट करें कि जो ड्रामा चल रहा है उसको यहां से न देखने की बजाय एक ऑडियंस के पर्सपेक्टिव से देखें, तो हमें हर एक एक्टर का रोल बहुत क्लियर दिखाई देगा और सिचुएशन जैसी है वैसे दिखाई देगी। और फिर जो हम रिस्पॉन्स करेंगे वो सोच समझ कर करेंगे, क्योंकि हमारा पर्सपेक्टिव चेंज हो जाएगा, वही प्रॉब्लम हमें प्रॉब्लम नहीं अपॉर्चुनिटी दिखाई देगी। तो साक्षी दृष्टा वॉज वेरी इम्पोर्टेंट, क्योंकि जैसे ही हम थोड़ा सा डिटैच्ड होते हैं तो हमें ये पता चलता है कि सिचुएशन मुझे नहीं कंट्रोल कर रही है, मेरा कंट्रोल तो मेरे ही हाथ में है। लेकिन जब हम उसमें उलझे हुए थे कि ये सारा कुछ ऑटोमेटिक हो रहा है, सो जैसे कि कई बार होता है ना, बहुत केओस हो रहा है, लेट्स से ऑफिस में होता है, आप कुछ प्रोजेक्ट पे हो, आज शाम को सबमिट करना है, यू नो डेडलाइन इज देयर एंड यू हैव टू सी द एनवायरनमेंट ऑफ द ऑफिस, इट इज लाइक केओस, एवरीवन इज शाउटिंग एट ईच अदर एंड जल्दी करो क्यों नहीं हो रहा, ऐसे
0: ब्लेमिंग,
1: ऐसे वातावरण में वो प्रोजेक्ट खत्म होना तो एक बहुत बड़ा चैलेंज है ही है, क्योंकि द होल एनर्जी फ्लो इज वेरी नेगेटिव। लेकिन अगर हो तो जाएगा पूरा, लेकिन एक्सपीरियंस क्या रहा सारा दिन का या वो एक महीने का जब आप वो प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे, स्पेशली इवेंट्स ऑर्गेनाइज हम करते हैं, अब रोल ही है इवेंट ऑर्गेनाइज करना। इवेंट कुड बी एज स्मॉल एज कि आपके घर पे आज एक डिनर है, आपके घर पे आज एक बर्थडे पार्टी है, दैट्स ऑल्सो एन इवेंट। और उस इवेंट में आप देखो पूरा परिवार कैसे कियोटिक सा हो जाता है,
0: और उसके बाद जैसे ही सारे मेहमान जाते हैं आप ऐसे थक जाते, बिकॉज इट इज लाइक इतना टायरिंग पूरा एक्सपीरियंस हो जाता है।
1: तो ऐसे जैसे ये छोटी छोटी सिचुएशंस है, इनमें आप एक बार स्टेप आउट करके देखो, मॉर्निंग में आप देखो, जब आप घर पे, हमने लास्ट टाइम भी बात की कि मॉर्निंग का सीन कैसा होता है घर पे, अब इस मॉर्निंग के सीन में सपोज आज हमारे घर जो बहन आती है सफाई करने के लिए, बर्तन मांजने के लिए, वो आज नहीं आई, तो पूरा सीन कैसा हो जाता है, इट इज एवरीवन इज लाइक, अब एक है कि आप शोर मचाते रहो एक दूसरे पे चल, और एक है आप एक मिनट स्टॉप करो कि यू नो व्हाट एम आई डूइंग, घर साफ होता जा रहा है और अंदर हाउस एंड अंदर क्यों नहीं आई, ऐसे नहीं, वैसे, इट्स अ सिचुएशन नॉट इन माई कंट्रोल, माई रिस्पॉन्स। तो अगर उस समय हम 10 सेकेंड भी अपने आप को स्टॉप करके कहे वॉट एम आई डूइंग एंड यू विल इमिजिएटली जस्ट स्लो डाउन, जस्ट हैव टू कम आउट ऑफ इट वन मिनट लाइक दैट। तो वन वॉज डिटैच्ड ऑब्जर्वेशन, द अदर वॉज फिल्टरिंग इन्फॉर्मेशन, कि हम बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन आज जो अपने अंदर भर रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं भी हमारी एनर्जी को डिप्लीट करती है। तो लेट्स बी केयरफुल, जहां तक इन्फॉर्मेशन मीडिया से भी है, जहां तक इन्फॉर्मेशन चारों तरफ की, किसके घर में क्या हो रहा है, किसके जीवन में क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा भरते जा रहे हैं, और उससे क्या होता है, जहां बहुत ज्यादा क्लटर हो जाता है ना यहाँ पे, तो क्रिएटिविटी खत्म हो

0: हो जाती है, मैं बहुत ज्यादा ऑलरेडी कंज्यूम करने लगती हूँ बाहर से, तो इट्स लाइक अ पीस ऑफ पेपर जो ऑलरेडी इतना
1: बहुत
0: भर
1: भरा
0: गया
1: हुआ
0: है,
1: है हाँ,
0: इतना
1: कि वो
0: भर
1: कोई भी
0: गया
1: एक
0: है
1: कॉर्नर नहीं है जिस पर लिखे हैं हम।
0: या तो उसमें फिर मेरा रिस्पांस फिर ऑटोमेटेड होने लगता है, क्योंकि मेरा रिस्पांस इंफॉर्मेशन पे बेस्ड है, और फिर इंफॉर्मेशन भी कौन सी क्वालिटी की हम भर रहे हैं, तो जहां इंफॉर्मेशन ही ज्यादा दर्द वाली भरेंगे तो रिस्पॉन्स फिर ज्यादा दर्द वाला हो
1: बिल्कुल सही
0: जाएगा।
1: बात है।
0: तो इसलिए हमने देखा कि इन्फॉर्मेशन भरे तो भले हम सुन पढ़ तो रहे हैं आसपास क्या हो रहा है, लेकिन सुबह सुबह परमात्मा के महावाक्य ले, तो एटलीस्ट फर्स्ट लेयर ऑफ इन्फॉर्मेशन पॉजिटिव। और तीसरा हमने देखा कि जब भी हम ये जर्नी पर हैं कि यस दर्द मेरी क्रिएशन है, आई एम नॉट गोइंग टू डू इट, लेट मी वर्क ऑन माई सेल्फ, फिर भी कभी कभी थोड़ा थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है, लेकिन जब कभी ऐसी थोड़ी सी भी हार खा लें, रिएक्ट कर जाएं, एटलीस्ट देन स्टॉप एंड लेट्स वर्क ऑन आवर सेल्फ। नहीं तो अगर एक बार दो बार चार बार ऐसे हार खाते गए तो लगेंगे नहीं मेरे हाथ में कुछ नहीं है, ये मेरा पुराना बिलीफ सिस्टम ही राइट था कि ये सब कुछ तो बाहर से ही आता। लेकिन अगर सपोज मैंने एक बार रिएक्ट किया, गुस्सा किया, ना लेट मी सिट बैक एंड यू नो रिकवर, जैसे कि एक इलनेस तो आ गई लेकिन इलनेस का अब इलाज कर लें, उससे रिकवर हो जाए, क्योंकि हम उससे रिकवर नहीं होते तो एक के बाद एक बीमारी फिर
1: आती
0: हमें
1: जाती,
0: पकड़
1: उसके
0: के।
1: साथ जुड़ती जाती हैं।
0: तो इसलिए कहा जाता है कि एक बार अगर बीमारी आपको कोई हो जाती है तो आपका अपना इलाज आपको पूरी तरह से करना चाहिए ना। शारीरिक बीमारी भी होती है, कहते हैं रेस्ट कर लो, अच्छी तरह से रेस्ट कर लो ताकि आप उस बीमारी से रिकवर हो जाओ। अगर आप बिना रिकवर हुए ही एक्टिविटी में आ गए तो वो बीमारी हो सकता है आपको
1: दोबारा आ
0: फिर
1: जाए।
0: से दोबारा आ जाए। तो इसी तरह एक बार गुस्सा किया, उसमें से रिकवर नहीं किया तो 10 मिनट बाद
1: फिर
0: फिर
1: होगा।
0: कुछ और हो जाएगा, फिर कुछ और हो जाएगा, और फिर एट द एंड ऑफ द डे कहेंगे एंगर इज नेचुरल।
1: और इनफैक्ट नहीं, एक बार जब एंगर कर जब हो जाता है ना, जब अपने आप को रिस्ट्रेन किया उसके बावजूद भी हो गया, उसके ऊपर हमने काम नहीं किया उसी वक्त, तो उसके रिपरकशंस, क्योंकि हमारी एनर्जी तो ऑलरेडी उस लेवल पे पहुंच चुकी होती है, और उसके बाद ये देखा जैसे शिवानी कि हम अपने आप को जस्टिफाई करने लगते हैं।
0: बिकॉज वी सॉ कि फीलिंग क्या होती है, फिर मेरी गलती तो थी नहीं, फिर जस्टिफाई मतलब आपकी गलती थी, देन अगेन दैट यू नो, क्योंकि वो ओल्ड बिलीफ सिस्टम
1: टेक्स ओवर।
0: इतना डीप रूटेड है कि अगर एक वो थॉट आ गई कि मेरी गलती नहीं थी, दूसरी थॉट आएगी आपकी गलती थी, तीसरी थॉट आएगी फिर चेंज किसको होना चाहिए, आपको। यू सी ना अगेन वी फॉल बैक इन टू दैट ओल्ड ओल्ड ओल्ड थिंकिंग पैटर्न। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि अगर रिएक्ट कर भी दिया किसी भी फॉर्म का रिएक्शन बाहर या अंदर, जस्ट टेक आउट 2 मिनट्स एंड सिट बैक विद योर सेल्फ। अगर आप बहुत बिजी हैं, आप बहुत बिजी हैं, फिर भी आपका कोई फैमिली मेंबर या आपके कोई फ्रेंड्स, अगर उनका मूड खराब हो गया, यू नो दे आर अपसेट एंड यू सी देम लाइक दैट कि दे आर अपसेट, दे आर इन पेन, तो आप क्या करते हो?
1: हम सब कुछ छोड़ देते हैं, हम उनके साथ बातें करने
0: नाउ
1: लगते हैं।
0: सी इज इन दैट नेचुरल रिस्पॉन्स है कि हम सब कुछ छोड़ देते हैं, 2-3 मिनट भी हम टाइम निकाल कर उनसे बात करेंगे या फोन पे बात करेंगे, क्या बात करेंगे, हाउ आर यू, इट्स ओके, छोड़ दो ना, क्या फर्क पड़ता है, भूल जाओ, कोई बात नहीं। तो जबकि हम औरों के लिए ये टाइम निकाल सकते हैं क्योंकि वो दर्द में है एंड उनका दर्द मुझे मैटर करता है, तो मैं अपना काम छोड़ के आपके साथ बैठूंगी, तो मैं अपना काम छोड़ के अपने साथ क्यों नहीं बैठ सकती? अगर मैं दर्द में हूं, मैं दर्द में ही काम करती जाती हूँ करती जाती हूँ, अपने साथ क्यों नहीं 2 मिनट निकाल कर बैठ सकते?
1: That's very true, actually.
0: सो द मिनट वी गो इनटू पेन, लेट्स स्टॉप, अपने आप से बात करें, फिर उस सिचुएशन को पर्सपेक्टिव में देखें और रिकवर करें विद द पॉजिटिव थॉट, व्हाटएवर हैपेंड फाइन, आई एम अ पावरफुल सोल। अगेन यू नो वो एक नेगेटिव साइकिल शुरू हुआ है थॉट्स का, कोई बात नहीं, उसको स्टॉप करके, कट करके, पॉजिटिव थॉट क्रिएट करके एक पॉजिटिव साइकिल शुरू करना है। अगर मैंने अपने आप को नहीं स्टेबल किया तो फिर मैं हर सिचुएशन में फेल होती जाऊंगी सारा दिन। आप देखो अगर एक बार आपका मूड खराब हो गया आज सुबह सुबह, अगर आपने उसको ठीक नहीं किया फिर हर सिचुएशन में, यही अगर आपने 2 मिनट निकाल लिए आपने, ना दिस इज ऑल मेडिटेशन, दिस इज ऑल मेडिटेशन, नो मेडिटेशन, क्योंकि फर्स्ट चीज है अपने आप से रिश्ता, फिर परमात्मा से रिश्ता, अपनी हीलिंग, दैट इज मेडिटेशन। मेडिटेशन यू नो एवरी टाइम वी थिंक इट्स सपोज टू बी वेरी टेक्निकल, नो मेडिटेशन इज जस्ट ब्यूटिफुल, टेकिंग आउट टाइम, अपने आप से बात की, परमात्मा से बात की, अपना ध्यान रखा, उससे शक्ति ली, और इसीलिए हम हमेशा कहते हैं कि वो एक घंटे के बाद एक मिनट, ताकि वो ऑटोमेटिक अगर हमारी रूटीन में फिक्स हो जाए कि हम हर एक घंटे के बाद एक मिनट निकालेंगे, तो कहीं ना कहीं अगर उस एक घंटे के अंदर थोड़ा भी कुछ ऊपर नीचे प्लस माइनस हुआ था तो उस एक मिनट के अंदर
1: बिल्कुल, जैसे आप ये कह रहे हो हम हर एक घंटे बाद, हर दो घंटे बाद घर फोन करते हैं बच्चा ठीक है कि नहीं. सो अगेन यू नो अपने हस्बैंड को फोन करते हैं कि उन्होंने खाना खाया कि नहीं, कि कितने सारे लोग ऐसे करते हैं. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपने आप को बोलें, अपने आप के साथ करें कि मैं ठीक हूँ कि नहीं.
0: यस इट्स ओनली दैट, वो एक मिनट सिर्फ उसी के लिए है. और बजाय कि अब कई बार क्या होता है कि अगर हम वो एक मिनट निकालते हैं तो कई बार हम एक सीरीज ऑफ नेगेटिव थॉट्स में फिर चले जाते हैं कि नहीं मैं ठीक नहीं हूँ, मुझे दर्द हो रहा है, क्यों दर्द हो रहा है, उसने ऐसा किया. नो देन दैट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम. हमें वो वन मिनट इसलिए नहीं निकाला है कि हम वो परिस्थिति का चिंतन करने वाले हैं उसमें बैठकर, उनको ऐसा उनको. सो इसलिए हम परिस्थिति का चिंतन ना करके तुरंत वो वन मिनट स्टार्ट ही करते हैं पॉजिटिव थॉट से कि आई एम अ पावरफुल बींग, या आई एम अ पीसफुल बींग, आई एम अ लवफुल बींग, मैं उस परमात्मा का बच्चा हूँ जो शांति का सागर है, तो मैं आत्मा कैसी होंगी. तो क्या है, पॉजिटिव क्रिएट करेंगे तो नेगेटिव अपने आप खत्म होता
1: जाएगा. It just fills you the moment you give that thought.
0: इसलिए वन मिनट में हम ये नहीं कहेंगे कि आप वन मिनट निकाल कर हर टाइम उस सिचुएशन के बारे में सोचो जो उस एक घंटे में गए
1: थे.
0: वो तो हम वैसे भी सोच रहे थे. एग्जैक्टली. तो वो वन मिनट इसलिए निकलता है ताकि उस एक घंटे के अंदर जो ऑर्डिनरी वेस्ट कभी थॉट्स कभी नेगेटिव थॉट्स जो आ गई होंगी, तो ये वन मिनट में हम कॉन्शियसली प्योर थॉट्स क्रिएट करते. तो जितना भी थोड़ा सा वो एक घंटे के अंदर ऊपर नीचे हुआ होता है वो खत्म हो जाता है. भले हम अपने सभी भाई बहनों को ये बार बार कह रहे हैं, बट आई स्टिल फील नॉट मेनी आर ट्राइंग. क्योंकि कई बार ऐसे होता है कि बात बहुत सिंपल लगती है कि एक घंटे में एक मिनट, ये कौन सी बड़ी बात है, बट ये एक घंटे में एक मिनट बहुत पावरफुल टूल है. अगर समवन जस्ट टेक्स इट अप एज एन एक्सपेरिमेंट और इसको एक हफ्ते के लिए सिर्फ करे, एक हफ्ते के लिए आप अपने मोबाइल पे अलार्म लगा दो जो हर एक घंटे के बाद बजेगा ही बजेगा, और वो तो बजेगा लेकिन आप स्टॉप करेंगे. आप
1: वो स्टॉप तो करेंगे जाता नहीं तो.
0: और आप पॉज करके वो क्रिएट करेंगे, लाइफ विल चेंज. दैट इज डेफिनेट,
1: वेरी ट्रू. और वो उस एक घंटे के बाद जो एक मिनट है उसमें ये नहीं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये नहीं सोचना कि क्या हुआ था.
0: वो कई बार क्योंकि दर्द इतनी डीप रूटेड है ना, और वो वैसे ही चल ही रहा था उस एक घंटे में, तो कई बार वो एक मिनट भी उस सिचुएशन के बारे में या उस व्यक्ति के चिंतन के बारे में ही एक, बिकॉज वन मिनट इज वेरी शॉर्ट. और आप एक घंटे के बाद हर टाइम बहुत ज्यादा टाइम नहीं निकाल सकते. आप ऑफिस में हैं, आप बार बार ये नहीं कर सकते आप पांच मिनट निकाल लो, दस मिनट. सो इसलिए इट्स वन मिनट. लेकिन अगर वो वन मिनट एक्यूरेटली आप करो, अब होता क्या है, सपोज 9 to 10 इन द मॉर्निंग मेरा कुछ हुआ, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया, लेकिन 10 o'clock अगर मैंने अपने आप को स्टेबल कर लिया तो मेरा 10 to 11 ऑटोमेटिकली ठीक बीतेगा. लेकिन अगर मैंने वो 1 minute 10 o'clock पे नहीं निकाला है तो मेरा 9 to 10 जैसा बीता होगा तो वो 10 to 11 पर इन्फ्लुएंस करेगा. फिर 10 to 11 भी थोड़ा अच्छा नहीं बीतेगा तो वो 11, तो somehow
1: 5 बजे तक तो स्टेट जब कुछ नहीं हो पाएगा.
0: फिर जबकि हम शाम को घर पहुंचते हैं तब तक तो हमारी एनर्जी बिल्कुल डिप्लीट हो जाती है. हम लोग हमेशा कहते हैं कि जैसे बड़े लोग हैं ना डायरी रखते हैं कि 9 to 10 ये करना है, 10 to 11 ये करना है. तो जैसे आप ऐसी डायरी बनाते हो तो एक कॉलम और भी साथ में ऐड करो, 9 to 10 क्या फील करना है. What to do is one column, 9 to 10 what to do and what to feel. 10 to 11 कैसा फील करना है,
1: पावरफुल, लवफुल.
0: या एंड इट्स बेसिकली एवरीवन वांट्स टू फील हैप्पी. अगर आप किसी से भी पूछो क्या चाहिए तो वन यूनानिमस वर्ड इज खुशी चाहिए. तो हम और आप, इट्स अमेजिंग, आप यू आस्क एनीवन टुडे कितने दिन खुश रहना चाहेंगे, कहते 365 days. अच्छा पूरे दिन में कितनी बार, कहेंगे हर मिनट. तो प्योर डिजायर है कि मैं जीवन का पल पल खुशी में बिताऊं, और कर रहे हैं ऑपोजिट. क्यों? क्योंकि अटेंशन नहीं है उस तरफ. तो जैसे आप अपनी डायरी को टिक करते जाते हैं कि 9 to 10 ये काम हो गया, 10 to 11 ये काम हो गया, तो सेकंड कॉलम को भी चेक करें कि वो 9 to 10 आप जो अनुभव करना चाहते थे, खुशी का, स्टेबिलिटी का, वो किया या सिर्फ काम किया. और काम के साथ इधर फीलिंग दर्द वाली तो नहीं क्रिएट हो गई कहीं। लेट्स से आपका कल बच्चों के साथ कुछ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो गया, या बच्चे आपकी बात नहीं मान रहे हैं, या बच्चों की स्टडी आपके लिए कंसर्न बनी हुई है एंड इट्स देयर ऑन योर माइंड, या आपके घर में फैमिली में कोई किसी की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, इट्स ऑन योर माइंड। अब आप काम तो कर रहे हैं, आप ठीक करते जाएंगे, ये काम हुआ ये काम हुआ, मन की स्थिति क्या थी पूरा दिन, हम ये सारा काम क्यों कर रहे हैं, हम जीवन में खुश रहना चाहते हैं, सिर्फ काम किया काम किया काम किया लेकिन सारा दिन दर्द में बीता, हाउ फेयर इज इट। क्योंकि डे बाय डे फिर जीवन ऐसे तो बीत ही रहे हैं, फिर पूछो कैसे चल रहा है, कहेंगे चल रहा है चल रहा है। एंड देन समवेयर जो एक बहुत डीप रूटेड सभी के अंदर आज सेट होता जा रहा है कि दिस लाइफ इज नॉट वेरी एंजॉयबल, इट इज मोर लाइक चल रहा है, इट्स मोर लाइक एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसको हम सिर्फ पूरा करते जा रहे हैं। और उसका रीजन सिर्फ एक है कि हम इस तरफ ध्यान नहीं दे रहे। इट्स नॉट दैट खुशी इम्पॉसिबल है, इट्स वेरी मच पॉसिबल, और इसीलिए हर एक के अंदर ये डिजायर है कि मैं खुश रहूं। लेकिन ध्यान नहीं देंगे तो अपने आप नहीं कल्टिवेट हो जाएगी। आपने पूरी जो अपॉइंटमेंट डायरी बनाई, आप उस पर काम करते हैं तब तो वो आप एक एक टास्क अचीव कर पाते हैं। सिर्फ डायरी बना दी और किया नहीं तो हो जाएगा क्या? सिर्फ सोचने से कि मुझे ये करना तो वो अपने आप हो जाएगा
1: तो पड़ेगा,
0: करना तो पड़ेगा ना। तो नाउ एवरीवन, मुझे खुशी चाहिए, मुझे खुशी चाहिए, करेंगे क्या उसके लिए? एक मिनट निकालेंगे उसके लिए? हाँ करेंगे, फिर करते नहीं। तो अनलेस वी डू इट, वो अपने आप तो नहीं आने वाला। तो इसलिए मॉर्निंग में जब हम मेडिटेशन करने बैठते हैं, 10 मिनट्स भी अगर अपने से निकालते, तो फर्स्ट स्टेप, अगर आपको बहुत ज्यादा नहीं आपसे मेडिटेशन आगे हो रहा, परमात्मा से भी अभी तक कनेक्शन नहीं जुड़ रहा, अपना दिन तो प्लान कर सकते हैं ना, दिन की प्लानिंग, लेकिन प्लानिंग इन टर्म्स ऑफ आज मुझे कैसा फील करना है पूरा दिन। तो वो थॉट हम सुबह सुबह क्रिएट करते हैं कि मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूँ, चाहे आज कोई भी परिस्थिति मेरे सामने आ गई, आई विल क्रॉस इट विद स्टेबिलिटी, आई एम पावरफुल, यू नो दिस इज अ थॉट आई हैव टू कीप गिविंग माई सेल्फ। फिर सुबह सिर्फ दिया, लेकिन फिर सारा दिन फिर सिचुएशन के प्रभाव में आ गए, इसलिए वो एक घंटे के बाद एक मिनट, वो बहुत बहुत वैल्यूबल है। सो वो एक मिनट का जो इन्फ्लुएंस है वो आपके नेक्स्ट आवर पर भी यू नो प्रभाव पड़ता है। अगर हम ये एक एक मिनट निकालें हर घंटे के बाद, तो हम सारा दिन हमारी स्थिति कैसे रहेगी? और फिर मोस्ट इम्पोर्टेंट, शाम को घर पहुंचेंगे तो कैसी स्थिति
1: हम होगी? वो उस हालत में नहीं होंगे जिसमें हम थके हुए होते। इनफैक्ट फिजिकली हम जितना भी थके हुए हों, हम इमोशनली और मेंटली इतने ड्रेन्ड आउट होते हैं।
0: एक्चुअली फिजिकली हम बहुत ज्यादा नहीं थकते। आज क्या हमारा वायुमंडल है, अच्छे अच्छे हमारे ऑफिस है, एसी गाड़ी में हम ऑफिस जाते हैं, एसी ऑफिस में हम बैठे हैं, कंफर्टेबली बैठे हैं, कोई फिजिकल तो बहुत ज्यादा वर्क नहीं कर रहे हैं। ये जो थकावट की फीलिंग है, इट्स मोर हियर, क्योंकि इमोशनली और मेंटली हम थोड़ा सा ड्रेन आउट हो जाते हैं, क्योंकि एनर्जी की वेस्टेज बहुत हो रही है, क्योंकि नेगेटिव और वेस्ट थॉट्स बहुत सारे क्रिएट हो रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा कहाँ वो एनर्जी डिप्लीट होते जा रही
1: है। शिवानी, वी शुड ट्राई टू टेल एवरीवन, हम सब आज संकल्प करें, मैं तो आज अभी इस एपिसोड के बाद एक घंटे के बाद का अलार्म लगाने वाली हूँ, क्योंकि ये ट्राई करके देखे कि एक हफ्ता कम से कम हर एक घंटे बाद हम ये एक पॉजिटिव थॉट क्रिएट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि उस एक मिनट में हमने परिस्थिति का चिंतन नहीं करना है, हमने उसे एक घंटे को भी नहीं देखना है,
0: अपने दर्द का भी चिंतन नहीं करना।
1: वो वही तो कर रहे होते हैं, तो ना परिस्थिति का चिंतन, ना अपने दर्द का चिंतन, और ना ही एक घंटे को भी देखें, सिर्फ अपने आप को ये कहें मुझे पॉजिटिव थॉट्स हैं कि मैं कौन हूँ, और अपनी वो स्ट्रेंथ जो है वो अगले घंटे के लिए भी अपने आप को।
0: इट्स बेसिकली लाइक अ चार्जिंग। जैसे आजकल हम लोग मोबाइल यूज करते हैं, तो पहले मोबाइल सुबह चार्ज कर लेते हैं, लेकिन वो सारा दिन में तो डिस्चार्ज हो जाता है। तो अब हम लोगों ने क्या करना शुरू किया, चार्जर अपने साथ रखना शुरू किया ना। अब आप कहीं भी जाओ, हर जगह चार्जर लगे हुए हैं, विच इज वेरी गुड। ऑफिस में भी आप जाओ, चार्जर भी लगा है, फोन उसी के साथ लगा हुआ है। तो शाम को जब आप घर पहुंच रहे हैं, आप घर ड्राइव करके जा रहे हैं, आपका फोन फुल्ली चार्ज्ड है। पहले क्या होता था, घर पहुंचने के टाइम वापसी पे वो फोन कई बार डिस्चार्ज हो जाता था, तो जब आपको चाहिए था वो, आप कहीं रास्ते में अटक गए, यू डिडंट हैव इट। सिमिलरली हियर, अगर आप सारा दिन में बहुत डिस्चार्ज हो गए, शाम को जब आपको वो एनर्जी चाहिए, आप घर पहुंचे हैं, आप अपनी फैमिली के साथ हैं, सिर्फ वही टाइम है जो आप अपनी फैमिली के साथ बिताते हैं, उसमें हम हमेशा हर रोज कैसे होते हैं? डिस्चार्ज। दैट इज द ओनली रीजन जो हमारे आज घर पे रिलेशनशिप्स थोड़े से ऊपर नीचे हो रहे हैं, क्योंकि हम सभी जब घर पहुंचते हैं सिर्फ एक व्यक्ति नहीं होता, एवरी मेंबर ऑफ द फैमिली वो शाम तक डिस्चार्ज की स्थिति में होता है.
1: और इनफैक्ट जो घर पे हैं
0: वो भी
1: डिस्चार्ज हो चुके होते हैं. एंड देन दे से कि मैं सारा दिन का थका हारा आया हूँ, वो कहते हैं कि मैं सारा दिन वेट करती रही, मैं सारा दिन घर पे बैठी रही, तो वो वहां टकराव जो है वो हो वेट.
0: अब तो पूरी इवनिंग जो है ना आपकी 7 to 10 या जितना भी टाइम आप घर पे हैं वो डिस्चार्ज स्थिति में है. फिर आप रात को सोए, चार्ज हुए, सुबह आप फ्रेश है, आप ऑफिस चले गए, फिर घर पे आए, फिर डिस्चार्ज है. तो बेसिकली मेजोरिटी लोगों के लिए आज जितना टाइम परिवार वालों के साथ है उस समय हमारी स्थिति कैसी है,
1: बहुत थकी हुई होती है. वेरी ट्रू.
0: तो द एनर्जी विच वी हैव टू एक्सचेंज विद फैमिली वो कहीं ना कहीं क्लैश कर रहे हैं. और फिर अगर मेरी आज इवनिंग अच्छी नहीं बीती या कुछ ना कुछ हर टाइम एक कॉन्फ्लिक्ट सा बहुत ज्यादा हो रहा है तो उसका इफेक्ट मेरे ऑफिस पे पड़ेगा कि नहीं कल सुबह.
1: ऑलरेडी थकी हुई होंगी, यू नो ऑलरेडी मेरा लड़ाई हो चुकी होगी क्योंकि मैं थकी हुई थी और थकी हुई होती है अगले दिन मॉर्निंग फिर मेरा यही.
0: आप किसी से भी आज पूछो आपकी लाइफ में प्रायोरिटीज क्या है तो ऑर्डर पता है क्या देंगे, वर्क, फैमिली एंड सेल्फ. पहले मेरा काम, फिर परिवार, फिर मैं खुद. अब काम इतना ज्यादा टाइम ले रहा है आज कहेंगे 10 घंटे 12 घंटे काम में चलेंगे, फैमिली को ही हम 2-3 घंटा दे पाते हैं तो वो थर्ड स्टेप तक हम पहुंचते नहीं,
1: तब तक हम सो जाते हैं.
0: इसलिए कहेंगे सेल्फ के लिए टाइम नहीं है क्योंकि ये दोनों क्षेत्र बहुत ज्यादा टाइम ऑलरेडी ले रहे हैं. व्हाट इज द ऑर्डर, वर्क, फैमिली, सेल्फ, क्या ये राइट ऑर्डर है हमारा? तो अगर हम थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्ट करें तो द ऑर्डर शुड बी सेल्फ, फैमिली, वर्क. सेल्फ हेल्दी होगा तो फैमिली में रिलेशनशिप्स अच्छे होंगे. फैमिली हेल्दी को छोड़कर आप ऑफिस जाएंगे तब जाकर आपका वहां कुछ मन लगेगा, आप ठीक से काम करेंगे. सेल्फ दर्द में है तो रिलेशनशिप्स घर पे थोड़े से ऊपर नीचे हुए. अब इस दर्द में इस परिवार को छोड़ के ऑफिस पहुंचते हैं तो ऑफिस पहुंच के मन कहाँ होता है? ये हुआ, ये हुआ, ये कॉन्फ्लिक्ट है, पता नहीं क्या. तो आर यू डूइंग जस्टिस टू वर्क ऑल्सो? तो अगर स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन नहीं है आप परिवार के साथ भी जस्टिस नहीं कर सकते और काम के साथ भी जस्टिस नहीं कर सकते. हाँ बहुत सारे घंटे स्पेंड कर सकते हैं वहाँ
1: लेकिन आपका बिल्कुल निकलेगा नहीं, कुछ भी आउटपुट नहीं आएगा.
0: एक्चुअली पहले वर्क को कर दिया, सेल्फ के ऊपर टाइम नहीं दिया तो उस वर्क में ज्यादा घंटे स्पेंड करने पड़ रहे हैं. क्योंकि दर्द में आप काम करो और हेल्दी स्थिति में काम करो फर्क.
1: ऑफ कोर्स आप इतने बोझिल, इतने हैवी, इतने थकान से भरे हुए होते हो. इनफैक्ट यहाँ से शिवानी एक और बात कि बार बार हम ये कहते हैं कि मैं काम किसके लिए कर रहा हूँ,
0: काम परिवार के लिए कर रहा हूँ ना.
1: प्ली ये होता है, जब ये आपने ये कहा तो मेरे को बिल्कुल सामने ये याद आएगी कि वर्क को हमने सबसे पहले नंबर पर रखा है लेकिन हमारी प्ली ये होती है
0: कि फैमिली के
1: कि
0: लिए
1: मैं तुम्हारे लिए तो काम.
0: एब्सोल्युटली. लेकिन फैमिली को क्या चाहिए आपसे? फैमिली को सिर्फ धन नहीं चाहिए आपसे, चाहिए क्या आपसे? खुशी चाहिए, घर में प्यार चाहिए. आज मेहनत तो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है लेकिन खुशी का पैरामीटर, घर में आपस में विश्वास का पैरामीटर, प्यार का पैरामीटर, वो तो कहीं ना कहीं उल्टा और ही घटता जा रहा है जस्ट बिकॉज द प्रायोरिटी वॉज नॉट राइट. एंड जब हम ये प्रायोरिटी फिक्स करते हैं इट इज नॉट इन टर्म्स ऑफ घंटे कि भाई वर्क को 14 घंटे दिए तो सेल्फ को 2 घंटे देना, नहीं. इट्स जस्ट दैट प्रायोरिटी राइट होनी चाहिए कि जब तक मैं हेल्दी नहीं हूँ मेरी फैमिली हेल्दी नहीं हो सकती, और जब तक मैं और फैमिली हेल्दी नहीं है मैं काम के क्षेत्र में भी जस्टिस नहीं कर सकता. तो मुझे पहले अपने को हील करना पड़ेगा. मैं ठीक हो गया, परिवार अपने आप ठीक हो जाएगा, परिवार ठीक होकर मैं ऑफिस गया, नाउ आई विल बी डूइंग जस्टिस टू वर्क. एंड जितना काम मुझे करना है 100% गारंटी इट विल गेट डन इन लेसर अमाउंट ऑफ टाइम. हम काम कर रहे हैं, यहाँ से प्रोजेक्ट कर रहे हैं, पेपर पे हैं, कंप्यूटर पे हैं, मन कहाँ पर है?
1: वहाँ क्या चल रहा होगा?
0: अगर घर पे नहीं भी है ऑफिस में कोई ना कोई बात हो जाती है सारा दिन और मेरे अंदर ताकत तो है नहीं क्योंकि मैंने अपने ऊपर काम नहीं किया, तो काम भी कर रहे हैं मन ऐसा क्यों, ये क्यों, आगे कैसे होगा, मेरे से होगा कि नहीं. सो एम आई डूइंग फुल जस्टिस टू वर्क? इवन काम के क्षेत्र में फुल कॉन्सेंट्रेशन के लिए यहाँ पे स्टेबिलिटी चाहिए, लेकिन वो स्टेबिलिटी तब होगी जब सेल्फ पे काम किया होगा. लेकिन हम कह रहे हैं नहीं, हमारा सारा टाइम काम पे है. तो कहीं ना कहीं अपने जीवन की जो प्रायोरिटीज होती है वो राइट सेट करनी है. पहले मैं ठीक तो परिवार ठीक है फिर अब मैं काम पे जाता हूँ, देन एवरीथिंग विल बी मोर यू नो फ्लोइंग एंड वेरी स्मूथ एंड आई विल एंजॉय एवरीथिंग आई एम डूइंग. नहीं तो मैं तीनों को ही एंजॉय नहीं कर रहा, तीनों जगह ही कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा ऊपर नीचे.
1: और मजे की बात तो ये दिख रही है कि सेल्फ पे काम करने के लिए आपको उतने 14 घंटे नहीं चाहिए.
0: एक मिनट एक घंटे के बाद एक मिनट. इट जस्ट दैट इट लुक्स टू सिंपल लेकिन बहुत पावरफुल है, करके देखना पड़ेगा. वो सुनते में इतना इजी लगता है कि
1: somewhere, कर लिया.
0: हाँ एंड मेजोरिटी बोलते हैं हाँ हम तो जरूर कर लेंगे कर लेंगे, लेकिन वो करना पड़ता है, विधि पूर्वक करना पड़ता है. कई कॉर्पोरेट हाउसेस में जब उन्होंने इस तरह के प्रोग्राम्स किए हैं ब्रह्मा कुमारीज के साथ, उन्होंने अपने ऑफिस के अंदर ये कल्चर इंट्रोड्यूस कर दिया है कि ऑफिस में जैसे स्पीकर्स लगे हुए हैं एंड लिटिल लाइट म्यूजिक नो मेडिटेशन म्यूजिक हर घंटे के बाद बजता है एक मिनट के लिए. रिमार्केबल रिजल्ट, पूरा एनवायरमेंट ऑफिस का ठीक हो जाता है. एंड क्योंकि लोगों को एक रेस्ट मिलता है, यू नो इवन ऑफिस में ऐसे लोग हैं जिनको ये नहीं पता कि उनको वो एक मिनट में क्या क्रिएट करना है, पॉज, उनको वो भी नहीं मालूम, उनको कुछ नहीं मालूम, सिर्फ वो म्यूजिक बजता है एंड दे जस्ट स्टॉप एंड रेस्ट. वो रेस्ट भी बहुत काम कर जाता है.
1: आई नो जिस भी चीज में है आप, इनफैक्ट अगर हम देखें
0: क्योंकि वो वन मिनट वो डिटैच्ड ऑब्जर्वेशन भी हो जाता है
1: कि सब चीजों से एक मिनट का.
0: जैसे स्कूल में बच्चे हैं, आपका एक लेक्चर के बाद दूसरा लेक्चर होता है, टेक दैट वन मिनट. नहीं तो वो एक मिनट जो एक टीचर क्लास से बाहर जाएगी और दूसरी टीचर आएगी, अगर वो एक मिनट आप स्टेबल हो जाएंगे, आप पिछले सेशन को भी ठीक से अब्सॉर्ब कर लेंगे और नेक्स्ट सेशन के लिए रेडी होंगे. नहीं तो एक लेक्चर के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, जो एक एक टीचर आकर समवेयर हियर इट हैज नॉट गॉट अब्सॉर्ब प्रॉपरली और फिर घर जाके बहुत स्टडी करना पड़ता है फिर से. सो दैट वन मिनट जो बीच में मिलता है इट्स वेरी वैल्यूएबल. इसको करके देख सकते हैं.
1: तो सिस्टर शिवानी आज जो हमारे सामने बात आई कि एक मिनट का रिलेवेंस को हमने सोचा और अभी तक हम ये कहते थे कि एक मिनट क्या है, आपको हम दूसरों के साथ कितना वक्त गुजार रहे होते हैं, तो वो एक मिनट जो मुझे एम्पावर करेगा. और उसमें भी बहुत जो सही बात यह है कि हम ये सोचते हैं कि हमें पता नहीं क्या सोचना है, इट्स ओनली कि हमें वो पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट करके अपने आप को एम्पावर करना है और वो ट्राई करके देखें. बार बार हमारी कोशिश रहती है, हम कहें कि अनुभव से बड़ा जो है वो कोई बड़ा एक्सपीरियंस नहीं हो सकता. मतलब जब तक हमें अपने आप को देखना है कि हम कैसे उससे गुजरते हैं. आज की इस पूरी बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. ओम शांति. तो चलिए एक बार फिर बॉल हमारे कोर्ट में है, हमें तय करना है कि हम अपनी जिंदगी को कैसे लेकर जाना चाहते हैं. एंड लेट्स ट्राई इट आउट. मैंने तो अब तय कर लिया है कि मैं इस एपिसोड को खत्म करते ही जरूर अलार्म लगाऊंगी एक घंटे बाद. सिर्फ एक मिनट, एक मिनट. आप किसी भी जगह पे हो, आप अपने घर पे हो, हाउसवाइफ हैं, आप ऑफिस में काम करते हैं, और इनफैक्ट जहां हमें परिवर्तन आने लगेगा आसपास का माहौल अपने आप परिवर्तित होगा. और उसमें भी हमें ये याद रखना है कि हमने थॉट क्या क्रिएट करना है. लेट्स ट्राई इट आउट. और आपके जो भी एक्सपीरियंसेस हो वो आप हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा. आज आपसे हम यही विदा लेना चाहेंगे लेकिन आपको बताएंगे कि आप हमसे फोन पर या फिर ईमेल द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं. हमारे फोन नंबर है 0999-344-555, 0999-344-666, 0987-366-555, 0999-744-555. हमारा ईमेल आईडी है omshantistudio@pkmail.org. अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में आज इतना ही. सेल्फ मैनेजमेंट पर बहुत सी बातें हमारे सामने आई हैं और आज हमने एक मिनट के रेलेवेंस को समझा है. प्रायोरिटाइज करना है अपने आप को, सेल्फ सबसे पहले, फैमिली उसके बाद, और उसके बाद वर्क, तो डेफिनेटली काम तो हमारा होगा ही. तो आज आपसे विदा लेते हैं. ओम शांति.

0: रिश्तों में सरलता और प्यार बनाए रखने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: गलती तो गलती हुई ना, दूसरे की गलती को अगर पहली बात हमें कोई राइट भी नहीं है, लेकिन दूसरे की गलती को चेक करने का आपको हक तब है जब आप बिल्कुल परफेक्टली राइट पर है। आप भी गलती करके दूसरे की गलती को सुधारें तो उसकी दूसरे के ऊपर कोई बहुत ज्यादा इम्पैक्ट उस चीज का पड़ेगा ही नहीं। एंड इसीलिए हम सब लोग दूसरों को सुधारने की कोशिश करते रहते हैं, बट इट्स नथिंग इज रियली वर्किंग, इट वोंट वर्क दैट वे, क्योंकि हम खुद वो गलतियां या उससे भी बड़ी गलतियां कर रहे हैं।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: सोनेरी आवाज
1: सामाजिक व सांस्कृतिक माहिती देणारे आपले झकास रेडिओ स्टेशन
0: पुणेरी आवाज
1: ऐकत रहा 107.8 FM।
0: आनंदी रहा आणि आनंद लुटा।
2: शिवाजी की तलवार है, लावणी बेमिसाल है, टेक्नोलॉजी के साथ संस्कार है। मराठी करती स्वागत हर भाषा का, यहाँ भूमि अपनाती हर त्योहार है। सुनिए पुणेरी आवाज 107.8, खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: ओम शांति। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी में आज फिर आप सबका स्वागत। जिंदगी को कैसे जीना चाहिए, उन स्किल्स को हम सीख रहे हैं। श्रृंखला में बात हो रही थी थॉट्स की, यानी कि हमारे ही विचार, जिन्हें अभी तक हमने ये समझा कि हर सिचुएशन पर डिपेंडेंट है और कभी भी आ जाते हैं। लेकिन अब धीरे धीरे समझ रहे हैं, सजग हो रहे हैं, अवेकन हो रहे हैं कि ये आते हैं तो कौन क्रिएट कर रहा है। बाहर से नहीं आ रहे, बल्कि वो सिचुएशन है जो हम याद करते हैं या हमारे सामने आ रही है और फिर हम उन थॉट्स और फीलिंग्स को क्रिएट करते हैं। अगर मैं क्रिएटर हूँ तो मैं चेंज भी तो कर सकता हूँ, कैसे करना है ये जानेंगे। हमारे साथ हैं साइकोथेरेपिस्ट डॉक्टर गिरीश पटेल और हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। आप दोनों का स्वागत। ओम शांति। डॉक्टर पटेल, इट्स क्वाइट यू नो लाइक इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट कि मैं खुद क्रिएट कर रहा हूँ। और एक और बात जो हम पिछली कड़ी में अगर जाएं तो बहुत इम्पोर्टेंट हमारे सामने आई थी कि जितने भी प्रॉब्लम्स रही हैं, जितने भी अनरिजॉल्व्ड इश्यूज हैं मेरे जिंदगी में, वो रिजॉल्व कोई व्यक्ति है या नहीं, वो सिचुएशन दोबारा होती है या नहीं, मैं कर सकता हूँ। इट्स अ बिग एश्योरेंस। आगे बढ़ते हैं। अब मैं थोड़ी थोड़ी सजग होनी शुरू हुई अपने शरीर के बारे में भी, बॉडी के बारे में भी और थॉट्स के बारे में। आगे क्या करें?
1: मूल बात तो ये समझने की है कि थॉट्स का महत्व क्या है। थोड़ा सा मैंने सोचा है कि विचारों पर विचार किया है ना, थॉट्स ऑन थॉट्स। हम सब ये तो जानते हैं कि एक दिन में हम 30,000 से 60,000 विचार करते हैं, परंतु आमतौर पर हम ये सोचते हैं कि भी विचार कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। परंतु सबसे पहली मुख्य बात तो यह है कि विचारों में भी जीवन है, थॉट्स ऑल्सो हैव अ लाइफ। तो इसलिए उसको कोई ऑर्डिनरी चीज हम न समझे।
0: थॉट्स हैव अ लाइफ,
1: लाइफ आई फील, क्योंकि आत्मा से निकले विचार तो सोल इज एनर्जी, तो उसकी थोड़ी तो एनर्जी उसमें भी होगी। नहीं, एक सचमुच एक सटल एनर्जी है थॉट्स भी, और वो थॉट्स जैसे है वैसे ही वातावरण भी बनता है, और थॉट्स उस चीज को अट्रैक्ट करते हैं जो आप सोच रहे हैं, उसी प्रकार के प्रकंपन वातावरण में फैलते हैं और फिर उस चीज को आप अट्रैक्ट करते हैं। इसलिए कहा गया है कि यू ग्रेविटेट इन द डायरेक्शन ऑफ योर डोमिनेंट थॉट्स। जो आप बार बार सोचते हो उसी दिशा में आप आगे बढ़ते हो।
0: तो मतलब हम बार बार कई बार डर रहे होते हैं तो वो हो भी सकता है?
1: बिल्कुल हो सकता है ना,
0: क्योंकि हम बार बार अगर आप थॉट्स ही तो क्रिएट कर रहे हैं ना, हमें डर है, फियर है, तो वो हम संभव भी करते हैं।
1: हाँ, वो सचमुच होता है। आज व्यक्ति बीमारी के बारे में सोचता है और वैसे बीमार होता है। ये भी माना गया है कि आज लोग एक्सीडेंट्स के बारे में जो बार बार सोचते हैं वो सचमुच एक्सीडेंट से मीट करते हैं। उसी प्रकार का, क्योंकि थॉट्स आर रियल, वो वातावरण में उस चीज को क्रिएट करते हैं। कहते हैं कि थॉट्स हैव अ मैग्नेटिक पावर, जैसे मैग्नेट आयन को अट्रैक्ट करता है, ऐसे थॉट्स है वो परिस्थिति को अट्रैक्ट करते हैं। और जो महत्वपूर्ण बात समझने की है,
0: तो पासा पलट दिया। आपने तो हमारे पर डाल दिया सारा कुछ।
1: देखो, सबसे पहले तो ये महत्वपूर्ण बात, दूसरी बहुत ही जरूरी चीज है कि जो भी आपको फीलिंग्स होती है, अच्छी या बुरी, आप दुख की फीलिंग करते या सुख की फीलिंग करते, उसका फाउंडेशन आपके थॉट है। कई लोग कहते ऐसे मैं गुस्से में आ गया, ऐसे मैं डिप्रेस्ड हो गया, एटलीस्ट सबकॉन्शियसली तो थॉट था।
0: पर अब सब पता नहीं चलता। अगर आप मतलब बार बार हमने इस बारे में बात की है कि आप थॉट्स को देखो, थॉट्स के प्रति सजग रहो। अब जैसे अभी मैं क्या सोच रही हूँ वो तो मैं सजग हो जाऊंगी कि ठीक है मैं यहाँ प्रोग्राम में बैठी हूँ, इसके बारे में सोच सकती हूँ। लेकिन जैसे ही वो फीलिंग आई, वो जो बिल्कुल ठीक है कि जैसे डिप्रेशन आ जाता है, एकदम से हार्ट सिंक करने लगता है, दुख आ जाता है या गुस्सा चढ़ना शुरू होता है, उस वक्त ये तो समझ में नहीं आता कि हमने क्या सोचा था कि गुस्सा आया। गुस्सा होने के बाद हमें वो थॉट्स दिखने शुरू हो जाते हैं कि गुस्सा आया है, अब मुझे गुस्सा चढ़ रहा है और चढ़ता जा रहा है या कम होगा, वो मेरे थॉट्स पे डिपेंड कर रहा है।
1: लेकिन कम से कम ये भी कि जो आपका हार्ट जैसे सिंक होने की आपने बात कही, कई बार हो सकता है कि पता ही नहीं क्यों सिंक हो रहा है, लेकिन ये तो एक्सेप्ट करो कि भी कोई ना कोई विचार है, भले आज से 10 साल पहले जो घटना हो गई उसका कोई विचार है, एक अर्ध जागृत रूप में वो विचार आ रहा है, पर विचार जरूर है। वह जब हम एक्सेप्ट करेंगे तो फिर उसको ढूंढ भी सकेंगे। तीसरी बात है कि विचार आपके कंट्रोल में है, जो हमने पहले भी इसकी चर्चा की कि भी हम उसको चूज करते हैं। जो आमतौर पर लोग कहते हैं विचार आ गए, ऐसी बात नहीं, वह हमारे कंट्रोल में है। चौथी महत्वपूर्ण बात है कि एक एप्पल में कितने बीज आप गिन सकते हैं। मैं आपको एक एप्पल दूं, आप उसको कट कर लो, गिनती करो तो गिनती हो जाएंगे, परंतु एक बीज में कितने एप्पल गिन सकते हो?
0: नहीं, I can't. I don't think so. Yeah. No way.
1: Yeah.
0: क्योंकि एक बीज से अगर कितने सारे एप्पल्स हुए तो उन एप्पल्स के भी तो कितने सारे बीज के हो सकते हैं?
1: वो भी और बात है आगे तो, लेकिन फिर भी एक बीज से हजारों एप्पल हो सकते हैं। ऐसे एक विचार भी बीज है। एक विचार आपके जीवन में बहुत आनंद भी ला सकता है, सुख भी ला सकता है, साथ साथ वही एक विचार आपको दुखी दुखी कर सकता है। न केवल आपको और हजारों लोगों को भी वह एक ही विचार दुखी कर सकता है,
0: खुशी भी दे सकता है
1: हजारों को दे सकता है। हाँ। तो वह सीड है। मुख्य बात तो मैं बताना चाहता हूँ कि एक विचार है वह सीड है। और एक जिस पर मैंने गहराई से सोचा कि भी विचार क्या करते हैं, जैसे जब नदी बहती है जमीन से तो है ना, वो अपनी जगह क्रिएट करती है, ग्रूव्स क्रिएट करती है वास्तव में। तो ऐसे विचार भी कॉस्मोस में एक सटल ग्रूव्स क्रिएट करते हैं।
0: और अच्छा, विचारों की नदी बहती जा रही है।
1: हाँ, बस विचारों की नदी है और वातावरण के अंदर उस प्रकार से ग्रूव्स क्रिएट करते हैं। और फिर जो सारी कॉस्मोस में एनर्जी है, जैसा आपने ग्रूव क्रिएट किया उसी प्रकार की एनर्जी वहां पर फ्लो होगी।
0: अच्छा, आकर्षित हम उसको।
1: हाँ, उसको आकर्षित करेगी। तो नहीं, इतना महत्व, सबसे पहले अगर इस महत्व को हम समझ ले तो फिर आगे के स्टेप्स भी सहज होंगे।
0: ओके शिवानी, विचारों का ये जो एक अननोइंगली हमने क्रिएट किया, कि जो अभी बताया डॉक्टर पटेल ने कि इट्स सो पावरफुल, मतलब वो, लेकिन अभी तक तो हम पता नहीं कितना कुछ पावरफुल क्रिएट कर चुके हैं। और जैसा कि बात ये हो रही है अगर कि हम जो क्रिएट कर रहे हैं, जो हम थॉट्स क्रिएट करते हैं, जैसा हम सोचते हैं वैसा होने भी लगता है। तो मैं तो बहुत अच्छा भी सोचती हूँ, मैं तो बहुत कुछ सोचती हूँ, वो बहुत कुछ तो नहीं होता फिर?
2: अब इसको भी चेक करना है। मैं बहुत कुछ सोचती हूँ, मैं सोचती हूँ कि मुझे इस एग्जाम में पास होना ही है, वेरी गुड थॉट। फिर मैं सोचती हूँ हो जाऊंगी ना, लेकिन तैयारी है ना मेरी पूरी, लेकिन मैंने तो तैयारी कर ली है। लेकिन आजकल ना एग्जामिनर्स पे बहुत डिपेंड करता है, वो एग्जामिनर कैसा होगा, उसका मूड कैसा होगा, वो मेरी फेयर चेकिंग करेगा या नहीं करेगा। All these are also thoughts, na? Not that only one thought. Normally क्या होता है, हम कहते हैं मैंने पॉजिटिव थॉट क्रिएट किया है, हाँ, कि मुझे ये करना है, ये चाहिए। हम वो नहीं सोचते कि उसके साथ साथ कई बार हमने बहुत सारे ordinary thoughts और कई बार तो थोड़े नेगेटिव फियर के थॉट्स भी क्रिएट कर लिए, तो वो भी तो एनर्जी है। सो दैट्स वाई समटाइम्स वी आर नॉट एबल टू अचीव इवन इन द आउटर वर्ल्ड जो हम अचीव करना चाहते थे, बिकॉज एनर्जी बहुत सारे फ्लो की है। अगर आप कोई एक थॉट को ले लें और उस पर ही अपनी एनर्जी को फोकस करें, उसके अंदर कोई अडल्ट्रेशन नहीं होनी चाहिए।
0: अब एक ऐसे कैसे, सी इट कम्स एज अ फैमिली, सी थॉट्स विल ऑलवेज कम, एक थॉट थोड़ा रह पाएगा।
2: तो एक थॉट इन द सेंस आपकी क्वालिटी ऑफ थॉट क्या, अगर आपने क्वालिटी ऑफ थॉट क्रिएट किए सक्सेस की, जो भी आप कार्य करने वाले हैं उसमें सक्सेस, फिर सक्सेस के साथ फियर, फियर के साथ डाउट, डाउट के साथ एंग्जाइटी, ये सारी फैमिली नहीं आनी चाहिए ना। एक ही परिवार को चूज करो, एंड दैट परिवार शुड बी द पॉजिटिव सक्सेसफुल हैप्पी परिवार, चूज दैट, डोंट मिक्स द टू थिंग्स। एंड क्योंकि बहुत समय से आदत है ज्यादा नेगेटिव सोचने की,
0: आई कांट इवन
2: इमेजिन व्हाट इज हैपनिंग, द रिस्क क्या है। सी पॉजिटिव थिंकिंग, आज हम लोग अवेयर हो रहे हैं तो हम धीरे धीरे कल्टिवेट कर रहे हैं। नेगेटिव थिंकिंग सो कॉल्ड ऑटोमेटेड मोड में गई हुई है कि पता ही नहीं चल रहा, आ रही है, तो हम ये नहीं रियलाइज करते कि हम एक पॉजिटिव थॉट तो एनवायरनमेंट में भेजते हैं, लेकिन कई बार उसके साथ जो नंबर ऑफ नेगेटिव थॉट्स है वो ज्यादा होती है वो पॉजिटिव थॉट से। सो आई हैव टू बी अवेयर ऑफ एवरी थॉट दैट आई एम क्रिएटिंग। जैसे गिरीश भाई ने कहा, ठीक है, हो जाएगा, सब ठीक चल रहा है, होगा या नहीं होगा, ठीक मैं बोल तो रहा हूँ, लेकिन क्या सचमुच ये हो जाएगा? देन व्हाट हैपेंड?
0: बट डाउट तो रहता ही है।
1: शिवानी ने बहुत अच्छा कहा कि वो एक थॉट है कि एग्जाम में मैं पास हो जाऊंगा, लेकिन डाउट, एंग्जाइटी, फियर, उसके बदले पॉजिटिव फैमिली क्या हो कि आई कैन डू इट, ना, मेरे में वो क्षमता है।
0: लेकिन फिर मैं अपने आप को झूठ देखे, एक बात है, फिर मुझे कई बार लगता है कि मैं अपने आप को गलत फहमी में रख रहा हूँ कि मैं अच्छे नंबरों से पास हो जाऊंगा, लेकिन मुझे अवेयरनेस है कि ये सारी चीजें भी तो होती हैं। एग्जामिनर जो है, ये मेरे पास नॉलेज, ये भी तो, जैसे आपने कहा कि नॉलेज से आप, जैसे आपको नॉलेज मिलती है आप उस पर काम करना शुरू करते हैं, आई हैव द नॉलेज कि एग्जामिनर जो है वो सही तरीके से कई बार नहीं देखते हैं, एग्जामिनर जो है या बाकी सारी चीजों के बारे में भी नॉलेज जो नेगेटिव है. सो आज मैं अपने आप पे ये थॉट तो क्रिएट किया कि मैं पास हो जाऊं, मुझे अच्छे नंबर लाने हैं, मुझे मार्क्स आने, मैं मेहनत भी कर रहा हूँ. लेकिन उसके बाद जो मेरे फियर्स हैं, अगर मैं उनको वो आते मतलब या जो मैं क्रिएट करूं तो वो नहीं क्रिएट करूं तो मैं अपने आप को धोखे में भी तो रख रहा हूँ ना.
1: पॉसिबिलिटी थॉट है कि भी आप जो सोच रहे हो पॉसिबिलिटी है, लेकिन हम अगर ये सोचे कि मैं अगर थॉट करूंगी कि मैं पास होने वाले हूँ, अच्छे अच्छे मार्क आने वाले, यहाँ तक मनोविज्ञान में मानने लगे कि आपका पेपर ऐसे ही एग्जामिनर के पास जाएगा, वो आपको अच्छे नंबर देगा.
2: एब्सोल्युटली. जैसे उन्होंने कहा कि जो आप थॉट क्रिएट करेंगे वो वाइब्रेशन है, वो एनवायरमेंट में है, वो अट्रैक्ट करेगी उस सिचुएशन को आपकी तरफ. अभी पर्सनली आई टेल यू, एग्जाम तो नहीं आते अभी कोई ऐसे, लेकिन सपोज आई गो टू अ शॉपकीपर जहाँ सब्जी तोली जा रही है. कई बार कुछ लोग सब्जी अपनी तुलवा रहे हैं लेकिन ये तो करते हैं चीटिंग, इनका वेट सिस्टम पता नहीं ठीक है कि नहीं है, ये पता नहीं अच्छी क्वालिटी की सब्जी दे रहा है कि नहीं. दैट पर्सन इज बाउंड टू चीट यू.
0: नाउ
2: जस्ट गो नेक्स्ट टाइम एब्सोल्युटली क्लीन, एब्सोल्युटली. चाहे आप वो शॉपकीपर के पास हैं, चाहे आप टैक्सी में बैठे हैं, कोई आप ऑटो रिक्शा में, हम बैठते ही हैं ऑटो रिक्शा में. आजकल के तो ऑटो वाले सब ऐसे ही हैं, सब चीट करते हैं, किसी का मीटर भी ठीक नहीं हो. यू नो वी आर सो मच फिल्ड विद ऑल दिस नेगेटिव एनर्जी. वो आप यहाँ बैठे हैं, वो यहाँ बैठा है, आप उसके प्रति ऐसी सारी एनर्जी क्रिएट कर रहे हैं, वो उस तक पहुंचेगी, उसने चीट करना है फिर. अब आप बैठे एक डिफरेंट थॉट प्रोसेस के साथ, बट डोंट मेक इट प्योर 100% क्लीन.
0: तो हमें वो लगता है कि हम वो झूठ बोल

0: अच्छी नहीं है अभी।
1: सो व्हाट क्वालिटी एनर्जी इज दिस। तो जैसे ही मैंने आपको नेगेटिव भेजी, रिटर्न आपसे भी क्या आएगा, ये चेंज
0: तो,
1: हो जाएगा।
0: हाँ मैं तो कभी चेंज नहीं हूँ।
1: सी दैट इज द एनर्जी। तो अगर मैं आपके चेंज होने के बारे में ना सोचकर अपनी थॉट्स को थोड़ा सा प्योरिफाई करने लगू, क्लीनिंग करने शुरू, तो मेरे से आपको कौन सी एनर्जी जाएगी? पॉजिटिव जाएगी। जैसे ही मेरे से आपको पॉजिटिव जाएगी, धीरे धीरे आपसे क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी, एंड आई विल थिंक यू हैव चेंज्ड, बट एक्चुअली यू हैव नॉट चेंज्ड, एक्चुअली फर्स्ट आई हैव चेंज्ड।
0: But then you see, your change was able to change me.
1: Because it's vibration, जो एनर्जी ऐसे जाएगी वो एनर्जी ऐसे आएगी। हमें मुझे जब अपनी थॉट्स की अवेयरनेस नहीं थी, जो हम शुरू से देख रहे हैं अवेयरनेस नहीं है, तो मुझे एनर्जी सिर्फ ऐसे आती हुई दिखाई दे रही थी, ये मेरे से कैसे बात करती है, ये मेरे से कैसे बिहेव करती है, ये इक्वेशन नहीं पता था कि ये उसी का रिटर्न है जो यहाँ से जा रहा है। यहाँ से आती हुई एनर्जी को हम नहीं चेंज कर सकते। हमारी सारी स्ट्रगल किस पे थी? आपने कहा मेहनत क्यों लग रही है, हम वो आते हुए तीर को चेंज करना चाहते थे, चेंज चेंज, अपने डायरेक्शन को चेंज कर लो, नहीं इस तरफ नहीं चेंज होगा। आई चेंज व्हाट आई सेंड, दैट आई हैव टू चेंज, एंड वेरी पावरफुल। ये नहीं एक पॉजिटिव थॉट उसके साथ 10-15 नेगेटिव थॉट, देन तो कौन से तीर फेंके, फिर वही वापस आएंगे, फिर कहेंगे मैंने तो अच्छा सोचा था उनके बारे में। चेक करना कितना अच्छा सोचा था और कितना कुछ कुछ और सोचा था।
2: और
1: इट
2: दो
1: विल
2: बातें इसके अंदर, एक तो है कि जब हमने टैक्सी की बात की ना, कि भी टैक्सी वाला ऑटो वाला आप अच्छी वाइब्रेशन दो तो जो टैक्सी वाला आपके पास आएगा ना अच्छा ही होगा।
1: No, and
2: मैंने अनुभव किया।
1: Yes, absolutely. I've personally experienced. I was staying in another city पहले, हाँ, about 8 years back we shifted to Delhi. पता है क्या information मिलती है यहाँ shift करने से पहले? Delhi में ना बहुत लोग cheat करते हैं। Delhi में जो बहन आपके घर काम करने आएगी वो भी ऐसे ही होगी। Taxi तो बहुत cheat करती है। Auto, fill, fill, fill yourself. 8 years, I haven't found anyone cheating me. Simply because आप अपनी thought को change करो। क्यों वो हमारी तरह हैं वो लोग? लेकिन हम उनको इस तरह की एनर्जी देते हैं, वो वाइब्रेशन नेगेटिविटी हर एक के अंदर ऑलरेडी काफी सारी है। आप जैसे ही स्टिम्युलस भी नेगेटिव भेजोगे तो उसकी नेगेटिविटी को आप ट्रिगर करोगे। लेकिन ज्ञान हमें ये समझाता है कि इनहेरेंटली हर एक बहुत प्योर और पॉजिटिव सोल है। अब आप उसके पास वो वाला तीर फेंको तो उसकी पॉजिटिविटी ट्रिगर होगी। ये चॉइस हमारे पास है, ये पावर भी हमारे पास है।
0: मतलब हाँ,
2: करके देखना चाहिए। मैंने अनुभव किया
1: बहुत वर्क करता है।
2: कई बार देखा एयरपोर्ट पे जाते हैं, देखा टैक्सी वाला सामान उतार के ट्रॉली तक रख देता है, उसकी ड्यूटी नहीं है वो।
0: इसका मतलब हमने ये किया कि मतलब कई बार लोग बोलते हैं कि आप आंख मूंद के फिर जी रहे हो, कि आप देख ही नहीं रहे। कि आई जस्ट वॉन्ट टू आस्क वन थिंग, कि आई नो सामने वाला करप्ट है, मतलब मुझे पता भी चल गया अगर, एंड आई हैव टू डील विद हिम। सपोज मैं कोई काम करवाने भी जा रही हूँ और सामने वाला करप्ट है, पता है, तब मैं क्या ये वाइब्रेशंस उसको दूं कि नहीं आप प्योर हैं, आप सच्चे हैं? तो ये मैं अपने आप से झूठ नहीं कर रही।
2: पहले तो दो, उसमें कुछ तो चेंज आएगा।
1: मतलब इट विल हैपन,
2: इट विल हैपन, एक्सपेरिमेंट,
1: बट हैव द फेथ इन योरसेल्फ फर्स्ट। ये नहीं कि अच्छा मैं बोल तो रही हूँ ये प्योर है लेकिन वैसे तो ये करप्ट है।
0: हाँ,
1: तो फिर क्या, फिर कौन सी थॉट क्रिएट?
0: एक तरफ है फैक्ट, एक तरफ है मेरी सोच।
1: हाँ,
2: जब ये फैक्ट नहीं है, देखो आपने कभी एक नदी में दो बार स्नान किया है?
0: हाँ, कभी सुबह और शाम।
2: एक्चुअली देखो आपने जो दो बार स्नान किया सवेरे शाम, लेकिन नदी तो बह रही थी, पानी तो बदल गया था, बल नाम हुआ था परंतु पानी तो सेम नहीं था।
0: हाँ,
2: तो कहते आप एक नदी में दो बार स्नान नहीं कर सकते,
0: एक पानी में। हाँ, मतलब
2: नदी कहो।
0: हाँ,
2: तो ऐसे कहते आप एक व्यक्ति को दो बार नहीं मिलते हो,
0: व्यक्ति बदल गया।
2: हाँ, आज मैं आपको मिला हूँ, कल मिलूंगा तो यू आर डिफरेंट,
0: डिफरेंट,
2: आपके विचार बदल गए।
0: हाँ,
2: है ना, मेरे प्रति आपका दृष्टिकोण बदल गया। तो इसे जो आपने वो कहा ना कि वो फैक्ट, इट इज नॉट अ फैक्ट,
0: पीपल चेंज।
2: हाँ, वो व्यक्ति को कल शायद ठीक है, भी दो दिन पहले वो करप्ट था, आज उसमें परिवर्तन आ गया। तो क्यों उसी नजरिए से देख रहे हो, उसके प्रति पॉजिटिव वाइब्रेशन दो।
1: एक्चुअली कोई है, किसी में कोई थोड़ी सी कमजोरी है जिसे करप्शन है, कोई भी, हम सब उसी के ऊपर चिंतन कर करके उसको सभी लोग ये एनर्जी भेजेंगे कि ये तो करप्ट है, ये तो करप्ट है। तो जितनी उसके पास वो एनर्जी जाएगी उनका वो संस्कार
0: स्ट्रॉन्ग
1: और स्ट्रांग होता जाएगा। दैट इज वेयर वी ऑल कैन एक्चुअली बी फोर्स विद ईच अदर हाउ टू ब्रिंग अबाउट अ चेंज। कि इसीलिए परमात्मा हमेशा कहते हर एक की विशेषताओं को देखो। दो बातें हैं, जितना आप

0: कमजोरियों को देखेंगे, पहली बात तो वो कमजोरी आपकी बनती जाएगी। क्यों? क्योंकि हम किसका चिंतन करते गए, ये तो ऐसे हैं, ये तो गुस्से वाले हैं, ये तो करप्ट है। तो मेरी अपनी कॉन्शियसनेस की लेवल क्या होती जा रही है, नेगेटिव एनर्जी क्रिएट हो रही है। उनको कौन सी एनर्जी भेज रहे हैं, वही भेज रहे हैं। मेरा भी नुकसान, उनका भी नुकसान। विशेषताओं को देखो, विशेषता मेरी भी बनती जाएगी वो, और वो एनर्जी उन तक पहुंचेगी, उनकी विशेषता पक्की होती जाएगी।
1: तो शिवानी, आपने कहा कि विशेषताएं देखें हर एक की और नेगेटिविटीज ना देखें, लेकिन मेरे सामने है वो नेगेटिविटी, मैं चलिए एक्नॉलेज नहीं भी कर रहा, पर दिख तो रहा है, मैं उस पर फोकस नहीं भी कर रहा, बट क्या मैं उनको इग्नोर कर सकते हूँ?
2: बिल्कुल, क्योंकि आप जैसे विचार करेंगे वहां तक पहुंचने, एक बात हमने समझ ली। दूसरी बात, वो व्यक्ति परिवर्तित भी हो रहा है। और तीसरी बात है कि उसे हम लेबल ना करें। आज जब बोलते हैं कि ये करप्ट है, तो आप उसने लेबल लगा दिया, तो फिर सदैव के लिए बोले वैसा ही रहे। आप और सोच लिया, आपके साथ काम करने वाले जो लोग हैं, आपने उन्हें लेबल लगा दिया कि ये स्मार्ट नहीं है, तो ऑलवेज उस तक वो वाइब्रेशन पहुंचे वैसा ही रहेगा। विशेष बच्चों के लिए कभी नहीं करो। आज अधिकतर माता पिता बच्चों को लेबल कर देते हैं कि छोटा वाला स्मार्ट है, बड़े वाला बुद्धू है, वो कभी ठीक काम से नहीं करता है। जैसा आपने सोचा वैसा ही होता है। इवन क्लासरूम में रिसर्च स्टडीज भी की गई है।
1: लेकिन वो तो कर ही रहा है ना वैसा।
2: नहीं, आप देखिए, रिसर्च स्टडी को आप समझिए तो भी आप कन्विंस हो जाएंगे इस बात के लिए कि एक क्लास में नए टीचर आए और सभी बच्चों के जो उनके मार्क्स थे पिछले क्लास के, उनको दिए गए, किसको भी इसकी फर्स्ट ग्रेड है, इसकी सेकेंड, इसकी थर्ड है, ऐसे बच्चों को दिया, और फिर एक साल के बाद उनका परफॉर्मेंस देखा, तो ये पाया कि भी जिसको बताया था कि इसकी फर्स्ट ग्रेड है, तो उसको फर्स्ट ग्रेड ही आई। कहा कि भी ये थर्ड ग्रेड का है, उसकी करीब करीब थर्ड ग्रेड ही आई। और प्रैक्टिकली रिसर्चर्स ने क्या किया था, पूरा उल्टा कर दिया था। जिसकी फर्स्ट ग्रेड आई थी उसको कहा था इसकी थर्ड ग्रेड है, जिसकी थर्ड थी उसको फर्स्ट बना दिया था। तो इसका कंक्लूजन ये हुआ कि भाई टीचर का जो इंटरप्रिटेशन है, तो टीचर तो ये सोचा था कि भी ये लड़का स्मार्ट है, भले वो था बुद्धू।
1: ओ, और वो सोचता रहा और उसके थॉट्स ने, उसके पूरा लेबलिंग ने उसको फर्स्ट ही बना दिया।
2: न केवल लेबलिंग, लेकिन अप्रोच भी।
0: हाँ, आपका पूरा थॉट, एटीट्यूड, बिहेवियर, बात करने का तरीका,
2: समझाने का तरीका,
0: सब कुछ वैसे चेंज हो जाएगा। हाँ। ना देखो, कोई आपको लगे ये तो बुद्धू है, तो आपका थॉट कैसे चलेगा, इसको तो कितना भी समझाओ, इसको तो समझ में नहीं आने वाला, ये तो बुद्धू। सो यू डोंट पुट इन दैट काइंड ऑफ एनर्जी एंड दैट एफर्ट। लेकिन एक आप स्टूडेंट को देख रहे हो कि ये तो फर्स्ट ग्रेड स्टूडेंट है, यू नो, यू हैव दैट एनर्जी, यू हैव दैट लुक ऑन योर फेस, योर बॉडी लैंग्वेज, आपकी सब कुछ चेंज हो जाती है, और एनर्जी, थॉट एनर्जी तो जाएगी,
2: डेस्टिनी चेंज हो गई।
1: अच्छा, अनदर थिंग व्हिच आई वांटेड टू आस्क इज कि आपने कहा कि दूसरे की विशेषता देखोगे या कमजोरी देखोगे तो वो आप में आ जाएगी, यू सेड समथिंग लाइक दैट। How is that possible?
0: Because मैं चर्न कर रहे हो उस थॉट के ऊपर। सपोज आपके अंदर गुस्से का नेचर है, आपके गुस्सा करने के, एंड मैं बार बार ये थॉट क्रिएट करती हूँ, ये तो बहुत गुस्से वाले हैं, तो गुस्से वाले हैं, इनको बात करने का तरीका भी नहीं आता। What kind of energy am I creating? See, अब ये एनर्जी क्रिएट करते करते मैं आपसे कैसे बात करूंगी, अब मैं भी आपको गुस्से से बात करूंगी, ऑटोमेटिकली वो होगा ही, इट विल बिकम, बिकॉज आई हैव बीन चर्निंग ऑन दैट नेचर ऑफ योर्स फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, कि ये गुस्से वाले हैं, चाहे इनसे कैसे भी प्यार से बात करो, ये तो ऐसे ही बात करते हैं, अगली बार तो ना मैंने बात ही नहीं करनी इनसे, ऑल दिस इज माई थॉट गोइंग ऑन, सिर्फ क्योंकि मैंने आपकी वो एक कमजोरी देख ली है। तो धीरे धीरे मेरा आपके प्रति सोचने का तरीका चेंज हो गया, फिर व्यवहार चेंज हो गया, फिर एक बार मैंने आपसे इस तरह से बात करना शुरू किया, धीरे धीरे वो मेरा संस्कार बनता गया, और धीरे धीरे मेरा संस्कार कैरी फॉरवर्ड होगा, वो सबके साथ ऐसा बनता जाएगा।
1: लेकिन मुझे आप गुस्सा करते हो, वो मुझे अच्छा नहीं लगता, तो लेकिन वो मैं अपने अंदर कैसे इनकल्केट कर रहा हूँ?
0: क्योंकि मैं सोच रही हूँ ना बाद में, नहीं, अनोइंगली नहीं है, मैं कंटिन्यूसली आपकी उस आदत के बारे में सोचती हूँ, और मैं ये फील करती हूँ कि जो मैं फील कर रही हूँ उसके जिम्मेवार आप हो, और मैं आपके क्रोध के संस्कार पे चिंतन कर रही हूँ, तो मेरी एनर्जी कैसी क्रिएट हो रही है? दिस आई हैव टू अंडरस्टैंड ना, कि सपोज मैंने आपकी पेंसिल ली, क्रोध की आपकी पेंसिल ली, मैंने कहा ये पेंसिल टूटी हुई है, अब इससे मैंने डायग्राम बनाना शुरू कर दिया, तो मेरा डायग्राम कैसा बनेगा? यहाँ पे एक डायग्राम ही बन रहा है ना, सारा दिन कंटिन्यूसली हम ग्रूव क्रिएट करते रहते हैं। कौन सी पेंसिल लेके क्रिएट किया था? ये गुस्से वाले हैं। व्हाट एनर्जी व्हेन आई एम थिंकिंग लाइक दैट, हाउ एम आई गोइंग टू फील, एंड फिर ऑटोमेटिकली मेरा बिहेवियर आपके साथ कैसा होगा? फिर मैं किसी और से आपके बारे में बात करूंगी तो कैसी एनर्जी क्रिएट करूंगी? तो गुस्सा तो आपका संस्कार था। ये ना, जब हम किसी को बोलते हैं तो बहुत गुस्से वाले हैं, कैसे बोलते हैं?
1: वैसे
0: तो आपको पता है ये तो बहुत गुस्से वाले, ऐसे तो नहीं बोलते, आपको पता है ये बहुत गुस्से वाले,
1: रिजेक्ट करके
0: बोल रहे हैं। नो नो, माय वे ऑफ टॉकिंग आल्सो बिकम्स लाइक दैट बिकॉज आई एम टॉकिंग नेगेटिव। व्हाई? बिकॉज आई एम थिंकिंग नेगेटिव। तो ये बहुत बहुत सूक्ष्म है, इट्स अ वेरी सटल वे, हमें अवेयरनेस भी नहीं होती कैसे वो हो जाता है, लेकिन वो धीरे धीरे हमारा संस्कार बनता जाता है। जो आपने अभी पूछा था ना कि कमजोरी है उनके अंदर, तो हम क्या करें? एक है अवेयरनेस कि किसी के अंदर ये कमजोरी है, इवन अगर आपको ये दिखाई दे रही है, डोंट कीप इट हियर। परमात्मा कहते हैं उसकी कमजोरी अपने चित्त पर मत ले लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे अवेयरनेस है आपके अंदर ये कमजोरी है, ओके मैं आपको वो वाला शायद काम नहीं दूं थोड़े दिन या कुछ भी, आई टेक स्टेप्स, लेकिन मैं उसको अपने चित्त पर नहीं लूं, मतलब मैं उसके बारे में चिंतन ना करूं ताकि मैं अपने आप को प्रोटेक्टेड रखूं, एंड वेरी इंपॉर्टेंट मैं आपको कौन सी एनर्जी भेजूं। तो अगर मेरे से आपको डिफरेंट एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी आएगी, देयर इज अ बिग पॉसिबिलिटी कि आपका वो संस्कार धीरे धीरे परिवर्तन होगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे गिरीश भाई ने कहा इन द फैमिली, यू नो एक व्यक्ति लेबल लगाता है कि ये तो बुद्धू है, बहुत जल्द बहुत लोग वही लेबल लगा देते हैं, सब लोग कहते हैं इससे तो वो हो ही नहीं सकता। अब वो एक और 8-10 लोगों से उसको वही एनर्जी मिल रही है, क्या होगा? वही संस्कार और पक्का होता जाएगा।
2: शिवानी बिन जो कहते हो ठीक है कि कोई नहीं, इम्पोर्टेंट चीज हो तो भले उसको कुछ समय वो काम नहीं दो, लेकिन पॉसिबल हो तो मैं तो कहते काम भी दो,
0: सिर्फ रेडी एंड प्रिपेयर्ड के यू नो इमीडिएटली रिएक्ट नहीं करो, यू टेक इट अप एज एन एक्सपेरिमेंट, आई एम गोइंग टू हेल्प हिम यू नो कल्टिवेट दिस थिंग इन टू योर सेल्फ। हम कई बार देते भी हैं तो हम कहते हैं देते हैं, फिर थोड़ा पहले ही थॉट होता है पता नहीं ये कर पाएगा कि नहीं, और अगर थोड़ा सा उसने 1% भी उसमें कुछ गलती कर दी, इमीडिएट थॉट मुझे पता था इसको तो देना ही नहीं चाहिए था, फिर मैं उसका और डैमेज कर देती हूँ। मुझे करना है तो अपने आप को बहुत अच्छी तरह से तैयार करके करना है कि वी आर इन द प्रोसेस ऑफ कल्टिवेटिंग दिस हैबिट। उसमें थोड़ा सा प्लस माइनस होगा थोड़ी देर, लेकिन वो पॉजिटिव एनर्जी उसके अंदर वो हैबिट कल्टिवेट कर देगी। हम एक बार करते हैं एंड वी एक्सपेक्ट इमीडिएट रिजल्ट, फिर हम उनको 4 बार सुनाते हैं, मैंने आप पर पिछली बार विश्वास रखा था, क्या किया आपने, क्या रिजल्ट आपने उसका दिया, then it just gets worse and then we think ki humne us pe favor ki humne usko try kiya, he is not worth it, fir hum kehte hai fayda nahi us par vishwas, to fir wo bahut sari energies aur bhi negative ho jati hain। to apni puri taiyari karke fir unke upar kaam karna, pehle kaam apne upar karna।
2: edison ke liye kehte hain ki jab unhone bulb ko invent kiya aur usko demonstrate karne ke liye ja rahe the, to kehle pehli bar jab ja rahe the to jo vyakti carry kar raha tha to bulb gir gaya, डेमोन्स्ट्रेशन नहीं हुआ था, बड़ा डेंजरस चीज थी, तो रात भर जाग करके एडिसन ने नया बल्ब तैयार किया, फिर सवेरे वो डेमोन्स्ट्रेशन होना था, तो फिर से उसको उस ट्रे में दिया कि तुम वहां तक ले, सबने कहा नहीं नहीं नहीं सर आपको नहीं मालूम है, कल शाम को तो इसने तोड़ दिया है बल्ब, फिर से तोड़ दिया, कहा नहीं नहीं यही बल्ब को ले जाएगा, उसने कहा कि देखो बल्ब फिर से भी टूट गया ना तो नया बन जाएगा, पर इसका दिल टूट गया तो नया नहीं बन सकता,
0: सेल्फ कॉन्फिडेंस टूट जाता है ना सामने वाले,
2: तो उसी को दिया कि तुम संभाल के ले जाओ।
1: बिल्कुल, और आज अपने ही विचारों से उनकी शक्ति से हमें वाकिफ कराया आपने, अब इन स्किल्स को और आगे हम देखते जाएंगे। डॉक्टर पटेल, मिस्टर शिवानी, थैंक यू सो मच। बहुत बार सुना था और बड़े बड़े लोग बहुत सी बातें भी करते हैं कि थॉट में जो है वो बहुत पावर है, आपके अपने विचार जो हैं वो बहुत कुछ क्रिएट कर सकते हैं, हमने लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी पढ़ा है, बहुत सी किताबें, प्रैक्टिकली नहीं समझ पा रहे थे। अब जब छोटी छोटी तरह से ये देख रहे हैं कि किस तरह से जो मैं सोचता हूँ, मतलब जाने अनजाने ही अभी तक ये हो रहा था कि कोई भी विचार आता था हम उसके साथ ही बहने लग जाते थे, एक थॉट आया अभी तक हम कहते थे आया, अब सिस्टर शिवानी और डॉक्टर पटेल ने हमें बहुत क्लियर किया है, हमने क्रिएट किया वो एक थॉट, उसके साथ हमने बहुत सारा एक समा बांध दिया थॉट्स का ही, एक पूरी जर्नी की देखना ये है कि हमने किस फैमिली के थॉट्स लिए, और परिवारों की हम बात करते हैं, ये परिवार अवेकनिंग का है, तो साथ ही अब चलिए विचारों के परिवार पर चलते हैं कि हमने वो पॉजिटिव थॉट्स के विचार क्रिएट किए, पॉजिटिव थॉट्स की फैमिली क्रिएट की या नेगेटिव थॉट्स की, ये हम देखते जाएंगे, थोड़े थोड़े अवेयर होते जाएंगे तो शायद हम उन स्किल्स को इनकलकेट करने के लिए अपने आप को तैयार कर पाएंगे। मन में कोई बात, कोई सवाल उठ रहा है, आप हमें ईमेल पर या फोन पर संपर्क कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर्स हैं 9999 3

4555 9999 344 6 6 9 8 7 3 6 6 5 5. हमारा ईमेल आईडी है omshanti@bkmail.org. Awakening with Rama Kumaris में आज इतना ही. लाइफ स्किल्स के इस श्रृंखला में आगे बहुत कुछ अभी बाकी है. मुलाकात होगी. ओम शांति.

मैं हूँ गीतांजलि राव, फिल्म एंड टेलीविजन एक्ट्रेस। नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: रिश्तों में सरलता और प्यार बनाए रखने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: अभी कोई चाहे तो हमसे कुछ भी करवा सकता है, या हम खुद चूज करते हैं उठना है या उठना है, बैठना है, खड़े होना है, हाथ ऊपर करना है, नीचे करना है? ये शरीर हमारी मर्जी से चलता है या औरों की मर्जी से चलता है? हमारी मर्जी से चलता है। हमारे मूड आजकल किसकी मर्जी से चलते हैं? कोई हमसे प्यार से बात करे, हमें रिस्पेक्ट दे, सम्मान दे, आगे रखे, हमसे पूछे हर चीज, तो ऑटोमेटिकली हमारा मूड क्या हो जाएगा? और कोई हमसे नहीं प्यार से बात करे, रूडली बात करते, इरिटेट करे, तो ऑटोमेटिकली हमारा मूड क्या हो जाएगा? तो इसका मतलब हमारा मूड, हमारी मन की स्थिति किसके कंट्रोल में है? किस किस के पास हमारी मन की स्थिति का कंट्रोल है आजकल?
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: किसी की एक लाइन मेरी मन, फीलिंग्स, वर्ड्स, एक्शन, रिलेशनशिप एंड बॉडी, छह चीजों पर असर हुआ मेरे। एक घंटे तक ये पूरी साइकोलॉजी, फिजियोलॉजी सब डिस्टर्ब रही, रिश्ता डिस्टर्ब हुआ, रात को भी वो बात याद आई। एंड डेफिनेटली जब ये चीजें दिन में इतनी देर माइंड पे रही होंगी, ये नींद में जरूर चले होंगे, क्योंकि जो थॉट्स एक्टिव ड्यूरिंग द डे चलेगी ज्यादा, ये नींद में जरूर चले होंगे। नींद का नुकसान इसलिए क्योंकि आपने रात को सोने से पहले भी उस बात के साथ रिजोल्व नहीं किया अपने आप को, आप वो अनरिजोल्व्ड बात के साथ सो गए। तो मन क्या करता है, रात को सारा दिन की हुई बातें या जो कुछ हमारे माइंड पे है, देखो कोई प्रॉब्लम है, क्यों लोगों को नींद नहीं आती व्हेन दे आर अंडर स्ट्रेस, कोई प्रॉब्लम है, नींद नहीं आती, क्यों नहीं आती है? क्योंकि मन सोचना बंद नहीं करता है। सोने के लिए द माइंड नीड्स टू स्लो डाउन। इफ आई एम डिस्टर्ब्ड अबाउट समथिंग द माइंड जस्ट गोज ऑन एंड ऑन। आपके साथ एक बच्चा बैठा है, वो पूछता जाएगा जब तक आप उसको आंसर नहीं देंगे। आंसर दिए बिना ही सो गए तो वो तो रात को भी सोचता रहेगा। एंड इसीलिए मोस्ट ऑफ अस टुडे एक्सपीरियंस कि हम अपने 6 घंटे तो सो रहे हैं, 6 घंटे 8 घंटे जितना सोना है, लेकिन जब हम सुबह उठ रहे हैं द माइंड इज नॉट एज फ्रेश एज इट नीड्स टू बी।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: अपने आप को आज देखते हैं, हर रोज कुछ बातों को हमने एक ही तरह से रिएक्ट किया और करते करते वो मेरी आदत बन चुकी है। आज एक नया तरीका, अ न्यू वे ऑफ रिस्पोंडिंग, एक ऐसा रिस्पॉन्स जो मुझे खुशी, सेहत और सुंदर रिश्ते देगा, एक ऐसा रिस्पॉन्स जो मेरे लिए कंफर्टेबल एंड रॉयल होगा। आज अपनी किसी एक आदत, अपने किसी एक रिएक्शन को चूज करते हैं एंड देखें अपने आप को कि आज उसी परिस्थिति में अपने आप को एक नए तरह से रिस्पॉन्ड करते हुए देखें। धीरे धीरे अ न्यू वे ऑफ थिंकिंग, एक नया पैटर्न क्रिएट होना शुरू हो रहा है। दिस इज द पावरफुल बीइंग।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: नमस्कार प्रिय श्रोताओं, आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.1। आपका हार्दिक स्वागत है ज्ञान चिंतन में, एक ऐसा रेडियो कार्यक्रम जहां हम विचारों की गहराई में उतरकर ज्ञान, जीवन, समाज, संस्कृति और आध्यात्म से जुड़े विषयों पर सार्थक संवाद करते हैं। यह कार्यक्रम न केवल जानकारी देता है बल्कि सोच को नई दिशा भी प्रदान करता है। तो आइए आत्ममंथन और बौद्धिक समृद्धि की इस प्रेरक यात्रा में हमारे साथ जुड़िए और चिंतन को जीवन का हिस्सा बनाइए। नमस्कार प्रिय श्रोताओं, मैं हूं आपका मित्र विवेक जैन और आज हम एक ऐसे विषय पर चिंतन करने जा रहे हैं जिसकी तलाश हर इंसान करता है और उसे पाने के लिए अक्सर बाहर की दुनिया में भटकता रहता है। यह विषय है आंतरिक शांति। आंतरिक शांति एक ऐसी स्थिति है जिसमें मन स्थिर, शांत और संतुलित रहता है। यह मानसिक तनाव, चिंता और नकारात्मक विचारों से मुक्ति पाने की अवस्था है। मित्रों, आज हम बाहरी रूप से सुविधाओं से भरपूर हैं, लेकिन भीतर से अशांत हैं। हमारे पास तकनीक है, साधन है, उपलब्धियां हैं, फिर भी मन में बेचैनी, तनाव और असंतोष बना रहता है। कारण स्पष्ट है, हमने जीवन की गति तो बढ़ा ली है लेकिन मन को थामना भूल गए। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में आंतरिक शांति प्राप्त करना एक चुनौती हो सकता है, लेकिन कुछ सरल तरीके अपनाकर इसे संभव बनाया जा सकता है। आंतरिक शांति पाने का पहला और सबसे प्रभावी तरीका है स्वयं से जुड़ना। दिन भर हम दूसरों की अपेक्षाओं, जिम्मेदारियों और समस्याओं में उलझे रहते हैं, लेकिन खुद से बात करने का समय नहीं निकालते। प्रतिदिन कुछ मिनट मौन में बैठना, अपनी सांसों पर ध्यान देना, मन की गति को देखना, यह एक छोटा सा अभ्यास है जो हमें भीतर की शांति से जोड़ सकता है। दूसरा महत्वपूर्ण सूत्र है वर्तमान में जीना। हमारा मन या तो अतीत की स्मृतियों में उलझा रहता है या भविष्य की चिंताओं में भटकता रहता है। अतीत अब बदला नहीं जा सकता और भविष्य अभी आया नहीं है। जीवन तो केवल इसी क्षण में है। जब हम वर्तमान को पूरी सजगता से जीते हैं तभी मन शांत होता है। श्रोताओं, आंतरिक अशांति का एक बड़ा कारण है नकारात्मक सोच। हम अक्सर वही बातें याद रखते हैं जो हमें दुख देती हैं। आवश्यकता है दृष्टिकोण बदलने की। हर परिस्थिति में कुछ ना कुछ सीख छिपी होती है। सकारात्मक सोच कोई जादू नहीं बल्कि एक अभ्यास है जिसे रोज अपनाया जा सकता है। आंतरिक शांति के मार्ग में क्षमा का विशेष महत्व है। जब हम दूसरों के प्रति क्रोध, ईर्ष्या या शिकायत पालते हैं तो सबसे अधिक नुकसान हमारा ही मन झेलता है। क्षमा करना कमजोरी नहीं बल्कि आत्मिक शक्ति है। माफ करने से सामने वाले का नहीं हमारा मन हल्का होता है। मित्रों, संतोष और कृतज्ञता भी आंतरिक शांति की कुंजी है। हम जो नहीं है उसी पर ध्यान देते हैं और जो है उसे अनदेखा कर देते हैं। प्रतिदिन जीवन में मिली छोटी छोटी खुशियों के लिए आभार व्यक्त करना सीखें। यह आदत मन को गहराई से शांत करती है। प्रकृति भी हमें शांति का संदेश देती है। प्रकृति के सानिध्य में समय बिताना, जैसे सुबह की सैर, पेड़ों के बीच कुछ पल, आकाश को निहारना, यह सब मन को सहज रूप से शांत करता है। प्रकृति हमें सिखाती है कि बिना शोर किए भी संतुलन में कैसे रहा जाए। आंतरिक शांति का एक और सशक्त माध्यम है आध्यात्मिकता और प्रार्थना। इसका अर्थ केवल धार्मिक कर्मकांड नहीं बल्कि जीवन के गहरे अर्थ को समझना है। जब हम किसी उच्च शक्ति पर विश्वास रखते हैं तो जीवन की कठिनाइयां भी हमें विचलित नहीं कर पाती। अंत में श्रोताओं, इतना ही कहना चाहूंगा कि आंतरिक शांति कोई बाहरी वस्तु नहीं जिसे खरीदा जा सके, यह हमारे भीतर ही विद्यमान है। आवश्यकता है तो केवल उसे पहचानने, अपनाने और रोजमर्रा के जीवन में उतारने की। इसी संदेश के साथ मुझे अनुमति दीजिए, फिर मिलूंगा एक नए चिंतन के साथ। बने रहें हमारे साथ पुनेरी आवाज 107.8 FM पर और सुनते रहें इसी तरह प्यार से, खुश रहें, खुशियां बांटें। प्रिय श्रोताओं, ज्ञान चिंतन के आज के कार्यक्रम को यहीं विराम देते हैं। हमें आशा है कि आज की चर्चा ने आपके मन में नए विचारों को जन्म दिया होगा और सोच को एक नई दिशा प्रदान की होगी। ज्ञान और चिंतन की यह यात्रा यहीं समाप्त नहीं होती है। फिर मिलेंगे ज्ञान चिंतन में एक नई सोच, एक नई दिशा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और शुभकामनाएं। खुश रहें, खुशियां बांटें।
1: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार। हम याद रखें कि वो एक बार भी जब हमें गुस्सा आया, हम इस विश्व को दूषित कर रहे हैं, हम मन को, शरीर को, रिश्तों को, प्रकृति को दूषित कर रहे हैं। और अगर एक बार भी हमने आज क्रोध को त्याग कर शांति को धारण किया, तो हम सिर्फ अपने मन को सुकून नहीं, रिश्तों में प्यार नहीं, प्रकृति को सद्भावना नहीं, हम विश्व को सुंदर बनाने की सेवा कर रहे हैं। तो क्या हम सेवा करने के लिए तैयार हैं?
2: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

हकीकत के फासले को कम करते हैं, नई जानकारियों से नए अवसर खड़े करते हैं। सुनते रहिए पुणे की आवाज़ 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: ये गंगा राम की समझ।
1: मित्रांशिवाय आयुष्य अपूर्णच, हसणं भांडणं आणि गाणं सगळं शेअर करायचं।
2: तेरे जैसा यार कहां, ऐसा यार आला।
1: जुन्या दिवसांची आठवण आली की मन पुन्हा शाळेत जातं।
3: लकडी की काठी, काठी पे घोडा।
1: मनात बीट्स वाजल्या की शरीर आपोआप फिरकतं।
4: I am a disco dancer।
1: त्याच सोबत
5: गावाची आठवण, मातीचा सुगंध।
1: जुन्या गाण्यांचा तोच सुगंध, तीच नशा।
6: पहला नशा, पहला खुमार।
1: घेऊन येत आहे आपल्यासाठी पुणेरी आवाज 107.8 FM। आनंदी रहा, आनंद लुटा।
7: नमस्कार, वेलकम टू अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज। वेलकम सिस्टर।
8: ओम शांति।
7: ओम शांति एंड वेलकम टू बीइंग ब्लिस।
8: थैंक यू।
7: कल आपने जैसे कहा था लास्ट एपिसोड में कि सुबह सुबह की गिजा, सुबह का खाना जिस तरह इस बॉडी को देते हैं उस तरह मन को भी देना है, तो मैंने सुबह उठ के 4 बजे कोशिश की, लेकिन साथ में एक और भी किया नहीं, मेरा मन ही नहीं किया न्यूज पेपर पढ़ने का। पढ़ा था रोज, तो मैं 2-4 कप चाय पीता था।

0: न्यूज़पेपर पढ़ते पढ़ते पढ़ते फर्स्ट पेज टू एंड, और साथ में मतलब रिएक्ट भी करता था, आज ये हो गया, अच्छी चीज, आज वो हो गया, ये मंत्री ने ऐसा किया, औरत ने ऐसा किया, ये करप्शन, ये तो आज मेरा मन ही नहीं किया।
1: ब्यूटिफुल, जैसे हमने पिछली बार भी देखा कि थॉट्स जो हमारे हैं, बिकॉज वी बीन टॉकिंग कि थॉट्स चेंज करने हैं, कैसे चेंज हो, कितना अटेंशन कैसे रख सकते हैं कि हर थॉट आई चेंज करना है, तो उसके लिए हमें थॉट्स से भी एक स्टेप पीछे जाना होगा कि कौन सी चीज है जिसका प्रभाव थॉट पर पड़ता है, या कौन सी चीज है जो रॉ मटेरियल है जिससे थॉट्स क्रिएट होती है। और वो हमने देखा जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो है इन्फॉर्मेशन, जो कुछ हम सारा दिन में सुन पढ़ देख रहे हैं, इट्स गोइंग इन, जिस क्वालिटी की इन्फॉर्मेशन स्टोर हो जाएगी, परिस्थिति आएगी उस इन्फॉर्मेशन को ट्रिगर करेगी, थॉट्स क्रिएट होंगी एंड वो हमारी पर्सनालिटी बनेगी। सुबह के समय पहले 2-2.5 घंटे हमारी अब्सॉर्प्शन पावर, ग्रहण शक्ति बहुत हाई है, ब्लॉटिंग पेपर चूस लेता है उस चीज को। ये आज के समय में जैसे आपने कहा कि न्यूज़पेपर, क्योंकि हम में से मेजोरिटी का दिन, जिसके लिए अगेन हम कहेंगे नेचुरल, यू नो वी विल से इट्स नेचुरल टू रीड द न्यूज अर्ली इन द मॉर्निंग, तो हम में से मेजोरिटी का दिन सुबह की अखबार, एंड आज तो सिर्फ अखबार नहीं, न्यूज चैनल टीवी पर, विच हैज अ डीपर इम्पैक्ट बिकॉज इट्स विजुअल। तो सुबह 6 बजे 6:30 बजे उठकर हम सब अखबार और टीवी न्यूज देख लेते हैं, और हम सुबह सुबह मन पर किस तरह की इंफॉर्मेशन डाल देंगे, वायलेंस, नेगेटिविटी, फियर, टेरर, ये क्वालिटी ऑफ इंफॉर्मेशन हमने भर दी। फिर सारा दिन में आप कितनी भी कोशिश करो कि मुझे पॉजिटिव सोचना है, मुझे अच्छा सोचना है, वो डिफिकल्ट होगा, क्योंकि सुबह का भोजन क्या था, पर ये एक दिन या दो दिन का नहीं है ना।
0: बट ये इसका प्रूफ ये है, जस्ट द ऑपोजिट जो आप कह रहे थे।
1: हाँ?
0: मैंने जब सुबह मेडिटेशन किया 4 बजे
1: राइट,
0: और अमृत वेले अच्छी अच्छी बातें मन में डाली, मेरा मन ही नहीं किया न्यूज़पेपर पढ़ने का। जैसे न्यूज़पेपर पढ़ के अच्छी बात करने का मन नहीं करता है, वैसे अच्छी बात, अच्छी गजा मन को, अपने आप को देकर मेरा मन ही नहीं पड़ा। देख के मैंने कहा यार क्या सुबह सुबह मन नहीं कर रहा है।
1: अब आपने जैसे आज मेडिटेशन किया, उसके बाद आपका मन नहीं किया न्यूज़पेपर पढ़ने का, लेकिन इसको अब आप अपनी रूटीन का एक हिस्सा बना ले कि सुबह अखबार में पढ़ूंगा ही नहीं। यू नो लाइक अ चेंज इन लाइफस्टाइल, जब हम कह रहे हैं डाइट चेंज, लाइफस्टाइल चेंज, क्योंकि अगर रिजल्ट में डिफरेंस चाहिए तो रूटीन में कुछ डिफरेंस लाना होगा। अगर हम अपने आप के साथ आज ये पक्का कर लें कि सुबह के 2-3 घंटे में हम न्यूज, अखबार, टीवी न्यूज चैनल, इसको अपने अंदर नहीं भरेंगे, मीन्स नो इनटेक ऑफ नेगेटिव इन्फॉर्मेशन अर्ली इन द मॉर्निंग। हर एक ये आज पक्का कर ले अपने आप के साथ कि जितना अपने मन को क्लीन रखना चाहते हैं, उतना दिन में न्यूज का समय थोड़ा सा लेट करते जाएं, एटलीस्ट 1-2-3 आवर्स में नहीं,
0: लंच के बाद।
1: ओ यस, व्हाई नॉट, व्हाई नॉट के लंच के बाद। बहुत लोगों ने इस चेंज को करके देखा है और कहा सुबह ऑफिस जाने से पहले पढ़ने की बजाय अब हम शाम को ऑफिस से आने के बाद पढ़ लेते हैं, या कार में सुबह जब ड्राइव कर रहे थे ऑफिस जाने के लिए तब पढ़ने की बजाय शाम को पढ़ना शुरू करते हैं। इट्स अ बिग शिफ्ट। व्हाई? सुबह ब्लॉटिंग पेपर बिल्कुल क्लीन था, आप जो भरेंगे इट विल जस्ट सोक इन, शाम तक पहुंचते पहुंचते ब्लॉटिंग पेपर सैचुरेट हो गया, जो फर्स्ट लेयर है इधर दिन की वो फाउंडेशन है पूरे दिन की। अगर फाउंडेशन लेयर में नेगेटिव डाल दिया तो फिर वो पूरा दिन वर्क करेगा। अगर सुबह के लेयर में डालने की बजाय शाम को लेयर डाले न्यूज की, तो तब तक ब्लॉटिंग पेपर तो बाकी बहुत सारी बातों से सैचुरेट हो गया, शाम को जो डाली वो इतनी गहरी नहीं जाएगी। अब इसमें भी ध्यान रखना है, शाम को पढ़ लें, रात को ना पढ़े।
0: हाँ।
1: रात को ना पढ़े, शाम को पढ़ के माइंड को फिर उस बातों से हटाना, बिकॉज सम पीपल विल रीड इट जस्ट बिफोर गोइंग टू स्लीप।
0: न्यूज भी सुन सकते हैं।
1: हाँ, न्यूज मतलब दो टाइम बहुत इम्पोर्टेंट है, इफेक्ट ऑफ इन्फॉर्मेशन ऑन थॉट्स, सुबह उठते ही एंड रात को जस्ट सोने से पहले। सुबह उठते ही जो भरा वो पूरे दिन पर असर करेगा, रात को जस्ट सोने से पहले जो भरा वो पूरी रात मन पर असर करेगा। सो वी हैव टू टेक केयर। एंड एक्चुअली आज जैसे आपने कहा रात को न्यूज, यू नो इट्स द प्राइम टाइम, न्यूज चैनल कौन सा है? अर्ली मॉर्निंग न्यूज 6 o'clock एंड लेट इवनिंग 10 o'clock, ये प्राइम टाइम है एक न्यूज चैनल के लिए, विच मीन्स हम में से मेजोरिटी ये दो टाइम पे न्यूज सुन रहे हैं, 6 o'clock एंड इवनिंग 10 o'clock. दोनों टाइम्स हमारे लिए डैमेजिंग है. करना है, पढ़ना है, थोड़ा सा टाइम में चेंज करना है सिर्फ. लास्ट लेयर जो भरी, अगर वायलेंट थॉट्स वापस इंफॉर्मेशन भरी, फिर पूरी रात वो टर्बुलेंस चलेगा. वी आर नॉट रियलाइजिंग टुडे, लेकिन आज जिस तरह की खबरें हम देख रहे हैं, एंड यू नो बिकॉज ऑफ दिस 24/7 जो न्यूज चैनल्स और कितने सारे न्यूज चैनल, वही सीन बार बार बार बार जब रिपीट होता है एंड उसको हम इनटेक करते हैं, एंड ऑफ कोर्स मीडिया भी एक इंडस्ट्री है, तो वो भी किस तरह के सीन्स दिखाएंगे और किस तरह से उसको करके दिखाएंगे जो हमें सबसे ज्यादा इमोशनली डैमेज करते हैं
0: और ड्रामेटाइज कर देते हैं. जैसे हम लोग फिल्मों में जो एक नॉर्मल बात करेंगे तो अजीब सा लगता है, तो ड्रामा क्रिएट करते हैं और एक इंटरेस्ट क्रिएट करते हैं, छोटे से सीन को भी हाईलाइट कर देते.
1: क्योंकि इसके पीछे भी लॉजिक है, जब 100 चैनल्स हैं, जब सिर्फ एक न्यूज चैनल था, एक दूरदर्शन न्यूज चैनल था, तो दूरदर्शन जो दिखाएगा हम बैठकर देख रहे हैं. लेकिन अब जब इतने न्यूज चैनल है, तो कौन सा न्यूज चैनल पकड़ कर रख सकेगा हमें? इट हैज टू होल्ड द माइंड बेसिकली. जैसे मूवी कौन सी पकड़ के रख सकती है जो हमारे मन को कंप्लीटली कैप्चर कर ले,
0: सारी आंख को, कान को, फीलिंग्स को, इमोशन को.
1: जिसमें मीडिया क्या करता है, व्हाट इज द एंटरटेनमेंट न्यूज इंडस्ट्री डू, हमारे सोचने की शक्ति बंद हो जाती है उतनी देर. क्यों हम मूवी देखकर रो सकते हैं? टेलीविजन, मूवी, ये सारी जो पूरी इंडस्ट्री है, ये हमारी क्रिएटिविटी को एक्चुअली खत्म करती है. ये खत्म करती है क्योंकि जब हम इसके सामने बैठते हैं और डिटैच होकर नहीं बैठते, इट डजंट मीन कि न्यूज नहीं देखनी, मूवी नहीं देखना, सीरियल नहीं देखना, डिटैच होकर देखना है. हम क्या करते हैं, हम जिसको हम कहेंगे, हम उसमें घुस जाते हैं, हम इमोशनली उसके अंदर घुस जाते हैं, विच मीन्स जो सीन दिख रहा है उस सीन के ही मेरे थॉट्स चलते हैं. दिस हैज टू बी अंडरस्टूड. उधर अगर कोई रो रहा है,
0: आई आइडेंटिफाई,
1: नॉट ओनली आई आइडेंटिफाई, नो नॉट नेसेसरी आई आइडेंटिफाई, नहीं, मैं उसी क्वालिटी की थॉट क्रिएट करता हूँ, विच मीन्स वो सीन मेरे ऊपर हावी हो गया.
0: जैसे मैं एक सपना देखता हूँ, तो सपने में अगर मुझे फियर आए और तो घबराहट और पैल्पिटेशन ऑफ हार्ट, तो मैं अगर जाग के देखूँ तो वाकई रियल लाइफ में भी हो जाता है.
1: लेकिन वो सपना तो यहाँ क्रिएट हुआ ना, तो इसलिए उसका इफेक्ट आ गया. अभी ये तो सीन सामने क्रिएट हो रहा है, ये तो मेरे टीवी स्क्रीन पर ही क्रिएट हो रहा है ना. सपना तो इम्पैक्ट डालेगा क्योंकि वो सीन तो मेरे अंदर क्रिएट हो रहा है, तो ऑब्वियसली इट विल हैव एन इम्पैक्ट. लेकिन ये सीन तो मेरे अंदर नहीं क्रिएट हो रहा है, ये सीन बाहर क्रिएट हो रहा है. दिस इज वेरी वेरी डीप. क्यों आज बच्चों की भी इतनी यंग एज से क्रिएटिविटी खत्म हो रही है, एंड क्यों हम इस डायनेमिक में पड़ रहे हैं कि परिस्थिति का मुझ पर प्रभाव, परिस्थिति का मुझ पर प्रभाव स्टार्ट्स विद द मीडिया इंडस्ट्री. पहले परिस्थिति का प्रभाव नहीं है, पहले टीवी, मूवी और सीरियल का मुझ पर प्रभाव है. हम उधर बैठते हैं और उतनी देर हम कुछ और नहीं सोचते हैं, जो वो हमसे करवाना चाहते हैं हम सोच पाते हैं, हमें रुलाना चाहते हैं हम रो देते हैं, हमें हंसाना चाहते हैं हम हंस देते हैं. मतलब हमारी थॉट कंप्लीटली उसके साथ है. दिस वी हैव टू प्रैक्टिस कि टीवी देखते समय, अगर टीवी के सामने प्रैक्टिस करेंगे तब लाइफ में प्रैक्टिस कर पाएंगे. टीवी देखते समय,
0: मैं समझ गया आप क्या कहना चाहते
1: हैं. इट्स वेरी इम्पोर्टेंट
0: कि अगर कोई इंसान कुछ मुझे बोल दे और रुला सके, हंसा सके, उसने मुझे डांट दिया, इसने मुझे गाली दे दी, इसने मुझे बुरा बोल दिया, छोटा बोला, बड़ा बोला,
1: हावी हो गया,
0: यहाँ से प्रैक्टिस शुरू करनी,
1: क्योंकि वहीं से क्रिएट हुई थी. इसीलिए वाई मोर स्ट्रेस हैज गॉट क्रिएटेड विद 24/7 टेलीविजन. दिस इज वेरी सटल, क्योंकि उसमें हम इतना खो गए हैं, इतना घुस गए हैं कि उतनी देर मन अपने सोचने की शक्ति को सरेंडर कर देता है, सरेंडर कर देता है, बोलता है करवाओ मुझसे जो करना है. अब इससे फायदा क्या होता है लोगों को, जो हमें फील होता है कि मैं सारा दिन परेशान ऑफिस के काम से, वो थॉट्स मेरे अंदर चल रही है, या हस्बैंड के साथ, वाइफ के साथ झगड़ा हुआ, वो चल रही है, टीवी ऑन कर दो. जैसे ही टीवी ऑन कर दिया, मेरा सोचने का काम बंद. नाउ आई एम नॉट गोइंग टू थिंक, नाउ दिस विल मेक मी थिंक. तो क्या हुआ, मैंने अपनी चीज को सरेंडर कर दिया और दूसरे को कहा, मतलब मीडिया को कहा, टेक ओवर मी दिस इन द नेम ऑफ रिलैक्सेशन. लेकिन उससे हुआ क्या, मेरा मन इस प्रैक्टिस में चला गया कि सिचुएशन सीन मेरे मन के ऊपर हावी हो सकता है. अब जो सीन हो रहा है हमें मालूम है कि वो सच भी नहीं है, वो स्टोरी है, वो कल्पना है, किसी और की है, तो भी मन उसके अंदर चला जाता है. जब ये होने लगेगा तो जब एक्चुअल सीन्स क्रिएट होंगे, जो जीवन में मेरे सामने सीन्स आ रहे हैं, तब मन उसके प्रभाव से बाहर कैसे निकलेगा. आज से ये होमवर्क कि टीवी देखते समय, न्यूज देखते समय, सब कुछ देखते हुए हमें साक्षी होकर देखना है. अगर जीवन में साक्षी बनना है पहले टीवी के सामने साक्षी बनना पड़ेगा. न्यूज देखना है लेकिन उतना ही गुस्सा नहीं क्रिएट करना जितना उस सीन में उधर जहां वो ट्रेजेडी हुई है वहां है, नहीं क्रिएट करना है, डैमेजिंग है मेरे लिए. सोल्यूशन ढूंढना है इज ओके, बट एंगर क्रिएट करना है जितना उधर क्रिएट हो रहा है, नहीं. क्रिकेट मैच देखना है, देखना है, लेकिन उतना ही हाई एंड लो नहीं क्रिएट करना है जितना उधर है.
0: हो जाता है,
1: हो जाता है, मतलब वैसे ही ना, जैसे परिस्थिति में गुस्सा, जैसे परिस्थिति में गुस्सा आ जाता है.
0: अभी उसने कैच छोड़ दी, उसने ये कर दिया, उसने बैट बराबर नहीं किया.
1: हाँ, तो उसने बैट बराबर नहीं किया,
0: लास्ट बॉल था, लूज बॉल दे दिया.
1: लेकिन साक्षी होकर, ये प्रैक्टिस है, दिस विल हैव टू बी डन इफ आई वॉन्ट टू बिकम द मास्टर ऑफ माई माइंड. इफ आई कैन नॉट बिकम द मास्टर ऑफ माई माइंड इन फ्रंट ऑफ अ टीवी स्क्रीन, हाउ विल आई बिकम द मास्टर ऑफ माई माइंड इन द रियल सिचुएशन.
0: मजे की बात यह है कि वो हमारे कंट्रोल में भी नहीं है.
1: कौन कंट्रोल में नहीं है?
0: क्रिकेट मैच कोई और खेल रहा है, दिखा रहा है कोई और है.
1: परिस्थिति भी हमारे कंट्रोल में भी नहीं है, वहां भी तो क्रिकेट मैच ही है.
0: है उसके कंट्रोल में आ गया.
1: सो दिस, लेट्स प्रैक्टिस. देखेंगे, सुनेंगे, पढ़ेंगे डिटैच होकर. इनफैक्ट ये भी एक छोटी सी प्रैक्टिस हो सकती है कि जब हम न्यूज सुन रहे हैं और हमें कुछ पता चलता है कि कहीं कुछ हुआ है, ये गुस्सा और दर्द क्रिएट करने की बजाय एक मिनट के लिए उसी टाइम जब वो न्यूज सुन रहे हैं, साइलेंस में बैठकर उन लोगों को पीसफुल वाइब्रेशन देते हैं जहां कुछ हुआ है. अगर हम पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, कहीं अर्थक्वेक आया है, कहीं टेरर अटैक हुआ है, कहीं कोई ऐसी बात हुई है, हाय क्या हुआ, बिचारे अब क्या होगा, ये थॉट्स नहीं क्रिएट करने हैं. लेट मी सिट इन साइलेंस, कनेक्ट टू गॉड एंड गिव देम वेरी ब्यूटिफुल वाइब्रेशंस. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ताकि मैंने क्या प्रैक्टिस किया, सामने हलचल है, सामने हलचल है, लेकिन मेरा मन
0: Blessings दे रहा है
1: सही स्थिति बनाकर. एंड विच इज यूजफुल. कहीं दर्द है तो हमें दर्द को दर्द नहीं भेजना है, हमें दर्द पर शीतलता भेजनी है, शांति की वाइब्रेशंस भेजनी है. ब्रह्मा कुमारीज में एक बहुत कहें एक तरीका है ये करने का, कि अगर कहीं भी कोई बात पता चलती है कि कुछ हुआ है, नेचुरल कलामिटी या मैन मेड डिजास्टर, तो सभी भाई बहने इकट्ठे होकर सेंटर पर या घरों में विशेष मेडिटेशन करते हैं. क्योंकि पावरफुल वाइब्रेशन, अगर एक जगह कहीं दर्द है, टेरर है, फियर है, केओस है, डॉक्टर्स, नर्सेस, फैमिली ऑफ दोज अफेक्टेड, देयर इज सो मच पेन, हम उन आत्माओं के लिए क्या कर सकते हैं? कोई पैसे भेजेंगे, हम कपड़े भेजेंगे, खाना भेजेंगे, बट व्हाट अबाउट सेंडिंग पीस एंड पावर?
0: दुआ भी भेज सकते हैं.
1: वही पीस एंड पावर, दुआ वही है.
0: लाखों सिस्टर्स और ब्रदर्स जो हैं,
1: हाँ,
0: ब्रह्मा कुमारी के, अगर 5-10 लाख मिलके अगर दुआ करें,
1: हाँ,
0: और ब्लेसिंग्स भेजें,
1: राइट,
0: कितना मतलब.
1: बट अगर हम सब करें तो We can all do this. अब इससे होगा क्या? This is a very deep cycle. क्या होता है? अभी अगर हमें कोई न्यूज मिलती है कि यहाँ ये इतना बड़ा, सपोज सी नेचुरल कलामिटी फिर भी एक्सेप्टेड हो जाती है थोड़ी सी कि हाँ, नॉट इन आर कंट्रोल. लेकिन एक मैन मेड डिजास्टर जहाँ होता है, जहाँ किसी ने बहुत यू नो हेट्रेड से कुछ किया है इस तरह, अब इसको मिलियंस ऑफ लोग देख रहे हैं इस खबर को, and millions of people create hatred while watching it. नफरत गुस्सा, मतलब इतना गुस्सा क्रिएट करते हैं, हम इनको मार दें, हम ये करें, कैसे मारें इन लोग, यू नो द काइंड ऑफ थॉट्स. अब क्या हुआ, वाइब्रेशन कौन सी फैल गई सारे,
0: वायलेंस
1: हेट्रेड. व्हाई सोसाइटी बिकम्स लाइक दैट ओवरऑल, क्योंकि एक न्यूज एंड मिलियंस ऑफ पीपल वॉचिंग इट थ्रू आउट द डे एंड क्रिएटिंग हेट्रेड एंड एंगर. एक जिसने न्यूज देखकर वो क्रिएट किया, उसका नुकसान, मैंने हेट्रेड नफरत क्रिएट की, जिसके प्रति क्रिएट किया और उधर वाइब्रेशन भेजी, उनका भी नुकसान. कलेक्टिव कॉन्शियसनेस जो बनी पूरी वातावरण की,
0: पहले अपने घर में
1: पूरा, दैट्स व्हाट ना, इट
0: घर के बाहर,
1: इट गोज फ्रॉम लाइक दिस टू लाइक दिस, फ्रॉम द माइक्रो टू द मैक्रो. अब जब इतने सारे माइक्रो सेम क्रिएट करेंगे, एक व्यक्ति हेट्रेड क्रिएट करे, 10 क्रिएट करे, 100 क्रिएट करे, बट जब एक ही न्यूज एक ही टाइम पर मिलियंस देख के क्रिएट कर देते हैं, द वे इट विल स्प्रेड, तब इतने लोग क्रिएट करते हैं, फिर उसका इन्फ्लुएंस एक से दूसरे पर. अब ये ही न्यूज देखने से तो नहीं रुक सकते, क्या हो रहा है, लोग कहते हैं हो रहा है दुनिया में, तो पता तो चलेगा ही ना.
0: जैसे आपने कहा था, हाउ यू रिस्पॉन्ड.
1: Now let me ask myself, अगर किसी ने किसी के साथ गलत किया है कुछ और वो मैं पढ़ रहा हूँ या देख रहा हूँ टीवी पर, पहले मुझे ये ध्यान रखना है कि हम ये कह रहे हैं कि इन्होंने हेट्रेड से उनके साथ ऐसा किया, व्हाट अबाउट जिसने किया उसके लिए हम जो हेट्रेड अब क्रिएट कर रहे हैं,
0: हम भी तो वही हरकत कर रहे हैं.
1: अगर हम खबर सुन रहे हैं कि टेररिस्ट ने मुंबई में ये अटैक किया या टेररिस्ट ने न्यूयॉर्क में ये अटैक किया, तो उन्होंने उनकी एक हेट्रेड एलिमेंट है जिस वजह से उन्होंने वो अटैक किया, लेकिन जिन्होंने किया हमने भी तो उनके प्रति हेट्रेड ही क्रिएट किया, तो हेट्रेड हमने भी हेट्रेड. अब हम ये करें कि जो हुआ उनके प्रति, पहले जिनके प्रति हुआ, जो जिन्होंने शरीर छोड़ा, जो फिजिकली इंजर्ड हुए हैं, बीमार हैं, जिनका फाइनेंशियली सब कुछ खत्म हुआ, जिनके परिवारों में किसी की डेथ हो गई उस इंसिडेंट में, उन सब के प्रति हमें पीस और पावर की वाइब्रेशंस भेजनी है, विच मींस आई कैन नॉट अफोर्ड टू क्रिएट हेट्रेड. इफ आई क्रिएट हेट्रेड, आई एम सेंडिंग मोर हेट्रेड टू दैट प्लेस. इफ आई रियली वांट टू डू समथिंग फॉर देम, अगर हम उनके लिए कुछ करना चाहते हैं, तो हमें, जैसे आपने कहा, दुआ मीन्स वो नहीं जो सिर्फ हाथ जोड़कर की जाती है कि भगवान उनको शक्ति दे और फिर बैठकर हम उन नफरत क्रिएट करें. जो क्रिएट करेंगे वो पहुंचेगा. Completely come out of the scene and create vibrations of peace and power. God give them lots of love, power and peace at that time. Not only to the ones with whom it has happened. जिनके साथ हुआ सिर्फ उनको vibration नहीं देनी है. जिन्होंने किया वो कितनी hatred से भरे हुए थे, उनको भी शांति, उनको भी करना, सबको करना. अब इससे क्या होगा?
0: Victims को भी.
1: Victims, families, जो डॉक्टर्स अभी हीलिंग कर रहे हैं उनके यहाँ इतना स्ट्रेस है. इट्स अ होल chaotic सिचुएशन ना, जहाँ क्रिएट होती है वहाँ तो.
0: ये मतलब आप हमें ये तो बताइए ना, किस तरह भेजे आम आदमी,
1: किस तरह भेजे? आप बैठ जाए एक मिनट, कॉन्शियसली करना होगा, एक टाइम फिक्स करें कि ये मैं रोज करूंगा अभी सबके लिए. एंड वी डोंट हैव टू वेट फॉर समथिंग टू हैपन टू डू दिस. There are people in pain around us. We are also one of them every day. हम ये रोज कर सकते हैं 5 मिनट. आप बैठे एंड पहले अपनी स्थिति को ठीक करें कि I am a peaceful soul. Peace is my original nature. शांति मुझ आत्मा का original स्वरूप है. प्रेम और शांति सब आत्माओं का original स्वरूप है, लेकिन इस समय पर ये कुछ आत्माएं दर्द में है, बहुत दर्द में है, नफरत से भी भरे हुए हैं, इस टाइम गुस्से में भी है. तो कहीं अगर आग लगी है तो मुझे उधर क्या भेजना है? पानी भेजना है. तो उस समय परमात्मा से कनेक्शन जोड़ें कि परमात्मा शांति का सागर है, मैं शांति की वाइब्रेशंस परमात्मा से ले उन आत्माओं को भेज रही हूँ. उस सीन को अपने सामने इमर्ज कर लें, जो न्यूज में देखा है ना, वो सीन यहाँ पे फिटेड है. उस सीन को सामने ले आए कि डेथ है, एक्सीडेंट है, बहुत हुआ है, लेकिन उस सीन में ना घुसकर, सीन से बाहर रहकर, लेकिन उन सब आत्माओं को
0: पहले मैं परमात्मा से कनेक्ट करूं, परमात्मा से शक्ति लो
1: और शक्ति
0: चारों तरफ फैलाऊं.
1: करें ये
0: पीस की शक्ति, 5 मिनट
1: रोज करें,
0: शक्ति
1: 5 मिनट
0: सहन शक्ति.
1: आई द सोल सेंडिंग वाइब्रेशंस ऑफ पीस टू द सोल. जैसे ये किया, खुद पहले प्रोटेक्टेड हो जाएंगे, नफरत नहीं क्रिएट करेंगे, नफरत की बजाय अभी ये हम कॉन्शियसली पीसफुल थॉट क्रिएट कर रहे हैं. सिचुएशन हेट्रेड की है लेकिन वी आर चूजिंग टू क्रिएट अ थॉट ऑफ पीस एंड लव. जैसे ही ये क्रिएट किया, पहले खुद की स्थिति, वाइब्रेशन कौन सी भेजी,
0: प्यार
1: ये
0: की,
1: वाइब्रेशन अगर
0: की.
1: बहुत सारे लोग इकट्ठे करते हैं वहां पहुंचती है उनको, जिस दर्द में वो है उस समय कुछ राहत मिलती है, शक्ति मिलती है. एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस हेट्रेड की बजाय पीस की क्रिएट शुरू हो जाएगी, क्योंकि वी ऑल वॉन्ट पीस, वी ऑल वॉन्ट पीस, वी हैव टू क्रिएट इट. तो ये अगर हम प्रैक्टिस करेंगे, वी आर नॉट ओनली कॉन्ट्रीब्यूटिंग टूवर्ड्स क्रिएटिंग पीस, वी आर रिड्यूसिंग द इफेक्ट ऑफ इन्फॉर्मेशन ऑन माई थॉट्स.
0: रिपीट दिस प्लीज.
1: अगर मैं न्यूज देखते समय ये प्रैक्टिस कर रही हूँ कि वो जिन्होंने किया और जिनके साथ हुआ उनको ये मुझे पीसफुल वाइब्रेशन भेजनी है, तो उस समय मैंने इन्फॉर्मेशन का प्रभाव अपने मन पर जो पड़ना था उसको कम कर दिया ना, क्योंकि इन्फॉर्मेशन वायलेंट की थी बट पर मैंने पीसफुल थॉट क्रिएट किया, तो इन्फॉर्मेशन का प्रभाव मुझ पर बहुत कम हो गया. अब इसको सिर्फ न्यूज के साथ नहीं करना, इसको मूवी के साथ भी करना है, टीवी सीरियल के साथ भी करना है, सारा दिन जो
0: और
1: देख
0: फिर
1: रहे हैं,
0: रियल लाइफ में,
1: फिर रियल लाइफ में भी करना है, फिर ये रियल लाइफ में भी करना है कि सिचुएशन में कोई गुस्सा कर रहा है, चिल्ला रहा है, झूठ बोल रहा है, मुझे कॉन्शियसली प्रैक्टिस करनी है. थोड़ी देर अगर मैं सक्ट इन हो भी जाऊं कि ऐसा क्यों किया, ऐसा एंड देन ओके फाइन आउट, वेंट इन बट केम आउट क्विकली, यू नो, घुस नहीं गए उसके अंदर, गो इन क्विकली, पुल योर सेल्फ बैक. ये करते करते धीरे धीरे वील कम आउट ऑफ द इन्फ्लुएंस, क्योंकि इन्फॉर्मेशन बहुत बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है थॉट्स के ऊपर. अब अगर हम सुबह और रात के समय, स्पेशली द लेडीज ऑफ द हाउस विल जनरली वॉच टीवी सीरियल इन द नाइट, अब टेलीविजन सीरियल में भी क्या हो गया, बिट्रेयल, झूठ, ईर्ष्या, एक दूसरे का नुकसान, प्लॉटिंग एक दूसरे के अगेंस्ट,
0: बदला,
1: ये सब भरते जा रहे हैं. किसी ने उस दिन एक बहुत सुंदर डिस्कशन कर रहे थे तो कहा, मीडिया या एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री वो दिखाता है जो समाज में हो रहा है, या जो मीडिया दिखाता है वो समाज में होने लग जाता है. यू नो, मूवी क्या दिखाती है, जो मूवी दिखाती है वो सोसाइटी में हो जाता है, या जो सोसाइटी में हो रहा है वो मूवी दिखाती है. सो यू नो, इट वॉज अ काइंड ऑफ अ डिस्कशन. तो किसी ने कहा कि जो दुनिया में हो रहा है वो ही सीरियल और पिक्चर में दिखाया जाता है, और किसी ने कहा नहीं, जो सीरियल और पिक्चर में होता है वो समाज में होने लग जाता है. इट केम आउट वेरी ब्यूटिफुली, जो समाज में हो रहा है वहीं से इंस्पायर होता है राइटर स्टोरी लिखने के लिए, कैरेक्टर लेने के लिए, लेकिन जब वो इंस्पायर होता है तो वो समाज में थोड़ा थोड़ा हो रहा होता है, कहीं कहीं हो रहा होता है, लेकिन जब वो स्टोरी लेकर वो सीरियल बन जाता है और फिर वो सीरियल मिलियंस ऑफ लोग देखते हैं, फिर वही चीज बहुत ज्यादा होने लग जाती है, क्योंकि इंफॉर्मेशन थॉट्स एंड थॉट्स बिकम पर्सनैलिटी, पर्सनैलिटी बिकम्स डेस्टिनी. तो लिया वहां से इंफॉर्मेशन से स्टोरी बनी, स्टोरी लेकिन जब सबके लिए इन्फॉर्मेशन बन गई तो बहुत लोगों के संस्कार अब ईर्ष्या के, डाउट करने के बन गए, क्योंकि रोज 9 बजे से 11 बजे तक वो वही सीरियल देख रहे हैं. सो दैट ऑटोमेटिकली स्टार्ट्स हैपनिंग. सो लेट अस प्रैक्टिस दिस नाउ, कि सुबह उठते ही नेगेटिव नहीं भरना, नेगेटिव नहीं डालना, अखबार 10-11 बजे के बाद, रात को सोने से पहले नेगेटिव नहीं डालना. अब इससे और एक स्टेप ऊपर जाने के लिए, नेगेटिव तो नहीं डालना तो कुछ पॉजिटिव डाल ले, ताकि उसमें से थॉट्स क्रिएट हो. इसीलिए पहले भी कहते थे सुबह का समय प्रार्थना, सत्संग, कोई अच्छी चीज पढ़ लेना. अगर सुबह हम 15-20 मिनट निकाल कर कोई बहुत पावरफुल पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन भर ले अपने अंदर, कोई अच्छा कसेट सुन ले, कोई अच्छी किताब पढ़ ले, कोई सत्संग में चले जाए, आधा घंटा भी अगर वो इन्फॉर्मेशन भर जाए सुबह की फाउंडेशन लेयर पे, वो सारा दिन काम करने वाली है फिर हमारे.
0: मैं तो आपकी ये जो अवेकनिंग ऑफ ब्रह्मा कुमारीज देखता था सुबह उठकर.
1: यस, एंड लॉट ऑफ पीपल आर वॉचिंग टुडे, एंड सी, या तो मॉर्निंग में देखते हैं या लेट इवनिंग में देख रहे हैं डेली. सी इवन ये इज वेरी ट्रू द पावर ऑफ मीडिया. मैं खुद आई हैव एक्सपीरियंस्ड कि इस अवेकनिंग प्रोग्राम से जैसे इतने सालों से चल रहा है इतने लोग देख रहे हैं

0: जो लोग रेगुलरली देख रहे हैं तो उन्होंने फिक्स कर लिया ये हाफ एन आवर हमें ये प्रोग्राम देखना है, कुछ नहीं करना है और उसके साथ कुछ नहीं करना है, बस देख लेना है हाफ एन आवर. तो क्या हुआ, हाफ एन आवर वो इन्फॉर्मेशन अंदर चली गई एंड 6-8 महीने बाद खुद ही कहते हैं पता नहीं आवर थॉट्स हैव चेंज्ड. फर्स्ट एक्सपीरियंस विच एवरीबडी हु आई मीट शेयर्स इज वन लाइन, कॉमन लाइन आई एम टेलिंग यू, माई वे ऑफ थिंकिंग हैज चेंज्ड. वॉट चेंज द वे ऑफ थिंकिंग? मीडिया. मीडिया चेंज द वे ऑफ थिंकिंग. हाफ एन आवर रोज वो बातें सुनी, माई वे ऑफ थिंकिंग हैज चेंज्ड. विच मीन्स अगर हम रोज इन्फॉर्मेशन लेंगे इस तरह से, अब इस केस में तो माई वे ऑफ थिंकिंग चेंज्ड फॉर द बेटर, इट वेंट टूवर्ड्स द पॉजिटिव, बट इक्वेशन तो समझ में आ गया ना. विच मीन्स जो दूसरी चीजें हम लेते थे उसने भी तो हमारे वे ऑफ थिंकिंग पर प्रभाव डाला था. सिर्फ ये वे ऑफ थिंकिंग इतना ड्रास्टिक चेंज होता है.
1: हम नहीं कह सकते कि मीडिया प्रभाव नहीं डाल सकता.
0: यस, पीपल हैव सेड
1: ब्रह्मा कुमारी का आपका जो प्रोग्राम है
0: right.
1: वो मुझ पर डाल सकता है.
0: yes.
1: तो मुझ पर वो नेगेटिव भी डाल सकता
0: है. राइट, देयर हैव पीपल हु हैव सेड कि हमारे घर में डिवोर्स की बात चल रही थी, खत्म हो गई. डिप्रेशन था, दवा ले रहे थे लेकिन डिप्रेशन से बाहर नहीं निकल के आ पा रहे थे, दवा लेकर उसको मैनेज कर रहे थे, आज खत्म हो चुका है. सुसाइड कईयों ने सोचा था करने का. तो जैसे इस क्वालिटी ऑफ इंफॉर्मेशन से लेने से ये चीजें रुक सकती हैं, ऐसे ही इसकी ऑपोजिट क्वालिटी ऑफ इंफॉर्मेशन लेने से ये चीजें हो सकती हैं.
1: मुझे अभी माउंट आबू में एक लड़का मिला तो कहने लगा कि मैंने सिस्टर शिवानी की बहुत ये प्रोग्राम्स देखे तो मैं बहुत डिप्रेस था, तो एक दिन मैं ऑलमोस्ट सुसाइड करने जा रहा था. फिर जब ये मुझे एक बार देखा, दो बार देखा, रेगुलर हुआ, तो अब मैं उनकी क्लास में जाता हूँ बैंड्रा खार में, मैं बॉम्बे में रहता हूँ. तो मैंने कहा बट तुम तो हिंदू नहीं हो. तो कहते नहीं, वहां पर कोई रिलीजन की बात नहीं होती है, वे ऑफ लाइफ सिखाते हैं, मेरी तो जिंदगी बदल गई.
0: See, and this all happened just by sitting at home in front of the TV screen for half an hour. That's why power of media. कि आधा घंटा डोज अगर रोज मिल जाए तो सोचने का तरीका बदल गया, रिश्ते बदल गए, बीमारियां दूर हो गई. लेकिन वॉट अबाउट इसका ऑपोजिट जब हो रहा था? ये तो सिर्फ आधा घंटा ले रहे हैं हम रोज, सिर्फ आधा घंटा, 27 minutes, दैट इज ऑल एवरी एपिसोड. वॉट अबाउट आवर्स एंड आवर्स ऑफ न्यूज, मूवी एंड सीरियल? जब वो आवर्स ऑफ आवर्स हम ले रहे थे, आज कॉमेडी भी अगर आता है टीवी पर उसकी भी क्वालिटी कैसी है? तो वो जब हम ले रहे थे, क्या वो हमारे सोच को नहीं बदल रहा था? क्या वो हमारे जीवन की परिस्थितियों पर प्रभाव नहीं डाल रहा था? सो वी नीड टू अंडरस्टैंड पावर ऑफ इंफॉर्मेशन. अब अगर रोज सुबह और रात को, सुबह तो डेफिनेटली 20-25 minutes कुछ बहुत श्रेष्ठ पढ़ना है या सुनना है, और रात को सोने से पहले 5-10 मिनट क्लीन द माइंड अगेन, सारी जो बातें भरी है उसको क्लीन करके 5 मिनट कुछ अच्छा पढ़ ले, लास्ट लेयर ऑफ इन्फॉर्मेशन जस्ट बिफोर स्लीपिंग. टीवी देख लिया, मूवी सब कुछ कर लिया, बंद करके 5 मिनट्स.
1: बट ये हैबिट डाल लेनी चाहिए, जैसे कि आपने कहा ये कपड़ा सफेद है, ओरिजिनल तो सफेद था, मैला हुआ तो धोने डाल दिया, सुबह नहाया, शाम को ब्रश किया, मुंह धोया, कपड़े बदले, इस तरह मतलब एक पार्ट ऑफ लाइफ बन जाती है ना.
0: राइट, बिल्कुल, लाइफ स्टाइल में उसको डालना है.
1: तो कोशिश करते हैं फिर लाइफ स्टाइल में डालने की. थैंक यू सो मच.
0: ओम शांति.
1: ओम शांति.
2: खुशियों की फुहार लाएगी हर दिन त्योहार, अब हर दिन बजेंगे मन में ढोल, अपने पन के रंग में अब रोज रंगेंगे, उड़ान भरेंगे सपनों के रॉकेट में, सिर्फ पुनेरी आवाज में 107.8. खुश रहो, खुशियाँ बांटो.

0: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: सपोज आपने मुझे अभी आकर कहा कि आपका शरीर कमजोर है, एक आपकी बात को इग्नोर कर दो, ठीक है। सेकंड, मैं कहूँ कि मैं कुछ नहीं कर सकती उस बारे में, है कमजोर तो है, आई कांट हेल्प, खाना ऐसा है आजकल, पानी ऐसा है, मौसम ऐसा है, तो ये कमजोर है। थर्ड ऑप्शन इज ठीक है, आई स्टार्ट वर्किंग ऑन इट टूडे, एंड अगर मैं आज भी उस पर काम करना शुरू कर दू, चाहे मैंने 50 साल कोई काम नहीं किया उसके ऊपर एंड वो कमजोर हो चुका है, बिल्कुल कमजोर हो गया, लेकिन आज भी अगर उस पर काम करना शुरू कर दिया, आई एम मूविंग फ्रॉम डिजीज टू हेल्थ। आज अगर काम करना नहीं शुरू किया उस पर, देन इट्स डिक्लाइनिंग फर्दर फर्दर फर्दर। तो आज डिप्रेशन नहीं होगा ये बात सुन के, लेकिन आज अगर ध्यान नहीं रखा और कल अगर कोई बड़ी बात आ गई तो ताकत नहीं होगी उसको फेस करने में, तब डिप्रेशन होने का चांस होता है। आज इस बात को सुनने से नहीं होना चाहिए, आज एक रियलाइजेशन होनी चाहिए।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 एफएम खाबो का सफर में मैं हूं आपका हम सफर। यहाँ कहते हैं जैसे हर घर की एक अपनी खूबसूरती होती है, सुना है जितना घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है उतना ही घर परिवार में खुशहाली आती है। वस्तु के अनुसार भी देखा जाए तो घर के अंदर दारिद्रता, बीमारी, कला, क्लेश आदि का कारण जो है वो नकारात्मक ऊर्जा बताया जाता है। तो आइए आज इसी विषय पर हम लोग बात करेंगे कि घर में सकारात्मक ऊर्जा को कैसे बनाए रखें, और छोटी छोटी बातें मैं बताने की कोशिश करूंगा और जो आपके समझ में आएगा जो आप कर सकते हैं करके देखिए, अनुभव कीजिए, अनुभव बढ़ाइए। इसके लिए बहुत सारी चीजें नहीं करनी है, बहुत छोटी छोटी बातें मैं बताऊंगा और आशा करता हूँ आप सभी को पसंद आएगा। आज के इस सफर को, खाबो के सफर को बहुत ही सुंदर एंजॉय करेंगे हम सभी लोग। और मैं थोड़ी सी रिक्वेस्ट आपसे करना चाहूंगा क्योंकि बातें ऐसी हैं कि आप भूल सकते हैं, इसलिए आप एक कॉपी और पेन लेके साथ में रखना ताकि जो बातें आपको अच्छी लगे तुरंत नोट करें और उसका प्रयोग करें। तो आप सुने हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 एफएम। पिछले एपिसोड में हमने कुछ आंखों पर बातें की, तो क्यों ना आंखों से आगे बढ़ा जाए और वही से शुरुआत करते हैं। आंखों के लिए बहुत सारे शायरों ने बहुत सारी बातें लिखी है, वो इस तरह से लिखी है कि वो आपको सुनने के बाद लगेगा कि क्या बात कही है। तो आइए आगे बढ़ते हैं, एक बहुत ही खूबसूरत गीत आंखों के अंदर जो आंसू है उसके बारे में है। गीत के बाद फिर बात करते हैं। आप सुना है रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 एफएम। मैं हूं आपका हम सफर सनी। खुश रहो, खुशियां बांटो।

जी हाँ, नमस्कार, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। बहुत ही खूबसूरत गीत आप सुन रहे थे, आंसू बरी है ये जीवन की राह है। गीतकार हर्षद जयपुरी साहब का लिखा हुआ ये गीत मुकेश की आवाज में, संगीत दत्ताराम जी का आपने सुना। 1958 का परवरिश जो ओल्ड फिल्म थी उसका ये गाना आपने सुना। न जाने क्यों हमें इस दम तुम्हारी याद आती है,

लेकिन उसके पहले एक बात जरूर बताऊंगा कि कैसे बढ़ाएं सकारात्मक ऊर्जा को अपने घर में। इसके बारे में हम बहुत सारी बातें तो नहीं करेंगे, लेकिन कुछ छोटी छोटी बातें जो आपके पसंद में आए और उसे करें और खुशियों का अनुभव करें, ये हमारी विचार है, ये हमारा भाव है। तो सबसे पहली बात जो टिप्स मैं दे रहा हूँ सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने के लिए, नंबर एक, लिखिए, घर की नियमित साफ सफाई नहीं होने से दीवारों व सामानों पर धूल मिट्टी जम जाती, जिससे घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती। इसीलिए समझ गए होंगे आप, साफ सफाई का ध्यान रखें और घर के अंदर सकारात्मक ऊर्जा को आने दें। आप उसका वेलकम करें और साफ सफाई करते हुए चमकाएं, क्योंकि लक्ष्मी भी आती है, तो जिस घर में स्वच्छता होती है उसी घर में लक्ष्मी की प्रविष्टा होती है। तो चलिए आप ऐसा करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। आप सुन रहे हैं रेडियो पुनली आवाज 107.8 FM पर, खाबो खा सफर, और मैं हूं आपका हम सफर सनी। कहते हैं तुम्हारी निगाहें बहुत बोलती हैं, जरा अपनी आंखों पे पलके गिरा दो।

जी हाँ, आंसू समझ के क्यों मुझे आंखों से तुमने गिरा दिया। जी हाँ, ये खूबसूरत लिरिक्स जो है राजेंद्र कृष्ण जी ने लिखा था। तलत महमूद की आवाज में आपने ये गीत सुना। सलील चौधरी का संगीत था और छाया 1961 में फिल्म बनी थी। आंखों के आंसू कभी शबनम तो कभी मोती हैं, कोई भी मोल के जब इन्हें गिरा देता है तो दिल से ऐसा गीत निकलता है। आइए आगे बढ़ते हैं। तो दिल से ऐसा गीत निकलता है और मैं हूं आपका हम सफर सनी ख्वाबों के सफर में। कैसे बढ़ाएं सकारात्मक ऊर्जा, अब दूसरा टेक्निक। जी हाँ, मैं आशा करता हूं आप लिख रहे होंगे। ये थोड़ा आपको शायद ना पसंद आए लेकिन बताना है, फिर भी आप सोच सकते हैं और आपको जितना समझ में आए उतना जरूर कीजिए। कैसे बढ़ाएं सकारात्मक ऊर्जा को, टेक्निक नंबर टू। आजकल दिवाली, शादी, जन्मदिन आदि अवसरों पर देवी देवताओं की मूर्तियां उपहार स्वरूप देने का एक चलन है। भगवान की मूर्ति को उपहार के रूप में व घर में शोपीस के रूप में सजाना दोनों ही गलत है, क्योंकि देवी देवताओं की मूर्ति चेतना प्रदान करती है। जब आप भावनापूर्ण होकर उनकी पूजा करते हो, आराधना करते हो, अगर गिफ्ट के रूप में मूर्तियों को देंगे या लेंगे तो उसका इम्पोर्टेंस भाव खत्म होगा और हमारी भावना शून्य होगी तो ऊर्जा नहीं फैलेगी। आप भी सोचिए, क्या मैं सही हूं? अगर सही है तो करिए ऐसा कि आज से आप किसी को भी देवी देवताओं की मूर्ति गिफ्ट में न देंगे न लेंगे, लेकिन पूजा घर में अच्छी तरह से साफ सुथरी जगह पे भगवान की मूर्ति, देवी की मूर्ति, देवता की मूर्ति रखकर रोज पूजा अर्चना शुद्ध मन से, शुद्ध आवरण से करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आप सुने हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM पर और एक खूबसूरत गाना आपके लिए, यूं ही गुजर जाती है शाम। यूं ही गुजर जाती है शाम अंजुमन में, कुछ तेरी आंखों के बहाने, कुछ तेरी बातों के बहाने।

0: सुन रहे हैं रेडियो पुनीर आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
1: ख्वाबों का सफर में मैं हूँ आपका हम सफर सनी। जी हाँ, नूर देवासी का लिखा ये गीत आप अभी सुन रहे थे आशा भोसले की आवाज में। ओपी नैयर का संगीत किस्मत 1968 का एल्बम से आपने सुना। ये आईने नहीं दे सकते तुम्हें तुम्हारी खूबसूरती की सच्ची खबर, ये आईने नहीं दे सकते तुम्हें तुम्हारी खूबसूरती की सच्ची खबर, कभी मेरी इन आंखों में जाग कर देखो कि कितनी हसीन हो। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं ख्वाबों का सफर में, और हम लोग बात कर रहे हैं शो के दरमियान गीतों के माध्यम से बहुत अच्छा एक सकारात्मक ऊर्जा की टेक्निक्स में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। हो सकता है कि मेरी बात आपको अच्छी भी लगे न भी लगे, लेकिन कुछ बातें जरूर बतानी है जो मैं बता रहा हूँ, और उन चीजों को आप करते रहिए। अगर आपको सफलता मिलती है तो दूसरों को भी बताइए। तो चलिए बात करते हैं तीसरे टेक्निक के बारे में, सकारात्मक ऊर्जा को कैसे बढ़ाए। बच्चों के पुराने खिलौनों की आप नियमित साफ सफाई होना भी बहुत जरूरी है। क्यों? इन टूटे फूटे व धूल लगे खिलौने में हानिकारक बैक्टीरिया होते हैं जिन्हें वस्तु की भाषा में नकारात्मक तत्व कहा जाता है। मेरे साथियों, अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं, खिलौने बहुत हैं, तो उन्हें साफ रखें और जो खिलौने टूटे हैं उन्हें निकाल दें ताकि उनकी नेगेटिव ऊर्जा आपके घर में ना रहे। आशा करता हूँ आप ऐसे करते भी होंगे, अगर नहीं कर रहे तो आज जरूर कीजिए। जी हाँ, मैं हूँ आपका हम सफर सनी। क्या कशिश थी तुम्हारी आंखों में, तुझको देखा और तेरा हो गया। आप सुन रहे हैं रेडियो पुनरी आवाज 107.8 FM पर ख्वाबों का सफर। खुश रहो, खुशियां बांटो।

जी हाँ, अनजान साहब का लिखा हुआ ये गीत, मोहम्मद रफी साहब का गाया हुआ, संगीत ओपी नैयर का, बहारे फिर भी आएगी, 1966 का ये एल्बम का गीत आप सुन रहे थे। तो सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने के लिए हम लोग कुछ समय के लिए अपने अंदर भी उस एनर्जी को महसूस कर सकते हैं। जब आप सवेरे सवेरे उठते हैं, फ्रेश होते हैं और कुछ देर के लिए अपने पूजा स्थल में बैठ जाते हैं। देखिए, आपका पूजा घर अगर अच्छा है, साफ सुथरा है, सुंदर है, तो आप वहाँ पर बैठिए, या फ्रेश होने के बाद आप सीधे आपके आसपास में ही अगर कोई मंदिर है तो वहाँ पर जाकर कोने में बैठकर शांति का अनुभव कीजिए, बड़ा अच्छा लगेगा। वहाँ पर आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी प्रवेश करती है, इसलिए अच्छा लगता है। तो आइए अब बात करते हैं चौथे टेक्निक के बारे में। घर में बेकार की चीज या टूटा फूटा या जंग लगा हुआ सामान एक साथ नहीं रखना चाहिए और ना ही इकट्ठा करनी चाहिए। खास करके बंद घड़ी, घड़ियों व टूटी मूर्तियों का घर में होना वास्तु के अनुसार अच्छा नहीं माना जाता। तब भी आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं कर सकते, इसलिए इन्हें निकाल दीजिए तो सकारात्मक ऊर्जा आपके घर में प्रवेश करेगी। क्यों डरे जिंदगी में क्या होगा, कुछ न कुछ तजुर्बा होगा। हंसती आंखों में झांक कर देखो, कोई आंसू कहीं छिपा होगा। आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM पर। मैं हूं आपका हम सफर सनी।

यह बहुत ही खूबसूरत गीत आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी साहब की आवाज में। राजा मेहंदी का लिखा ये गाना, मदन मोहन का संगीत, मेरा साया 1966 का ये गीत आप सुन रहे थे। और जिस तरह से हम लोग कभी कभी किसी के प्यार में पड़ जाते हैं तो लगता है कि उनके साथ हर सुख और दुख बांटे, उनके साथ हंसे, उनके साथ रोए। तो चलिए, ये बहुत ही खूबसूरत गाना आपने सुना। और हम अपने जीवन में थोड़ा सा देखिए तो जिससे हम प्यार करते हैं, हमारी माँ है, पिताजी हैं या बड़ी बहन है, इनके साथ हम सुख दुख बांट कर भी अपने गम को कम कर सकते हैं। तो चलिए, आशा करता हूँ आप ऐसे करते भी हैं और करते भी रहेंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं, एक और टेक्निक के बारे में बात करते हैं, सकारात्मक ऊर्जा को कैसे हम अपने घर में प्रवेश दे सकते हैं। टेक्निक नंबर 5, वास्तु की भाषा में खुला खुला घर व्यक्ति के खुले विचारों का सूचना देता है। इसीलिए आपका घर जितना हवादार, जितना खुला होगा, उतना ही सकारात्मक ऊर्जा आपके घर में प्रवेश करेगी। जी हाँ, आशा करता हूं आपको ये बात समझ में आई होगी। लिखा है, तेरी आंखों में किसका अफसाना, अगर इसे समझ सको मुझे भी समझाना। नौशाद साहब का लिखा हुआ ये दो लाइनें शायरी की, आंखों की, मैं आपको बीच बीच में सुनाते जा रहा हूं। आशा करता हूं आप उसका आनंद उठा रहे होंगे। तो आइए, जब बात चलिए आंखों की, नजरों की, तो आइए नजरों पर एक और खूबसूरत नगमा आपके लिए खास। आप सुने हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

राजा मेहंदी अली खान का लिखा हुआ ये खूबसूरत गीत लता मंगेशकर की आवाज में, मदन मोहन का संगीत, अनपढ़ 1962 का ये खूबसूरत गाना अभी आपने सुना। आशा करता हूँ ये गीत आपके दिल को कहीं न कहीं स्पर्श कर रहा है, क्योंकि ये बहुत ही खूबसूरत गाने हैं, एवरग्रीन सॉन्ग्स है जो मैं आपको सुना रहा हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं सकारात्मक ऊर्जा के बारे में, हम अपने ट्रैक पे चलते हैं। पांचवी टेक्निक, पांचवी तो मैंने बता दी, अब छठवी टेक्निक बताता हूं मैं आपको। जी हाँ, खाली पड़े व बिखरे बर्तन घर के खालीपन के सूचक है, इसीलिए सजावट के लिए हम मिट्टी का टेरा कोटा के लिए कई प्रकार के बर्तनों, घड़ों आदि का उपयोग करते हैं। इन्हें घर में सजाना तो ठीक है, परंतु यहाँ वहाँ खाली पड़े बर्तन वास्तु में अच्छा नहीं माने जाते हैं। अगर आप कुछ डेकोरेशन करते हो तो करने के बाद उसे फिर वापस हटा दीजिए, ठीक कर लीजिए, वापस सामान्य रूप में आ जाइए। कोई चीज अगर खाली है तो उसमें कुछ भर के रखिए, आप नहीं भर पा रहे तो उसको कोई और जगह पे, किसी और स्थान पे जरूर सजा के रखिए। तो चलिए आशा करता हूँ आपको ये बात समझ में आ गई होंगी। बात ये है कि स्वच्छता हो, साफ सुथरा हो, लेकिन कोई चीज खाली भी ना हो, ये भी ध्यान रखे। आइए आगे बढ़ते हैं, एक और खूबसूरत गीत आपको सुनाने जा रहा हूँ। कभी कभी ऐसा होता है दोस्तों कि कई बार हमें किसी से प्यार हो जाता है लेकिन बताने में सालों बीत जाता है, और कभी कभी ऐसी भी नौबत आ जाती है कि हम बताने के पहले उनकी शादी भी हो जाती है, फिर हम मुश्किल में आ जाते हैं और पश्चाताप करते रह जाते हैं। चलिए आपके साथ ऐसा ना हो, आइए ये खूबसूरत गाना का आनंद उठाते, फिर मिलते हैं। आप सुने हैं रेडियो पुणे की आवाज, खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM। जी हाँ, अभी आपने बहुत ही खूबसूरत गीत सुना, राजा मेहंदी अली खान का ही गीत मैं आपको सुनाया अभी, और मोहम्मद रफी साहब ने इसे गाया था, आशा जी और रफी साहब ने गाया था दोनों मिलकर, और मदन मोहन साहब का संगीत था नीला आकाश। इस एल्बम से आपने ये गाना सुना जो 1965 में रिलीज हुई थी। तुम्हारी याद में आंखों का रात जागा है, कोई ख्वाब नया आया तो कैसे आया। तो चलिए आज क्या करता हूँ, नौशाद साहब का लिखा हुआ ये दो लाइन की शायरियां मैं सुनाते जा रहा हूँ और आपको पसंद आ रहा होगा। तो आइए आप बात करते हैं एक और टेक्निक के बारे में। जी हाँ, सकारात्मक ऊर्जा को कैसे बनाए, जी हाँ कैसे हमारे घर में प्रवेश करे, कैसे अपने अंदर बनाए रखे, इस पर हम बात कर रहे हैं। अब लास्ट बट नॉट लीस्ट, सातवां टेक्निक, घरों में अनावश्यक फर्नीचर और बड़ी बड़ी आकृति रखना सकारात्मक ऊर्जा के संचार में बाधा उत्पन्न करता है, इसलिए घर में केवल उपयोगी वस्तु ही रखे। जी हाँ, क्योंकि कभी कभी हम लोग के पास कुछ पैसा आ जाते हैं तो सुख सुविधा के साधन हम लोग बढ़ा देते हैं, लेकिन उस साधनों के वजह से, उन फर्नीचर के वजह से हमारा जो खुलापन है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं करती है और हमारे पास सुख साधन के वस्तु होने के बावजूद भी अंदर असमंजस, तनाव और दुख रहता है, क्योंकि खुलापन चाहिए। आकाश पोलार देखते ही मन को सुकून महसूस होता है, इसलिए घर में भी खाली जगह बहुत हो, ओपन स्पेस ज्यादा हो, तो इसका ध्यान रखिए। तेरी हर याद बसी इन सांसों में, हर तस्वीर तेरी, तेरी हर याद बसी इन सांसों में, हर तस्वीर तेरी अब इन आंखों में, रूह में संभाला है तुझे, हर आरजू तेरी बसी इन जज्बातों में। आप सुन रहे हैं रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM। मैं हूं आपका हम सफर सनी। जी हाँ, चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे कुछ नई बातें लेकर ख्वाबों के सफर में। तब तक मुझे यानी आरजे सनी को दीजिए इजाजत, और जाते जाते कहते हैं एक बहुत ही खूबसूरत लाइन पंकज उदास साहब ने गाया है, एक गजल के जो लाइनें हैं वो मैं आपको बताता हूँ। एक लाइन बहुत ही अच्छा है, आप जिनके करीब होते हैं वो बड़े खुश नसीब होते हैं। इसी गजल के साथ मैं आपको छोड़े जा रहा हूँ, इसे लिखा है नूह नारवी ने और इसे गाया है पंकज उदास साहब ने। तो चलिए दोस्तों, बहुत सारी खुशियाँ, सकारात्मक ऊर्जा से आप और आपका परिवार भरपूर रहे, ऐसी आशा के साथ मुझे यानी आरजे सनी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम सरवसु, आपका अपना डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट, और आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: तो हमसे कुछ भी करवा सकता है, या हम खुद चूज करते हैं उठना है या उठना है, बैठना है, खड़े होना है, हाथ ऊपर करना है, नीचे करना है? ये शरीर हमारी मर्जी से चलता है या औरों की मर्जी से चलता है? हमारी मर्जी से चलता है। हमारे मूड आजकल किसकी मर्जी से चलते हैं? कोई हमसे प्यार से बात करे, हमें रिस्पेक्ट दे, सम्मान दे, आगे रखे, हमसे पूछे हर चीज, तो ऑटोमेटिकली हमारा मूड क्या हो जाएगा? और कोई हमसे नहीं प्यार से बात करे, रूडली बात करते, इरिटेट करे, तो ऑटोमेटिकली हमारा मूड क्या हो जाएगा? तो इसका मतलब हमारा मूड, हमारी मन की स्थिति किसके कंट्रोल में है? किस किस के पास हमारी मन की स्थिति का कंट्रोल है आजकल?
1: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: 0102 बोरियत की एरर, नएपन की कमांड रिजेक्टेड। अब हर चीज हर जगह तो नहीं मिलती, कुछ नयापन चाहिए तो सुनिए पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।
1: अरे राजू भाई दो चाय लाना। अरे छोटू दो चाय देना भैया को।
2: हाँ साहब, ले लो भैया।
1: ये क्या तूने मेरे शर्ट पे

0: बोरियां पकड़ा देते हैं, पीठ में लदे हुए बैग की जगह वो बोरियां पकड़ा देते हैं। ये बहुत गलत बात है।
1: बात तो आपने बहुत सही कही। और सैंडी आप बताओ।
2: दीदी मुझे ऐसा लगता है कि चाइल्ड लेबर एक जुर्म है, और जो लोग 14 वर्ष से कम उम्र में बच्चों को अपने दुकान पर रखते हैं या करवाते हैं, अगर चाइल्ड लेबर हमारे भारत में विश्व में कहीं भी फैलता गया तो हमारे देश का हमारे विश्व का क्या होगा? बच्चों को शिक्षा मिलेगी नहीं तो हमारा देश हमारा विश्व हर चीज में पीछे हो जाएगा। तो ये चाइल्ड लेबर होना नहीं चाहिए,
1: क्योंकि बच्चे हमारे देश का भविष्य होते हैं।
2: हाँ दीदी।
1: और अगर वो ही नहीं पढ़े लिखेंगे तो फिर हमारे भारत का भविष्य क्या होगा?
2: ये हमारी नीवी कमजोर होगी तो फिर कैसे होगा?
1: बिल्कुल सही सैंडी। और भुवना आप क्या कहना चाहते हो?
3: अब हमारी इंडिया सब देशों ने डेवलप्ड कंट्रीज है, लेकिन हमारी इंडिया डेवलपिंग स्टिल डेवलपिंग। इस बात का एक वन रीजन है चाइल्ड लेबर। ऐसा बहुत सारे क्राइम्स हो रहे हैं इंडिया में, बहुत सारे अननेसेसरी ट्रेडिशंस फॉलो कर रहे हैं, और इस चाइल्ड लेबर को हम स्टॉप करना चाहिए। एक क्राइम है, ये सिर्फ इंडिया में फॉलो कर रहे हैं, तो मैं बोलती हूँ कि इसको स्टॉप करना चाहिए और गवर्नमेंट इसके ऊपर कुछ वाइटल स्टेप्स लेना चाहिए।
1: बिल्कुल सही, गवर्नमेंट को स्टेप्स लेने चाहिए और गवर्नमेंट कुछ काम इस पर कर भी रही है। इस बारे में आप क्या सोचते हो पंकज?
4: चाइल्ड लेबर को देख के मुझे ऐसा लगता है हमारा देश कभी विकास नहीं कर सकता। आजकल छोटे बच्चे नन्हे बच्चे जो हमारे देश के भविष्य है, लेकिन वो किसी कारण होटलों में या किसी कंस्ट्रक्शन साइट पे मजदूरी कर रहे हैं, पढ़ने लिखने की उम्र में अपनी पीठ पे बोरियां लाद रहे हैं, चाय बेच रहे हैं। अगर ये सब ऐसा ही चलता रहा तो हमारे देश का भविष्य मिट्टी में मिल जाएगा, जैसे कि दूसरे देश अपने डेवलप्ड होकर और भविष्य में हम देखेंगे कि वो अंतरिक्ष में पहुंच जाएगी और हमारा देश धरती पे ही रह जाएगा।
1: बात तो आपने पंकज बिल्कुल सही कही। हम आगे तभी बढ़ते हैं जब देश का भविष्य यानी बच्चे सुरक्षित हो, देश के साथ साथ उनका भविष्य भी हम बाल श्रम द्वारा बिगाड़ देते हैं। बच्चों मुझे एक बात बताओ, तुम लोग अक्सर बाहर जाते हो, कभी घूमने के लिए, कभी किसी काम से, कभी ऐसा हुआ है कि तुमने किसी बच्चे को बाल श्रम करते हुए या कोई काम करते हुए देखा है? और देखा है तो तुम्हें कैसा लगा है?
2: हाँ दीदी मैंने बहुत बार देखा। कभी कभी हम लोग कहीं बाहर जाते घूमने के लिए, किसी होटल पे गए तो वहाँ कोई बच्चा कोई चाय लेके आ रहा है तो कुछ नाश्ता लेके आ रहा है, ऐसे कुछ काम करते हैं, और ये मुझे देख के बहुत बुरा लगता है क्योंकि वो मुझसे भी छोटे होते हैं। जिनको खेलने कूदने की उम्र होती है, जिनको अपनी मम्मी पापा से प्यार मिलना चाहिए, वो होटलों पे काम करते हैं, और ये मुझे देखकर बहुत बुरा लगता है। और मैं कभी कभी सोचता हूँ कि मैं बहुत भाग्यशाली हूँ जो मुझे ऐसा नहीं हुआ, मेरे मम्मी पापा मुझे साथ देते हैं, और ये बात देखकर मुझे रोना भी आता है, थोड़ी खुशी भी होती है, पर खुशी तो उतनी नहीं होती है, रोना बहुत आता है, क्योंकि जो बच्चे जिनके छोटे छोटे हाथ हैं वो बड़े बड़े काम करते हैं।
1: बात तो आपने सही कही, वो अपने नन्हे नन्हे हाथों से बहुत बड़े बड़े काम करने पर विवश हो जाते हैं, लेकिन उनके घर के जो पारिवारिक कंडीशंस हैं वो इस प्रकार की नहीं होती जैसी हमें मिली है। और जैसा कि आपने कहा कि इस मामले में हम कितने लकी हैं कि हमारे परिवार से ऐसी कोई कंडीशन नहीं कि हमें सब कुछ मिला और कोई भी काम करने की आवश्यकता नहीं है, पर सभी हमारी तरह लकी नहीं होते। हाँ आकाश बताओ।
0: हाँ दीदी, मैं जब छोटा था तब मेरा एक दोस्त था, उसका नाम पोखराज है। वो बचपन में मेरे साथ खेलता था, वो सेंट जॉन स्कूल में पढ़ता था, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा हुआ, पहले तो उसको गवर्नमेंट स्कूल में डाल दिया, उसके बाद उसको गवर्नमेंट स्कूल से निकाल दिया, फिर वो अब वो 14 साल का है और हमारे पड़ोस की दुकान में ही वो काम कर रहा है। उसको देख के बहुत बुरा लगता है। उसकी मम्मी सुबह से लेकर शाम तक लम्हा लारी पे सब्जी बेचती है और उसके पापा उन्हीं पैसों से ना घर चलने देते, सिर्फ अपने ही खुशियों के लिए पैसे खरीदते हैं।
2: हाँ दीदी, जैसे आकाश ने बताया, ऐसे ही मेरे पड़ोस में कुछ बच्चे रहते हैं, उनकी मम्मी तो चलो ठीक है, पर उनके पापा शायद नशा वशा करते हैं, और बच्चे टैलेंट बहुत है उनमें, उनकी कैचे बच्चा है, अगर कुछ समझाया तो जल्दी समझ जाते, वो पढ़ना चाहते पर पापा उनके काम करने के लिए फोर्स करते, तो वो कचड़े बीनते और ये सब करते, और वो स्कूल तो जान जाते, पर मैं ऐसा देखता हूँ तो मुझे बुरा लगता है, तो मैं कभी कभी मेरी कोई पुरानी बुक्स मेरी जो चीज़ होती है और कुछ दे देता हूँ उनको, तो वो थोड़ा वो अच्छा लगता है।
1: ये तो बहुत अच्छी बात है सैंडी, क्योंकि

0: अगर हम अपना छोटा सा भी कंट्रीब्यूशन दे पाए तो उन बच्चों को कितना अच्छा महसूस होता है।
1: हाँ दीदी,
0: है ना। भुवना, कभी आपने ऐसा कुछ देखा है?
2: दीदी, हमारी घर में रोज एवरी संडे या सैटरडे जी एचएमसी लोग आते हैं डस्टबिन लेने के लिए। तो जब वो आते हैं उनके साथ उनके बच्चे भी, वो ड्राइनेज में बैठते हैं, वही रहते, लेकिन वो खुशी से करते हैं। लेकिन उनको पता नहीं कि हम पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, उनको ज्ञान भी नहीं है। तो मैं बोलती हूँ कि उन लोगों को ये सब हमें कुछ मैसेज देना है, कि नॉलेज देना कि ये कर सकते हैं। और उनको ये एज नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट क्लास की होगी वो बच्ची, और उनको काम करवा रहे डस्टबिन को लिए।
0: ये तो आपने बिल्कुल सही कहा, भले उन्हें अभी खुशी है, वो खेल रहे हैं, लेकिन उन्हें ये पता ही नहीं है कि उन्हें उनके लिए पढ़ना लिखना कितना जरूरी है, और कई बार ये बात बतानी उन्हें बहुत जरूरी होती है। पंकज, कभी आपने ऐसा कुछ देखा?
1: हाँ दीदी, मैंने भी देखा है। हमारे स्कूल के पीछे छोटे छोटे बच्चों को पीठ पे बोरिया लाद कर और प्लास्टिक की बोतलें बीनते हुए या कांच की बोतलें बीनते हुए, मतलब वो प्लास्टिक की बोरियों में भंगार इकट्ठे करते हैं और उसे बेच के दो चार पैसे कमाते हैं। लेकिन वो पैसे जो कमाते हैं वो उनके भी यूज में नहीं आते, उनके मम्मी पापा उनसे पैसे ले लेते हैं और अपने शौक पूरे करते हैं।
0: उनके मम्मी पापा उनसे वो पैसे भी ले लेते हैं जो वो मेहनत करके कमाते हैं।
1: हाँ दीदी,
0: बात तो आपने बिल्कुल सही कही। मेरे ख्याल से हम सब ने कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में ऐसी चीजें होते हुए देखी हैं।
3: हाँ दीदी,
0: और हमें बहुत बुरा भी लगता है। हम बच्चे और क्या कर सकते हैं, इस बारे में हम आगे बात करेंगे। अभी वक्त है एक ब्रेक का। रेडियो मधुबन 90.4 FM पर बच्चों की दुनिया सुनते रहिए।

0: रेडियो मधुबन 90.4 एफएम पर हम वापस आ गए हैं लेकर बच्चों की दुनिया। और आज हम जिस टॉपिक के बारे में, जिस विषय के बारे में बातचीत कर रहे हैं वो है बाल श्रम यानी चाइल्ड लेबर। सैंडी, आप आज सुबह क्रिकेट खेलने गए तो आपने क्या देखा?
1: दीदी, मैंने देखा कि दो बच्चे थे जो बहुत छोटे थे और मैं बैट और बॉल लेके जा रहा था तो बोल रहा था भैया मुझे कुछ रुपये दे दो, मुझे भूख लगी है। तो उन्हें देखकर मुझे थोड़ा बहुत बुरा लगा और मैंने, मेरे जेब में जूते भी थे, 20-30 रुपये उन्हें दे दिया।
0: हमें बुरा तो लगता है जब कोई ऐसे, स्पेशली जब कोई बच्चा आके हमसे ऐसा कुछ कहता है। तो ऐसे में एक और चीज हम क्या कर सकते हैं बच्चों, कि अगर किसी को भूख लगी है या कोई ऐसा हमारे सामने आता है और हम कुछ कर सकते हैं तो कुछ खरीद कर या कुछ ला कर उसको दे दें, क्योंकि कभी कभी हमारे दिए हुए पैसे वो ठीक से इस्तेमाल करना नहीं जानेंगे या फिर कोई उनसे ले भी सकता है। तो अगर ऐसी कोई कंडीशन आपके सामने आए तो आप कुछ लाकर, जिससे उनकी जो भूख है वो शांत हो सके, ऐसा कुछ लाकर आप उन्हें दे सकते हैं। ठीक है सैंडी?
1: ओके दीदी।
0: और वैसे तो ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स हमारे सामने आते रहते हैं। अब आप लोग ये बताओ, जब आप लोग देखते हो आपको बुरा तो लगता है, क्या कोई ऐसी चीज है जो आप अपनी तरफ से उनके लिए कर सकते हो? बोलना।
2: पहले हम उनके माँ बाप को इंस्पायर करना चाहिए, क्योंकि बिना माँ बाप के कहने से बच्चे कुछ नहीं कर सकते। तो हम उन माँ बाप को इंस्पायर करना कि आपके बच्चा ये कर सकता है, तो बच्चे को ऑलरेडी इंटरेस्ट होगा, क्योंकि वो बच्चा है ना। जब हम इंस्पायर करेंगे, बुक्स देंगे, वो अच्छे से पढ़ेगा। सिर्फ और सिर्फ उनके माँ बाप की फोर्स की वजह से वो ऐसे कर रहे हैं। तो जब हम उनके इंटरेस्ट करेंगे, इंस्पायर करेंगे, माँ बाप काम करेंगे और पढ़ेंगे, फ्यूचर में बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा।
0: बात तो आपकी बिल्कुल सही है। स्पेशली जो हमारे आसपास के लोग काम करने आते हैं हमारे घर पे, या जैसे भुवना आपने बताया कि कूड़ा बीनने या फिर ऐसा कुछ है जिनके माँ बाप हमारे घर पे काम करते हैं, आसपास आते हैं, तो उनसे हम बातचीत कर सकते हैं, है ना? और आकाश, आप क्या सोचते हो?
3: दीदी, मेरा ये मानना है कि उनके मम्मी पापा को हमें बताना तो चाहिए, लेकिन मैंने भी कई बार कोशिश करी है, लेकिन उनके दिल से चाह नहीं होती कि हमारे बच्चों को भेजें। वो कहते ही हैं, अरे पढ़ लिख के क्या करेगा, बड़े होके कमाना ही तो है, वो भेज देते, अभी से कमाएगा तो बड़े होके और पैसे लाएगा। ये बात उनके दिमाग में रहती है, जिसकी वजह से वो आगे नहीं बढ़ पाते, वो उसी जगह पे स्थित हो जाते हैं।
0: मतलब हम समझाते हैं तब भी वो नहीं समझ पाते उस बात को। ठीक है, ऐसे कई लोग हैं जो हमारी बात को नहीं समझेंगे, लेकिन अगर हम कोशिश करते रहें और एक चेंज भी हम ला पाएं तो वो भी बहुत बड़ी बात है।
1: हाँ दीदी।
0: है ना? तो इसलिए हमें कोशिश, आकाश, जरूर करते रहनी चाहिए।
3: हाँ दीदी।
0: है ना? और सैंडी, आप क्या सोचते हो?
1: दीदी, ऐसा आकाश ने और भुवना ने बताया कि हमें लोगों को समझाना चाहिए, ये बात तो सही है, पर मैं तो जहाँ तक होता है समझाता ही हूँ कि मुझे कुछ बच्चे मिलते हैं तो मैं उनसे बोलता हूँ। फिर एक बच्चे को मैंने बोला भी था तो बोलते कि मम्मी पापा ना बोलते, तो मैंने उन्हें बोला भी था, उनके मम्मी पापा को मैंने समझाया था तो उन्होंने मुझे डांट भी दिया था कि तुम अपना काम करो, हमारे फैमिली से तुम्हें क्या मतलब। तो मुझे बुरा नहीं लगा, पर मेरी अभी भी कोशिश जारी है, मैं होता तो समझा देता हूँ, और मेरे पास जो भी कुछ होता है कि हाँ कुछ बुक्स हुआ, कुछ हुआ, अगर उनको अच्छा लगे तो मैं दे देता हूँ, मेरी कोशिश अभी भी जारी है।
0: ये तो बहुत अच्छी बात है कि हमारे पास जो होता है, अगर उन चीजों से भी हम उनकी मदद कर पाए तो उनको अच्छा भी लगता है, और थोड़ा बहुत तो उनकी मदद हम कर ही सकते हैं, है ना? तो ये सैंडी बहुत अच्छी बात है। पंकज, आप बताओ।
4: दीदी, ऐसे कुछ बच्चे होते हैं जो काम करते हैं लेकिन उनमें इच्छा होती है पढ़ने लिखने की, हमारे जैसा बनने की, वो भी सोचते हैं कि हम इनकी तरह बन सकते हैं, इनकी तरह हमारी लाइफ हो सकती है, हम पढ़ सकते हैं और पढ़ लिख के हम अपने पेरेंट्स की जिंदगी बना सकते हैं या खुद की भी जिंदगी बना सकते हैं, तो उनकी मदद हमें करनी चाहिए। जैसे कि अगर वो पढ़ना ही चाहते हैं तो उनको अपने पुराने बुक्स दे सकते हैं, उन्हें जाकर उन बुक्स के बारे में, या अगर हमारे पास एक्स्ट्रा टाइम हो तो उनके लिए कुछ टाइम निकाल कर उन्हें कुछ बता सकते हैं कि पढ़ाई क्या होती है और पढ़ाई का महत्व क्या होता है।
0: अगर हम थोड़ा सा टाइम निकाल पाए तो हम जाके उन्हें कुछ नहीं तो एटलीस्ट बेसिक पढ़ना लिखना तो सिखा ही सकते हैं, ताकि जो वो काम कर रहे हैं उसमें वो हिसाब किताब सीख पाए, और थोड़ा लिखना पढ़ना सीखने से कोई उनके साथ बेईमानी या गलत भी ना कर पाए।
4: हाँ दीदी।
0: भुवना आप बताओ।
2: आजकल स्कूल्स में इतनी सुविधाएं हैं कि बहुत सारे पैसे उनमें ही यूज कर रहे हैं, और एक्स्ट्रा पैसे भी बहुत सारे अननेसेसरी थिंग्स पे यूज कर रहे हैं। इसके बदले हम क्या कर सकते हैं, एटलीस्ट एवरी 3 मंथ्स हम कुछ खाना, एक एक हमने क्या किया इस बार स्कूल पे, मेरे हमारे स्कूल में एक एक क्लास एक एक थिंग ऑर्फनेज के लिए, छोटे छोटे बच्चे के लिए, जैसे 4th क्लास लोगों छोटे छोटे बच्चे के लिए डायपर्स लेकर आए, एटलीस्ट 3-3 डायपर्स, फुल क्लास 3-3 डायपर्स, तो ठीक है तो हम फ्रूट्स देंगे। पर दीदी हम कभी भी पैसे नहीं देना चाहिए, कुछ ये देना चाहिए ताकि वो इजीली यूज कर सकते हैं, जैसे हम क्लोथ्स दे सकते हैं, डायपर्स, ये छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनको डायपर्स चाहिए, वो खरीद नहीं सकते। इसके बारे में हम स्कूल्स को भी ये कर सकते हैं, और हम घर में भी थोड़ी थोड़ी हमारी पुरानी बुक्स होते हैं, पुराने कपड़े, वो सब लोगों आते हैं उनको इंस्पायर करना चाहिए कि ये देखो इतना अच्छा बुक है, तुम पढ़ो, तुम पढ़ लिख सकते हो, फ्यूचर में तुम ये बन सकते हो, वो बन सकते हो, ऐसा करेंगे तो वो सच में बच्चों को बहुत इंटरेस्ट आएगा, और हमारे देश में कभी चाइल्ड लेबर नहीं होगा ये कंटिन्यू होगा। तो
5: ये तो आपके स्कूल का भी बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, और आपने भी बहुत अच्छी बात सोची कि अगर हम थोड़ा थोड़ा भी उनके लिए करें तो उनकी बहुत मदद हो सकती है। आकाश
3: दीदी, मैंने और मेरे फ्रेंड्स ने, हमारा एक डोनेशन बॉक्स होता है जो हम हर ईयर पे खोलते हैं, मतलब जैसे इस महीने की हमारी, हमको जो पॉकेट मनी मिलती है उसमें से हमारा कम से कम 10 रुपया भी बच जाता है तो हम उस डोनेशन बॉक्स में डाल देते हैं, और ऐसे करके हमारी 1 ईयर में डोनेशन बॉक्स जब फुल हो जाता है तब हम न्यू ईयर पे सब बच्चों को चिप्स बांटते हैं, कुरकुरेस बांटते हैं, उनके खाने की चीजें देते हैं, कम से कम हमारे पास इतने पैसे हो जाते हैं कि वो आराम से खा पी सकते हैं।
5: बिल्कुल सही, हमें पॉकेट मनी मिलती है उसको भी अगर हम थोड़ा थोड़ा भी सेव करें, और जैसा कि सब लोग मिलकर करें तो ये बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन हम अलग से भी अगर कुछ करें तो भी हम इस प्रकार से उनकी छोटी बड़ी मदद तो कर ही सकते हैं। ऐसा ही एक इनिशिएटिव रेडियो मधुबन के यूथ जंक्शन के आरजे विनोद और उषा जी ने मिलकर रेडियो मधुबन के बिहाफ से किया। उन्होंने जाकर जो रैग पिकर्स होते हैं, जो कूड़ा बीनते हैं, उन बच्चों को इकट्ठा किया, उनके पेरेंट्स से बातचीत की और करीबन 20 बच्चों को रेगुलर रोज जाकर पढ़ाया, उनका एडमिशन पास के स्कूल में कराया ताकि वो बच्चे पढ़ भी सके और अपना फ्यूचर बना सके। इससे और कुछ मिले ना मिले, उन बच्चों की कितनी सारी दुआएं भी हमें मिलती हैं, है ना?
4: हाँ दीदी।
5: तो आप लोगों के पास ये जितने भी आइडियाज हैं, इनको आप एक्शन में ला सकते हो, थोड़ा थोड़ा कर सकते हो, हमेशा कभी भूलना नहीं इस चीज को, जो आपकी भावनाएं हैं उन्हें बना कर रखना, और कभी आपको ऐसा कुछ लगे कि आपको कुछ बड़ा करना चाहिए तो आप अपने पेरेंट्स से, अपने स्कूल में अपने टीचर से, और बड़े लोग जो हैं उनसे अपने आइडियाज शेयर कर सकते हो, ताकि कुछ करने की आपको भी मदद मिल पाए और उनके पास भी आपके सजेशंस पहुंच पाए। ठीक है बच्चों?
3: हाँ दीदी।
5: तो अगली बार हम सब फिर मिलेंगे और फिर बात करेंगे ऐसे ही किसी विषय पर। आज के एपिसोड को यही समाप्त करते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।

खामोशी को सहकर जैसे चिड़िया सब कुछ सुन रही, और बहती हवाओं में जैसे कोई तितली बहकर घूम गई।

0: मुझे कुछ कहना है,
1: मुझे भी कुछ कहना है,
0: मुझे कुछ कहना है,
1: मुझे भी कुछ कहना है।
0: पहले तुम,
1: पहले तुम,
0: पहले तुम,
1: पहले तुम,
0: पहले तुम,
1: तुम,
0: तुम,
1: तुम,
0: तुम,
1: तुम,
0: तुम,
1: तुम। देखो जिस तरह लखनऊ के दो नवाबों की गाड़ी पहले आप, पहले आप, पहले आप, पहले आप करते निकल गई थी, उस तरह हमारी पहले तुम, पहले तुम, पहले तुम, पहले तुम में ये मस्ती भरे रुत न चली जाए।
0: अच्छा मैं कहती हूँ

0: आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: एक वाक्य ने मेरे थॉट्स को डिस्टर्ब किया, फीलिंग्स को डिस्टर्ब किया, मेरे शब्द डिस्टर्ब हुए, मैंने शायद वो चीजें बोल दी आपने जो बोलनी नहीं चाहिए थी, फिर आपका बिहेवियर डिस्टर्ब्ड हुआ, फिर रिलेशनशिप एनर्जी एक्सचेंज डिस्टर्ब हुआ एक घंटे के लिए। लेकिन मुझे अपने आप को ये चेक करना है कि ये जो मैं सोच रही हूँ, इज इट कम्फर्टेबल फॉर मी। एक चीज हमने मिस आउट की कि ये सारी थॉट्स एंड फीलिंग्स जो हमने क्रिएट की उसका इफेक्ट हमारे शरीर पे भी पड़ा। व्हेन वी हैव अंडरस्टूड कि एवरी थॉट दैट वी क्रिएट, जस्ट द अदर डे एक डॉक्टर ने हमें एक्सप्लेन किया, एक साइकाइट्रिस्ट है, तो उन्होंने कहा ब्रेन के अंदर 10,000 करोड़ सेल्स है, जस्ट द ब्रेन, ओके 10,000 करोड़ सेल्स। एंड फिर उन्होंने कहा ये 10,000 करोड़ सेल्स आर ईच सेल इज कनेक्टेड टू एटलीस्ट 10,000 मोर सेल्स इन द बॉडी, 10,000 करोड़ सेल्स इन द ब्रेन इंटू 10,000, दिस इज द ह्यूमन नेटवर्क, सो मेनी स्विचेस कनेक्टेड टू सो मेनी स्विचेस। अब जब इतने स्विचेस से कनेक्टेड होते हैं तो एक में भी अगर कुछ ऊपर नीचे होगा तो उसका इफेक्ट कितना लंबा जाएगा। तो जब ब्रेन में 10,000 करोड़ सेल्स कनेक्टेड टू 10,000 सेल्स, ईच सेल कनेक्टेड टू 10,000 सेल्स इन द बॉडी, एंड हर थॉट जो हम क्रिएट कर रहे हैं उसका ब्रेन पर असर पड़ रहा है, ब्रेन से फिर वो केमिकल सिक्रेट होते हैं, फिर उसका असर शरीर पे पड़ता है, और हमने कितने आराम से एक घंटा डिस्टर्ब रहे। अब हम अगर इस इक्वेशन को सिर्फ चेक करें तो एक घंटे में कितना इम्पैक्ट आया होगा हमारे शरीर के ऊपर, उस समय याद नहीं रहता ना, क्योंकि हमें शायद नॉलेज नहीं है, अवेयर नहीं है, या हम अपने आप को अलाउ करते वैसे करना।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: रेडिओ पुणेरी आवाज 107.8 FM, आनंदी रहा, आनंद लुटा।
1: 0102 बोरियत की एरर, नएपन की कमांड रिजेक्टेड। अब हर चीज हर जगह तो नहीं मिलती, कुछ नयापन चाहिए तो सुनिए पुणेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।
2: चेहरा

0: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: जब हम भगवान को दोष देना शुरू कर देते हैं, दैट इज नॉट फेयर, बिकॉज पिता है, हम बच्चे हैं, वो कभी नहीं ये डिसाइड करेगा कि एक बच्चा ट्रेन ब्लास्ट का विक्टिम हो जाए और दूसरा बच्चा बिल्कुल ठीक है। एक पिता कभी ये नहीं कर सकता है। और अगर परमात्मा ये कर भी रहा है तो देन वी कैन क्वेश्चन ऑन व्हाट बेसिस। परमात्मा हमारी जीवन की यात्रा नहीं डिसाइड कर रहा है, हमारे अपने किए हुए कर्म, एंड दैट्स व्हाई थॉट्स लीड्स टू डेस्टिनी। उसमें सब थॉट्स जो अभी किए, जो बहुत सारे पहले, लेकिन वही थॉट्स अब उस डेस्टिनी को चेंज कर सकते हैं। अब जो हुआ हादसा, वो पिछले किसी कार्मिक अकाउंट की वजह से हुआ, लेकिन उस हादसे के बाद अब क्या करना है, एटलीस्ट दैट इज इन माय कंट्रोल नाउ।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: पावसाच्या थेंबात दडलेलं जुनं प्रेम, आठवणींचा ओलावा. कधी कधी विरहातलं मौन सुद्धा गाण्यापेक्षा जास्त बोलत.
1: अश्विनी
0: जीवन म्हणजे चालत राहणं, गाणं, हसणं आणि स्वप्न पाहणं.
2: वाऱ्यावरती गंध पसरला ना ते मनाचे.
0: आईचा आवाज म्हणजे मनाला शांती मिळवण्याचं संगीत. या सगळ्यांची सांगड कुठे बर घातली जाते? आपल्याच पुणेरी आवाज 107.8 FM वर. आनंदी रहा, आनंद लुटा.
3: नमस्कार साथियों, आप सुन रहे रेडिओ पुणेरी आवाज. अब हम आपके लिए रेडियो मधुबन द्वारा निर्मित एक विशेष कार्यक्रम प्रस्तुत करने जा रहे हैं. बने रहिए हमारे साथ.
4: नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के स्पेशल एपिसोड में. आशा करूंगा बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे. तो आइए, आज शनिवार है और शाम 5 बज चुके हैं और आप हमारे साथ होते हैं जीवन कौशल इस कार्यक्रम में, करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम में. साथियों, आज का ट्रेड बहुत ही सुंदर है, पैसे वाला है, फाइनेंस की बात करता है. वित्तीय विश्लेषक जिसको हिंदी में कहा जाता है उसको इंग्लिश में फाइनेंशियल एनालिटिक कहा जाता है. तो आइए, इस विषय को लेकर बात करने से पहले एक बहुत ही सुंदर कहानी आपको बताते हैं. एक सपने से सफलता तक एक वित्तीय विश्लेषक की कहानी आपको सुनाते हैं, आदित्य शर्मा की. छोटे से शहर उज्जैन में रहने वाले थे आदित्य शर्मा. बचपन से ही संख्याओं से अजीब सी दोस्ती रखा करते थे. जहां उनके दोस्त क्रिकेट और वीडियो गेम्स में डूबे रहते थे, वहीं आदित्य अखबार के आर्थिक पन्ने पढ़ने में आनंद महसूस करता था. उसे समझ नहीं आता था कि बाजार ऊपर क्यों जाता है और कभी अचानक गिर क्यों जाता है. लेकिन यही सवाल उसके भीतर एक सपना जगा दिया और वो सपना उन्हें आगे बढ़ने में मदद किया. साथियों, आदित्य का परिवार मध्यम वर्ग से था और पिता एक साधारण नौकरी करते थे और बड़े सपने देखने की इजाजत तो थी लेकिन संसाधन बहुत सीमित थे. अब 12वीं के बाद आदित्य ने कॉमर्स चुना और फिर बीकॉम में दाखिला ले लिया. कॉलेज के दौरान उसने महसूस किया कि केवल डिग्री काफी नहीं है, इसीलिए उसने खुद से फाइनेंशियल रिपोर्ट्स बनाना, एक्सेल सीखना और शेयर बाजार को समझना शुरू कर दिया एक्स्ट्रा टाइम में. अब धीरे धीरे इसमें उनकी रुचि बढ़ी, मेहनत करते रहे और ग्रेजुएशन के बाद आदित्य ने CFA चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट की तैयारी शुरू कर दी. और यह रास्ता बिल्कुल आसान नहीं था. कई बार असफलता मिली, आर्थिक तंगी भी आई, लेकिन उसने हार नहीं मानी. दिन में एक छोटी नौकरी और रात में पढ़ाई, यही उनकी दिनचर्या बन गई और आखिरकार उसकी मेहनत रंग लाई. साथियों, CFA चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट का पहला लेवल पास करते ही उसे एक निवेश कंपनी में जूनियर फाइनेंशियल एनालिस्ट के रूप में नौकरी मिल गई. समय के साथ उसने विश्लेषण सटीक साबित होने लगे और उनका जो भी विश्लेषण होता था वो फायदेमंद होता था. उसने कंपनी को कई सफलताएं, निवेश निर्णय लिए जिससे कंपनी को बड़ा लाभ हुआ. बस फिर क्या था कि कंपनी ने उनकी जो है पोस्ट बढ़ाती गई और आज आदित्य एक प्रतिष्ठित यानी एक सम्मानित फाइनेंशियल फर्म में सीनियर फाइनेंशियल एनालिस्ट है. उसकी सलाह पर बड़े निवेश फैसले होते हैं, लेकिन सबसे बड़ी सफलता उसके लिए ये कि वो आज भी नए छात्रों को सिखाता है. सही सोच लगाकर सीखना और धैर्य, यही एक सफल वित्तीय विश्लेषक की असली पूंजी है. तो साथियों, ये थी कहानी आदित्य जी की, आदित्य शर्मा की, एक वित्तीय विश्लेषक की सफल कहानी आपको हमने सुनाई. तो चलिए, वित्तीय विश्लेषक क्या है, फाइनेंशियल एनालिस्ट कैसे बना जाता है, इसके बारे में पूरी विस्तार से जानकारी अभी थोड़ी देर में. सुनते रहो, मुस्कुराते रहो.

नमस्कार, स्वागत है फिर से आप सभी का करियर ऑप्शन जीवन कौशल इस कार्यक्रम में। साथियों, एक सुरक्षित प्रतिष्ठित और उच्च आय वाला करियर है फाइनेंशियल एनालिस्ट। करियर के रूप में वित्तीय विश्लेषक आज के तेजी से बदलने वाले आर्थिक युग में पैसे को समझना, उसका सही विश्लेषण करना और भविष्य की वित्तीय योजना बनाना किसी भी संस्था, सरकार या व्यक्ति के लिए अत्यंत आवश्यक हो गया है। इसी जरूरत ने एक महत्वपूर्ण करियर को जन्म दिया है, वित्तीय विश्लेषक। अगर आपको नंबरों से खेलना, डेटा का विश्लेषण करना, बाजार की चाल समझना, निवेश के सही फैसले लेना और रणनीतिक सोच पसंद है तो वित्तीय विश्लेषक का करियर आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है। साथियों, वित्तीय विश्लेषक कौन होता है इसके बारे में अभी समझ लेते हैं। वित्तीय विश्लेषक वह पेशेवर होता है जो किसी भी कंपनी में बैंक, निवेश संस्था या व्यक्ति की वित्तीय स्थिति का विश्लेषण करता है और ये सलाह देता है कि पैसे कहाँ निवेश किया जाए, कौन सा प्रोजेक्ट लाभदायक होगा, कंपनी की वित्तीय सेहत कैसी है, जोखिम रिस्क कितना है, भविष्य में मुनाफा या नुकसान कितना हो सकता है। सरल शब्दों में कहे तो वित्तीय विश्लेषक पैसे के भविष्य को पढ़ाने वाला विशेषज्ञ होता है ना कमाल की बात। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। साथियों, वित्तीय विश्लेषक की मुख्य जिम्मेदारियां होती है। एक वित्तीय विश्लेषक के कार्य बहुत ही विविध होते हैं। मुख्य जिम्मेदारियां इस प्रकार होती है कि वित्तीय डेटा का विश्लेषण, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, बजट रिपोर्ट। फिर आता है निवेश विश्लेषण, शेयर बाजार, इक्विटी मार्केट, म्यूचुअल फंड, बॉन्ड्स और डेरिवेटिव्स। तीसरा आता है जोखिम मूल्यांकन, रिस्क एनालिसिस, निवेश में संभावित नुकसान का आकलन, आर्थिक उतार चढ़ाव का प्रभाव। रिपोर्ट और प्रेजेंटेशन की बात करें तो मैनेजमेंट के लिए रिपोर्ट बनाना, निवेशकों को सलाह देना, बाजार और अर्थव्यवस्था पर नजर रखे रहना, जीडीपी, इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट, सरकारी नीतियों का प्रभाव। तो ये सारी चीजें जो है एक फाइनेंशियल एनालिस्ट को अच्छी जानकारी में होना चाहिए और ये चीजें करने आना चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। आप सुन रहे हैं जीवन कौशल, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फिर एक बार जीवन कौशल इस कार्यक्रम में। और आज हम लोग बात कर रहे हैं वित्तीय विश्लेषक के बारे में। साथ ही इसमें अलग अलग प्रकार भी होते हैं, टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल एनालिस्ट जिसको कहते हैं। तो वित्तीय विश्लेषक कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि एक सबसे पहला आता है इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट, कंपनी के शेयर का विश्लेषण करना, बेचना, सेल करना, खरीदना और उसे होल्ड पर रखना। तो ये तीन बाय सेल एंड होल्ड की सलाह देने वाला है, ये पहला वाला है। दूसरा आता है इन्वेस्टमेंट बैंकिंग एनालिस्ट। तो यहाँ पर बात आती है जो लोग बड़ी डील्स और मर्जर और एक्विजिशन जिसको कहते हैं इसको करते हैं, आईपीओ की तैयारी करते हैं। तो ये चीज यहाँ पर दूसरे सेगमेंट में, दूसरे टाइप में इन्वेस्टमेंट बैंकिंग एनालिस्ट में आता है। तीसरा एक आता है जहां पर रिस्क एनालिस्ट, यानी यहाँ पर ये जो टाइप है ये थोड़ा सा यूनिक भी है, बैंक और फाइनेंशियल संस्थानों में क्रेडिट और मार्केट रिस्क का विश्लेषण करना कि कभी मार्केट गिर सकता है, कभी मार्केट उछाल सकता है, इसकी पूरी रिस्क मैनेजमेंट को समझने वाले को रिस्क एनालिस्ट कहते हैं। चौथी बात आती है साथियों, पोर्टफोलियो मैनेजर। अब ये पोर्टफोलियो मैनेजर जो है ये बड़े निवेश पोर्टफोलियो को मैनेज करना, जैसे किसी के पास करोड़ों रुपए हैं और वो म्यूचुअल फंड्स में, शेयर मार्केट में, एसबीआई में, अलग अलग जगह पे रखता है, तो उसकी पोर्टफोलियो को मैनेज करना। तो इसको असिस्ट भी करते हैं काफी लोग, और कई लोग जो है थोड़ा थोड़ा निवेश करते हैं, तो हर साल आपने एक कंपनी में निवेश किया, दूसरे साल दूसरे में, ऐसे करके। और किसी के पास थोड़ा बहुत अमाउंट होता है, वो अलग अलग जगह पे छोटे छोटे निवेश करना चाहते हैं। तो ये सारे में एक व्यक्ति को, अगर वो कितने कागज जमा करेगा, डेट एक्सपायरी कब होगा, क्या उसमें सब अगर देखते बैठेगा तो बेचारा परेशान हो जाएगा। लेकिन ये जो एनालिस्ट होते हैं, पोर्टफोलियो मैनेजर, ये उस एक एप्लीकेशन के माध्यम से आज सारी चीजें जो है वो मैनेज हो रही है और अच्छे से इन चीजों को किया जा रहा है। पांचवी बात आती है कॉरपोरेट फाइनेंस एनालिस्ट। तो यहाँ पर बात आती है, ये जो पांचवा स्टेप है, पांचवा टाइप है, कंपनी की आंतरिक वित्तीय योजना बनाना, लागत कम करना और मुनाफा बढ़ाना। तो यहाँ पर आप देखेंगे कई बार किसी कंपनी में अगर आपने काम किया हो, अगर नहीं भी किया हो तो आपके पिताजी से कभी आपने बात सुनी होगी इस तरह की, कि कई बार पिताजी या परिवार में इस तरह की बातें होती हैं, आजकल कंपनी जो है फाइनेंस एनालिस्ट कर रही है और हमारे जो खर्चे हैं, यानी जो बिना काम के खर्चे होते हैं, वो चीजें धीरे धीरे कंपनी कम करने लगती है। या ये भी हो सकता है कि कंपनी में जो डस्ट होती है या कचरा होता है, वेस्ट है, वो भी ऐसे ही कहीं रख दिया जाता है, लेकिन अगर उस पर एक आदमी को लगाया जाए, वेस्ट में से भी कुछ चीजें अच्छी निकल के उसको बेच दिया जाए तो उससे भी बेनिफिट हो जाता है। जैसे एक बार रेलवे की बात हुई थी, और रेलवे में जब, शायद आपने कई बार न्यूज में भी सुना होगा, रेलवे का जो बंगार है, यानी जो लोहे काम के लिए वो फेंके पटरी के आसपास ही पड़े होते हैं, तो कई बार ऐसा हुआ है कि वो पटरी के आसपास पड़े हुए बंगार को इकट्ठा करके भी करोड़ों रुपए रेलवे को मैनेज करने पर फायदा हुआ है। तो इस तरह की ये चीजें भी यहाँ पर कॉर्पोरेट फाइनेंस एनालिस्ट में, ये टाइप में भी काम किया जाता है। तो मना जो वेस्ट है उसको कम करना, और जहाँ बिजली की जरूरत नहीं वहां बिजली के ना उपयोग करते हुए उसकी बचत भी की जा सकती है। तो छोटी छोटी बचत का या आदतों में बदलाव करके या चीजों को सुव्यवस्थित करके भी फाइनेंशियली अच्छा मुनाफा बना सकते हैं। तो ये थी कुछ बातें ये टाइप की। तो आइए आगे बढ़ते हैं, वित्तीय विश्लेषक बनने के लिए आवश्यक जो योग्यता है उस पर बात करते हैं साथियों। जैसे कि पढ़ाई की बात करें तो 12वीं तो आपको जरूरी है, 12th पास हो जाए उसके बाद कॉमर्स या मैथमेटिक्स के साथ बेहतर आप आगे बढ़ सकते हैं। फिर ग्रेजुएशन, बीकॉम, बीबीए, फाइनेंस या फिर बीएससी स्टेटिस्टिक्स।

इंटरनेशनली सम्मान देता है। सी ए चार्टर्ड अकाउंट, अकाउंटिंग और टैक्सेशन में विशेषज्ञता हासिल होती है, तो ये भी आप कर सकते हैं। एनएससी बीएससी सर्टिफिकेशन शेयर बाजार से जुड़े कोर्सेज होते हैं, इसमें भी आप मास्टरी करके अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं, फाइनेंस में एक अच्छा करियर मुकाम हासिल कर सकते हैं। तो साथियों आइए आगे बढ़ते हुए एक और छोटा सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद फिर आपसे रूबरू होते हैं जीवन कौशल इसी कार्यक्रम में। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

नमस्कार, फिर एक बार स्वागत है जीवन कौशल इस कार्यक्रम में। साथियों, हमने योग्यता के बारे में बातें की, पढ़ाई के बारे में बातें की, अलग अलग कोर्सेस के बारे में बातें की। एक फाइनेंशियल एनालिस्ट कैसे बन सकते हैं, इसकी पढ़ाई की हमने पूरी जानकारी आपको दे दी है। अब बात करते हैं स्किल्स की, क्योंकि हर जगह पे किसी भी करियर को पढ़ने के बाद उसके स्किल्स को जानना, समझना और उसे प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। एक अच्छा वित्तीय विश्लेषक बनने के लिए केवल पढ़ाई नहीं बल्कि कई स्किल्स जरूरी हैं। विश्लेषणात्मक क्षमता, जटिल डेटा को सरल बनाना। दूसरा है गणित और संख्या की ज्ञान। नंबरों से डर नहीं, दोस्ती होनी चाहिए साथियों। टेक्निकल स्किल्स की बात करें तो एमएस एक्सेल एडवांस, पावर बीआई और फिर पाइथन आर एडवांस लेवल पर भी आप इन चीजों को सीख के रख सकते हैं। कम्युनिकेशन स्किल की बात करें तो अपनी रिपोर्ट को स्पष्ट रूप से समझना, समझाना, समय प्रबंधन, डेडलाइन से काम शुरू करना होता है साथियों। तो ये बहुत ही बहुत इम्पोर्टेंट

स्किल्स है, अगर आप इन चीजों को अच्छी तरह से कर लेंगे तो आपको फाइनेंशियल एनालिस्ट बनने में कोई रोकेगा नहीं, है ना। तो आइए बात करते हैं भारत में वित्तीय विश्लेषक का स्कोप क्या है। अब बात करते हैं, पढ़ाई हो गई, स्किल्स हो गए, तो आपको लगेगा कि मुझे अब इस चीजों को लेकर कहाँ कहाँ हम काम कर सकते हैं, ये बहुत जरूरी। तो यहाँ आपको बताऊंगा मैं, भारत में वित्तीय विश्लेषकों की मांग लगातार बढ़ती जा रही, खास करके ऐसे सेक्टर में जहाँ बहुत पैसा और सम्मान मिलता है। वो सेक्टर है एक तो बैंकिंग सेक्टर, जहां पर आपका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। दूसरा है फिनटेक कंपनियां, तीसरा स्टार्टअप्स जहां होती है वहां पर आपकी जरूरत पड़ती है, शेयर बाजार में आपकी बहुत जरूरत है, म्यूचुअल फंड कंपनियों में आपकी बहुत जरूरत पड़ती है, और आजकल तो आप देखते हैं इंश्योरेंस कंपनियां बहुत बूम कर रही हैं। आप देखेंगे जितने भी कॉर्पोरेट कंपनीज है तो वो कहीं ना कहीं आप देखेंगे इंश्योरेंस कंपनी उनका एक नया जो है कंपनी बनी होती है और उसमें वो लोग काम करते हैं। टाटा बिरला, जियो हो गया, महिंद्रा हो गया, ये सारे कॉर्पोरेट कंपनी आज इंश्योरेंस कंपनियों को लेकर चलती हैं। तो इसीलिए भी आपका यहाँ पर बहुत जरूरी है। डिजिटल इंडिया और फिनटेक क्रांति ने इस करियर को बहुत मजबूत किया है, अवसर बहुत है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर ये करियर रुकता नहीं है, इसके बाद विदेश में भी अवसर मिलते हैं। साथियों, वित्तीय विश्लेषक के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी शानदार अवसर प्राप्त होते हैं, जैसे कि आप यूएसए में जा सकते हैं, यूके में, कनाडा में, सिंगापुर में, दुबई में, सीएफए जैसे कोर्स अंतरराष्ट्रीय नौकरी में बहुत मदद करते हैं। तो आपके लिए स्काई इज द लिमिट है साथियों, आप एक बार इस चीज को कर लेते हैं तो आपकी जिंदगी संवर जाती है। तो आइए आगे बढ़ते हैं जीवन कौशल इस कार्यक्रम में, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार जीवन कौशल इस कार्यक्रम में। आशा करूंगा आप बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे। साथियों, यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ फाइनेंशियल एनालिस्ट के बारे में। अब हमने बहुत सारी चीजें देखी है, स्काई इज द लिमिट, स्कोप बहुत ज्यादा है। अब आप सोच रहे हैं सर सब तो बता दिया लेकिन पैसे कितने मिलेंगे? जी हाँ, बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं। मैं आपको पैकेजिंग के बारे में बताता हूँ और ग्रोथ के बारे में। साथियों, जैसे सभी करियर आप शुरू करते हैं तो फ्रेशर्स को जैसे कम मिलता है, वैसे यहाँ पर फ्रेशर्स को भी अच्छी खासी पेमेंट मिलती है। 4 से 8 लाख रुपया हर साल आपको पैकेजिंग मिल जाती है। अनुभव के बाद ये सीधा डबल हो जाते हैं, यानी 12 से 25 लाख प्रति वर्ष। ठीक है, डबल या ट्रिपल भी हो जाता है। फिर अगर आप टॉप लेवल पे पहुंच जाते हैं, अच्छी एनालिसिस करते हैं, तो एनालिस्ट बनते हैं, तो निश्चित तौर पे आपको, याद करो, आपका पैकेजिंग जो है पूरे साल का 40 लाख से 1 करोड़ तक का हो जाता है। और ये इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, हेडगे फंड्स जैसी चीजों में लोगों को पेमेंट मिल रहा है। विदेशों में सैलरी और भी अधिक होती है साथियों। और बात करें करियर ग्रोथ और प्रमोशन की, तो एक वित्तीय विश्लेषक का करियर ग्राफ बहुत तेज होता है। जूनियर फाइनेंशियल एनालिस्ट, सीनियर फाइनेंशियल एनालिस्ट, एसोसिएट, पोर्टफोलियो मैनेजर, CFO, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, ये सारी चीजें हैं। अगर इस करियर की चुनौतियों की बात करूं मैं, तो कई बार करियर तो अच्छा ही होता है लेकिन चुनौतियां क्या क्या होती है, यहाँ पर आपको थोड़ा ज्यादा मेहनत करना पड़ता है। इस करियर की तरह अलग अलग करियर में जैसे चुनौती होती है, यहाँ चुनौतियां ये होता है कि लंबा कार्य समय होता है, आपको टाइम ज्यादा देना पड़ता है, थोड़ा दबाव भी ज्यादा रहता है क्योंकि पैसे ज्यादा मिल रहे तो दबाव होगा ही, लगातार अपडेट रहना पड़ता है, गलत निर्णय का बड़ा नुकसान भी होता है। लेकिन जो लोग इस फील्ड में रुचि रखते हैं उनके लिए ये चुनौतियां अवसर बन जाती हैं और वो अच्छी तरह से करते भी हैं। किन लोगों के लिए ये करियर सही है अगर उसके लिए बात करूं मैं, साथियों, जिन्हें नंबर पसंद है, जिन्हें अर्थव्यवस्था में रुचि है, जो लोग टर्म सोच सकते हैं, जो रिस्क समझते हैं, जो सीखते रहना चाहते हैं। छात्रों के लिए स्टेप बाय स्टेप मार्गदर्शन की बात करूं तो एक तरीका ये है कि आप 12वीं में मैथमेटिक्स कॉमर्स चुने, ग्रेजुएशन में फाइनेंस इकोनॉमिक्स चुने, इंटर्नशिप करें और CFA MBA करके प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बढ़ाए। बस ये सिंपल स्टेप बाय स्टेप आप इसमें आगे बढ़ सकते हैं। तो चलिए, आज के इस एपिसोड में जीवन कौशल कार्यक्रम में बस इतना ही। और आज के समय में वित्तीय विश्लेषक का करियर न केवल सम्मानजनक है बल्कि साथियों आर्थिक रूप से अत्यंत मजबूत बना देता है। ये करियर उन युवाओं के लिए है जो दूरदर्शी सोच, विश्लेषणात्मक क्षमता और अनुशासन रखते हैं। अगर आप पैसे को सिर्फ खर्च नहीं बल्कि समझना चाहते हैं तो वित्तीय विश्लेषक बनना आपके जीवन का सबसे सही फैसला हो सकता है। तो साथियों, आशा करूंगा आज के इस एपिसोड में जहां हमने वित्तीय विश्लेषक के बारे में बातें की, फाइनेंशियल एनालिस्ट के बारे में बातें की, आपको अच्छा लगा होगा तो मैसेज करके बताइएगा। और चलिए, आप अपना करियर बेहतर बनाए ऐसी शुभ आशा के साथ फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में अगले हफ्ते इसी तरह। तब तक आप बने रहिए। सलाम, नमस्ते, खमा गणिसा, जय हिंद, जय भारत, ओम शांति। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
1: अपने करियर की उड़ान को दे नई दिशा, क्योंकि आ गया है करियर ऑप्शन सिर्फ रेडियो मधुबन पर।

मधुबन पर आरजे रमेश के साथ, क्योंकि आपकी सफलता हमारा मिशन है।

0: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: हम जब कहते हैं ना क्षमा करना तो बहुत डिफिकल्ट है, नहीं कर सकते हम, उनकी गलती इतनी बड़ी थी, और अगर हम क्षमा कर देंगे तो वो रियलाइज कैसे करेंगे, और अगर वो रियलाइज नहीं करेंगे वो उसी गलती को दोबारा करेंगे। ये सब चीजें सोचकर हम उस बात को, उस घाव को, उस दर्द को पकड़ते रहते हैं। जितना हम किसी भी घाव को पकड़ के रखेंगे और हम कहेंगे मैं इसको ठीक नहीं करने वाला हूं, सपोज पांव पे चोट लगी, दीक्षित जी ने हथौड़ा लिया, जोर से मारा, चोट लग गई, फिजिकल घाव लग गया, और मैंने कहा इस घाव को मैं जीवन भर भरने नहीं दूंगे, ये कहा, तो फिर उस घाव के पांव को लेकर चलते गए जीवन में। कई और लोग मिलेंगे जो हथौड़ा मारेंगे, मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? मिलेंगे। जितना घाव को नहीं भरेंगे तो अगला वाला हथौड़ा, अगली वाली चोट और जोर से लगेगी, जितनी और जोर से लगेगी दर्द और जोर से होगा। हम कहेंगे इस बात को भी मैं नहीं भूलूंगा, अगली बार कोई मारेगा तो क्या होगा, और जोर से लगेगी। तो घाव को रहने दे या भरते जाए, घाव को रहने देना चाहिए या भरना चाहिए? भरना चाहिए, ऑब्वियस है। हर चीज फिजिकल तो ऑब्वियस होती है और हर चीज इमोशनल इम्पॉसिबल होती है। फिजिकल चीज को भरना है ऑब्वियस है। आप शाम को चाय पी रहे हैं, चाय पीते पीते सोफे पर आप बैठे, सोफे पे चाय गिर गई, तुरंत क्या करेंगे? तुरंत क्या करेंगे? चाय गिर गई चाय पीते पीते, अभी कप में चाय है, लेकिन तुरंत क्या करेंगे? उठकर साफ करेंगे। ये ऑब्वियस है, ये बात ऑब्वियस है, नेचुरल है। क्यों तुरंत उसी टाइम बैठ उठकर साफ करना है? कल सुबह भी तो साफ कर सकते हैं। इसका मतलब अगर सोफे पे कुछ गिरा उसी टाइम साफ करना है, अगर उसी टाइम साफ नहीं किया तो क्या हो जाएगा? दाग लग जाएगा। और यहां कुछ गिरा, यहां कुछ गिरा, कोई आया कुछ कह दिया, दूसरा कोई आया कुछ और कह दिया, तीसरा कोई मिला उसने और कुछ कह दिया, चीजें गिरती गई गिरती गई गिरती गई, लास्ट कब साफ किया? और धीरे धीरे धीरे इतने दाग पड़ते गए, इतने दाग पड़ते गए कि क्या हो गया, कि ओरिजिनल कलर ही भूल गया।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

मेरे कंप्यूटर चल चल चल मेरे कंप्यूटर। कुछ चीजें ओरिजिनल ही अच्छी लगती हैं। सुनिए पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: लाइफ का जो स्टाइल है उसको लाइफ स्टाइल कहते हैं। लाइफ स्टाइल इज नॉट ओनली अबाउट व्हाट वी आर ईटिंग, ड्रिंकिंग, वेयरिंग। लाइफ स्टाइल इज अबाउट व्हाट वी आर थिंकिंग, स्पीकिंग, बिहेविंग। दैट्स माय लाइफ स्टाइल।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: का सफर आरजे सनी के साथ।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM पर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका हम सफर सनी, लेकर आए हूं प्रोग्राम खाबों का सफर। जी हां, जहां पर होगी बहुत सारे ओल्ड मेलोडीज हम लोग सुनते हैं 50s से 60s के, और उसमें भी खास अल्फाबेट से हम लोग सुनते हैं। तो आज हम लोग बातें करेंगे एस अल्फाबेट के बारे में। एस अल्फाबेट के सारे गाने आपको 60s के और 50s के सुनाने की कोशिश हमारी रहेगी। और आज के शो को सजाने के लिए हमारे साथ रूना चौधरी जी हैं, जो एक अच्छे एक्टर और सिंगर हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो उनके पास कुछ गानों का कलेक्शन है एस वाले, जो 60s एंड 70s और 50s के हैं। तो हम उनसे भी कुछ गाने जरूर सुनेंगे। तो आप सभी की तरफ से आज के इस एपिसोड में खाबों के सफर में रूना जी का बहुत बहुत स्वागत है।
3: नमस्कार, मैं रूना जी बोल रही
2: हूँ। जी नमस्कार, कैसे हैं आप?
3: बस मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं?
2: जी जी जी, बताइए अपने बारे में रूना जी, क्या करते हैं वैसे आप?
3: मैं तो बहुत कुछ करती हूँ। मैं गाना गाती हूँ, मैं थोड़ा बहुत फिल्म भी कर लेती हूँ, कभी आईने के सामने तो कभी थिएटर्स में तो कभी फिल्म्स में, नौकरी भी करती हूँ, बहुत कुछ करती हूँ। कोशिश रखती हूँ कि मैं और ज्यादा अच्छा काम करूँ।
2: जी जी जी जी, चलिए बहुत ही अच्छी बात, आपने अपने बारे में बताया। आपको बहुत सारी चीजें आप करते रहते हैं, गाते भी हैं, एक्टिंग भी कर लेते हैं और साथ ही साथ नौकरी भी कर रहे हैं। तो आइए, मैं चाहूंगा कि कार्यक्रम की शुरुआत में खाबों के सफर में एक गाना जो आज हम लोग टारगेट किया है एस अल्फाबेट से गाने सुनाएंगे सभी, तो सबसे अच्छा गीत जो एस वाला है 60s में, वो गाना आपको बताना है और उसका थोड़ा सा लाइन हमें हमारे श्रोताओं को सुनाना है।
3: अच्छा, तो एक गाना है आशा जी का गाया हुआ है, सजना मेरा जिया राजा ने, म्यूजिक डायरेक्टर है सपन जगमोहन, मूवी है गुस्ताखी माफ, 1969 का मूवी है, बहुत पुराना है। एक दो लाइन गा के सुनाती हूँ।
2: जी जी जरूर।
3: एस शब्द से शुरू होता है,

जी रूना जी, बहुत ही खूबसूरत गीत आपने याद कराया है। गुस्ताखी माफ इस एल्बम का आपने गाना सुना है, 1969 में ये रिलीज हुई और ये उस समय काफी लोगों ने पसंद किया था इस फिल्म को। तो चलिए हम लोग इसी गाने को एंजॉय करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत में। आप सुनाए हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: नमस्कार, खाबो के सफर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फिर से एक बार और बहुत ही खूबसूरत गाना आपने सुना गुस्ताखी माफ इस एल्बम से। आइए अब आगे बढ़ते हैं। और इस फिल्म की जो कहानी थी वो थोड़ी सी अलग थी। भगवान की दया से एक महिला है, उन्हें दो बच्चे एक साथ पैदा होते हैं और आशा और सीमा नाम उनका रखा जाता है। लेकिन वो उनके नाम जैसा डिफरेंट है, लेकिन उनके चेहरे हाव भाव सब बिल्कुल एक दूसरे से मिलते रहते हैं, तो इसकी वजह से काफी कंफ्यूजन इस फिल्म के अंदर बताया गया था। और राजकुमार बेदी साहब ने इसे डायरेक्ट किया था और इसे लिखा था राजकुमार बेदी साहब ने ही। और इस फिल्म के कलाकार थे तनुजा, संजीव कुमार, सुजीत कुमार। तो चलिए, अब फिल्म के बारे में तो ज्यादा नहीं बताएंगे, अब आइए आगे बढ़ते हैं दूसरे गाने की तरफ। और फिर से एक बार रोना जी का बहुत बहुत स्वागत है। और मैं चाहूंगा कि अगला गाना कौन सा है आपके पिटारे में?
1: ये गाना है सजना साथ निभाना।
0: अच्छा,
1: सबको ऐसे शुरू हो रहा है,
0: हाँ हाँ
1: तो
0: हाँ
1: ये गाना है आशा जी का गाया हुआ है,
0: जी जी
1: मोहम्मद रफी, और म्यूजिक डायरेक्टर है रवि मूवी डोली का। ये भी 1969 का ईयर में का ईयर का गाना है।
0: जी जी जी

जी, बहुत ही खूबसूरत गीत आपने याद कराया है। 1969 का डोली इस एल्बम का है। तो आइए, बहुत ही अच्छा लगता है जब हम लोग इस तरह के पुराने गाने जब सुनते हैं तो कहीं ना कहीं मन को एक तसल्ली मिलती है, एक सेटिस्फेक्शन मिलता है, गाने सुनकर एक अलग खुशी होती है। और इस फिल्म में जो विशेष रूप से कलाकार थे, राजेश खन्ना, बबीता, प्रेम चोपड़ा, ओम प्रकाश और नाजिमा, इस फिल्म में काम किया था। और फिल्म की कहानी थोड़ी सी अलग बताई गई है। और यहाँ पर अमर और आशा एक दूसरे से प्यार करते हैं और वो शादी करना चाहते हैं, लेकिन हालात कुछ ऐसे हो जाता है कि आशा को जो है प्रेम से शादी करना पड़ता है। तो इस तरह की कुछ बातें बताई गई हैं और फिर बाद में फिल्म में हैप्पी एंडिंग भी दिखाया गया है। तो चलिए, अब आगे बढ़ते हुए मैं सीधे आपको ले चलता हूँ ये गीत की तरफ, डोली इस एल्बम का जो बहुत ही खूबसूरत गीत है जिसे रूना जी ने गा के भी सुनाया और आपको लगा होगा कि ये गाना किस तरह का है। तो आइए सीधे गाने की तरफ चलते हैं। आप सुना है रेडियो पुनेरी आवाज, खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: सुन रहे हैं रेडियो पुनीर आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 FM। जी हाँ, बहुत ही खूबसूरत गाने आप सुन रहे हैं एस अल्फाबेट से। आइए ख्वाबों के सफर में फिर से आप सभी को जोड़ना चाहूंगा, एक और गीत की तरफ ले चलता हूँ मैं। और गीतों का जो सिलसिला है, जिस तरह से हम लोग अलग अलग टाइप के गीत सुनते हैं और एक अल्फाबेट से जब सुनते हैं तो कहीं ना कहीं शब्दों का जो मेल है वो हर गाने के साथ कहीं ना कहीं शब्द जो है जुड़ते जाता है। जैसे अभी आपने जो गाना सुना सजना साथ निभाना, और उसके पहले जो कार्यक्रम की शुरुआत में हमने गाना आपको सुनाया था उसमें भी सजना शब्द जरूर था। तो चलिए, अब ऐसे जो हमने सुनाने की कोशिश की है पूरे इस एपिसोड में एस वाले गाने, तो कहीं ना कहीं इस तरह का ट्रेजेडी आपको आएगा ही, आप भी उसको फील करेंगे। तो अब आगे बढ़ते हैं और मैं चाहूंगा कि रोना जी अगला गाना कौन सा है हमारे सभी श्रोताओं को आप सुनाना चाहेंगे।
2: ये गाना है समा है सुहाना, किशोर जी का गाया हुआ है, म्यूजिक डायरेक्टर है कल्याण जी आनंद जी, और मूवी का नाम है घर घर की कहानी 1970 की है गाना। तो मैं तो गा के सुनाती हूँ।
1: जी जी, जरूर सुनाइए।

0: चलिए, बहुत ही खूबसूरत गाना आपने सुना, घर घर की कहानी इस एल्बम से, और रुना जी ने भी थोड़ा गा के सुनाया और पूरा गाना आपने एंजॉय किया। और ये गाने में अपने आप में एक बहुत ही कशिश है, एक आकर्षण है। गाना सुनने के लिए आप जैसे ही तैयार हो जाते हो तो पूरा गाना सुने बगैर आप रह नहीं सकते, क्योंकि गाने के अंदर वो एक पकड़ है, एक मजबूती है। तो वह ये पुराने गाने वैसे भी बहुत मजबूत होते हैं, अपने आप को यानी हम सभी को बांध के रखते हैं, जैसे ये गाना ने हमें बांध के रखा था। तो आइए आप आगे बढ़ते हुए, मैं जैसे कि उस जिस फिल्म से ये गाना था, घर घर की कहानी, इसमें एक बहुत ही सिंपल स्टोरी थी। दो पड़ोसियों की कहानी बताई गई है, और एक जो पड़ोसी है वो बहुत ही गरीब है लेकिन ईमानदार है, और दूसरा जो पड़ोसी है वो अमीर है लेकिन ईमानदार नहीं है। तो ये चीजें यहाँ पर घर घर की कहानी में बताई गई थी, और इस फिल्म के कलाकार थे बलराज सहानी, राकेश रोशन, निरुपमा रॉय, शशिकला और ओम प्रकाश। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है गानों को सुनकर। अब मैं ले चलता हूँ आपको फिर से रुना जी की तरफ। रुना जी, बहुत ही अच्छे कलेक्शन, बहुत ही खूबसूरत गाने आप सुना रहे हैं, और मैं चाहूंगा कि अगला गाना कौन सा है हमारे श्रोताओं के लिए आपके पास।
1: तो अभी जो गाना है ये भी आशा जी का गाया है, मोहम्मद रफी है, म्यूजिक डायरेक्टर टेन दत्ता, मूवी है साधना 1958 का, और भी पुराना, तो 1968-70 किसका गा रहे थे। तो लाइन में कोशिश करती हूँ।

चलिए, बहुत ही खूबसूरत गाना आपने याद कराया। साधना इस एल्बम का है शायद, ये 1958 में रिलीज हुई थी। सुनील दत्त, वैजंती माला, लीला चिटनीस, राधा कृष्ण और मनमोहन कृष्णन पर पिक्चराइज किया गया था ये फिल्म। और ये एक प्रोफेसर की कहानी थी, और प्रोफेसर जो है अपने आप में कमाल का व्यक्ति रहते हैं। काफी रिश्ते उनके पास आते रहते हैं शादी के लिए, लेकिन प्रोफेसर साहब का जो है किसी पर भी दिल नहीं आता। आखिरी में रजनी नाम की एक अनजान लड़की से उनका मोहब्बत होता है। तो इस तरह की ये कुछ बातें इसमें बताई गई हैं। तो आइए आगे बढ़ते हुए सीधे इस गाने की तरफ चलते हैं। आप सुना है रेडियो पुनेरी आवाज, खुश रहो खुशियां बांटो।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
1: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM पर। बहुत ही खूबसूरत गाने आप सुन रहे हैं, आशा करता हूँ आप सभी को अच्छा भी लग रहा है कार्यक्रम में। और जैसे कहते हैं कि जीवन जो है बहुत लंबा नहीं होना चाहिए, जीवन महान होना चाहिए। तो कहने का भाव ये है कि अगर हम जीवन में बहुत ज्यादा जी भी लेते हैं लेकिन कोई महान कार्य नहीं करते हैं तो वो लंबा जीवन कोई मतलब नहीं बनता। अगर हम बहुत कम जीते हैं लेकिन महान कार्य करके जाते हैं तो पूरी दुनिया हमें याद करती है। इसीलिए कहा गया है किसी खास व्यक्ति ने, जीवन लंबा नहीं महान होना चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत ही खूबसूरत गाने आप सुन रहे हैं एस अक्षर वाले, एंजॉय कर रहे हैं। और हमारे साथ आज के इस खूबसूरत कार्यक्रम को सजाने के लिए हमारे साथ रूना चौधरी जी हैं, जो बहुत ही प्यारे प्यारे कलेक्शंस, बहुत ही खूबसूरत गाने आपके लिए लेकर आई हैं। तो फिर से एक बार उनका स्वागत करते हुए, अब कौन सा गाना है रूना जी आपके पास?
2: अभी जो गाना है वो भी एस से शुरू होता है, अब वो मोहम्मद रफी का गाया हुआ है, म्यूजिक डायरेक्टर है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, मूवी है परशमणि, 1963 ईयर का ये गाना है। सलामत रहो सलामत रहो सलाम।

0: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM पर। बहुत ही खूबसूरत गाना आपने पारस मणि इस एल्बम से सुना। रुना जी ने भी इसे बहुत ही अच्छी तरह से गा के आपको सुनाया था। आशा करता हूँ कहीं ना कहीं इस गाने में एक पकड़ है, एक जो है दुआएं मिलती है। जब हम लोग एक दूसरे को दुआ देते हैं, सलामत रहो कहने का भाव यही है कि हम किसी अपने को दुआ दे रहे हैं, तो ये भाव इसमें दिखाया गया है। 1963 में ये फिल्म रिलीज हुई थी। पारस मणि बहुत ही सुपर डुपर हिट फिल्म रही और इस फिल्म के डायरेक्टर थे बाबूभाई मिस्त्री और संगीतकार थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और रंजीत स्टूडियोज ने इसका निर्माण किया था और इसके कलाकार थे महिपाल जी, अरुणा ईरानी, मनोहर देसाई, हेलन और जीवन कला, ये सारे लोग इसमें काम किया और बहुत ही खूबसूरत ये फिल्म बनी थी। मैंने देखा कि काफी हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं जिन्होंने इन फिल्मों को रिलीज होते हुए देखा था, उस समय ऐसा कहा जाता था फिल्म के पूरे हफ्ते 2 हफ्ते तक जो है उन्हें टिकट नहीं मिलता था, क्योंकि उस समय थिएटर्स भी कम होते थे और लोग ज्यादा होते थे फिल्म देखने वाले, तो इस वजह से फिल्म देखना अगर उनको पहली शो देखना हो तो वो बड़ा मुश्किल होता था। तो 2-3 हफ्ते के बाद जब वो फिल्म कंटिन्यू चलती थी उसमें फिर जाके वो देख कर आते थे, तो ऐसा मैंने सुना उनसे। तो मुझे अभी पारस मणि नाम सुनते ही वो कहानी याद आ गई उनकी। तो चलिए, बहुत ही अच्छी बात हो रही है। आशा करता हूँ आप सभी एंजॉय कर रहे हैं गानों को और रोना जी जिस तरह से प्रेजेंट कर रहे हैं उनकी भी आवाज को आप एंजॉय कर रहे होंगे। तो चलिए, आप आगे बढ़ते हुए एक और गीत की तरफ मैं ले चलूंगा आप सभी को और उसके साथ साथ मैं कुछ बातें आपसे जरूर शेयर करता हूँ। कभी कभी हमारे जीवन में कुछ बातें जो है बहुत ही अच्छा फील कराता है, हमें एनर्जेटिक यानी हमें मोटिवेट करते हैं कुछ बातें, हमें जब हम उन चीजों को सुनते हैं, समझते हैं, देखते हैं। तो कई बार जो है कुछ फिल्में जो है लाइफ स्टोरी के साथ जुड़ी होती हैं, रियल लाइफ स्टोरी के साथ, उन्हें देखकर हमें बहुत ही अच्छा लगता है, उनके साथ इंस्पिरेशनली जुड़ जाते हैं, मोटिवेशन मिलता है हमें। और फिल्मों के साथ साथ हम गाने भी जब सुनते हैं तो कहीं ना कहीं हमें एक उत्साह, एक क्या कहते हैं कि एनर्जी बूस्टर हमारा हो जाता है, जिससे हम जीने का एक अंदाज बदल जाता है, थोड़ी देर के लिए सही लेकिन एक एनर्जी हमारे पास कहीं ना कहीं से आ जाती है और हम उसको एंजॉय करते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हुए फिर से मैं अरुणा जी से आप सभी को जोड़ना चाहूंगा। अगला जो गाना है आपके पास कौन सा है?
1: अभी मेरे पास जो एस शब्द से जो गाना है वो है, सिंगर है सुधा मल्होत्रा, म्यूजिक है रोशन जी, मूवी है बाबर, 1960 का गाना है वो। एक लाइन गा के सुनाती हूँ।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
1: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM पर खाबों का सफर। मैं हूँ आपका हम सफर सनी, और आज के इस एपिसोड में हमारे साथ खास मेहमान रूना जी हैं, जिनसे हम लोग बहुत ही खूबसूरत गाने भी सुन रहे हैं और प्ले भी कर रहे हैं। तो बड़ा ही अच्छा लग रहा होगा आपको ये कॉम्बिनेशन, और एक ही अल्फाबेट के गाने आपको सुना रहे, तो ये भी अपने आप में एक कमाल का कॉम्बिनेशन, एक कमाल का जो है एपिसोड में रौनक देता है। तो आइए, अब आगे बढ़ते हुए मैं आप सभी को बताना चाहूंगा, जो गाना आपने सुना बाबर 1960 में ये फिल्म रिलीज हुई थी भारत में, और फिल्मिस्तान प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने इसका प्रोड्यूस किया था, और हेमंत गुप्ता साहब ने इसे डायरेक्ट किया था। और इस फिल्म के जो सिलेक्टेड कास्टिंग किया गया था इसमें, जो आजरा, गजानंद जागीरदार, शोभा खोटे, सोहन कपिला, बद्री प्रसाद और जुगल किशोर, के रेड्डी साहब, और भी बहुत सारे, सुलोचना चटर्जी, रूप माला, रूप लक्ष्मी और प्रताप, पंकज, इन सभी ने काम किया था। तो उस समय भी ये फिल्म बहुत ही हिट रही और लोगों ने इसे काफी पसंद किया था। एक अलग स्टोरी जो है इसमें बताई गई थी। तो चलिए, अब आगे बढ़ते हुए मैं कहना चाहूंगा कि कुछ भी, जो भी गीत हम लोग सुनते हैं उसमें कहीं ना कहीं एक मोटिवेशन है, एक अलग एहसास है। बस जीवन भी एक एहसास ही है, आप उस एहसास को प्यार का एहसास से जी सकते हैं। कई लोग नफरत के एहसास से भी जिंदगी काट देते हैं, यानी जीते नहीं है लेकिन एहसास हो आपके पास, एक इंसानियत का हो, एक प्यार का हो, एक खुशी का हो, तो जीवन जीने का भी एक आनंद होना चाहिए। वरना जीवन तो सभी लोग जीते हैं, लेकिन मानव जीवन मिला है तो उसकी अपनी एक खूबसूरती है, उसे जानना जरूरी है। कहते हैं जीतने का मजा तभी आता है जब सभी आपके हारने का इंतजार कर रहे होते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बहुत ही अच्छी बातें हो रही हैं। आप सुनाए हैं रेडियो पुनीरी आवाज, और फिर से मैं रूना जी से जुड़ना चाहूंगा। रूना जी, कैसे हैं आप?
2: बस रमेश जी, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं?
1: बस आपकी आवाज सुन के हम भी तो बहुत अच्छे हो गए,
2: और भी अच्छे रहे, खुश रहे।
1: जी, अगला गाना कौन सा सुनाने वाले हैं आप?
2: ये जो इस लेटर से जो गाना है वो है, लता जी ने गाया हुआ है, उसके गाया हुआ है, म्यूजिक डायरेक्टर है रोशन जी, और मूवी का नाम है चित्रलेखा 1964 का। एक लाइन में गा के सुनाती हूँ, बहुत ही ओल्डी है पर बहुत ही प्यारा है।

0: बहुत ही पुराना है, हमने इतना हिस्सा इतना ही कमे गा पाई, और बाकी का तो आप सुनाई देंगे सभी को, और भी प्यारा है लता जी का गाया हुआ है, तुमने
1: जी जी
0: कोशिश
1: बहुत
0: की
1: ही
0: थोड़ा बहुत
1: बहुत
0: एक लाइन गाने के लिए।
1: जी बहुत ही खूबसूरत गाना है, और ये फिल्म भी बहुत ही पॉपुलर रही, चित्रलेखा जो 1964 में रिलीज हुई थी। और ये फिल्म भी अपने आप में एक अलग स्टोरी रही इसमें, और इस फिल्म के नाम से काफी आप देखेंगे कि रेलवे स्टॉल पे कुछ बुक्स भी हैं इस नाम से पब्लिश हुए हैं, अलग अलग भाषा में भी है, तो इसमें जो कहानियां होती हैं बहुत ही टची होती हैं। आइए अब फिल्म के बारे में बात करें, तो ये एक हिंदी भाषी फिल्म है और भगवती चरण वर्मा द्वारा ये फिल्म लिखी गई थी, और एक उपन्यास था चित्रलेखा, उसी उपन्यास पर आधारित ये फिल्म बनी। और फिल्म के मुख्य कलाकार जैसे अशोक कुमार, मीना कुमारी, प्रदीप कुमार और महमूद साहब ने काम किया है, और फिल्म के निर्देशन केदार शर्मा जी ने किया था। और इसी नाम से एक फिल्म 1941 में भी आई थी, और फिर उसके बाद ये फिल्म आई 1964 में, और इसी फिल्म का गाना जो है 64 वाला चित्रलेखा फिल्म का गाना अभी आपने सुना। तो आइए इस फिल्म के कलाकारों के बारे में भी हमने जाना, और कहानी थोड़ी सी ऐतिहासिक है, राजा महाराजाओं की जैसे कहानी होती है उस टाइप की थोड़ी सी जुड़ी हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं ये हमारे जीवन में शिक्षा देने की कोशिश करती है फिल्म भी। एक इंसानियत के तौर पे हमें किस तरह से रहना है वो चीजें यहाँ पर बताई गई हैं। चलिए अब मैं सीधे आपको गीत की तरफ ले चलता हूँ। आप सुनाए हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। मुझे लगता है कि हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते कार्यक्रम के आखिरी मोड़ पे भी पहुंच रहे हैं। और ऐसा कहते हैं, दूसरों की मदद करते हुए यदि दिल में खुशी हो तो वही सेवा है, बाकी सब दिखावा है। कई बार मुझे लगता है कि हम लोग बहुत सारी चीजें करते रहते हैं और काफी बार हम मीडिया में भी आते हैं, सोशल में भी रहते हैं और दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन सच्ची सेवा जो है दिखाने की नहीं होती है। आपको खुशी हो रहा है और सामने वाले को खुशी हो रहा है तो वो एक दूसरे का जो है एनर्जी रिसीव और गिव एंड टेक हो रही है। वहां पर हम दोनों भी चार्ज हो रहे हैं, दोनों भी कहीं ना कहीं एक मोटिवेशन प्राप्त करते अपने जीवन को अच्छी बेहतर जीने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो सच्ची सेवा है। बाकी अगर हम लोग काम के मतलब से बात करके और फिर खत्म हो जाते हैं तो वो दिखावा है, उस पर ना जाइए। आइए आगे बढ़ते हैं और फिर से रोना जी से आप सभी को जोड़ना चाहूंगा। हेलो, नमस्कार रोना जी, कैसे हैं आप?
1: बस नमस्कार, कैसे हैं आप?
0: बस आपकी आवाज सुन के और अच्छे हो गए, एवरग्रीन हो गए हम।
1: मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरी आवाज भी अच्छा सभी को
0: जी
1: लग रहा है। पता नहीं,
0: जी
1: मैं सभी को खुश थोड़ा सा एक दो लाइन गा के जो अच्छा लग रहा होगा सभी को।
0: जी आप कौन सा गीत है आपके पास?
1: अभी जो गाना है वो एक गजल है, आशा जी का गाया हुआ है, म्यूजिक गुलाम अली है, मूवी है मिराज़ गजल। ये गाना तो मुझे याद नहीं है, बट ये गाना है, ऐसे शुरू होता है, सलोना सर सजन है, सिंगर है आशा जी का, आशा जी ने गाया गाया है ये गाना, और म्यूजिक डायरेक्टर है गुलाम अली का, गुलाम अली, और मूवी का नाम है मिराज़ गजल। आशा जी का गाना है, सुनिए।
0: चलिए,
1: थैंक
0: बहुत ही
1: यू।
0: खूबसूरत गाना जो है आपने याद कराया। ये गाना नहीं, गजल है जो आखिरी में हम लोग आपको सुनाएंगे, और एक एल्बम से है, मिराज़ गजल नाम का एल्बम है। उस एल्बम में ये जो गजल है एस अक्षर से शुरू होता है, जिसे रूना जी ने बताया, सलोना सा साजन है और मैं हूँ। तो बहुत ही खूबसूरत गजल है ये, साहिब अब्बास जी का लिखा हुआ है, आशा भोसले ने गाया है, गुलाम अली साहब ने संगीत से संवारा है। तो चलिए, मुझे लगता है एक गजल जो है एक मैसेज देता है हम सभी को, उस मैसेज को अच्छी तरह से सुनने की कोशिश करते हैं। और आज के इस एपिसोड में मुझे लगता है कि बस इतना ही, आगे फिर हम लोग कुछ इसी तरह के पुराने गाने लेकर आपके बीच आएंगे और आपको खुशी देने का प्रयास करते रहेंगे। आशा करता हूँ आप फील कर रहे होंगे खुशी। और आज के इस एपिसोड में रूना जी हमारे साथ जुड़कर बहुत ही अच्छा गाना जो है उन्होंने रिप्रेजेंट किया, तो उनके लिए भी ढेर सारी बधाइयां, ढेर सारी दुआएं। थैंक यू सो मच रोना जी।
1: थैंक यू सो मच।
0: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM पर। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही, और सभी श्रोताओं को ढेर सारी खुशियां, ढेर सारा प्यार। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे इसी वादे के साथ। सलाम नमस्ते खमागनी, खुश रहो और खुशियां बांटो।

0: खुशी को निरंतर बनाए रखने के लिए सुनिए शिवानी बहन के प्रेरणादायी विचार।
1: जैसे गुस्सा एक एनर्जी है, खुशी भी एक एनर्जी है। जैसे कोई मुझे गुस्सा नहीं दिला सकता, वैसे कोई मुझे खुशी भी नहीं दिला सकता। ये एक एनर्जी है जो मेरे अंदर है, और बाहर की कोई भी फिजिकल चीज, एक कार, एक बंगलो, एक डेजिग्नेशन, वेरी बिग सैलरी फिगर या एक व्यक्ति, वो मेरे अंदर उस एनर्जी को नहीं क्रिएट कर सकता है। दैट एनर्जी कैन ओनली बी क्रिएटेड बाय मी। बट व्हाट आई डू इज कि उस चीज को लेकर आई कैन क्रिएट दैट एनर्जी। ये लैपटॉप है, तो लैपटॉप मेरे अंदर हैप्पीनेस नहीं क्रिएट कर सकता। ये एक फिजिकल चीज है, ये एक एनर्जी है। ये फिजिकल चीज उस एनर्जी को नहीं क्रिएट करता, बट द थॉट दैट आई क्रिएट, नाउ आई हैव अ लैपटॉप, यू नो, ये थॉट जो क्रिएट कर ली, ये थॉट वो पॉजिटिव एनर्जी को क्रिएट कर देता है। तो सबसे पहली रियलाइजेशन ये है कि कोई भी बाह्य चीज या व्यक्ति उस फीलिंग को नहीं क्रिएट कर रहा है, मेरी अपनी थॉट्स, क्योंकि हमने चेन में देखा कि थॉट गिव्स राइज टू फीलिंग, नथिंग एल्स। कोई भी और चीज वो फीलिंग नहीं क्रिएट कर सकती है। तो नाउ इट्स इन माई हैंड कि लैपटॉप लाने के बाद में उस अच्छी फीलिंग को क्रिएट करूं, या बिना लैपटॉप के भी उसको क्रिएट कर लूं, या वेट करती रहूं, एक साल सेव करती रहूं कि जिस दिन लैपटॉप आएगा तब वो अच्छी वाली फीलिंग क्रिएट करूं। यू नो, इट्स इन माय हैंड कि मैं कितना देर खुश रहना चाहती हूं। डू आई वांट देन, नाउ व्हाट हैज हैपेंड, हैप्पीनेस वी हैव मेड इट वेरी टेम्पररी, कि ये होगा तो खुशी। दैट्स बिकॉज जब वो चीज होती है, हम अपने आप को उस तरह की अच्छी थॉट्स देते हैं, अच्छी फीलिंग आती है। लेकिन जब हमें समझ में आ जाता है कि ये मेरी अपनी क्रिएशन है, एंड आई कैन क्रिएट इट व्हेन, वेयर एवर, एंड फॉर हाउ एवर लॉन्ग आई वॉन्ट, सो देन इट्स माई चॉइस। सो नाउ इट्स योर चॉइस, आप जितनी देर खुश रहना चाहते हैं, क्रिएट इट।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

कंप्यूटर चल चल चल मेरे कंप्यूटर। कुछ चीजें ओरिजिनल ही अच्छी लगती हैं। सुनिए पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: कुछ दिन पहले एक भाई मिले, उन्होंने कहा सुबह क्या हुआ, कहते मैं उठा, ऐसे बेड से उठा तो टेबल थी बेड के सामने, मेरा पैर लग गया टेबल से। तो मैंने सबको जोर जोर से डांट लगानी शुरू कर दी, दिखता नहीं, अपने सब स्टाफ को बुलाया, वाइफ को बुलाया, दिखता नहीं बेड के सामने टेबल रखी, उठा मेरा पैर लग गया, सबको डांट रहा था। तो धीरे से किसी ने आके कान में कहा, सर रात को आपने रखी थी। अब जैसे ये पता चला कि रात को आपने रखी थी, अब व्यवहार कैसा हो जाएगा? इसीलिए जीवन में जितने विघ्न हमें दिखाई दे रहे हैं, जिनके लिए हम औरों को डांट रहे हैं, औरों को जिम्मेवार ठहरा रहे हैं, औरों पर चिल्ला रहे हैं, वो जीवन में विघ्न हमारे किसने रखे थे? किसने रखे थे? वो हमने ही रखे थे। अब औरों पर डांटने की बजाय हमें क्या करना है? हमें क्या करना है कि आज उसको ध्यान से साइड पे रखना है। तो जो मेरे जीवन में हो रहा है, अगर मुझे ये क्लैरिटी है कि जैसा कर्म वैसा कॉन्सिक्वेंस, तो मुझे उंगली फिर किसी और पर नहीं, उंगली यहाँ और ठीक करने की उंगली भी यहाँ। वी आर नॉट डूइंग अ फेवर टू एनीबडी एल्स। ये हम कहते हैं ना, उसने किया इतना, मैं कैसे क्षमा करूं? उनको नहीं क्षमा कर रहे, अपने आप को क्षमा कर रहे हैं।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: अध्यात्म और मूल्यों से सजा कार्यक्रम रंग नवे जरूर सुने।
1: नमस्कार, आप ऐकता है रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

प्यासे के पास नदी भी खुद प्यास बुझाने आए। प्यासे के पास नदी भी खुद प्यास बुझाने आए। प्यासे के पास नदी भी खुद प्यास बुझाने आए। कभी हमने नहीं सोचा था।

आग है अपने दिल में वो आग उधर भी होगी, जो आग है अपने दिल में वो आग उधर भी होगी। कभी हमने नहीं सोचा था ऐसा दिन भी आ

ओम शांति अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी में आज फिर आप सबका स्वागत करते हैं। इन दिनों हम बात कर रहे हैं सेल्फ मैनेजमेंट की, यानी अभी तक तो हम बहुत

0: चीजों को मैनेज कर रहे थे, स्ट्रेस को मैनेज कर रहे थे, लाइफ को मैनेज कर रहे थे, अपनी कंपनी को मैनेज कर रहे थे, अपनी प्रोफेशन को मैनेज कर रहे थे, लेकिन जब खुद के ऊपर नजर गई तो सेल्फ मैनेजमेंट के बारे में समझा और अपनी सही पहचान करते हुए क्या वो सिचुएशंस हैं, किस तरह से अपने आप को मैनेज करना है, इस पर कई सारी बातें हम कर चुके हैं। आज भी इस बात को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। ओम शांति।
1: ओम शांति।
0: अगर पिछली कड़ी को हम देखें सिस्टर शिवानी, तो कई सारे एस्पेक्ट्स हमारे सामने आए थे कि जब सिचुएशन आ जाती है तो एक छोटा सा रिकैप लेकर हम आगे बढ़ते हैं कि व्हाई एक्चुअली वी नीड टू मैनेज द सेल्फ।
1: वी जस्ट सॉ लास्ट टाइम के परिस्थितियां बहुत सारी हैं हमारे सामने जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो कठिन से कठिन परिस्थिति में भी एक ही चीज है जो मेरे कंट्रोल में है, दैट इज माय रिस्पांस। सो वी शिफ्टेड द फोकस के सिचुएशन को कंट्रोल करने के बजाय क्यों ना अपने ऊपर ध्यान देना शुरू करें, तो सिचुएशन अपने आप संयम में आ जाएगी। तो अपने ऊपर ध्यान देने के लिए कुछ एक बातों के बारे में हमने विचार किया। एक था साक्षी दृष्टा, डिटैच्ड ऑब्जर्वेशन, जो हम उलझन कहते हैं ना, बहुत उलझन है क्योंकि हम उलझ जाते हैं उसके अंदर। तो अगर हम एक मिनट निकाल के भी स्टेप आउट करें कि जो ड्रामा चल रहा है उसको यहां से न देखने की बजाय एक ऑडियंस के पर्सपेक्टिव से देखें, तो हमें हर एक एक्टर का रोल बहुत क्लियर दिखाई देगा और सिचुएशन जैसी है वैसे दिखाई देगी। और फिर जो हम रिस्पॉन्स करेंगे वो सोच समझ कर करेंगे, क्योंकि हमारा पर्सपेक्टिव चेंज हो जाएगा, वही प्रॉब्लम हमें प्रॉब्लम नहीं अपॉर्चुनिटी दिखाई देगी। तो साक्षी दृष्टा वॉज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जैसे ही हम थोड़ा सा डिटैच्ड होते हैं तो हमें ये पता चलता है कि सिचुएशन मुझे नहीं कंट्रोल कर रही है, मेरा कंट्रोल तो मेरे ही हाथ में है। लेकिन जब हम उसमें उलझे हुए थे कि ये सारा कुछ ऑटोमेटिक हो रहा है। सो जैसे कि कई बार होता है ना, बहुत केओस हो रहा है, लेट से ऑफिस में होता है, आप कुछ प्रोजेक्ट पे हो, आज शाम को सबमिट करना है, डेडलाइन इज देयर एंड यू हैव टू सी द एनवायरमेंट ऑफ द ऑफिस, इट इज लाइक केओस, एवरीवन इज शाउटिंग एट ईच अदर एंड जल्दी करो, क्यों नहीं हो रहा, ऐसे
0: ब्लेमिंग,
1: ऐसे वातावरण में वो प्रोजेक्ट खत्म होना तो एक बहुत बड़ा चैलेंज है ही है, क्योंकि द होल एनर्जी फ्लो इज वेरी नेगेटिव। लेकिन अगर हो तो जाएगा पूरा, लेकिन एक्सपीरियंस क्या रहा सारा दिन का या वो एक महीने का जब आप वो प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे, स्पेशली इवेंट्स ऑर्गेनाइज हम करते हैं। अब रोल ही है इवेंट ऑर्गेनाइज करना, इवेंट कुड बी एज स्मॉल एज कि आपके घर पे आज एक डिनर है, आपके घर पे आज एक बर्थडे पार्टी है, दैट्स ऑल्सो एन इवेंट। और उस इवेंट में आप देखो पूरा परिवार कैसे केओटिक सा हो जाता है,
0: और उसके बाद जैसे ही सारे मेहमान जाते हैं आप ऐसे थक जाते हैं, बिकॉज इट इज लाइक इतना टायरिंग पूरा एक्सपीरियंस हो जाता है।
1: तो ऐसे जैसे ये छोटी छोटी सिचुएशंस है, इनमें आप एक बार स्टेप आउट करके देखो, मॉर्निंग में आप देखो, जो आप घर पे, हमने लास्ट टाइम भी बात की कि मॉर्निंग का सीन कैसा होता है घर पे, अब इस मॉर्निंग के सीन में सपोज आज हमारे घर जो बहन आती है सफाई करने के लिए, बर्तन मांजने के लिए, वो आज नहीं आई, तो पूरा सीन कैसा हो जाता है, इट इज एवरीवन इज लाइक, अब एक है कि आप शोर मचाते रहो एक दूसरे पे चल, और एक है आप एक मिनट स्टॉप करो कि यू नो व्हाट एम आई डूइंग, घर साफ होता जा रहा है और अंदर बर्तन, वे क्लीनिंग द हाउस एंड अंदर क्यों नहीं आई, ऐसे नहीं वैसे, इट्स अ सिचुएशन नॉट इन माई कंट्रोल, माई रिस्पॉन्स। तो अगर उस समय हम 10 सेकेंड भी अपने आप को स्टॉप करके कहे वॉट एम आई डूइंग एंड यू विल इमिजिएटली जस्ट स्लो डाउन, जस्ट हैव टू कम आउट ऑफ इट वन मिनट लाइक दैट। तो वन वॉज डिटैच्ड ऑब्जर्वेशन, द अदर वॉज फिल्टरिंग इन्फॉर्मेशन, कि हम बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन जो अपने अंदर भर रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं भी हमारी एनर्जी को डिप्लीट करती है। तो लेट्स बी केयरफुल, जहां तक इन्फॉर्मेशन मीडिया से भी है, जहां तक इन्फॉर्मेशन चारों तरफ की, किसके घर में क्या हो रहा है, किसके जीवन में क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा भरते जा रहे हैं, और उससे क्या होता है, जहां बहुत ज्यादा क्लटर हो जाता है ना यहाँ पे, तो क्रिएटिविटी खत्म हो जाती है, मैं बहुत ज्यादा ऑलरेडी कंज्यूम करने लगती हूँ बाहर से, तो इट्स लाइक अ पीस ऑफ पेपर जो ऑलरेडी इतना भर गया है, इतना भर गया,
0: कॉर्नर नहीं है जिस पे लिखे हैं।
1: तो उसमें फिर मेरा रिस्पांस फिर ऑटोमेटेड होने लगता है, क्योंकि मेरा रिस्पांस इन्फॉर्मेशन पे बेस्ड है, और फिर इन्फॉर्मेशन भी कौन सी क्वालिटी की हम भर रहे हैं, तो जहाँ इन्फॉर्मेशन ही ज्यादा दर्द वाली भरेंगे तो रिस्पॉन्स फिर ज्यादा दर्द वाला हो जाएगा। तो इसलिए हमने देखा कि इन्फॉर्मेशन भरे तो भले हम सुन पढ़ तो रहे हैं आसपास क्या हो रहा है, लेकिन सुबह सुबह परमात्मा के महावाक्य ले, तो एटलीस्ट फर्स्ट लेयर ऑफ इन्फॉर्मेशन पॉजिटिव। और तीसरा हमने देखा कि जब भी हम ये जर्नी पर हैं कि यस दर्द मेरी क्रिएशन है, आई एम नॉट गोइंग टू डू इट, लेट मी वर्क ऑन माई सेल्फ. फिर भी कभी कभी थोड़ा थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है, लेकिन जब कभी ऐसी थोड़ी सी भी हार खा लें, रिएक्ट कर जाएं, एटलीस्ट देन स्टॉप एंड लेट्स वर्क ऑन आवर सेल्फ. नहीं तो अगर एक बार, दो बार, चार बार ऐसे हार खाते गए तो लगेंगे नहीं मेरे हाथ में कुछ नहीं है, ये मेरा पुराना बिलीफ सिस्टम ही राइट था कि ये सब कुछ तो बाहर से ही आता. लेकिन अगर सपोज मैंने एक बार रिएक्ट किया, गुस्सा किया, नाउ लेट मी सिट बैक एंड यू नो रिकवर. जैसे कि एक इलनेस तो आ गई, लेकिन इलनेस का इलाज कर लें, उससे रिकवर हो जाए. क्योंकि हम उससे रिकवर नहीं होते तो एक के बाद एक बीमारी
0: फिर हमें पकड़ के साथ जुड़ती जाती है.
1: तो इसलिए कहा जाता है कि एक बार अगर बीमारी आपको कोई हो जाती है तो आपका अपना इलाज आपको पूरी तरह से करना चाहिए. ना शारीरिक बीमारी भी होती है, कहते हैं रेस्ट कर लो, अच्छी तरह से रेस्ट कर लो ताकि आप उस बीमारी से रिकवर हो जाओ. अगर आप बिना रिकवर हुए ही एक्टिविटी में आ गए तो वो बीमारी हो सकता है आपको फिर से दोबारा आ जाए. तो इसी तरह एक बार गुस्सा किया, उसमें से रिकवर नहीं किया तो 10 मिनट बाद फिर कुछ और हो जाएगा. और फिर एट द एंड ऑफ द डे कहेंगे एंगर इज नेचुरल.
0: और इनफैक्ट नहीं, एक बार जब एंगर कर जब हो जाता है ना, जब अपने आप को रिस्ट्रेन किया उसके बावजूद भी हो गया और उसके ऊपर हमने काम नहीं किया उसी वक्त, तो उसके रिपरकशंस, क्योंकि हमारी एनर्जी तो ऑलरेडी उस लेवल पे पहुंच चुकी होती है, और उसके बाद ये देखा जैसे शिवानी कि हम अपने आप को जस्टिफाई करने लगते हैं.
1: बिकॉज वी सॉ कि फीलिंग क्या होती है, फिर मेरी गलती तो थी नहीं, फिर जस्टिफाई मतलब आपकी गलती थी. देन अगेन दैट यू नो, क्योंकि वो ओल्ड बिलीफ सिस्टम इतना डीप रूटेड है कि अगर एक वो थॉट आ गई कि मेरी गलती नहीं थी, दूसरी थॉट आएगी आपकी गलती थी, तीसरी थॉट आएगी फिर चेंज किसको होना चाहिए, आपको. यू सी ना, अगेन वी फॉल बैक इनटू दैट ओल्ड थिंकिंग पैटर्न. इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि अगर रिएक्ट कर भी दिया, किसी भी फॉर्म का रिएक्शन बाहर या अंदर, जस्ट टेक आउट 2 मिनट्स एंड सिट बैक विद योरसेल्फ. अगर आप बहुत बिजी हैं, आप बहुत बिजी हैं, फिर भी आपका कोई फैमिली मेंबर या आपके कोई फ्रेंड्स, अगर उनका मूड खराब हो गया, यू नो दे आर अपसेट and you see them like that, कि they are upset, they are in pain, तो आप क्या करते हो?
0: हम सब कुछ छोड़ देते हैं, हम उनके साथ बातें करने लगते
1: हैं. Now see, isn't that natural response है कि हम सब कुछ छोड़ देते हैं, 2-3 मिनट भी हम टाइम निकाल कर उनसे बात करेंगे या फोन पे बात करेंगे, क्या बात करेंगे? How are you? It's okay. छोड़ दो ना, क्या फर्क पड़ता है, भूल जाओ, कोई बात नहीं. तो जबकि हम औरों के लिए ये टाइम निकाल सकते हैं क्योंकि वो दर्द में है एंड उनका दर्द मुझे मैटर करता है, तो मैं अपना काम छोड़ के आपके साथ बैठूंगी, तो मैं अपना काम छोड़ के अपने साथ क्यों नहीं बैठ सकती? अगर मैं दर्द में हूँ, मैं दर्द में ही काम करती जाती हूँ, अपने साथ क्यों नहीं 2 मिनट निकाल कर बैठ सकते?
0: That's very true actually.
1: So the minute we go into pain, let's stop. अपने आप से बात करें, फिर उस सिचुएशन को पर्सपेक्टिव में देखें और रिकवर करें विद द पॉजिटिव थॉट, व्हाटएवर हैपेंड फाइन, आई एम अ पावरफुल सोल. अगेन यू नो, वो एक नेगेटिव साइकिल शुरू हुआ है थॉट्स का, कोई बात नहीं, उसको स्टॉप करके, कट करके, पॉजिटिव थॉट क्रिएट करके एक पॉजिटिव साइकिल शुरू करना है. अगर मैंने अपने आप को नहीं स्टेबल किया तो फिर मैं हर सिचुएशन में फेल होती जाऊंगी सारा दिन. आप देखो, अगर एक बार आपका मूड खराब हो गया आज सुबह सुबह, अगर आपने उसको ठीक नहीं किया, फिर हर सिचुएशन में, यही अगर आपने 2 मिनट निकाल लिए आपने, ना दिस इज ऑल मेडिटेशन. यू नो मेडिटेशन, क्योंकि फर्स्ट चीज है अपने आप से रिश्ता, फिर परमात्मा से रिश्ता, अपनी हीलिंग, दैट इज मेडिटेशन. मेडिटेशन, यू नो, एवरी टाइम वी थिंक इट्स सपोज टू बी वेरी टेक्निकल, नो, मेडिटेशन इज जस्ट ब्यूटिफुल, टेकिंग आउट टाइम, अपने आप से बात की, परमात्मा से बात की, अपना ध्यान रखा, उससे शक्ति ली. और इसीलिए हम हमेशा कहते हैं कि वो 1 घंटे के बाद 1 मिनट, ताकि वो ऑटोमेटिक अगर हमारी रूटीन में फिक्स हो जाए कि हम हर 1 घंटे के बाद 1 मिनट निकालेंगे, तो कहीं ना कहीं अगर उस 1 घंटे के अंदर थोड़ा भी कुछ ऊपर नीचे प्लस माइनस हुआ था, तो उस 1 मिनट के अंदर.
0: बिल्कुल, जैसे आप ये कह रहे हो, हम हर 1 घंटे बाद, हर 2 घंटे बाद घर फोन करते हैं, बच्चा ठीक है कि नहीं. सो अगेन यू नो, अपने हस्बैंड को फोन करते हैं कि उन्होंने खाना खाया कि नहीं, कि कितने सारे लोग ऐसे करते हैं. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपने आप को बोलें, अपने आप के साथ करें कि मैं ठीक हूँ कि नहीं.
1: यस, इट्स ओनली दैट, वो 1 मिनट सिर्फ उसी के लिए है. और बजाय के, अब कई बार क्या होता है कि अगर हम वो 1 मिनट निकालते हैं तो कई बार हम एक सीरीज ऑफ नेगेटिव थॉट्स में फिर चले जाते हैं कि नहीं मैं ठीक नहीं हूँ, मुझे दर्द हो रहा है, क्यों दर्द हो रहा है, उसने ऐसा किया, नो देन दैट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम. हमें वो वन मिनट इसलिए नहीं निकाला है कि हम वो परिस्थिति का चिंतन करने वाले हैं उसमें बैठकर, उनको ऐसा उनको. सो इसलिए हम परिस्थिति का चिंतन न करके तुरंत वो वन मिनट स्टार्ट ही करते हैं पॉजिटिव थॉट से कि आई एम अ पावरफुल बींग, या आई एम अ पीसफुल बींग, आई एम अ लवफुल बींग, मैं उस परमात्मा का बच्चा हूं जो शांति का सागर है, तो मैं आत्मा कैसे होंगे. तो क्या है, पॉजिटिव क्रिएट करेंगे तो नेगेटिव अपने आप खत्म होता
0: जाएगा. It just fills you the moment you give that thought.
1: इसलिए वन मिनट में हम ये नहीं कहेंगे कि आप वन मिनट निकाल कर हर टाइम उस सिचुएशन के बारे में सोचो जो उस एक घंटे में गए
0: सोच
1: थे.
0: रहे.
1: हाँ, वो तो हम वैसे भी सोच रहे थे. एग्जैक्टली. तो वो वन मिनट इसलिए निकलता है ताकि उस एक घंटे के अंदर जो ऑर्डिनरी वेस्ट, कभी थॉट्स, कभी नेगेटिव थॉट्स जो आ गई होंगी, तो ये वन मिनट में हम कॉन्शियसली प्योर थॉट्स क्रिएट करते. तो जितना भी थोड़ा सा वो एक घंटे के अंदर ऊपर नीचे हुआ होता है वो खत्म हो जाता है. भले हम अपने सभी भाई बहनों को ये बार बार कह रहे हैं, बट आई स्टिल फील नॉट मेनी आर ट्राइंग. क्योंकि कई बार ऐसे होता है कि बात बहुत सिंपल लगती है कि एक घंटे में एक मिनट, ये कौन सी बड़ी बात है, बट ये एक घंटे में एक मिनट बहुत पावरफुल टूल है. अगर समवन जस्ट टेक्स इट अप एज एन एक्सपेरिमेंट और इसको एक हफ्ते के लिए सिर्फ करे, एक हफ्ते के लिए आप अपने मोबाइल पे अलार्म लगा दो जो हर एक घंटे के बाद बजेगा ही बजेगा, और वो तो बजेगा लेकिन आप स्टॉप करेंगे. आप
0: वो तो बजता जाता नहीं तो.
1: और आप पॉज करके वो क्रिएट करेंगे, लाइफ विल चेंज. दैट इज डेफिनेट,
0: वेरी ट्रू. और वो उस एक घंटे के बाद जो एक मिनट है उसमें ये नहीं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये नहीं सोचना कि क्या हुआ था.
1: वो कई बार क्योंकि दर्द इतनी डीप रूटेड है ना, और वो वैसे ही चल ही रहा था उस एक घंटे में, तो कई बार वो एक मिनट भी उस सिचुएशन के बारे में या उस व्यक्ति के चिंतन के बारे में ही एक, बिकॉज वन मिनट इज वेरी शॉर्ट. और आप एक घंटे के बाद हर टाइम बहुत ज्यादा टाइम नहीं निकाल सकते. आप ऑफिस में हैं, आप बार बार ये नहीं कर सकते आप पांच मिनट निकाल लो, दस मिनट. सो इसलिए इट्स वन मिनट. लेकिन अगर वो वन मिनट एक्यूरेटली आप करो, अब होता क्या है, सपोज 9 to 10 इन द मॉर्निंग मेरा कुछ हुआ, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया, लेकिन 10 o'clock अगर मैंने अपने आप को स्टेबल कर लिया तो मेरा 10 to 11 ऑटोमेटिकली ठीक बीतेगा. लेकिन अगर मैंने वो वन मिनट 10 o'clock पे नहीं निकाला है तो मेरा 9 to 10 जैसा बीता होगा तो वो 10 to 11 पर इन्फ्लुएंस करेगा, फिर 10 to 11 भी थोड़ा अच्छा नहीं बीतेगा तो वो 11, तो somehow
0: 5 बजे तक तो आई विल बी स्टेट जो कुछ नहीं हो पाएगा.
1: फिर जबकि हम शाम को घर पहुंचते हैं तब तक तो हमारी एनर्जी बिल्कुल डिप्लीट हो जाती है. हम लोग हमेशा कहते हैं कि जैसे बड़े लोग हैं ना डायरी रखते हैं कि 9 to 10 ये करना है, 10 to 11 ये करना है. तो जैसे आप ऐसी डायरी बनाते हो तो एक कॉलम और भी साथ में ऐड करो, 9 to 10 क्या फील करना है. What to do is one column, 9 to 10 what to do and what to feel. 10 to 11 कैसा feel करना है.
0: Powerful, loveful.
1: Yeah, and basically everyone wants to feel happy. अगर आप किसी से भी पूछो क्या चाहिए तो one happy. Unanimous word is खुशी चाहिए. तो हम और आप, it's amazing. आप you ask anyone today कितने दिन खुश रहना चाहेंगे, कहते 365 days. अच्छा पूरे दिन में कितनी बार, कहेंगे हर मिनट. प्योर डिजायर है कि मैं जीवन का पल पल खुशी में बिताऊं, और कर रहे हैं ऑपोजिट. क्यों? क्योंकि अटेंशन नहीं है उस तरफ. तो जैसे आप अपनी डायरी को टिक करते जाते हैं कि 9 to 10 ये काम हो गया, 10 to 11 ये काम हो गया, तो सेकंड कॉलम को भी चेक करें कि वो 9 to 10 आप जो अनुभव करना चाहते थे, खुशी का, स्टेबिलिटी का, वो किया या सिर्फ काम किया. और काम के साथ इधर फीलिंग दर्द वाली तो नहीं क्रिएट हो गई कहीं. लेट्स से आपका कल बच्चों के साथ कुछ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो गया, या बच्चे आपकी बात नहीं मान रहे हैं, या बच्चों की स्टडी आपके लिए कंसर्न बनी हुई है एंड इट्स देयर ऑन योर माइंड, या आपके घर में फैमिली में कोई किसी की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, इट्स ऑन योर माइंड. अब आप काम तो कर रहे हैं, आप टिक करते जाएंगे, ये काम हुआ, ये काम हुआ. मन की स्थिति क्या थी पूरा दिन, हम ये सारा काम क्यों कर रहे हैं, हम जीवन में खुश रहना चाहते हैं. सिर्फ काम किया, काम किया, काम किया, लेकिन सारा दिन दर्द में बीता, हाउ फेयर इज इट. क्योंकि डे बाय डे फिर जीवन ऐसे तो बीत ही रहे है. फिर पूछो कैसे चल रहा है, कहेंगे चल रहा
0: है,
1: चल रहा है. एंड देन समवेयर जो एक बहुत डीप रूटेड सभी के अंदर आज सेट होता जा रहा है कि दिस लाइफ इज नॉट वेरी एंजॉयबल, इट इज मोर लाइक चल रहा है. इट्स मोर लाइक एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसको हम सिर्फ पूरा करते जा रहे हैं, और उसका रीजन सिर्फ एक है कि हम इस तरफ ध्यान नहीं दे रहे. इट्स नॉट दैट खुशी इम्पॉसिबल है, इट्स वेरी मच पॉसिबल. और इसीलिए हर एक के अंदर ये डिजायर है कि मैं खुश रहूं, लेकिन ध्यान नहीं देंगे तो

0: नहीं आपसे मेडिटेशन आगे हो रहा, परमात्मा से भी अभी तक कनेक्शन नहीं जुड़ रहा, अपना दिन तो प्लान कर सकते हैं ना, दिन की प्लानिंग, लेकिन प्लानिंग इन टर्म्स ऑफ आज मुझे कैसा फील करना है पूरा दिन। तो वो थॉट हम सुबह सुबह क्रिएट करते हैं कि मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूँ, चाहे आज कोई भी परिस्थिति मेरे सामने आ गई, आई विल क्रॉस इट विद स्टेबिलिटी, आई एम पावरफुल, यू नो दिस इज अ थॉट आई हैव टू कीप गिविंग माई सेल्फ। फिर सुबह सिर्फ दिया, लेकिन फिर सारा दिन फिर सिचुएशन के प्रभाव में आ गए, इसलिए वो एक घंटे के बाद एक मिनट, वो बहुत बहुत वैल्यूबल है। सो वो एक मिनट का जो इन्फ्लुएंस है वो आपके नेक्स्ट आवर पर भी प्रभाव पड़ता है। अगर हम ये एक एक मिनट निकालें हर घंटे के बाद, तो हम सारा दिन हमारी स्थिति कैसे रहेगी? और फिर मोस्ट इम्पोर्टेंट, शाम को घर पहुंचेंगे तो कैसी स्थिति
1: हम वो उस हालत में नहीं होंगे जिसमें हम थके हुए होते। इनफैक्ट फिजिकली हम जितना भी थके हुए हों, हम इमोशनली और मेंटली इतने ड्रेन्ड आउट होते हैं जब
0: एक्चुअली फिजिकली हम बहुत ज्यादा नहीं थकते। आज क्या हमारा वायुमंडल है, अच्छे अच्छे हमारे ऑफिस हैं, एसी गाड़ी में हम ऑफिस जाते हैं, एसी ऑफिस में हम बैठे हैं, कंफर्टेबली बैठे हैं, कोई फिजिकल तो बहुत ज्यादा वर्क नहीं कर रहे हैं। ये जो थकावट की फीलिंग है, इट्स मोर हियर, क्योंकि इमोशनली और मेंटली हम थोड़ा सा ड्रेन आउट हो जाते हैं, क्योंकि एनर्जी की वेस्टेज बहुत हो रही है, क्योंकि नेगेटिव और वेस्ट थॉट्स बहुत सारे क्रिएट हो रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा कहाँ वो एनर्जी डिप्लीट होते जा रही
1: है। सर शिवानी, वी शुड ट्राई टू टेल एवरीवन, हम सब आज संकल्प करें। मैं तो आज अभी इस एपिसोड के बाद एक घंटे के बाद का अलार्म लगाने वाली हूँ, क्योंकि ये ट्राई करके देखे कि एक हफ्ता कम से कम हर एक घंटे बाद हम ये एक पॉजिटिव थॉट क्रिएट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि उस एक मिनट में हमने परिस्थिति का चिंतन नहीं करना है, हमने उस एक घंटे को भी नहीं देखना है,
0: अपने दर्द का भी चिंतन नहीं करना।
1: वो वही तो कर रहे होते हैं, तो ना परिस्थिति का चिंतन, ना अपने दर्द का चिंतन, और ना ही एक घंटे को भी देखें, सिर्फ अपने आप को ये कहें वो जो पॉजिटिव थॉट्स हैं कि मैं कौन हूँ, और अपनी वो स्ट्रेंथ जो है वो अगले अगले घंटे के लिए भी अपने आप को।
0: इट्स बेसिकली लाइक अ चार्जिंग। जैसे आजकल हम लोग मोबाइल यूज करते हैं, तो पहले मोबाइल सुबह चार्ज कर लेते हैं, लेकिन वो सारा दिन में तो डिस्चार्ज हो जाता है। तो अब हम लोगों ने क्या करना शुरू किया, चार्जर अपने साथ रखना शुरू किया ना। अब आप कहीं भी जाओ, हर जगह चार्जर लगे हुए हैं, विच इज वेरी गुड। ऑफिस में भी आप जाओ, चार्जर भी लगा है, फोन उसी के साथ लगा हुआ है। तो शाम को जब आप घर पहुंच रहे हैं, आप घर ड्राइव करके जा रहे हैं, आपका फोन फुल्ली चार्ज है। पहले क्या होता था, घर पहुंचने के टाइम वापसी पे वो फोन कई बार डिस्चार्ज हो जाता था, तो जब आपको चाहिए था वो, आप कहीं रास्ते में अटक गए, यू डिडंट हैव इट। सिमिलरली हियर, अगर आप सारा दिन में बहुत डिस्चार्ज हो गए, शाम को जब आपको वो एनर्जी चाहिए, आप घर पहुंचे हैं, आप अपनी फैमिली के साथ हैं, सिर्फ वही टाइम है जो आप अपनी फैमिली के साथ बिताते हैं, उसमें हम हमेशा हर रोज कैसे होते हैं, डिस्चार्ज। दैट इज द ओनली रीजन जो हमारे आज घर पे रिलेशनशिप्स थोड़े से ऊपर नीचे हो रहे हैं, क्योंकि हम सभी जब घर पहुंचते हैं, सिर्फ एक व्यक्ति नहीं होता, एवरी मेंबर ऑफ द फैमिली वो शाम तक डिस्चार्ज की स्थिति में होता है।
1: और इनफैक्ट जो घर पे हैं
0: वो भी
1: डिस्चार्ज हो चुके होते हैं। एंड देन दे से कि मैं सारा दिन का थका हारा आया हूँ, वो कहते हैं कि मैं सारा दिन वेट करती रही, मैं सारा दिन घर पे बैठी रही, तो वो वहाँ वहाँ टकराव जो है वो
0: अब तो पूरी इवनिंग जो है ना आपकी 7 to 10 या जितना भी टाइम आप घर पे हैं वो डिस्चार्ज स्थिति में है। फिर आप रात को सोए, चार्ज हुए, सुबह आप फ्रेश है, आप ऑफिस चले गए, फिर घर पे आए, फिर डिस्चार्ज है। तो बेसिकली मेजोरिटी लोगों के लिए आज जितना टाइम परिवार वालों के साथ है, उस समय हमारी स्थिति कैसी है,
1: बहुत थकी हुई होती है। वेरी ट्रू।
0: तो द एनर्जी विच वी हैव टू एक्सचेंज विद फैमिली, वो कहीं ना कहीं क्लैश कर रही है। और फिर अगर मेरी आज इवनिंग अच्छी नहीं बीती, या कुछ ना कुछ हर टाइम एक कॉन्फ्लिक्ट सा बहुत ज्यादा हो रहा है, तो उसका इफेक्ट मेरे ऑफिस पे पड़ेगा कि नहीं कल सुबह?
1: मैं ऑलरेडी थकी हुई होंगी, ऑलरेडी मेरा लड़ाई हो चुकी होगी, क्योंकि मैं थकी हुई थी और थकी हुई होती गई, अगले दिन मॉर्निंग फिर मेरा ये।
0: आप किसी से भी आज पूछो आपकी लाइफ में प्रायोरिटीज क्या है, तो ऑर्डर पता है क्या देंगे, वर्क, फैमिली एंड सेल्फ। पहले मेरा काम, फिर परिवार, फिर मैं खुद। अब काम इतना ज्यादा टाइम ले रहा है, आज कहेंगे 10 घंटे 12 घंटे काम में चलेंगे, फैमिली को ही हम 2-3 घंटा दे पाते हैं, तो वो थर्ड स्टेप तक हम पहुंचते नहीं,
1: अब तक हम सो जाते हैं।
0: इसलिए कहेंगे सेल्फ के लिए टाइम नहीं है, क्योंकि ये दोनों क्षेत्र बहुत ज्यादा टाइम ऑलरेडी ले रहे हैं। व्हाट इज द ऑर्डर, वर्क, फैमिली, सेल्फ, क्या ये राइट ऑर्डर है हमारा? तो अगर हम थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्ट करें, तो द ऑर्डर शुड बी सेल्फ, फैमिली, वर्क। सेल्फ हेल्प

0: होगा तो फैमिली में रिलेशनशिप्स अच्छे होंगे. फैमिली हेल्दी को छोड़कर आप ऑफिस जाएंगे तब जाकर आपका वहां कुछ मन लगेगा, आप ठीक से काम करेंगे. सेल्फ दर्द में है तो रिलेशनशिप्स घर पे थोड़े से ऊपर नीचे हुए. अब इस दर्द में इस परिवार को छोड़ के ऑफिस पहुंचते हैं तो ऑफिस पहुंच के मन कहाँ होता है, ये हुआ ये हुआ ये कॉन्फ्लिक्ट है पता नहीं क्या. तो आर यू डूइंग जस्टिस टू वर्क ऑल्सो? तो अगर स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन नहीं है आप परिवार के साथ भी जस्टिस नहीं कर सकते और काम के साथ भी जस्टिस नहीं कर सकते. हाँ बहुत सारे घंटे स्पेंड कर सकते हैं वहां
1: लेकिन आपका बिल्कुल निकलेगा नहीं, कुछ भी आउटपुट नहीं आएगा.
0: एक्चुअली पहले वर्क को कर दिया, सेल्फ के ऊपर टाइम नहीं दिया तो उस वर्क में ज्यादा घंटे स्पेंड करने पड़ रहे हैं. क्योंकि दर्द में आप काम करो और हेल्दी स्थिति में काम करो फर्क.
1: ऑफ कोर्स आप इतने बोझिल, इतने हैवी, इतने थकान से भरे हुए होते हैं. इनफैक्ट यहाँ से शिवानी एक और बात कि बार बार हम ये कहते हैं कि मैं काम किसके लिए कर रहा हूँ.
0: काम परिवार के लिए
1: प्ली,
0: कर रहा हूँ ना.
1: प्ली ये होता है. जब भी आपने ये कहा तो मेरे को बिल्कुल सामने ये याद आ गई कि वर्क को हमने सबसे पहले नंबर पर रखा है लेकिन हमारी प्ली ये होती है
0: कि फैमिली के
1: कि
0: लिए
1: मैं तुम्हारे लिए तो काम.
0: एब्सोल्युटली. लेकिन फैमिली को क्या चाहिए आपसे? फैमिली को सिर्फ धन नहीं चाहिए आपसे, चाहिए क्या आपसे? खुशी चाहिए, घर में प्यार चाहिए. आज मेहनत तो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है लेकिन खुशी का पैरामीटर, घर में आपस में विश्वास का पैरामीटर, प्यार का पैरामीटर, वो तो कहीं ना कहीं उल्टा और ही घटता जा रहा है जस्ट बिकॉज द प्रायोरिटी वॉज नॉट राइट. एंड जब हम ये प्रायोरिटी फिक्स करते हैं इट इज नॉट इन टर्म्स ऑफ घंटे कि भाई वर्क को 14 घंटे दिए तो सेल्फ को 2 घंटे देना, नहीं. इट्स जस्ट दैट प्रायोरिटी राइट होनी चाहिए कि जब तक मैं हेल्दी नहीं हूँ मेरी फैमिली हेल्दी नहीं हो सकती, और जब तक मैं और फैमिली हेल्दी नहीं है मैं काम के क्षेत्र में भी जस्टिस नहीं कर सकता. तो मुझे पहले अपने को हील करना पड़ेगा. मैं ठीक हो गया, परिवार अपने आप ठीक हो जाएगा, परिवार ठीक होकर मैं ऑफिस गया. नाउ आई विल बी डूइंग जस्टिस टू वर्क एंड जितना काम मुझे करना है 100% गारंटी इट विल गेट डन इन लेसर अमाउंट ऑफ टाइम. हम काम कर रहे हैं, यहाँ से प्रोजेक्ट कर रहे हैं, पेपर पे हैं, कंप्यूटर पे हैं, मन कहाँ पर है?
1: वहाँ क्या चल रहा होगा?
0: अगर घर पे नहीं भी है ऑफिस में कोई ना कोई बात हो जाती है सारा दिन और मेरे अंदर ताकत तो है नहीं क्योंकि मैंने अपने ऊपर काम नहीं किया, तो काम भी कर रहे हैं मन ऐसा क्यों ये क्यों, आगे कैसे होगा, मेरे से होगा कि नहीं. सो एम आई डूइंग फुल जस्टिस टू वर्क? इवन काम के क्षेत्र में फुल कॉन्सेंट्रेशन के लिए यहाँ पे स्टेबिलिटी चाहिए. लेकिन वो स्टेबिलिटी तब होगी जब सेल्फ पे काम किया होगा. लेकिन हम कह रहे हैं नहीं हमारा सारा टाइम काम पे है. तो कहीं ना कहीं अपने जीवन की जो प्रायोरिटीज होती हैं वो राइट सेट करनी है. पहले मैं ठीक तो परिवार ठीक है फिर अब मैं काम पे जाता हूँ. देन एवरीथिंग विल बी मोर यू नो फ्लोइंग एंड वेरी स्मूथ एंड आई विल एंजॉय एवरीथिंग आई एम डूइंग. नहीं तो मैं तीनों को एंजॉय नहीं कर रहा, तीनों जगह ही कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा ऊपर नीचे.
1: पर मजे की बात तो ये दिख रही है कि सेल्फ पे काम करने के लिए आपको उतने 14 घंटे नहीं चाहिए.
0: एक मिनट एक घंटे के बाद एक मिनट. इट जस्ट दैट इट लुक्स टू सिंपल लेकिन बहुत पावरफुल है, करके देखना पड़ेगा. वो सुनते में इतना इजी लगता है कि
1: हमने कर लिया.
0: हाँ एंड मेजोरिटी बोलते हैं हाँ हम तो जरूर कर लेंगे कर लेंगे, लेकिन वो करना पड़ता है, विधि पूर्वक करना पड़ता है. कई कॉर्पोरेट हाउसेस में जब उन्होंने इस तरह के प्रोग्राम्स किए हैं ब्रह्मा कुमारीज के साथ, उन्होंने अपने ऑफिस के अंदर ये कल्चर इंट्रोड्यूस कर दिया है कि ऑफिस में जैसे स्पीकर्स लगे हुए हैं एंड लिटिल लाइट म्यूजिक नो मेडिटेशन म्यूजिक हर घंटे के बाद बजता है एक मिनट के लिए. रिमार्केबल रिजल्ट, पूरा एनवायरमेंट ऑफिस का ठीक हो जाता है. एंड क्योंकि लोगों को एक रेस्ट मिलता है, यू नो इवन ऑफिस में ऐसे लोग हैं जिनको ये नहीं पता कि उनको वो एक मिनट में क्या क्रिएट करना है पॉज, उनको वो भी नहीं मालूम, उनको कुछ नहीं मालूम, सिर्फ वो म्यूजिक बजता है एंड दे जस्ट स्टॉप एंड रेस्ट. वो रेस्ट भी बहुत काम कर जाता है.
1: आई नो जिस भी चीज में है आप. इनफैक्ट अगर हम देखें
0: क्योंकि वो 1 मिनट वो डिटैच्ड ऑब्जर्वेशन भी हो जाता है
1: कि सब चीजों से एक मिनट का.
0: जैसे स्कूल में बच्चे हैं आपका एक लेक्चर के बाद दूसरा लेक्चर होता है, टेक दैट 1 मिनट. नहीं तो वो एक मिनट जो एक टीचर क्लास से बाहर जाएगी और दूसरी टीचर आएगी, अगर वो एक मिनट आप स्टेबल हो जाएंगे आप पिछले सेशन को भी ठीक से अब्सॉर्ब कर लेंगे और नेक्स्ट सेशन के लिए रेडी होंगे. नहीं तो एक लेक्चर के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, जो एक एक टीचर आकर समवेयर हियर इट हैज नॉट गॉट अब्सॉर्ब्ड प्रॉपरली और फिर घर जाके बहुत स्टडी करना पड़ता है फिर से. सो दैट 1 मिनट जो बीच में मिलता है इट्स वेरी वैल्यूएबल, इसको करके देख सकते हैं।
1: तो सिस्टर शिवानी, आज जो हमारे सामने बात आई कि एक मिनट का रेलेवेंस को हमने सोचा, और अभी तक हम ये कहते थे कि एक मिनट क्या है, आपको हम दूसरों के साथ कितना वक्त गुजार रहे होते हैं, तो वो एक मिनट जो मुझे एम्पावर करेगा, और उसमें भी बहुत जो सही बात यह है कि हम ये सोचते हैं कि हमें पता नहीं क्या सोचना है, इट्स ओनली कि हमें वो पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट करके अपने आप को एम्पावर करना है, और वो ट्राई करके देखें। बार बार हमारी कोशिश रहती है हम कहें कि अनुभव से बड़ा जो है वो कोई बड़ा एक्सपीरियंस नहीं हो सकता, मतलब जब तक हमें अपने आप को देखना है कि हम कैसे उससे गुजरते हैं। आज की इस पूरी बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। तो चलिए एक बार फिर बॉल हमारे कोर्ट में है, हमें तय करना है कि हम अपनी जिंदगी को कैसे लेकर जाना चाहते हैं, एंड लेट्स ट्राई इट आउट। मैंने तो अब तय कर लिया है कि मैं इस एपिसोड को खत्म करते ही जरूर अलार्म लगाऊंगी एक घंटे बाद, सिर्फ एक मिनट। एक मिनट, आप किसी भी जगह पे हो, आप अपने घर पे हो, हाउस वाइफ हैं, आप ऑफिस में काम करते हैं, और इनफैक्ट जहां हमें परिवर्तन आने लगेगा आसपास का माहौल अपने आप परिवर्तित होगा, और उसमें भी हमें ये याद रखना है कि हमने थॉट क्या क्रिएट करना है। लेट्स ट्राई इट आउट, और आपके जो भी एक्सपीरियंसेस हो वो आप हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। आज आपसे हम यहीं विदा लेना चाहेंगे, लेकिन आपको बताएंगे कि आप हमसे फोन पर या फिर ईमेल द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर्स है 0999-344-555, 0999-344-666, 0987-366-555, 0999-744-555। हमारा ईमेल आईडी है omshantistudio@bkmail.org। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी में आज इतना ही। सेल्फ मैनेजमेंट पर बहुत सी बातें हमारे सामने आई हैं, और आज हमने एक मिनट के रेलेवेंस को समझा है। प्रायोरिटाइज करना है अपने आप को, सेल्फ सबसे पहले, फैमिली उसके बाद, और उसके बाद वर्क, तो डेफिनेटली काम तो हमारा होगा ही। तो आज आपसे विदा लेते हैं। ओम शांति।

खुशियों की फुहार लाएगी हर दिन त्योहार। अब हर दिन बजेंगे मन में ढोल, अपने पन के रंग में अब रोज रंगेंगे, उड़ान भरेंगे सपनों के रॉकेट में, सिर्फ पुनेरी आवाज में 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

सुनहरी आवाज 107.8 FM वर्ल्ड रिन्यूअल स्पिरिचुअल ट्रस्ट का सामुदायिक रेडियो स्टेशन। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: जब तक हम चाहिए चाहिए करते हैं तब तक हम औरों पे डिपेंडेंट हैं। अब हमें समझ में आ गया कि हम खुद भरपूर हैं, हमें उसका सिर्फ ध्यान रखना है। जैसे ये कप है, अब अगर मुझे लगे कि ये जो मेरा कप है ये खाली है, तो आई विल कीप टेलिंग यू कि इस कप को भरिए। तो आई एम डिपेंडेंट, जब आप भरेंगे तब, और अगर आप भर पाए, और अगर आपके पास है उसको भरने के लिए, यू नो यू हैव टू हैव दैट लव टू गिव इट टू मी, नहीं तो आई कैन कीप वेटिंग टिल द एंड ऑफ माई लाइफ फॉर पीपल टू फिल माई कप, इट विल नेवर गेट फिल्ड। एंड राजयोग से हमने ये रियलाइज किया कि मेरा जो कप है ये ऑलरेडी भरा हुआ है, मैं हूं ही प्रेम स्वरूप। अब मुझे सिर्फ ध्यान रखना है कि इसको बहुत संभाल के चलना है, कि आपका कोई शब्द, कोई और परिस्थिति मुझे उस व्यर्थ चिंतन की तरफ ना ले जाए जिससे मेरी खुशी गायब हो। हम यू वर्ड भी ये यूज करते हैं कि मेरी खुशी को वो छीन गई, मतलब वो मेरे पास ऑलरेडी थी। उतना ध्यान हमें रखना है कि इस भरे हुए कप को अंदर भरा हुआ ही रहने देना है। जब तक उसको खाली समझेंगे मांगते रहेंगे, एंड दैट जर्नी जस्ट गोज ऑन लाइक दैट।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM, खुश रहो खुशियां बांटो।
2: हुरिया।

0: ओम शांति। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में आज फिर आप सबका स्वागत। जिंदगी को कैसे जीना चाहिए, उन स्किल्स को हम सीख रहे हैं। इस श्रृंखला में बात हो रही थी थॉट्स की, यानी कि हमारे ही विचार, जिन्हें अभी तक हमने ये समझा कि हर सिचुएशन पर डिपेंडेंट है और कभी भी आ जाते हैं, लेकिन अब धीरे धीरे समझ रहे हैं, सजग हो रहे हैं, अवेकन हो रहे हैं कि ये आते हैं तो कौन क्रिएट कर रहा है। बाहर से नहीं आ रहे, बल्कि वो सिचुएशन है जो हम याद करते हैं या हमारे सामने आ रही है और फिर हम उन थॉट्स और फीलिंग्स को क्रिएट करते हैं। अगर मैं क्रिएटर हूँ तो मैं चेंज भी तो कर सकता हूँ, कैसे करना है ये जानेंगे। हमारे साथ हैं साइकोथेरेपिस्ट डॉक्टर गिरीश पटेल और हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। आप दोनों का स्वागत।
1: हम शांति।
0: डॉक्टर पटेल, इट्स क्वाइट यू नो लाइक इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट कि मैं खुद क्रिएट कर रहा हूँ। और एक और बात जो हम पिछली कड़ी में अगर जाएं तो बहुत इम्पोर्टेंट हमारे सामने आई थी कि जितने भी प्रॉब्लम्स रही हैं, जितने भी अनरिजॉल्व्ड इश्यूज हैं मेरी जिंदगी में, वो रिजॉल्व कोई व्यक्ति है या नहीं, वो सिचुएशन दोबारा होती है या नहीं, मैं कर सकता हूँ। इट्स अ बिग एश्योरेंस। आगे बढ़ते हैं। अब मैं थोड़ी थोड़ी सजग होनी शुरू हुई अपने शरीर के बारे में भी, बॉडी के बारे में भी और थॉट्स के बारे में। आगे क्या करें?
1: मूल बात तो ये समझने की है कि थॉट्स का महत्व क्या है। थोड़ा सा मैंने सोचा है कि विचारों पर विचार किया है ना, थॉट्स ऑन थॉट्स। हम सब ये तो जानते हैं कि एक दिन में हम 30,000 से 60,000 विचार करते हैं, परंतु आमतौर पर हम ये सोचते हैं कि भी विचार कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। परंतु सबसे पहली मुख्य बात तो यह है कि विचारों में भी जीवन है। थॉट्स ऑल्सो हैव अ लाइफ, तो इसलिए उसको कोई ऑर्डिनरी चीज हम न समझे।
0: थॉट्स हैव अ लाइफ,
1: लाइफ आई फील, क्योंकि आत्मा से निकले विचार। तो सोल इज एनर्जी, तो उसकी थोड़ी तो एनर्जी उसमें भी होगी। नहीं, एक सचमुच एक सटल एनर्जी है थॉट्स भी, और वो थॉट्स जैसे है वैसे ही वातावरण भी बनता है, और थॉट्स उस चीज को अट्रैक्ट करते हैं जो आप सोच रहे हैं, उसी प्रकार के प्रकंपन वातावरण में फैलते हैं और फिर उस चीज को आप अट्रैक्ट करते हैं। इसलिए कहा गया है कि यू ग्रेविटेट इन द डायरेक्शन ऑफ योर डोमिनेंट थॉट्स। जो आप बार बार सोचते हो उसी दिशा में आप आगे बढ़ते हो।
0: तो मतलब हम बार बार कई बार डर रहे होते हैं तो वो हो भी सकता है?
1: बिल्कुल हो सकता है ना,
0: क्योंकि हम बार बार अगर आप थॉट्स ही तो क्रिएट कर रहे हैं ना, हमें डर है, फियर है, तो वो हम संभव भी करते हैं।
1: हाँ, वो सचमुच होता है। आज व्यक्ति बीमारी के बारे में सोचता है और वैसे बीमार होता है। ये भी माना गया है कि आज लोग एक्सीडेंट्स के बारे में जो बार बार सोचते हैं वो सचमुच एक्सीडेंट से मीट करते हैं। नहीं, उसी प्रकार का, क्योंकि थॉट्स आर रियल, वो वातावरण में उस चीज को क्रिएट करते हैं। कहते हैं कि थॉट्स हैव अ मैग्नेटिक पावर, जैसे मैग्नेट आयन को अट्रैक्ट करता है, ऐसे थॉट्स है वो परिस्थिति को अट्रैक्ट करते हैं। और जो महत्वपूर्ण बात समझने की है,
0: तो पासा पलट दिया। आपने तो हमारे पर डाल दिया सारा कुछ।
1: नहीं, सबसे पहले तो ये महत्वपूर्ण बात। दूसरी बहुत ही जरूरी चीज है कि जो भी आपको फीलिंग्स होती है, अच्छी या बुरी, आप दुख की फीलिंग करते या सुख की फीलिंग करते, उसका फाउंडेशन आपके थॉट है। कई लोग कहते ऐसे मैं गुस्से में आ गया, ऐसे मैं डिप्रेस्ड हो गया, एटलीस्ट सबकॉन्शियसली तो थॉट था।
0: पर डॉक्टर साहब, पता नहीं चलता। अगर आप मतलब बार बार हमने इस बारे में बात की है कि आप थॉट्स को देखो, थॉट्स के प्रति सजग रहो। अब जैसे अभी मैं क्या सोच रही हूँ वो तो मैं सजग हो जाऊंगी कि ठीक है मैं यहाँ प्रोग्राम में बैठी हूँ, इसके बारे में सोच सकती हूँ। लेकिन जैसे ही वो फीलिंग आई, वो जो बिल्कुल ठीक है कि जैसे डिप्रेशन आ जाता है, एकदम से हार्ट सिंक करने लगता है, दुख आ जाता है या गुस्सा चढ़ना शुरू होता है, उस वक्त ये तो समझ में नहीं आता कि हमने क्या सोचा था कि गुस्सा आया। गुस्सा होने के बाद हमें वो थॉट्स दिखने शुरू हो जाते हैं कि गुस्सा आया है, अब मुझे गुस्सा चढ़ रहा है और चढ़ता जा रहा है या कम होगा, वो मेरे थॉट्स पे डिपेंड कर रहा है।
1: लेकिन कम से कम ये भी कि जो आपको हार्ट जैसे सिंक होने की आपने बात की, कई बार हो सकता है कि भी पता ही नहीं क्यों सिंक हो रहा है। लेकिन ये तो एक्सेप्ट करो कि भी कोई ना कोई विचार है, भले आज से 10 साल पहले जो घटना हो गई उसका कोई विचार है, एक अर्ध जागृत रूप में वो विचार आ रहा है, पर विचार जरूर है। वह जब हम एक्सेप्ट करेंगे तो फिर उसको ढूंढ भी सकेंगे। तीसरी बात है कि विचार आपके कंट्रोल में है, जो हमने पहले भी इसकी चर्चा की कि भी हम उसको चूज करते हैं। जो आमतौर पर लोग कहते हैं विचार आ गए, ऐसी बात नहीं, वह हमारे कंट्रोल में है। चौथी महत्वपूर्ण बात है कि एक एप्पल में कितने बीज आप गिन सकते हैं। मैं आपको एक एप्पल दूं, आप उसको कट कर लो, गिनती करो तो गिनती हो जाएंगे, परंतु एक बीज में कितने एप्पल गिन सकते हो?
0: नहीं, आई कांट, आई डोंट थिंक सो, नो वे, क्योंकि एक बीज से अगर कितने सारे एप्पल्स हुए तो उन एप्पल्स के भी तो कितने सारे बीज के हो सकते हैं,
1: वो भी और बात है आगे तो, लेकिन फिर भी एक बीज से हजारों एप्पल हो सकते हैं। ऐसे एक विचार भी बीज है, एक विचार आपके जीवन में बहुत आनंद भी ला सकता है, सुख भी ला सकता है, साथ साथ वही एक विचार आपको दुखी दुखी कर सकता है, न केवल आपको और हजारों लोगों को भी वह एक ही विचार दुखी कर सकता है
0: और खुशी भी
1: दे सकता है, हजारों को दे सकता है। हाँ। तो वह सीड है, मुख्य बात तो मैं बताना चाहता हूँ कि एक विचार है वह सीड है। और एक जिस पर मैंने गहराई से सोचा कि भी विचार क्या करते हैं, जैसे जब नदी बहती है जमीन से तो है ना, वो अपनी जगह क्रिएट करती है, ग्रूव्स क्रिएट करती है वास्तव में, तो ऐसे विचार भी कॉस्मोस में एक सटल ग्रूव्स क्रिएट करते हैं।
0: और अच्छा, विचारों की नदी बहती जा रही है।
1: हाँ, बस विचारों की नदी है वो वातावरण के अंदर उस प्रकार से ग्रूव्स क्रिएट करते हैं, और फिर जो सारी कॉस्मोस में एनर्जी है, जैसा आपने ग्रूव क्रिएट किया उसी प्रकार की एनर्जी वहां पर फ्लो होगी।
0: अच्छा, आकर्षित हम
1: हाँ, उसको आकर्षित करेगी। तो ना, इतना महत्व, सबसे पहले अगर इस महत्व को हम समझ ले तो फिर आगे के स्टेप्स भी सहज होंगे।
0: ओके शिवानी, विचारों का ये जो एक अननोइंगली हमने क्रिएट किया, कि जो अभी बताया डॉक्टर पटेल ने कि इट्स सो पावरफुल, मतलब वो, लेकिन अभी तक तो हम पता नहीं कितना कुछ पावरफुल क्रिएट कर चुके हैं। और जैसा कि बात ये हो रही है अगर कि हम जो क्रिएट कर रहे हैं, जो हम थॉट्स क्रिएट करते हैं, जैसा हम सोचते हैं वैसा होने भी लगता है, तो मैं तो बहुत अच्छा भी सोचते हूँ, मैं तो बहुत कुछ सोचती हूँ, वो बहुत कुछ तो नहीं होता फिर?
2: अब इसको भी चेक करना है, मैं बहुत कुछ सोचती हूँ, मैं सोचती हूँ कि मुझे इस एग्जाम में पास होना ही है, वेरी गुड थॉट, फिर मैं सोचती हूँ हो जाऊंगी ना, लेकिन तैयारी है ना मेरी पूरी, लेकिन मैंने तो तैयारी कर ली है, लेकिन आजकल ना एग्जामिनर्स पे बहुत डिपेंड करता है, वो एग्जामिनर कैसा होगा, उसका मूड कैसा होगा, वो मेरी फेयर चेकिंग करेगा या नहीं करेगा, ऑल दीज आर ऑल्सो थॉट्स ना, नॉट दैट ओनली वन थॉट। नॉर्मली क्या होता है, हम कहते हैं मैंने पॉजिटिव थॉट क्रिएट किया है, हाँ, कि मुझे ये करना है, ये चाहिए, हम वो नहीं सोचते कि उसके साथ साथ कई बार हमने बहुत सारे ऑर्डिनरी थॉट्स और कई बार तो थोड़े नेगेटिव फियर के थॉट्स भी क्रिएट कर लिए, तो वो भी तो एनर्जी है। सो दैट्स वाई समटाइम्स वी आर नॉट एबल टू अचीव इवन इन द आउटर वर्ल्ड जो हम अचीव करना चाहते थे, बिकॉज एनर्जी बहुत सारी फ्लो की है। अगर आप कोई एक थॉट को ले लें और उस पर ही अपनी एनर्जी को फोकस करें, उसके अंदर कोई अडल्ट्रेशन नहीं होनी चाहिए।
0: अब एक ऐसे किस, सी इट कम्स एज अ फैमिली, सी थॉट्स विल ऑलवेज कम, एक थॉट थोड़ा रह पाएगा,
2: एक थॉट इन द सेंस आपकी क्वालिटी ऑफ थॉट क्या, अगर आपने क्वालिटी ऑफ थॉट क्रिएट किए सक्सेस की, जो भी आप कार्य करने वाले हैं उसमें सक्सेस, फिर सक्सेस के साथ फियर, फियर के साथ डाउट, डाउट के साथ एंग्जाइटी, ये सारी फैमिली नहीं आनी चाहिए ना, एक ही परिवार को चूज करो, एंड दैट परिवार शुड बी द पॉजिटिव सक्सेसफुल हैप्पी परिवार, चूज दैट, डोंट मिक्स द टू थिंग्स। एंड क्योंकि बहुत समय से आदत है ज्यादा नेगेटिव सोचने, नहीं, व्हाट इज हैपनिंग, द रिस्क क्या है, सी पॉजिटिव थिंकिंग आज हम लोग अवेयर हो रहे हैं तो हम धीरे धीरे कल्टिवेट कर रहे हैं, नेगेटिव थिंकिंग सो कॉल्ड ऑटोमेटेड मोड में गई हुई है कि पता ही नहीं चल रहा, आ रही है, तो हम ये नहीं रियलाइज करते कि हम एक पॉजिटिव थॉट तो एनवायरमेंट में भेजते हैं, लेकिन कई बार उसके साथ जो नंबर ऑफ नेगेटिव थॉट्स है वो ज्यादा होती है वो पॉजिटिव थॉट से। सो आई हैव टू बी अवेयर ऑफ एवरी थॉट दैट आई एम क्रिएटिंग। जैसे गिरीश भाई ने कहा, ठीक है, हो जाएगा, सब ठीक चल रहा है, होगा या नहीं होगा, ठीक मैं बोल तो रहा हूँ लेकिन क्या सचमुच ये हो जाएगा? देन व्हाट हैपेंड?
0: बट डाउट तो रहता ही
1: है। शिवानी ने बहुत अच्छा कहा कि वो एक थॉट है कि एग्जाम में मैं पास हो जाऊंगा, लेकिन डाउट, एंग्जाइटी, फियर, उसके बदले पॉजिटिव फैमिली क्या हो कि आई कैन डू इट, मेरे में वो क्षमता है।
0: लेकिन फिर मैं अपने आप को झूठ देखे, एक बात है, फिर मुझे कई बार लगता है कि मैं अपने आप को गलत फहमी में रख रहा हूँ कि मैं अच्छे नंबरों से पास हो जाऊंगा, लेकिन मुझे अवेयरनेस है कि ये सारी चीजें भी तो होती हैं, एग्जामिनर जो है ये मेरे पास नॉलेज, ये भी तो, जैसे आपने कहा कि नॉलेज से आप, जैसे आपको नॉलेज मिलती है आप उस पर काम करना शुरू करते हैं, आई हैव द नॉलेज कि एग्जामिनर जो है वो सही तरीके से कई बार नहीं देखते हैं, एग्जामिनर जो है या बाकी सारी चीजों के बारे में भी नॉलेज जो नेगेटिव है. सो आज मैं अपने आप पे ये थॉट तो क्रिएट किया कि मैं पास हो जाऊं, मुझे अच्छे नंबर लाने हैं, मुझे मार्क्स आने, मैं मेहनत भी कर रहा हूँ. लेकिन उसके बाद जो मेरे फियर्स हैं, अगर मैं उनको वो आते मतलब जो मैं क्रिएट करूं तो वो नहीं क्रिएट करूं तो मैं अपने आप को धोखे में भी तो रख रहा हूँ ना.
1: पॉसिबिलिटी थॉट है कि भी आप जो सोच रहे हो पॉसिबिलिटी है, लेकिन हम अगर ये सोचे कि मैं अगर थॉट करूंगी कि मैं पास होने वाले हूँ, अच्छे अच्छे मार्क आने वाले, यहाँ तक मनोविज्ञान में मानने लगे कि आपका पेपर ऐसे ही एग्जामिनर के पास जाएगा, वो आपको अच्छे नंबर देगा.
2: एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली. जैसे उन्होंने कहा कि जो आप थॉट क्रिएट करेंगे वो वाइब्रेशन है, वो एनवायरमेंट में है, वो अट्रैक्ट करेगी उस सिचुएशन को आपके तरफ. अभी पर्सनली आई टेल यू, एग्जाम तो नहीं आते अभी कोई ऐसे, लेकिन सपोज आई गो टू अ शॉपकीपर जहाँ सब्जी तोली जा रही है. कई बार कुछ लोग सब्जी अपने तुलवा रहे हैं लेकिन ये तो करते हैं चीटिंग, इनका वेट सिस्टम पता नहीं ठीक है कि नहीं है, ये पता नहीं अच्छी क्वालिटी की सब्जी दे रहा है कि नहीं. दैट पर्सन इज बाउंड टू चीट
0: यू. नाउ
2: जस्ट गो नेक्स्ट टाइम एब्सोल्युटली क्लीन, एब्सोल्युटली. चाहे आप वो शॉपकीपर के पास हैं, चाहे आप टैक्सी में बैठे हैं, कोई आप ऑटो रिक्शा में, हम बैठते ही हैं ऑटो रिक्शा में. आजकल के तो ऑटो वाले सब ऐसे ही हैं, सब चीट करते हैं, किसी का मीटर भी ठीक नहीं हो. यू नो वी आर सो मच फिल्ड विद ऑल दिस नेगेटिव एनर्जी. वो आप यहाँ बैठे हैं, वो यहाँ बैठा है, आप उसके प्रति ऐसी सारी एनर्जी क्रिएट कर रहे हैं, वो उस तक पहुंचेगी, उसने चीट करना है फिर. अब आप बैठे एक डिफरेंट थॉट प्रोसेस के साथ, बट डोंट मेक इट प्योर 100% क्लीन. ये समझ में आ गया कि जैसी थॉट मैं क्रिएट करूंगा आई ग्रेविटेट दैट सिचुएशन टुवर्ड्स मी.
0: बट उसकी मैं उसकी नेचर को बदल सकता हूँ. अगर
2: आई ग्रेविटेट दैट सिचुएशन टुवर्ड्स मी मतलब लोगों की सोच और परिस्थितियां मेरी सोच के अनुसार मोल्ड होती जाएंगी ना. सिचुएशन नहीं तो है ही क्या, बिना लोगों के तो कोई सिचुएशन नहीं है.
0: अभी तो मैं एक तरफ ये कह रही थी कि लोग तो कभी चेंज नहीं होते, एक तरफ आपने बड़ी मुश्किल से हमें ये समझाया.
2: हम पहले ये सोच रहे थे कि लोग चेंज हो जाए.
0: हाँ,
2: सो वी वर क्रिएटिंग अ नेगेटिव थॉट फॉर देम. अगर मैं आपके लिए ये सोचूं कि ये चेंज हो जाए, मतलब मैं आपके प्रति क्या सोच रही हूँ,
0: ये अच्छी नहीं है अभी.
2: सो व्हाट क्वालिटी एनर्जी इज दिस. तो जैसे ही मैंने आपको नेगेटिव भेजी, रिटर्न आपसे भी क्या आएगा, ये चेंज
0: तो
2: हो जाए.
0: हाँ, मैं तो कभी चेंज नहीं हूँ.
2: हाँ, सी दैट इज द एनर्जी. तो अगर मैं आपके चेंज होने के बारे में न सोचकर अपनी थॉट्स को थोड़ा सा प्योरिफाई करने लगू, क्लीनिंग करनी शुरू, तो मेरे से आपको कौन सी एनर्जी जाएगी, पॉजिटिव जाएगी. जैसे ही मेरे से आपको पॉजिटिव जाएगी, धीरे धीरे आपसे क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी. एंड आई विल थिंक यू हैव चेंज्ड, बट एक्चुअली यू हैव नॉट चेंज्ड, एक्चुअली फर्स्ट आई हैव चेंज्ड.
0: बट देन यू सी योर चेंज वाज एबल टू चेंज मी
2: बिकॉज इट्स वाइब्रेशन. जो एनर्जी ऐसे जाएगी वही एनर्जी ऐसे आएगी. हमें मुझे जब अपनी थॉट्स की अवेयरनेस नहीं थी, जो हम शुरू से देख रहे हैं अवेयरनेस नहीं है, तो मुझे एनर्जी सिर्फ ऐसे आती हुई दिखाई दे रही थी. ये मेरे से कैसे बात करती है, ये मेरे से कैसे बिहेव करती है, ये इक्वेशन नहीं पता था कि ये उसी का रिटर्न है जो यहां से जा रहा है. यहां से आती हुई एनर्जी को हम नहीं चेंज कर सकते. हमारी सारी स्ट्रगल किस पे थी, आपने कहा मेहनत क्यों लग रही है, हम वो आते हुए तीर को चेंज करना चाहते थे, चेंज चेंज अपने डायरेक्शन को चेंज कर लो. नहीं, इस तरफ नहीं चेंज होगा. आई चेंज व्हाट आई सेंड, that I have to change and very powerful. ये नहीं एक positive thought उसके साथ 10-15 negative thought, then तो कौन से तीर फेंके. फिर वो ही वापस आएंगे, फिर कहेंगे मैंने तो अच्छा सोचा था उनके बारे में. चेक करना कितना अच्छा सोचा था और कितना कुछ कुछ और सोचा था.
1: इट विल दो बातें इसके अंदर, एक तो एक जब हमने टैक्सी की बात की ना कि भी टैक्सी वाला ऑटो वाला आप अच्छी वाइब्रेशन दो तो जो टैक्सी वाला आपके पास आएगा ना अच्छा ही होगा.
2: No, and I yes, absolutely personally experienced. I was staying in another city pehle. Huh? About 8 years back, we shifted to Delhi. Pata hai kya information milti hai yahan shift karne se pehle? Delhi mein na बहुत लोग चीट करते हैं. दिल्ली में जो बहन आपके घर काम करने आएगी वो भी ऐसे ही होगी. टैक्सी तो बहुत चीट करती है, ऑटो. फिल फिल फिल योर सेल्फ. 8 years आई हैवंट फाउंड एनीवन चीटिंग मी, सिंपली बिकॉज आप अपनी थॉट को चेंज करो. क्यों, वो हमारी तरह हैं वो लोग, लेकिन हम उनको इस तरह की एनर्जी देते हैं. वो वाइब्रेशन नेगेटिविटी हर एक के अंदर ऑलरेडी काफी सारी है. आप जैसे ही स्टिम्युलस पे नेगेटिव भेजोगे तो उसकी नेगेटिविटी को आप ट्रिगर करोगे. लेकिन ज्ञान हमें ये समझाता है कि इनहेरेंटली हर एक बहुत प्योर और पॉजिटिव सोल है. अब आप उसके पास वो वाला तीर फेंको तो तो उसकी पॉजिटिविटी ट्रिगर होगी। ये चॉइस हमारे पास है, ये पावर भी हमारे पास है,
1: मतलब हम करके देखना चाहिए। मैंने अनुभव किया
2: बहुत वर्क
1: कई बार देखा, एयरपोर्ट पे जाते हैं देखा टैक्सी वाला सामान उतार के ट्रॉली तक रख देता है, उसकी ड्यूटी नहीं है वो।
0: इसका मतलब हमने ये किया कि मतलब कई बार लोग बोलते हैं कि आप आंख मूंद के फिर जी रहे हो, कि आप देख ही नहीं रहे कि आई जस्ट वॉन्ट टू आस्क वन थिंग कि आई नो सामने वाला करप्ट है, मतलब मुझे पता भी चल गया अगर, एंड आई हैव टू डील विद हिम। सपोज मैं कोई काम करवाने भी जा रही हूँ और सामने वाला करप्ट है, पता है, तब मैं क्या ये वाइब्रेशंस उसको दूं कि नहीं आप प्योर हैं, आप सच्चे हैं, तो ये मैं अपने आप से झूठ नहीं कर रही।
1: पहले तो दो, उसमें कुछ तो चेंज आएगा,
2: मतलब
1: बट
2: हैव द फेथ इन योर सेल्फ फर्स्ट। ये नहीं कि अच्छा मैं बोल तो रही हूँ ये प्योर है लेकिन वैसे तो ये करप्ट है,
0: हाँ
2: तो फिर क्या, फिर कौन सी थॉट क्रिएट।
0: एक तरफ है फैक्ट, एक तरफ है मेरी सोच।
2: हाँ
1: ये भी फैक्ट नहीं है। देखो आपने कभी एक नदी में दो बार स्नान किया है?
0: हाँ, कभी सुबह और शाम।
1: एक्चुअली देखो आपने जो दो बार स्नान किया सवेरे शाम, लेकिन नदी तो बह रही थी, पानी तो बदल गया था, बल नाम हुआ था परंतु पानी तो सेम नहीं था।
0: हाँ,
1: तो कहते आप एक नदी में दो बार स्नान नहीं कर सकते,
0: एक पानी में। हाँ, मतलब
1: नदी कहो।
0: हाँ,
1: तो ऐसे कहते हैं आप एक व्यक्ति को दो बार नहीं मिलते हो,
0: व्यक्ति बदल गया।
1: हाँ, आज मैं आपको मिला हूँ, कल मिलूंगा तो यू आर डिफरेंट,
0: डिफरेंट,
1: आपके विचार बदल गए।
0: हाँ,
1: है ना, मेरे प्रति आपका दृष्टिकोण बदल गया। तो इससे जो आपने वो कहा ना कि वो फैक्ट, इट इज नॉट अ फैक्ट,
0: पीपल चेंज।
1: हाँ, वो व्यक्ति को कल शायद ठीक है, भी दो दिन पहले वो करप्ट था, आज उसमें परिवर्तन आ गया। तो क्यों उसी नजरिए से देख रहे हो, उसके प्रति पॉजिटिव वाइब्रेशन दो।
2: एक्चुअली कोई है, किसी में कोई थोड़ी सी कमजोरी है जिसे करप्शन है, कोई भी, हम सब उसी के ऊपर चिंतन कर करके उसको सभी लोग ये एनर्जी भेजेंगे कि ये तो करप्ट है, ये तो करप्ट है। तो जितनी उसके पास वो एनर्जी जाएगी उनका वो संस्कार
0: स्ट्रांग
2: और स्ट्रांग होता जाएगा। दैट इज वेयर वी ऑल कैन एक्चुअली बी फोर्स विद ईच अदर हाउ टू ब्रिंग अबाउट अ चेंज। कि इसीलिए परमात्मा हमेशा कहते हर एक की विशेषताओं को देखो। दो बातें हैं, जितना आप कमजोरियों को देखेंगे, पहली बात तो वो कमजोरी आपकी बनती जाएगी। क्यों? क्योंकि हम किसका चिंतन करते गए, ये तो ऐसे हैं, ये तो गुस्से वाले हैं, ये तो करप्ट है। तो मेरी अपनी कॉन्शियसनेस की लेवल क्या होती जा रही है, नेगेटिव एनर्जी क्रिएट हो रही है, उनको कौन सी एनर्जी भेज रहे हैं, वो ही भेज रहे हैं। मेरा भी नुकसान, उनका भी नुकसान। विशेषताओं को देखो, विशेषता मेरी भी बनती जाएगी वो, और वो एनर्जी उन तक पहुंचेगी, उनकी विशेषता पक्की होती जाएगी।
0: तो शिवानी आपने कहा कि विशेषताएं देखें हर एक की और नेगेटिविटीज ना देखें, लेकिन मेरे सामने है वो नेगेटिविटी, मैं चलिए एक्नॉलेज नहीं भी कर रहा पर दिख तो रहा है, मैं उस पर फोकस नहीं भी कर रहा, बट क्या मैं उनको इग्नोर कर सकती हूँ?
1: बिल्कुल, क्योंकि आप जैसे विचार करेंगे वहां तक पहुंचने, एक बात हमने समझ ली। दूसरी बात, वो व्यक्ति परिवर्तित भी हो रहा है। और तीसरी बात है कि उसे हम लेबल ना करें। आज जब बोलते हैं कि ये करप्ट है तो आप उसने लेबल लगा दिया, तो फिर सदैव के लिए बोले वैसा ही रहे। आप और सोच लिए, आपके साथ काम करने वाले जो लोग हैं आपने उन्होंने लेबल लगा दिया कि ये स्मार्ट नहीं है, तो ऑलवेज उस तक वो वाइब्रेशन पहुंचे वैसा ही रहेगा। विशेष बच्चों के लिए कभी नहीं करो। आज अधिकतर माता पिता बच्चों को लेबल कर देते हैं कि छोटा वाला स्मार्ट है, बड़े वाला बुद्धू है, वो कभी ठीक काम से नहीं करता है। जैसा आपने सोचा वैसा ही होता है। इवन क्लासरूम में रिसर्च स्टडीज भी की गई है,
0: लेकिन वो तो कर ही रहा है ना वैसा।
1: नहीं, आप देखिए, रिसर्च स्टडी को आप समझिए तो भी आप कन्विंस हो जाएंगे इस बात के लिए कि एक क्लास में नए टीचर आए और सभी बच्चों के जो उनके मार्क्स थे पिछले क्लास के उनको दिए गए, किसको भी इसकी फर्स्ट ग्रेड है, इसकी सेकेंड, इसकी थर्ड है, ऐसे बच्चों को दिया, और फिर एक साल के बाद उनका परफॉर्मेंस देखा तो ये पाया कि भी जिसको बताया था कि इसकी फर्स्ट ग्रेड है तो उसको फर्स्ट ग्रेड ही आई, कहा कि भी ये थर्ड ग्रेड का है उसकी करीब करीब थर्ड ग्रेड ही आई। और प्रैक्टिकली रिसर्चर्स ने क्या किया था, पूरा उल्टा कर दिया था। जिसकी फर्स्ट ग्रेड आई थी उसको कहा था इसकी थर्ड ग्रेड है, जिसकी थर्ड थी उसको फर्स्ट बना दिया था। तो इसका कंक्लूजन ये हुआ कि भाई टीचर का जो इंटरप्रिटेशन है, टीचर तो ये सोचा था कि ये लड़का स्मार्ट है भले वो था बुद्धू,
0: और वो सोचता रहा और उसकी थॉट्स ने, उसके पूरा लेबलिंग ने उसको फर्स्ट ही बना दिया।
1: न केवल लेबलिंग, लेकिन अप्रोच भी।
0: हाँ,
2: आपका पूरा थॉट, एटीट्यूड, बिहेवियर, बात करने का तरीका,
1: समझाने का तरीका,
2: कुछ ही वैसे चेंज हो जाएगा। हाँ। ना देखो, कोई आपको लगे ये तो बुद्धू है तो आपका थॉट कैसे चलेगा? इसको तो कितना भी समझाओ, इसको तो समझ में नहीं आने वाला, ये तो बुद्ध. सो यू डोंट पुट इन दैट काइंड ऑफ एनर्जी एंड दैट एफर्ट. लेकिन एक आप स्टूडेंट को देख रहे हो कि ये तो फर्स्ट ग्रेड स्टूडेंट है, यू नो यू हैव दैट एनर्जी, यू हैव दैट लुक ऑन योर फेस, योर बॉडी लैंग्वेज, आपकी सब कुछ चेंज हो जाती है और एनर्जी, थॉट एनर्जी तो
0: जाएगी. आपने कहा कि दूसरे की विशेषता देखोगे या कमजोरी देखोगे तो वो आप में आ जाएगी. यू सेड समथिंग लाइक दैट. हाउ इज दैट पॉसिबल?
2: बिकॉज मैं चर्न कर रहे हो उस थॉट के ऊपर. सपोज आपके अंदर गुस्से का नेचर है, आपके गुस्सा करने के, एंड मैं बार बार ये थॉट क्रिएट करती हूँ, ये तो बहुत गुस्से वाले हैं, तो गुस्से वाले हैं, इनको बात करने का तरीका भी नहीं आता. व्हाट काइंड ऑफ एनर्जी एम आई क्रिएटिंग? सी, हम ये एनर्जी क्रिएट करते करते मैं आपसे कैसे बात करूंगी? अब मैं भी आपको गुस्से से बात करूंगी, ऑटोमेटिकली वो होगा ही. इट विल बिकम, बिकॉज आई हैव बीन चर्निंग ऑन दैट नेचर ऑफ योर्स फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम कि ये गुस्से वाले हैं, चाहे इनसे कैसे भी प्यार से बात करो, ये तो ऐसे ही बात करते हैं, अगली बार तो ना मैंने बात ही नहीं करनी इनसे. ऑल दिस इज माई थॉट गोइंग ऑन. सिर्फ क्योंकि मैंने आपकी वो एक कमजोरी देख ली है, तो धीरे धीरे मेरा आपके प्रति सोचने का तरीका चेंज हो गया, फिर व्यवहार चेंज हो गया, फिर एक बार मैंने आपसे इस तरह से बात करना शुरू किया, धीरे धीरे वो मेरा संस्कार बनता गया, और धीरे धीरे मेरा संस्कार कैरी फॉरवर्ड होगा, वो सबके साथ ऐसा बनता जाएगा.
0: लेकिन मुझे आप गुस्सा करते हो, वो मुझे अच्छा नहीं लगता, तो लेकिन वो मैं अपने अंदर कैसे इनकलकेट कर रहा हूँ?
2: क्योंकि मैं सोच रही हूँ ना बाद में, नहीं अनोइंगली नहीं है, मैं कंटिन्यूसली आपकी उस आदत के बारे में सोचती हूँ, और मैं ये फील करती हूँ कि जो मैं फील कर रही हूँ उसके जिम्मेवार आप हो, और मैं आपके क्रोध के संस्कार पे चिंतन कर रही हूँ, तो मेरी एनर्जी कैसी क्रिएट हो रही है? दिस आई हैव टू अंडरस्टैंड ना, कि सपोज मैंने आपकी पेंसिल ली, क्रोध की आपकी पेंसिल ली, मैंने कहा ये पेंसिल टूटी हुई है, अब इससे मैंने डायग्राम बनाना शुरू कर दिया, तो मेरा डायग्राम कैसा बनेगा? यहाँ पे एक डायग्राम ही बन रहा है ना. सारा दिन कंटिन्यूसली हम ग्रूव क्रिएट करते रहते हैं. कौन सी पेंसिल लेके क्रिएट किया था? ये गुस्से वाले हैं. व्हाट एनर्जी व्हेन आई एम थिंकिंग लाइक दैट, हाउ एम आई गोइंग टू फील? एंड फिर ऑटोमेटिकली मेरा बिहेवियर आपके साथ कैसा होगा? फिर मैं किसी और से आपके बारे में बात करूंगी तो कैसी एनर्जी क्रिएट करूंगी? तो गुस्सा तो आपका संस्कार था. ये ना जब हम किसी को बोलते हैं तो बहुत गुस्से वाले हैं, कैसे बोलते हैं?
0: अच्छा
2: तो आपको पता है ये तो बहुत गुस्से वाले हैं, ऐसे तो नहीं बोलते, आपको पता है ये बहुत गुस्से
0: रिजेक्ट करके बोल रहे
2: हैं. नो माय वे ऑफ टॉकिंग आल्सो बिकम्स लाइक दैट बिकॉज आई एम टॉकिंग नेगेटिव. व्हाई? बिकॉज आई एम थिंकिंग नेगेटिव. तो ये बहुत बहुत सूक्ष्म है, इट्स अ वेरी सटल वे, हमें अवेयरनेस भी नहीं होती कैसे वो हो जाता है, लेकिन वो धीरे धीरे हमारा संस्कार बनता जाता है. जो आपने भी पूछा था ना कि कमजोरी है उनके अंदर, तो हम क्या करें? एक है अवेयरनेस कि किसी के अंदर ये कमजोरी है, इवन अगर आपको ये दिखाई दे रही है, डोंट कीप इट हियर. परमात्मा कहते हैं उसकी कमजोरी अपने चित्त पर मत ले लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. मुझे अवेयरनेस है आपके अंदर ये कमजोरी है, ओके मैं आपको वो वाला शायद काम नहीं दूं थोड़े दिन या कुछ भी, आई विल टेक स्टेप्स, लेकिन मैं उसको अपने चित पर नहीं लूं. मतलब मैं उसके बारे में चिंतन ना करूं ताकि मैं अपने आप को प्रोटेक्टेड रखूं, एंड वेरी इंपॉर्टेंट मैं आपको कौन सी एनर्जी भेजूं. तो अगर मेरे से आपको डिफरेंट एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी आएगी, देयर इज अ बिग पॉसिबिलिटी कि आपका वो संस्कार धीरे धीरे परिवर्तन होगा. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे गिरीश भाई ने कहा इन द फैमिली, यू नो एक व्यक्ति लेबल लगाता है कि ये तो बुद्धू है, बहुत जल्द बहुत लोग वही लेबल लगा देते हैं, सब लोग कहते हैं इससे तो वो हो ही नहीं सकता. अब वो एक और 8-10 लोगों से उसको वही एनर्जी मिल रही है, क्या होगा? वही संस्कार और पक्का होता जाएगा.
1: शिवानी बिन जो कहते हो ठीक है कि भी कोई नहीं, इम्पोर्टेंट चीज हो तो भले उसको कुछ समय वो काम नहीं दो, लेकिन पॉसिबल हो तो मैं तो काम भी दो.
2: सिर्फ रेडी एंड प्रिपेयर्ड के यू नो इमीडिएटली रिएक्ट नहीं करो, यू टेक इट अप एज एन एक्सपेरिमेंट. आई एम गोइंग टू हेल्प हिम यू नो कल्टिवेट दिस थिंग इन टू योर सेल्फ. हम कई बार देते भी हैं तो हम कहते हैं देते हैं, फिर थोड़ा पहले थॉट होता है पता नहीं ये कर पाएगा कि नहीं, और अगर थोड़ा सा उसने 1% भी उसमें कुछ गलती कर दी, इमीडिएट थॉट मुझे पता था इसको तो देना ही नहीं चाहिए था, फिर मैं उसका और डैमेज कर देती हूँ. मुझे करना है तो अपने आप को बहुत अच्छी तरह से तैयार करके करना है कि वी आर इन द प्रोसेस ऑफ कल्टिवेटिंग दिस हैबिट. उसमें थोड़ा सा प्लस माइनस होगा थोड़ी देर, लेकिन वो पॉजिटिव एनर्जी उसके अंदर वो हैबिट कल्टिवेट कर देगी. हम एक बार करते हैं एंड वी एक्सपेक्ट इमीडिएट रिजल्ट, फिर हम उनको 4 बार सुनाते हैं, मैंने आप पर पिछली बार विश्वास रखा था, क्या किया आपने, क्या रिजल्ट आपने उसका दिया, देन इट जस्ट गेट्स वर्स एंड देन वी थिंक कि हमने उस पर फेवर की, हमने उसको ट्राई किया, ही इज नॉट वर्थ इट. फिर हम कहते हैं फायदा नहीं उस पर विश्वास. तो फिर वो बहुत सारी एनर्जीज और भी नेगेटिव हो जाते हैं. तो अपनी पूरी तैयारी करके फिर उनके ऊपर काम करना, पहले काम अपने ऊपर करना.
1: एडिसन के लिए कहते हैं कि जब उन्होंने बल्ब को इन्वेंट किया और उसको डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए जा रहे थे, तो पहले पहली बार जब जा रहे थे तो जो व्यक्ति कैरी कर रहा था तो बल्ब गिर गया, तो डेमोन्स्ट्रेशन नहीं हुआ था, बड़ा डेंजरस चीज थी. तो रात भर जाग करके एडिसन ने नया बल्ब तैयार किया. फिर सवेरे वो डेमोन्स्ट्रेशन होना था, तो फिर से उसको उस ट्रे में दिया कि तुम वहां तक ले. सबने कहा नहीं नहीं नहीं नहीं सर, आपको नहीं मालूम है, कल शाम को तो इसने तोड़ दिया है बल्ब. फिर से तोड़ दिया. कहा नहीं नहीं यही बल्ब को ले जाएगा. उसने कहा कि देखो बल्ब फिर से भी टूट गया ना तो नया बन जाएगा, पर तो इसका दिल टूट गया तो नया नहीं बन सकता. तो इसलिए मैंने उसी को दिया.
2: सेल्फ कॉन्फिडेंस टूट जाता है ना सामने वाले,
1: तो उसी को दिया कि तुम संभाल के ले जाओ.
0: बिल्कुल. और आज अपने ही विचारों से, उनकी शक्ति से हमें वाकिफ कराया आपने. अब इन स्किल्स को और आगे हम देखते जाएंगे. डॉक्टर पटेल, मिस्टर शिवानी, थैंक यू सो मच. बहुत बार सुना था और बड़े बड़े लोग बहुत सी बातें भी करते हैं कि थॉट में जो है वो बहुत पावर है, आपके अपने विचार जो हैं वो बहुत कुछ क्रिएट कर सकते हैं. हमने लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी पढ़ा है, बहुत सी किताबें, प्रैक्टिकली नहीं समझ पा रहे थे. अब जब छोटी छोटी तरह से ये देख रहे हैं कि किस तरह से जो मैं सोचता हूँ, मतलब जाने अनजाने ही अभी तक ये हो रहा था कि कोई भी विचार आता था हम उसके साथ ही बहने लग जाते थे. एक थॉट आया, अभी तक हम कहते थे आया. अब सिस्टर शिवानी और डॉक्टर पटेल

ने हमें बहुत क्लियर किया है, हमने क्रिएट किया वो एक थॉट, उसके साथ हमने बहुत सारा एक समा बांध दिया थॉट्स का ही, एक पूरी जर्नी की। देखना ये है कि हमने किस फैमिली के थॉट्स लिए। और परिवारों की हम बात करते हैं, ये परिवार अवेकनिंग का है, तो साथ ही अब चलिए विचारों के परिवार पर चलते हैं कि हमने वो पॉजिटिव थॉट्स के विचार क्रिएट किए, पॉजिटिव थॉट्स की फैमिली क्रिएट की या नेगेटिव थॉट्स की, ये हम देखते जाएंगे। थोड़े थोड़े अवेयर होते जाएंगे तो शायद हम उन स्किल्स को इनकलकेट करने के लिए अपने आप को तैयार कर पाएंगे। मन में कोई बात, कोई सवाल उठ रहा है, आप हमें ईमेल पर या फोन पर संपर्क कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर्स हैं 9999344555, 9999344666, 9873666555। हमारा ईमेल आईडी है omshanti@bkmail.org। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी में आज इतना ही। लाइफ स्किल्स के इस श्रृंखला में आगे बहुत कुछ अभी बाकी है। मुलाकात होगी। ओम शांति।

ख्वाब था और उस ख्वाब की एक आवाज थी। आरती उस आवाज की उंगली पकड़े एक लंबे बहुत लंबे ख्वाब में सफर कर रही थी। एक ही ख्वाब कई बार देखा है मैंने।

0: अजी सुनते हो?
1: हाँ सुनी तो रहा हूँ।
0: क्या सुन रहे हो?
1: रेडियो पुनेरी आवाज।
0: ओ रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियाँ बनो।

आइए आइए, दरवाजे पे क्यों खड़े हैं? अंदर आइए। ये घर है मुस्कुराहट का, यहाँ बसती है खुशियाँ। ये है पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: हिंदुस्तान हमारा स्वाधीनता संघर्ष की महाकथा, आजादी के रणबांकुरों की क्रांति कथा के जाने पहचाने और अनजाने पन्ने, अनुसूचित जाति और जनजाति सहित सभी अमर बलिदानियों की प्रेरक कथाएं।
1: पंद्रह अगस्त 1947 का सूरज कई पीढ़ियों के बलिदान के आह्वान पर अवतरित हुआ था। रानी चेन्नम्मा कर्नाटक प्रांत के किट्टूर राज्य के महाराज मल्लसर्ज की छोटी रानी थीं। वे कई भाषाओं की ज्ञाता और घुड़सवारी व शस्त्र संचालन में दक्ष थीं। नियति के क्रूर हाथों ने जब राजा और राज्य के दोनों राजकुमारों को काल के हवाले कर दिया तो राजकाज का भार रानी चेन्नम्मा पर आ पड़ा। अंग्रेज कलेक्टर ने उनसे पद त्याग कर राज्य के अधिकार देशद्रोही दीवान मल्लप्पा शेट्टी को सौंप देने का हुक्म दिया। रानी ने कलेक्टर का आदेश मानने से इनकार करते हुए अपनी प्रजा का आह्वान किया कि वे अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई को तैयार रहें। अंग्रेजों को जब इस बात की खबर मिली तो उन्होंने किले की

घेराबंदी कर दी। वीर रानी ने साहसपूर्वक अंग्रेजों का मुकाबला किया और अंग्रेज कलेक्टर थैकरे को मार गिराया। अंग्रेजी सेना भाग खड़ी हुई। 3 दिसंबर 1824 को अंग्रेजों ने किट्टूर पर फिर हमला किया और एक बार फिर उन्हें मुंह की खानी पड़ी। तीसरी बार जब किट्टूर पर हमला हुआ तो किलेदार शिव बासप्पा अंग्रेजों से मिल गया। उसने किले के कई भेद अंग्रेजों को दे दिए और बारूद में सूखा गोबर मिलवा दिया। अपनों की गद्दारी के कारण युद्ध में रानी पराजित हो गई और उन्हें बंदी बना लिया गया। अंग्रेजी हुकूमत ने रानी के प्रमुख साथियों को फांसी पर लटका दिया। कैद में बंद रानी ने जब अपनी जनता और वीरों को फांसी दिए जाने के समाचार को सुना तो वे इस आघात को सहन ना कर सकी और उन्होंने आत्मबल से प्राण त्याग दिए। सैकड़ों सालों तक चली भारतीय स्वतंत्रता की अनवरत लड़ाई के असंख्य बलिदानों में एक बलिदान और जुड़ गया।

0: अरे चल बेटा, जल्दी हाथ चला। अरे तेरा ध्यान कहाँ है? अरे श्यामू, रहीम भाई की चार चाय जल्दी भिजवाओ। तुम्हारा सारा ध्यान बंदर के खेल में लगा हुआ है। अरे उसे अपना काम करने दो भाई, तुम अपना काम करो।
1: अरे गज भी है काका, जल्दी आओ ना, देखो बंदर वाला बहुत अच्छा खेल दिखा रहा है। चलो चलो, बहुत मजा आएगा।
0: बेटा मैं खेल देखने गया तो दुकान का मजमा उड़ जाएगा, फिर मुझे भी बंदर का नाच गाना शुरू करना पड़ेगा। अरे वो अपनी दाल रोटी चला रहा है, हैं? वो उसका काम है, हमें अपना काम करने दे।
1: अरे काका 10 मिनट का तो खेल होता है, अब ये चाय मास्टर दुकान संभाल लेगा ना, आप चलो तो।
0: चल अच्छा चल, आज तेरी ही सही। मास्टर ध्यान रखना, मैं आता हूँ।
2: हाँ तो मेहरबान कदरदान, ये देखो खेल। चलो बच्चा लोग पीछे हट जाओ, सब लोग एक बार जोर से ताली बजाओ, जो नहीं बजाएगा उसे काला कुत्ता काटेगा। वाह वाह, शाबाश, चल जानी, लोग तेरा खेल देखने आए हैं, उठ जा, सबको सलाम कर। अबे क्यों इज्जत का फालूदा बना रहा है, चल सलाम कर। अरे सलाम कर। अच्छा तो तू गुस्सा है भाई? क्या गुस्सा है, है? सबको नहीं बताएगा, चल कोने में आ। अच्छा मेरे कान में धीरे से बोल दे। ओ हा, हा, हा, हा। अरे मैं तो भूल ही गया था, तो भाइयों इसे अपनी घरवाली की याद आ रही है। चल गुस्सा मत हो, मैं तेरी घरवाली को अभी फोन करता हूँ। नाम क्या है उसका? क्या, चमेली? अरे भाई बहुत अच्छा नाम है। ठीक है अभी मोबाइल करता हूँ। हेलो हेलो हेलो, कौन? चमेली भाभी, चमेली भाभी, मैं गबरू बोल रहा हूँ। ये इधर भैया को आपकी बहुत याद आ रही है। क्या आप आ रही है अगली फ्लाइट से, यानी एरोप्लेन से? ठीक है, सुना जानी भाभी आ रही है, चलो शुरू हो जा।
0: तुम लोग देखो मैं दुकान चला।
3: अरे दादा हम लोग भी आ रहे हैं।
1: हाँ वहीं पर रुकना, कहीं चले मत जाना, आपसे काम है।
0: अरे तुम लोग जल्दी आना, मैं जा रहा हूँ।
4: किताब वाला, पुरानी किताब वाला, 10 रुपया राजा रानी।

0: जादू के खेल, चाचा के हसगुल्ले, पैसों की माया, आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया, सब 10 रुपए में ले लो भाई। पुरानी किताब वाला, साइंस के खेल, भारतीय रेल, सब 10 रुपया, 10 रुपया। किताब वाला, किताब वाला, पुरानी किताब वाला।
1: अरे देखो पुरानी किताब वाला चला आ रहा है। तो कभी कभी इनके पास सस्ते में बहुत अच्छी किताबें मिल जाती हैं। आओ चल के देखते, चलो चलो।
2: मुझे भी हिंदी कहानी के विकास पर किताब चाहिए।
3: अरे भाई साहब, ओ भैया रुको जरा।
0: हाँ हाँ भैया, बस एक मिनट, थोड़ा किनारे लगा लूँ। हाँ हाँ, अब बोलिए क्या दिखाऊं साहब, तिलस्मी किस्से या जादू के खेल?
2: अरे आप फिक्र मत करो, हम खुद छाट लेंगे। ये वाली साइंस की किताब कितने की है भैया?
0: 20 रुपए।
2: पर अभी तो तुम 10 रुपए हर माल की आवाज लगा रहे थे।
0: ओ साहब, किताब की कंडीशन देखिए ना, एकदम नई है।
1: अरे देखो देखो, ये क्या, एक था राजा एक थी रानी, क्यों ये कौन सी किताब है?
0: साहब मुझे क्या पता, ये किताब के ऊपर लिखा है ना, देख लो। साहब रानी चेन्नम्मा की कथा है, राजा मल्लसर्ज नाम था उसका, प्रजा से प्रेम काम था उसका, राजा की थी 2 रानी, एक रानी एक पटरानी। ले लो साहब, बहुत अच्छी किताब है, 10 रुपए में दे दूंगा।
4: अरे तुम दोनों अभी तक यहीं अटके पड़े हो, चलो दुकान पर चलो।
1: अरे काका, ये 10 रुपए में किताब दे रहा है, अच्छी है ना ये?
4: कौन सी किताब?
0: एक था राजा एक थी रानी, रानी चिन्नम्मा की कथा, 10 रुपए में।
4: हाँ ले लो, अच्छी किताब है, चलो ये लो 10 रुपए।
0: किताब वाला, पुरानी किताब वाला, 10 रुपए में।
1: चलो, किताब वाला।
4: आओ, ये राजा मल्लसर्ग और रानी चेन्नम्मा के बारे में बोल रहा था।
1: कौन थे ये राजा मल्लसर्ज और चेलम्मा?
4: सब बताऊंगा। अब वो चाचा के यहाँ चाय भिजवा दी ना। ए राजा, भैया उसे ठीक से ढक दे। हाँ अब ठीक है।
3: क्या भैया आप वापस चले आए, बंदर ने चमेली वाला नाच बहुत अच्छा दिखाया था।
1: अबे नाच की बात छोड़, ये किताब पढ़ते आओ। दादा आप पढ़िए ना प्लीज।
4: अरे मैंने तो पढ़ रखा है रानी चेलम्मा के बारे में। अरे चलो चलो तुम पढ़ो, हम सब सुनेंगे। मास्टर वो बाहर वाली भट्टी चालू कर दे। हाँ चलो शुरू करो यार, शुरू करो।
1: तो पढ़ू किताब पढ़ू? हाँ सुनो। कित्तूर कर्नाटक में एक छोटा सा राज्य था, और वहां के राजा मल्लसर्ज कला प्रेमी और विद्वानों का आदर करने वाले थे। ये राजा की 2 रानी थी, रुद्रम्मा बड़ी और चेन्नम्मा छोटी। एक दिन राजा के महल में बड़ी चहल पहल दिखाई दी।

0: खूब शास्त्री जी, आपने तो कमाल कर दिया। आज पूरे दरबार को लूट लिया आपने। हम सब आपकी गायकी से मंत्रमुग्ध हो गए। ये लीजिए, हमारी तरफ से छोटी सी भेंट स्वीकार करें।
1: यह तो आपकी महानता है, आपका कला प्रेम है।
0: शास्त्री जी, मेरा आपसे एक निवेदन है। हमारी छोटी रानी चन्नम्मा की गाने में बहुत रुचि है। आपका सानिध्य मिल जाए तो हम आपके आभारी रहेंगे। वैसे रानी चन्नम्मा कन्नड़, उर्दू, हिंदी, मराठी और संस्कृत भाषाएं जानती हैं।
1: यदि रानी जी की संगीत में श्रद्धा है तो मैं तो बस निमित्त मात्र हूं। उनकी लगन ही उनका मार्ग प्रशस्त करेगी। मैं एक गुरु होने के नाते अपने कर्तव्य का पालन करूंगा।
2: संगीत आचार्य सदाशिव शास्त्री ने महाराज का अनुरोध स्वीकार कर छोटी रानी चेन्नम्मा को संगीत की शिक्षा देना आरंभ कर दिया। चेन्नम्मा का जन्म काकतीय राजवंश में हुआ था। वो घुड़सवारी, आखेट और शस्त्र संचालन में भी निपुण थी। थोड़े ही दिनों में कित्तूर राजवंश पर विपत्ति के बादल मंडराने लगे। पूना के पेशवा से मतभेद होने के कारण पेशवा ने छल से महाराज मल्लसर्ज को कैद कर लिया। महाराज अधिक समय तक जीवित नहीं रह सके। रानी चेन्नम्मा ने एक पुत्र को जन्म दिया, पर दुर्भाग्य, उसकी भी बचपन में ही मृत्यु हो गई।
3: बहन, मैं क्या करूं? ईश्वर ने मुझे किस पाप की सजा दी? पहले महाराज चले गए, फिर मेरा लाडला भी मुझे छोड़ चल दिया। अब मैं क्या करूं? क्या मैं भी अपनी जीवन लीला समाप्त कर लूं?
4: चेन्नम्मा, चेन्नम्मा, तुम कैसी पागलों जैसी बातें कर रही हो?

0: महाराज की जय हो, छोटी और बड़ी महारानी की जय हो। आपका यह सेवक आपको नमन करता है। महाराज, ये मैं क्या सुन रहा हूं? आप मरड़ी घोड़ा के पुत्र को गोद लेना चाहते हैं? यदि आप दत्तक लेंगे तो उसके लिए धारवाड़ के कलेक्टर मिस्टर ठेकरे की अनुमति लेनी होगी। बगैर अनुमति दत्तक लेना अंग्रेज सरकार से दुश्मनी पालना होगा। मैं तो राज का भला चाहता हूं। मैंने नमक खाया है आपका।
1: आप हमारे दीवान हैं कि अंग्रेजों के? अंग्रेज कौन होते हैं हमारे मामले में बोलने वाले? दीवान जी, मरड़ी गौड़ा में पुत्र को गोद लेने की कार्यवाही आज ही होगी। सबको सूचित कर दो, आज ही गोधुली बेला में।

0: और इस तरह शिवलिंग रुद्रसर्ज ने उस बालक को दत्तक पुत्र के रूप में स्वीकार कर लिया। बालक का नाम गुरुलिंग मल्लसर्ज रखा गया। कुछ ही दिनों में शिवलिंग रुद्रसर्ज का देहावसान हो गया।
1: चेनम्मा, तुम राजकाज के बारे में जानती हो। तुम में राजकाज चलाने के सभी गुण हैं। तुम इस साम्राज्य का भला ही चाहोगी। मैं जानती हूँ, तुम में आत्मविश्वास और जोश है। अब साम्राज्य का भार तुम्हारे ही कंधों पर है।
0: लेकिन दीवान, वो अपने ही राज्य को खोखला करने में लगा था। उसने चेन्नम्मा की शिकायत धारवाड़ के कलेक्टर थैकरे से कर दी और घर का सारा भेद अंग्रेजों को बता दिया।
2: अब आएगा मजा इससे ही चालाकी। अंग्रेज तो इसी ताक में है कि उन्हें कोई रियासत हड़पने को मिले। मुझे भी अंग्रेज सरकार इनाम इकराम देंगे। हो सकता है मुझे ही राजा बना दे। लॉर्ड डलहौजी का पंजा तैयार है कित्तूर को छपटने के लिए।
3: दीवान जी, आज शाम को सब अधिकारी दरबार में हाजिर हों। ऐलान कर दीजिए।
2: वो तो सब कर दूं, परंतु आप जरा ये फरमान पढ़ा जो कि धारवाड़ कलेक्टर साहब ने भेजा। लाइए, मैं ही पढ़ देता हूँ, आखिर मैं आपका सेवक हूँ। रानी चेनम्मा, कलेक्टर धारवाड़ की तरफ से आपको खबरदार किया जाता है कि आप कोई भी काम हमारी मर्जी के खिलाफ न करें। हम गुरुलिंग मल्लसर्ज को कित्तूर राज का उत्तराधिकारी मानने से इनकार करते हैं। चेनम्मा, आपको ये आदेश दिया जाता है कि आप संरक्षिका का पद छोड़कर सभी अधिकार राज के दीवान मल्लप्पा शेट्टी को सौंप दे, आज और अभी।
3: इस फरमान को कचरे में फेंक दो। मैं सिर्फ ईश्वर का आदेश मानती हूँ। अंग्रेज चाहे जो कर लें, मैं चेनम्मा सौगंध खाती हूँ, मैं अपने राज्य की स्वतंत्रता की रक्षा जी जान से करूंगी।
0: थैकरे ने रानी के पास कई संदेश भेजे और धमकियां भी दी। चेन्नम्मा को मालूम था कि उसके दोनों दीवान मल्लप्पा शेट्टी और वेंकट राव अंग्रेजों से मिले हुए हैं।
3: मेरे प्यारे सैनिकों, आज हमारा राज्य संकट में है, पर हम धोखेबाज और अंग्रेजों के सामने झुकेंगे नहीं। हमारे साथ कई योद्धा हैं, जैसे गुरु सिद्धया, बालननाथ, जगवीर, चेनवा सप्पा। हम सब युद्ध के लिए तैयार हैं। हमें अंग्रेजों को परास्त करना है। सैन्य अधिकारी अपनी अपनी पलटनों में जाएं और युद्ध की तैयारी शुरू कर दें।
4: महारानी जी की जय हो। महारानी जी, हमारे गुप्तचरों ने खबर दी है कि अंग्रेजी टुकड़ियां किले की ओर बढ़ रही हैं।
3: वीरों, ये संग्राम केवल कित्तूर के लिए नहीं है, ये हमारी पुण्य भूमि भारत के लिए है। जय भारत, जय कित्तूर।

0: 23 सितंबर 1824 को रात्रि में वीर वेश धारण किया और खैतरे की सेना पर हमला बोल दिया। मर्दाना वेश में रानी चेन्नम्मा सिहनी की तरह दहाड़ रही थी। उसकी तलवार उठती और 4-5 गर्दन काट के ही दम लेती। आरजी में खैतरे मारा गया। अपने नेता के मरते ही अंग्रेज सेना भाग खड़ी हुई। मल्लप्पा शेटी को गिरफ्तार कर लिया गया और उसे मृत्यु दंड दिया गया। स्वतंत्रता के संघर्ष की लहर आसपास के राज्यों में भी फैल गई। इस फैलती लहर को दबाने के लिए अंग्रेजों ने 3 दिसंबर 1824 को फिर कित्तूर पर धावा बोल दिया। आक्रमण की बागडोर डीकस के हाथों में थी। अंग्रेज सेना शक्तिशाली थी, किंतु देशभक्तों का मनोबल ऊंचा था। उन्होंने फिर अंग्रेजी सेना को भगा दिया।
1: साथियों, दो बार हम फिरंगियों को भगा चुके हैं। इन दोनों संग्राम में कित्तूर के कई सैनिक शहीद हुए हैं। मैं उन सब के रक्त की एक एक बूंद का हिसाब फिरंगियों से लूंगी, अब इस पार या उस पार। मुझे दुख है, हमारे कुछ साथी धोखेबाज निकले और दुश्मन से जा मिले हैं। हमारे लिए वो देशद्रोही गड्ढा खोदने में लगे हैं। उन्हें माफी नहीं मिलेगी, हम उन्हें चुन चुन कर मारेंगे।
0: उधर दुश्मन आगे बढ़ रहा था। उसने मौका देखकर तीसरी बार आक्रमण किया। शिव वासप्पा ने रानी के बारूद में गोबर मिला लिया। कई भेद अंग्रेजों को दिए। इस युद्ध में रानी की पराजय हुई, उसे कैद कर लिया। अंग्रेजों ने रानी के विश्वास पात्र जगवीर, बाल्ला राणा, नागरकुट्टी, बाल कृष्णा को फांसी की सजा सुनाई। कित्तूर की जय हो, रानी चेन्नम्मा की जय हो, ये कहते हुए सारे वीर फांसी पर झूल गए। ये समाचार बेगल हॉल में कैद रानी तक पहुंचा तो उसने इन योद्धाओं की मृत्यु के समाचार को सुनकर अपने प्राण त्यागे।

0: धन्यवाद उस किताब वाले को जो शहीदों की ये वीर गाथाएं लोगों तक पहुंचाता है।
1: अब हमारा कर्तव्य है और लोगों को हम रानी चेन्नम्मा के बारे में बताएं। आज एक अच्छे दिन के लिए ईश्वर को धन्यवाद। अच्छा दादा, चलते हैं, कल मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।

निर्देशन मॉरिस लाजरस, परिकल्पना श्रीराम तिवारी, समन्वय संजय यादव, निर्माण और प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: असर्टिवनेस विदाउट जेनरेटिंग एंगर, तभी वो रियल मायने में असर्टिवनेस होगा, क्योंकि असर्टिवनेस इनर स्टेबिलिटी। तो हम ये नहीं कह सकते कि हम गुस्सा भी हैं और स्टेबल भी हैं, क्योंकि जैसे ही गुस्सा अंदर जेनरेट हुआ, चाहे वो सप्रेस कर दिया, लेकिन हम स्टेबल नहीं होते हैं तब, यू नो। तो देन आई कैन नॉट से कि आई एम इंटरनली स्टेबल बट नाउ आई एम बीइंग असर्टिव। तो इंटरनल स्टेबिलिटी मीन्स यू नो नो ट्रेस ऑफ एंगर, उसको जब पूरा खत्म होगा, इंटरनली बिल्कुल काम एंड इन कंट्रोल है, लेकिन फिर भी आपको डिसिप्लिन करना, यू नो। एंड असर्टिव जब हम होते हैं, हमें बहुत कम बोलना पड़ेगा, बहुत ज्यादा यू नो, और बहुत सोच समझ के एक एक बोल निकलेगा, क्योंकि आप फुल इन कंट्रोल है। एंगर में या सप्रेशन वाली स्टेज में आप इंटरनली डिस्टर्ब्ड है कि वो हो सकता है कि मुख से कोई ना कोई ऐसा बोल निकल ही जाए कि दूसरे को भी बुरा लगेगा और खुद को भी पश्चाताप हो।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: and welcome to Being Bliss.
1: Thank you.
0: कल आपने जैसे कहा था लास्ट एपिसोड में कि सुबह सुबह की गिजा, सुबह का खाना जिस तरह इस बॉडी को देते हैं उस तरह मन को भी देना है. तो मैंने सुबह उठ के 4 बजे कोशिश की, लेकिन साथ में एक और भी किया नहीं, मेरा मन ही नहीं किया न्यूज़पेपर पढ़ने का. पढ़ा था रोज, तो मैं 2-4 कप चाय पीता था, न्यूज़पेपर पढ़ते पढ़ते पढ़ते फर्स्ट पेज टू एंड, और साथ में मतलब रिएक्ट भी करता था, आज ये हो गया, अच्छी चीज़, आज वो हो गया, ये मंत्री ने ऐसा किया, औरत ने ऐसा किया, ये करप्शन, ये. तो आज मेरा मन ही नहीं किया.
1: ब्यूटिफुल. जैसे हमने पिछली बार भी देखा कि थॉट्स जो हमारे हैं, बिकॉज वी हैव बीन टॉकिंग कि थॉट्स चेंज करने हैं, कैसे चेंज हो, कितना अटेंशन कैसे रख सकते हैं कि हर थॉट आई चेंज करना है, तो उसके लिए हमें थॉट्स से भी एक स्टेप पीछे जाना होगा कि कौन सी चीज है जिसका प्रभाव थॉट पर पड़ता है, या कौन सी चीज है जो रॉ मटेरियल है जिससे थॉट्स क्रिएट होती है. और वो हमने देखा जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो है इन्फॉर्मेशन. जो कुछ हम सारा दिन में सुन पढ़ देख रहे हैं, इट्स गोइंग इन. जिस क्वालिटी की इन्फॉर्मेशन स्टोर हो जाएगी, परिस्थिति आएगी, उस इन्फॉर्मेशन को ट्रिगर करेगी, थॉट्स क्रिएट होंगी एंड वो हमारी पर्सनालिटी बनेगी. सुबह के समय पहले 2-2.5 घंटे हमारी अब्सॉर्प्शन पावर, ग्रहण शक्ति बहुत हाई है, ब्लॉटिंग पेपर चूस लेता है उस चीज को. ये आज के समय में, जैसे आपने कहा कि न्यूज़पेपर, क्योंकि हम में से मेजोरिटी का दिन, जिसके लिए अगेन हम कहेंगे नेचुरल, यू नो वी विल से इट्स नेचुरल टू रीड द न्यूज अर्ली इन द मॉर्निंग, तो हम में से मेजोरिटी का दिन सुबह की अखबार, एंड आज तो सिर्फ अखबार नहीं, न्यूज चैनल टीवी पर, विच हैज अ डीपर इम्पैक्ट बिकॉज इट्स विजुअल. तो सुबह 6 बजे 6:30 बजे उठकर हम सब अखबार और टीवी न्यूज देख लेते हैं, और हम सुबह सुबह मन पर किस तरह की इन्फॉर्मेशन डाल देंगे, वायलेंस, नेगेटिविटी, फियर, टेरर, ये क्वालिटी ऑफ इन्फॉर्मेशन हमने भर दी. फिर सारा दिन में आप कितनी भी कोशिश करो कि मुझे पॉजिटिव सोचना है, मुझे अच्छा सोचना है, वो डिफिकल्ट होगा, क्योंकि सुबह का भोजन क्या था. पर ये 1 दिन या 2 दिन का नहीं है ना.
0: ये इसका प्रूफ ये है, जस्ट दी ऑपोजिट जो आप कह रहे थे. मैंने जब सुबह मेडिटेशन किया 4 बजे और अमृत वेले अच्छी अच्छी बातें मन में डाली, मेरा मन ही नहीं किया न्यूज़पेपर पढ़ने का. जैसे न्यूज़पेपर पढ़ के अच्छी बात करने का मन नहीं करता है, वैसे अच्छी बात, अच्छी गिजा मन को, अपने आप को देकर मेरा मन ही नहीं पड़ा. देख के मैंने कहा यार क्या सुबह सुबह मन नहीं कर रहा है.
1: अब आपने जैसे आज मेडिटेशन किया, उसके बाद आपका मन नहीं किया न्यूज़पेपर पढ़ने का, लेकिन इसको अब आप अपनी रूटीन का एक हिस्सा बना ले कि सुबह अखबार में पढ़ूंगा ही नहीं. यू नो लाइक अ चेंज इन लाइफस्टाइल. जब हम कह रहे हैं डाइट चेंज, लाइफस्टाइल चेंज, क्योंकि अगर रिजल्ट में डिफरेंस चाहिए तो रूटीन में कुछ डिफरेंस लाना होगा. अगर हम अपने आप के साथ आज ये पक्का कर लें कि सुबह के 2-3 घंटे में हम न्यूज, अखबार, टीवी न्यूज चैनल, इसको अपने अंदर नहीं भरेंगे, मीन्स नो इनटेक ऑफ नेगेटिव इन्फॉर्मेशन अर्ली इन द मॉर्निंग. हर एक ये आज पक्का कर ले अपने आप के साथ कि जितना अपने मन को क्लीन रखना चाहते हैं, उतना दिन में न्यूज का समय थोड़ा सा लेट करते जाएं, एटलीस्ट 1-3 आवर्स में नहीं,
0: लंच के बाद.
1: ओ यस, व्हाई नॉट, व्हाई नॉट के लंच के बाद. बहुत लोगों ने इस चेंज को करके देखा है और कहा सुबह ऑफिस जाने से पहले पढ़ने की बजाय अब हम शाम को ऑफिस से आने के बाद पढ़ लेते हैं, या कार में सुबह जब ड्राइव कर रहे थे ऑफिस जाने के लिए तब पढ़ने की बजाय शाम को पढ़ना शुरू करते हैं. इट्स अ बिग शिफ्ट. व्हाई? सुबह ब्लॉटिंग पेपर बिल्कुल क्लीन था, आप जो भरेंगे इट विल जस्ट सोक इन. शाम तक पहुंचते पहुंचते ब्लॉटिंग पेपर सैचुरेट हो गया. जो फर्स्ट लेयर है इधर दिन की, वो फाउंडेशन है पूरे दिन की. अगर फाउंडेशन लेयर में नेगेटिव डाल दिया तो फिर वो पूरा दिन वर्क करेगा. अगर सुबह के लेयर में डालने की बजाय शाम को लेयर डाली न्यूज की, तो तब तक ब्लॉटिंग पेपर तो बाकी बहुत सारी बातों से सैचुरेट हो गया, शाम को जो डाली वो इतनी गहरी नहीं जाएगी. अब इसमें भी ध्यान रखना है, शाम को पढ़ लें, रात को ना पढ़े.
0: हाँ.
1: रात को ना पढ़े, शाम को पढ़ के माइंड को फिर उस बातों से हटाना, बिकॉज सम पीपल विल रीड इट जस्ट बिफोर गोइंग टू स्लीप.
0: न्यूज भी सुन सकते हैं.
1: हाँ, न्यूज मतलब 2 टाइम बहुत इम्पोर्टेंट है. इफेक्ट ऑफ इन्फॉर्मेशन ऑन थॉट्स,

0: सुबह उठते ही एंड रात को जस्ट सोने से पहले. सुबह उठते ही जो भरा वो पूरे दिन पर असर करेगा, रात को जस्ट सोने से पहले जो भरा वो पूरी रात मन पर असर करेगा. सो वी हैव टू टेक केयर. एंड एक्चुअली आज जैसे आपने कहा रात को न्यूज, यू नो इट्स द प्राइम टाइम न्यूज चैनल कौन सा है, अर्ली मॉर्निंग न्यूज 6 o'clock एंड लेट इवनिंग 10 o'clock. ये प्राइम टाइम है एक न्यूज चैनल के लिए, विच मीन्स हम में से मेजोरिटी ये दो टाइम पे न्यूज सुन रहे हैं, 6 o'clock एंड इवनिंग 10 o'clock. दोनों टाइम्स हमारे लिए डैमेजिंग है. करना है, पढ़ना है, थोड़ा सा टाइम में चेंज करना है सिर्फ. लास्ट लेयर जो भरी, अगर वायलेंट थॉट्स वापस इन्फॉर्मेशन भरी, फिर पूरी रात वो टर्बुलेंस चलेगा. वी आर नॉट रियलाइजिंग टूडे, लेकिन आज जिस तरह की खबरें हम देख रहे हैं, एंड यू नो बिकॉज ऑफ दिस 24/7 जो न्यूज चैनल्स और कितने सारे न्यूज चैनल, वही सीन बार बार बार बार जब रिपीट होता है एंड उसको हम इनटेक करते हैं. एंड ऑफकोर्स मीडिया भी एक इंडस्ट्री है, तो वो भी किस तरह के सीन्स दिखाएंगे और किस तरह से उसको करके दिखाएंगे जो हमें सबसे ज्यादा इमोशनली डैमेज करते हैं
1: और ड्रामेटाइज कर देते हैं. जैसे हम लोग फिल्मों में जो एक नॉर्मल बात करेंगे तो अजीब सा लगता है, तो ड्रामा क्रिएट करते हैं और एक इंटरेस्ट क्रिएट करते हैं, छोटे से सीन को भी हाईलाइट कर देते हैं.
0: क्योंकि इसके पीछे भी लॉजिक है. जब 100 चैनल्स है, जब सिर्फ एक न्यूज चैनल था, एक दूरदर्शन न्यूज चैनल था, तो दूरदर्शन जो दिखाएगा हम बैठकर देख रहे हैं. लेकिन अब जब इतने न्यूज चैनल है, तो कौन सा न्यूज चैनल पकड़ कर रख सकेगा हमें? इट हैज टू होल्ड द माइंड बेसिकली. जैसे मूवी कौन सी पकड़ के रख सकती है जो हमारे मन को कंप्लीटली कैप्चर कर ले,
1: सारी आंख को, कान को, फीलिंग्स को, इमोशन को
0: पकड़ ले. मीडिया क्या करता है, व्हाट डज द एंटरटेनमेंट न्यूज इंडस्ट्री डू, हमारे सोचने की शक्ति बंद हो जाती है उतनी देर. क्यों हम मूवी देखकर रो सकते हैं? टेलीविजन, मूवी, ये सारी जो पूरी इंडस्ट्री है, ये हमारी क्रिएटिविटी को एक्चुअली खत्म करती है. ये खत्म करती है क्योंकि जब हम इसके सामने बैठते हैं और डिटैच होकर नहीं बैठते, इट डजंट मीन कि न्यूज नहीं देखनी, मूवी नहीं देखना, सीरियल नहीं देखना, डिटैच होकर देखना है. हम क्या करते हैं, हम जिसको हम कहेंगे हम उसमें घुस जाते हैं, हम इमोशनली उसके अंदर घुस जाते हैं, विच मीन्स जो सीन दिख रहा है उस सीन के ही मेरे थॉट्स चलते हैं. दिस हैज टू बी अंडरस्टूड. उधर अगर कोई रो रहा है,
1: आई आइडेंटिफाई,
0: नॉट ओनली आई आइडेंटिफाई, नो नॉट नेसेसरी आई आइडेंटिफाई,
1: हो जाता हूं,
0: नहीं, मैं उसी क्वालिटी की थॉट क्रिएट करता हूँ, विच मीन्स वो सीन मेरे ऊपर हावी हो गया.
1: जैसे मैं एक सपना देखता हूँ, तो सपने में अगर मुझे फियर आए और तो घबराहट और पैल्पिटेशन ऑफ हार्ट, तो मैं अगर जाग के देखूं तो वाकई रियल लाइफ में भी हो जाता है.
0: लेकिन वो सपना तो यहाँ क्रिएट हुआ ना, तो इसलिए उसका इफेक्ट आ गया. अभी ये तो सीन सामने क्रिएट हो रहा है, ये तो मेरी टीवी स्क्रीन पर ही क्रिएट हो रहा है ना. सपना तो इम्पैक्ट डालेगा क्योंकि वो सीन तो मेरे अंदर क्रिएट हो रहा है, तो ऑब्वियसली इट विल हैव एन इम्पैक्ट. लेकिन ये सीन तो मेरे अंदर नहीं क्रिएट हो रहा है, ये सीन बाहर क्रिएट हो रहा है. दिस वेरी वेरी डीप. क्यों आज बच्चों की भी इतनी यंग एज से क्रिएटिविटी खत्म हो रही है, एंड क्यों हम इस डायनामिक में पड़ रहे हैं कि परिस्थिति का मुझ पर प्रभाव, परिस्थिति का मुझ पर प्रभाव स्टार्ट्स विद द मीडिया इंडस्ट्री. पहले परिस्थिति का प्रभाव नहीं है, पहले टीवी, मूवी और सीरियल का मुझ पर प्रभाव है. हम उधर बैठते हैं और उतनी देर हम कुछ और नहीं सोचते हैं, जो वो हमसे करवाना चाहते हैं हम सोच पाते हैं. हमें रुलाना चाहते हैं हम रो देते हैं, हमें हंसाना चाहते हैं हम हंस देते हैं. मतलब हमारी थॉट कंप्लीटली उसके साथ है. दिस वी हैव टू प्रैक्टिस कि टीवी देखते समय, अगर टीवी के सामने प्रैक्टिस करेंगे तब लाइफ में प्रैक्टिस कर पाएंगे. टीवी देखते समय,
1: मैं समझ गया आप क्या कहना,
0: नो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट
1: कि अगर कोई इंसान कुछ मुझे बोल दे और रुला सके, हंसा सके, उसने मुझे डांट दिया है, मुझे गाली दे दी, इसने मुझे बुरा बोल दिया, छोटा बोला, बड़ा बोला,
0: हावी हो गया,
1: यहाँ से प्रैक्टिस शुरू करनी,
0: क्योंकि वहीं से क्रिएट हुए थे. इसीलिए व्हाई मोर स्ट्रेस हैज गॉट क्रिएटेड विद 24/7 टेलीविजन. दिस इज वेरी सटल, क्योंकि उसमें हम इतना खो गए हैं, इतना घुस गए हैं कि उतनी देर मन अपनी सोचने की शक्ति को सरेंडर कर देता है, सरेंडर कर देता है, बोलता है करवाओ, मुझसे जो करना है। अब इससे फायदा क्या होता है लोगों को, जो हमें फील होता है कि मैं सारा दिन परेशान ऑफिस के काम से, वो थॉट्स मेरे अंदर चल रही है, या हस्बैंड के साथ वाइफ के साथ झगड़ा हुआ वो चल रही है, टीवी ऑन कर दो। जैसे ही टीवी ऑन कर दिया, मेरा सोचने का काम बंद। नाउ आई एम नॉट गोइंग टू थिंक, नाउ दिस विल मेक मी थिंक। तो क्या हुआ, मैंने अपनी चीज को सरेंडर कर दिया और दूसरे को कहा, मतलब मीडिया को कहा, टेक ओवर मी दिस इन द नेम ऑफ रिलैक्सेशन। लेकिन उससे हुआ क्या, मेरा मन इस प्रैक्टिस में चला गया कि सिचुएशन सीन मेरे मन के ऊपर हावी हो सकता है। अब जो सीन हो रहा है, हमें मालूम है कि वो सच भी नहीं है, वो स्टोरी है, वो कल्पना है, किसी और की है, तो भी मन उसके अंदर चला जाता है। जब ये होने लगेगा, तो जब एक्चुअल सीन्स क्रिएट होंगे, जो जीवन में मेरे सामने सीन्स आ रहे हैं, तब मन उसके प्रभाव से बाहर कैसे निकलेगा। आज से ये होमवर्क कि टीवी देखते समय, न्यूज देखते समय, सब कुछ देखते हुए हमें साक्षी होकर देखना है। अगर जीवन में साक्षी बनना है, पहले टीवी के सामने साक्षी बनना पड़ेगा। न्यूज देखना है, लेकिन उतना ही गुस्सा नहीं क्रिएट करना जितना उस सीन में, उधर जहां वो ट्रेजेडी हुई है वहां है, नहीं क्रिएट करना है, डैमेजिंग है मेरे लिए। सोल्यूशन ढूंढना है इज ओके, बट एंगर क्रिएट करना है जितना उधर क्रिएट हो रहा है, नहीं। क्रिकेट मैच देखना है, देखना है, लेकिन उतना ही हाई एंड लो नहीं क्रिएट करना है जितना उधर है।
1: हो जाता है,
0: हो जाता है, मतलब वैसे ही ना, जैसे परिस्थिति में गुस्सा, जैसे परिस्थिति में गुस्सा आ जाता है।
1: अभी उसने कैच छोड़ दी, उसने ये कर दिया, उसने बैट बराबर नहीं किया,
0: तो उसने बैट बराबर नहीं किया,
1: लास्ट बॉल था, लूज बॉल दे दिया।
0: लेकिन साक्षी होकर, ये प्रैक्टिस है, दिस विल हैव टू बी डन इफ आई वॉन्ट टू बिकम द मास्टर ऑफ माई माइंड। इफ आई कैन नॉट बिकम द मास्टर ऑफ माई माइंड इन फ्रंट ऑफ अ टीवी स्क्रीन, हाउ विल आई बिकम द मास्टर ऑफ माई माइंड इन द रियल सिचुएशन।
1: मजे की बात यह है कि वो हमारे कंट्रोल में भी नहीं है।
0: कौन कंट्रोल में नहीं है?
1: क्रिकेट मैच कोई और खेल रहा है, दिखा रहा है कोई और है,
0: परिस्थिति भी हमारे कंट्रोल में भी नहीं है, वहां भी तो क्रिकेट मैच ही
1: है, उसके कंट्रोल में आ गया।
0: सो दिस, लेट्स प्रैक्टिस, देखेंगे, सुनेंगे, पढ़ेंगे डिटैच होकर। इनफैक्ट ये भी एक छोटी सी प्रैक्टिस हो सकती है कि जब हम न्यूज सुन रहे हैं और हमें कुछ पता चलता है कि कहीं कुछ हुआ है, ये गुस्सा और दर्द क्रिएट करने की बजाय, एक मिनट के लिए उसी टाइम जब वो न्यूज सुन रहे हैं, साइलेंस में बैठकर उन लोगों को पीसफुल वाइब्रेशन देते हैं जहां कुछ हुआ है। अगर हम पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, कहीं अर्थक्वेक आया है, कहीं टेरर अटैक हुआ है, कहीं कोई ऐसी बात हुई है, हाय क्या हुआ, बिचारे अब क्या होगा, ये थॉट्स नहीं क्रिएट करने हैं। लेट मी सिट इन साइलेंस, कनेक्ट टू गॉड एंड गिव देम वेरी ब्यूटीफुल वाइब्रेशंस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ताकि मैंने क्या प्रैक्टिस किया, सामने हलचल है, सामने हलचल है, लेकिन मेरा मन
1: ब्लेसिंग्स दे रहा है
0: सही स्थिति बनाकर, एंड विच इज यूजफुल। कहीं दर्द है तो हमें दर्द को दर्द नहीं भेजना है, हमें दर्द पर शीतलता भेजनी है, शांति की वाइब्रेशंस भेजनी है। ब्रह्मा कुमारीज में एक बहुत एक तरीका है ये करने का, कि अगर कहीं भी कोई बात पता चलती है कि कुछ हुआ है, नेचुरल कलामिटी या मैन मेड डिजास्टर, तो सभी भाई बहने इकट्ठे होकर सेंटर पर या घरों में विशेष मेडिटेशन करते हैं, क्योंकि पावरफुल वाइब्रेशन, अगर एक जगह कहीं दर्द है, टेरर है, फियर है, केओस है, डॉक्टर्स, नर्सेस, फैमिली ऑफ दोज अफेक्टेड, देयर इज सो मच पेन, हम उन आत्माओं के लिए क्या कर सकते हैं? कोई पैसे भेजेंगे, हम कपड़े भेजेंगे, खाना भेजेंगे, बट व्हाट अबाउट सेंडिंग पीस एंड पावर?
1: दुआ भी भेज सकते हैं।
0: वही पीस एंड पावर, दुआ वही है।
1: लाखों सिस्टर्स और ब्रदर्स जो हैं, ब्रह्मा कुमारीज के, अगर 5-10 लाख मिलके अगर दुआ करें और ब्लेसिंग्स भेजें, कितना मतलब
0: peace? अगर हम सब करें तो वी कैन ऑल डू दिस। अब इससे होगा क्या, दिस इज अ वेरी डीप साइकिल। क्या होता है, अभी अगर हमें कोई न्यूज मिलती है कि यहाँ ये इतना बड़ा, सपोज सी नेचुरल कलामिटी फिर भी एक्सेप्टेड हो जाती है थोड़ी सी कि हाँ, नॉट इन आर कंट्रोल, लेकिन एक मैन मेड डिजास्टर जहां होता है, जहां किसी ने बहुत यू नो हेट्रेड से कुछ किया है इस तरह. अब इसको मिलियंस ऑफ लोग देख रहे हैं इस खबर को, एंड मिलियंस ऑफ पीपल क्रिएट हेट्रेड वाइल वॉचिंग इट. नफरत, गुस्सा, मतलब इतना गुस्सा क्रिएट करते हैं, हम इनको मार दें, हम ये करें, कैसे मारे इन लोग, यू नो द काइंड ऑफ थॉट्स. अब क्या हुआ, वाइब्रेशन कौन सी फैल गई सारे,
1: वायलेंस,
0: हेट्रेड. व्हाई सोसाइटी बिकम्स लाइक दैट देन ओवरऑल, क्योंकि एक न्यूज एंड मिलियंस ऑफ पीपल वॉचिंग इट थ्रू आउट द डे एंड क्रिएटिंग हेट्रेड एंड एंगर. एक जिसने न्यूज देखकर वो क्रिएट किया, उसका नुकसान, मैंने हेट्रेड नफरत क्रिएट की, जिसके प्रति क्रिएट किया और उधर वाइब्रेशन भेजी, उनका भी नुकसान. कलेक्टिव कॉन्शियसनेस जो बनी पूरी वातावरण की,
1: पहले अपने घर में
0: पूरा, दैट्स व्हाट ना, इट
1: घर के बाहर,
0: इट गोज फ्रॉम लाइक दिस टू लाइक दिस, फ्रॉम द माइक्रो टू द मैक्रो. अब जब इतने सारे माइक्रो सेम क्रिएट करेंगे, एक व्यक्ति हेट्रेड क्रिएट करे, 10 क्रिएट करे, 100 क्रिएट करे, बट जब एक ही न्यूज एक ही टाइम पर मिलियंस देख के क्रिएट कर देते हैं, द वे इट विल स्प्रेड, तब इतने लोग क्रिएट करते हैं, फिर उसका इन्फ्लुएंस एक से दूसरे पर. अब ये ही न्यूज देखने से तो नहीं रुक सकते, क्या हो रहा है, लोग कहते हैं हो रहा है दुनिया में, तो पता तो चलेगा ही ना.
1: जैसे आपने कहा था, हाउ यू रिस्पॉन्ड.
0: Now let me ask myself, अगर किसी ने किसी के साथ गलत किया है कुछ और वो मैं पढ़ रहा हूँ या देख रहा हूँ टीवी पर, पहले मुझे ये ध्यान रखना है कि हम ये कह रहे हैं कि इन्होंने हेट्रेड से उनके साथ ऐसा किया, व्हाट अबाउट जिसने किया उसके लिए हम जो हेट्रेड अब क्रिएट कर रहे हैं,
1: हम भी तो वही हरकत कर रहे हैं.
0: अगर हम खबर सुन रहे हैं कि टेररिस्ट ने मुंबई में ये अटैक किया या टेररिस्ट ने न्यूयॉर्क में ये अटैक किया, तो उन्होंने उनकी एक हेट्रेड एलिमेंट है जिस वजह से उन्होंने वो अटैक किया, लेकिन जिन्होंने किया हमने भी तो उनके प्रति हेट्रेड ही क्रिएट किया, तो हेट्रेड, हमने भी हेट्रेड. अब हम ये करें कि जो हुआ उनके प्रति, पहले जिनके प्रति हुआ, जो जिन्होंने शरीर छोड़ा, जो फिजिकली इंजर्ड हुए हैं, बीमार हैं, जिनका फाइनेंशियली सब कुछ खत्म हुआ, जिनके परिवारों में किसी की डेथ हो गई उस इंसिडेंट में, उन सब के प्रति हमें पीस और पावर की वाइब्रेशंस भेजनी है, विच मींस आई कैन नॉट अफोर्ड टू क्रिएट हेट्रेड. इफ आई क्रिएट हेट्रेड, आई एम सेंडिंग मोर हेट्रेड टू दैट प्लेस. इफ आई रियली वांट टू डू समथिंग फॉर देम, अगर हम उनके लिए कुछ करना चाहते हैं, तो हमें, जैसे आपने कहा, दुआ मीन्स वो नहीं जो सिर्फ हाथ जोड़कर की जाती है कि भगवान उनको शक्ति दे और फिर बैठकर हम उन नफरत क्रिएट करें. जो क्रिएट करेंगे वो पहुंचेगा. Completely come out of the scene and create vibrations of peace and power. God give them lots of love, power and peace at that time. Not only to the ones with whom it has happened. जिनके साथ हुआ सिर्फ उनको vibration नहीं देने है, जिन्होंने किया वो कितनी hatred से भरे हुए थे, उनको भी शांति, उनको भी शांति, उनको भी करना, सबको करना. अब इससे क्या होगा,
1: victims को भी,
0: Victims, families, जो डॉक्टर्स अभी हीलिंग कर रहे हैं उनके यहाँ इतना स्ट्रेस है. इट्स अ होल chaotic सिचुएशन ना, जहाँ क्रिएट होती है वहाँ तो.
1: ये मतलब आप हमें ये तो बताइए ना, किस तरह भेजे आम आदमी,
0: किस तरह भेजे. आप बैठ जाए एक मिनट से, कॉन्शियसली करना होगा, एक टाइम फिक्स करें कि ये मैं रोज करूंगा अभी सबके लिए. एंड वी डोंट हैव टू वेट फॉर समथिंग टू हैपन टू डू दिस. There are people in pain around us. We are also one of them every day. हम ये रोज कर सकते हैं 5 मिनट. आप बैठे एंड पहले अपनी स्थिति को ठीक करें कि आई एम अ पीसफुल सोल, पीस इज माई ओरिजिनल नेचर, शांति मुझ आत्मा का ओरिजिनल स्वरूप है, प्रेम और शांति सब आत्माओं का ओरिजिनल स्वरूप है, लेकिन इस समय पर ये कुछ आत्माएं दर्द में है, बहुत दर्द में है, नफरत से भी भरे हुए हैं इस टाइम, गुस्से में भी है, तो कहीं अगर आग लगी है तो मुझे उधर क्या भेजना है, पानी भेजना है. तो उस समय परमात्मा से कनेक्शन जोड़ें कि परमात्मा शांति का सागर है, मैं शांति की वाइब्रेशंस परमात्मा से ले उन आत्माओं को भेज रही हूँ. उस सीन को अपने सामने इमर्ज कर लें, जो न्यूज में देखा है ना वो सीन यहाँ पे फिटेड है, उस सीन को सामने ले आए कि डेथ है, एक्सीडेंट है, बहुत हुआ है, लेकिन उस सीन में ना घुसकर, सीन से बाहर रहकर, लेकिन उन सब आत्माओं को
1: पहले मैं परमात्मा से कनेक्ट करूं, परमात्मा से शक्ति लूं
0: और उन आत्मा को भेजो,
1: चारों तरफ फैलाओ,
0: करें ये
1: पीस की शक्ति, 5 मिनट
0: रोज
1: की शक्ति,
0: 5 मिनट
1: सहन शक्ति।
0: आई द सोल सेंडिंग वाइब्रेशंस ऑफ पीस टू द सोल। जैसे ये किया, खुद पहले प्रोटेक्टेड हो जाएंगे, नफरत नहीं क्रिएट करेंगे। नफरत की बजाय अभी ये हम कॉन्शियसली पीसफुल थॉट क्रिएट कर रहे हैं। सिचुएशन हेट्रेड की है, लेकिन वी आर चूजिंग टू क्रिएट अ थॉट ऑफ पीस एंड लव। जैसे ये क्रिएट किया, पहले खुद की स्थिति, वाइब्रेशन कौन सी भेजी, ये वाइब्रेशन अगर बहुत सारे लोग इकट्ठे करते हैं वहां पहुंचती है, उनको जिस दर्द में वो हैं उस समय कुछ राहत मिलती है, शक्ति मिलती है। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस हेट्रेड की बजाय पीस की क्रिएट शुरू हो जाएगी, क्योंकि वी ऑल वांट पीस, वी ऑल वांट पीस, वी विल हैव टू क्रिएट इट। तो ये अगर हम प्रैक्टिस करेंगे, वी आर नॉट ओनली कॉन्ट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स क्रिएटिंग पीस, वी आर रिड्यूसिंग द इफेक्ट ऑफ इन्फॉर्मेशन ऑन माई थॉट्स।
1: Repeat this, please.
0: अगर मैं न्यूज देखते समय ये प्रैक्टिस कर रही हूँ कि वो जिन्होंने किया और जिनके साथ हुआ उनको ये मुझे पीसफुल वाइब्रेशन भेजनी है, तो उस समय मैंने इन्फॉर्मेशन का प्रभाव अपने मन पर जो पड़ना था उसको कम कर दिया ना, क्योंकि इन्फॉर्मेशन वायलेंट की थी, बट पर मैंने पीसफुल थॉट क्रिएट किया, तो इन्फॉर्मेशन का प्रभाव मुझ पर बहुत कम हो गया। अब इसको सिर्फ न्यूज के साथ नहीं करना, इसको मूवी के साथ भी करना है, टीवी सीरियल के साथ भी करना है, सारा दिन जो देख रहे
1: हैं,
0: फिर रियल लाइफ में भी करना है, फिर ये रियल लाइफ में भी करना है कि सिचुएशन में कोई गुस्सा कर रहा है, चिल्ला रहा है, झूठ बोल रहा है, मुझे कॉन्शियसली प्रैक्टिस करनी है। थोड़ी देर अगर मैं सक्ड इन हो भी जाऊं कि ऐसा क्यों, कैसे, एंड देन ओके फाइन आउट, वेंट इन बट केम आउट क्विकली, यू नो, घुस नहीं गए उसके अंदर, गो इन क्विकली, पुल योर सेल्फ बैक। ये करते करते धीरे धीरे विल कम आउट ऑफ द इन्फ्लुएंस, क्योंकि इन्फॉर्मेशन बहुत बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है थॉट्स के ऊपर। अब अगर हम सुबह और रात के समय, स्पेशली द लेडीज ऑफ द हाउस विल जनरली वॉच टीवी सीरियल इन द नाइट, अब टेलीविजन सीरियल में भी क्या हो गया, बिट्रेयल, झूठ, ईर्ष्या, एक दूसरे का नुकसान, प्लॉटिंग एक दूसरे के अगेंस्ट,
1: बदला,
0: ये सब भरते जा रहे हैं। किसी ने उस दिन एक बहुत सुंदर डिस्कशन कर रहे थे, तो कहा मीडिया या एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री वो दिखाता है जो समाज में हो रहा है, या जो मीडिया दिखाता है वो समाज में होने लग जाता है। यू नो, मूवी क्या दिखाती है, जो मूवी दिखाती है वो सोसाइटी में हो जाता है, या जो सोसाइटी में हो रहा है वो मूवी दिखाती है। सो यू नो, इट वॉज अ काइंड ऑफ अ डिस्कशन। तो किसी ने कहा कि जो दुनिया में हो रहा है वो ही सीरियल और पिक्चर में दिखाया जाता है, और किसी ने कहा नहीं, जो सीरियल और पिक्चर में होता है वो समाज में होने लग जाता है। इट केम आउट वेरी ब्यूटिफुली, जो समाज में हो रहा है वहीं से इंस्पायर होता है राइटर स्टोरी लिखने के लिए, कैरेक्टर लेने के लिए, लेकिन जब वो इंस्पायर होता है तो वो समाज में थोड़ा थोड़ा हो रहा होता है, कहीं कहीं हो रहा होता है, लेकिन जब वो स्टोरी लेकर वो सीरियल बन जाता है और फिर वो सीरियल मिलियंस ऑफ लोग देखते हैं, फिर वही चीज बहुत ज्यादा होने लग जाती है, क्योंकि इंफॉर्मेशन थॉट्स एंड थॉट्स बिकम पर्सनालिटी, पर्सनालिटी बिकम्स डेस्टिनी। तो लिया वहां से इंफॉर्मेशन से स्टोरी बनी, स्टोरी लेकिन जब सबके लिए इन्फॉर्मेशन बन गई तो बहुत लोगों के संस्कार अब ईर्ष्या के, डाउट करने के बन गए, क्योंकि रोज 9 बजे से 11 बजे तक वो वही सीरियल देख रहे हैं। सो दैट ऑटोमेटिकली स्टार्ट्स हैपनिंग। सो लेट अस प्रैक्टिस दिस नाउ कि सुबह उठते ही नेगेटिव नहीं भरना, नेगेटिव नहीं डालना, अखबार 10-11 बजे के बाद, रात को सोने से पहले नेगेटिव नहीं डालना। अब इससे और एक स्टेप ऊपर जाने के लिए, नेगेटिव तो नहीं डालना तो कुछ पॉजिटिव डाल ले, ताकि उसमें से थॉट्स क्रिएट हो। इसीलिए पहले भी कहते थे सुबह का समय प्रार्थना, सत्संग, कोई अच्छी चीज पढ़ लेना। अगर सुबह हम 15-20 मिनट निकाल कर कोई बहुत पावरफुल पॉजिटिव इंफॉर्मेशन भर ले अपने अंदर, कोई अच्छा कसेट सुन ले, कोई अच्छी किताब पढ़ ले, कोई सत्संग में चले जाए, आधा घंटा भी अगर वो इन्फॉर्मेशन भर जाए सुबह के फाउंडेशन लेयर पे, वो सारा दिन काम करने वाली है फिर हमारे।
1: तो आपकी ये जो अवेकनिंग ऑफ ब्रह्मा कुमारीज देखता था सुबह उठकर,
0: यस एंड लॉट ऑफ पीपल आर वॉचिंग टूडे एंड सी, या तो मॉर्निंग में देखते हैं या लेट इवनिंग में देख रहे हैं डेली। सी इवन ये इज वेरी ट्रू, द पावर ऑफ मीडिया, मैं खुद आई हैव एक्सपीरियंस्ड कि इस अवेकनिंग प्रोग्राम से जैसे इतने सालों से चल रहा है, इतने लोग देख रहे हैं। अब जो लोग रेगुलरली देख रहे हैं तो उन्होंने फिक्स कर लिया ये हाफ एन आवर हमें ये प्रोग्राम देखना है, कुछ नहीं करना है और उसके साथ कुछ नहीं करना, बस देख लेना है हाफ एन आवर। तो क्या हुआ, हाफ एन आवर वो इन्फॉर्मेशन अंदर चली गई एंड 6-8 महीने बाद खुद ही कहते हैं पता नहीं आवर थॉट्स हैव चेंज्ड। फर्स्ट एक्सपीरियंस विच एवरीबडी हु आई मीट शेयर्स इज वन लाइन, कॉमन लाइन आई एम टेलिंग यू, माय वे ऑफ थिंकिंग हैज चेंज्ड। व्हाट चेंज्ड द वे ऑफ थिंकिंग? मीडिया। मीडिया चेंज द वे ऑफ थिंकिंग। हाफ एन आवर रोज वो बातें सुनी, माय वे ऑफ थिंकिंग हैज चेंज्ड, विच मीन्स अगर हम रोज इंफॉर्मेशन लेंगे इस तरह से, अब इस केस में तो माय वे ऑफ थिंकिंग चेंज्ड फॉर द बेटर, इट वेंट टुवर्ड्स द पॉजिटिव, बट इक्वेशन तो समझ में आ गया ना, विच मीन्स जो दूसरी चीजें हम लेते थे उसने भी तो हमारे वे ऑफ थिंकिंग पर प्रभाव डाला था। सिर्फ ये वे ऑफ थिंकिंग इतना ड्रास्टिक चेंज होता है,
1: हम नहीं कह सकते कि मीडिया प्रभाव नहीं डाल सकता।
0: यस पीपल हैव सेड
1: ब्रह्मा कुमारीज का आपका जो प्रोग्राम है
0: right.
1: वो मुझ पर डाल सकता है,
0: yes.
1: तो मुझ पर वो नेगेटिव भी डाल सकता
0: है। राइट, देयर हैव पीपल हु हैव सेड कि हमारे घर में डिवोर्स की बात चल रही थी, खत्म हो गई, डिप्रेशन था, दवा ले रहे थे लेकिन डिप्रेशन से बाहर नहीं निकल के आ पा रहे थे, दवा लेकर उसको मैनेज कर रहे थे, आज खत्म हो चुका है। सुसाइड कईयों ने सोचा था करने का, तो जैसे इस क्वालिटी ऑफ इंफॉर्मेशन से लेने से ये चीजें रुक सकती हैं, ऐसे ही इसकी ऑपोजिट क्वालिटी ऑफ इंफॉर्मेशन लेने से ये चीजें हो सकती हैं।
1: मुझे अभी माउंट आबू में एक लड़का मिला, तो कहने लगा कि मैंने सिस्टर शिवानी की बहुत ये प्रोग्राम्स देखे, तो मैं बहुत डिप्रेस था, तो एक दिन मैं ऑलमोस्ट सुसाइड करने जा रहा था, फिर जब ये मुझे एक बार देखा, दो बार देखा, रेगुलर हुआ, तो अब मैं उनकी क्लास में जाता हूँ बैंड्रा खार में, मैं बॉम्बे में रहता हूँ। तो मैंने कहा बट तुम तो हिंदू नहीं हो, तो कहते नहीं वहां पर कोई रिलीजन की बात नहीं होती है, वे ऑफ लाइफ सिखाते हैं, मेरी तो जिंदगी बदल गई।
0: See, and this all happened just by sitting at home in front of the TV screen for half an hour. That's why power of media. कि आधा घंटा डोज अगर रोज मिल जाए तो सोचने का तरीका बदल गया, रिश्ते बदल गए, बीमारियां दूर हो गई, लेकिन what about इसका opposite जब हो रहा था? ये तो सिर्फ आधा घंटा ले रहे हैं हम रोज, सिर्फ आधा घंटा, 27 मिनट्स, दैट इज ऑल एवरी एपिसोड। व्हाट अबाउट आवर्स एंड आवर्स ऑफ न्यूज, मूवी एंड सीरियल? जब वो आवर्स ऑफ आवर्स हम ले रहे थे, आज कॉमेडी भी अगर आता है टीवी पर उसकी भी क्वालिटी कैसी है? तो वो जब हम ले रहे थे, क्या वो हमारे सोच को नहीं बदल रहा था? क्या वो हमारी जीवन की परिस्थितियों पर प्रभाव नहीं डाल रहा था? सो वी नीड टू अंडरस्टैंड पावर ऑफ इंफॉर्मेशन। अब अगर रोज सुबह और रात को, सुबह तो डेफिनेटली 20-25 मिनट्स कुछ बहुत श्रेष्ठ पढ़ना है या सुनना है, और रात को सोने से पहले 5-10 मिनट क्लीन द माइंड अगेन, सारी जो बातें भरी है उसको क्लीन करके 5 मिनट कुछ अच्छा पढ़ ले, लास्ट लेयर ऑफ इंफॉर्मेशन जस्ट बिफोर स्लीपिंग, टीवी देख लिया, मूवी सब कुछ कर लिया, बंद करके 5 मिनट्स।
1: बट ये हैबिट डाल लेनी चाहिए, जैसे कि आपने कहा ये कपड़ा सफेद है, ओरिजिनल तो सफेद था, मैला हुआ तो धोने डाल दिया, सुबह नहाया, शाम को ब्रश किया, मुंह धोया, कपड़े बदले, इस तरह मतलब एक पार्ट ऑफ लाइफ बन जाती है ना।
0: राइट, बिल्कुल, लाइफ स्टाइल में उसको डालना है।
1: तो कोशिश करते हैं फिर लाइफ स्टाइल में डालने की। थैंक यू सो मच।
0: ओम शांति।
1: ओम शांति।
2: मैं हूँ गीतांजलि राव, फिल्म एंड टेलीविजन एक्ट्रेस। नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

आइए आइए, दरवाजे पे क्यों खड़े हैं? अंदर आइए। ये घर है मुस्कुराहट का, यहाँ बसती हैं खुशियाँ। ये है पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम सरवसु, आपका अपना डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट, और आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: नमस्कार। खुद को पहचानने की ये जो हमने श्रृंखला शुरू की थी, आज इतना लंबा सफर तय करके हम उस मुकाम तक पहुंचे हैं जब हम इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पूरी और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में आज फिर आप सबका हार्दिक स्वागत। और अगर हम देखें तो खुद को पहचानते हुए, परमात्मा की पहचान करते हुए, समय चक्र को समझते हुए हमने एक बहुत इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट देखा था कि किस तरह से परमात्मा स्वयं अवतरित हुए और वो अवतरण जो था वो कितना रियल भी लग रहा है और उतना ही मिराकुलस, चमत्कारी भी नजर आया। याद होगा कि हमने इस बात पर छोड़ा था कि जब ऑर्गेनाइजेशन बना माउंट आबू में 1952 में उनके हेडक्वार्टर्स ट्रांसफर हुए और वहां से ये सफर पूरे विश्व तक फैला। आगे इस बात को बढ़ाते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ और बदलाव आते गए, लेकिन खास बात यह है कि जो मकसद था पूरे ऑर्गेनाइजेशन का वो वही रहा। और इस पूरी बातचीत में हर बार की तरह हमारी हम सफर है ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। ओम शांति।
1: ओम शांति।
0: एक बात बहुत से लोगों का भी ये सवाल है कि ये नाम ईश्वरीय विश्वविद्यालय, ठीक है, ईश्वर द्वारा, ईश्वर ही वाइस चांसलर है, उसके करता धरता है, सारा ज्ञान वही दे रहे हैं, नाम ब्रह्मा कुमारी कैसे पड़ा?
1: जैसे हमने पिछली बार भी देखा कि निराकार परमात्मा शिव ने जब इस सृष्टि पर अवतरण लिया, क्योंकि हम कई बार कुछ भाई बहने कहते हैं अवतरण भी लेने की क्या जरूरत थी, परमात्मा को सृष्टि पर आने की क्या जरूरत है, भगवान इतना शक्तिशाली है तो वहीं से हमें ज्ञान दे दे। तो परमात्मा तो शक्तिशाली है, द ट्रांसमिटर इज वेरी पावरफुल, बट रिसीवर्स का क्या हालचाल है? तो परमात्मा की प्रेरणा को कैच करना वो हमारी इस समय कैपेसिटी नहीं है, और इसीलिए परमात्मा को डायरेक्ट आकर और एक मीडियम को फिर यूज करना पड़ा, और जिस मीडियम के मुख द्वारा जब हमें समझाना शुरू किया तब हमें धीरे धीरे वो समझ में आया, और तब भी वो सोल कॉन्शियसनेस की अवेयरनेस में जाना उसमें टाइम और एफर्ट लगता है। अगर हमें सिर्फ प्रेरणा से वो नॉलेज मिल गई होती तो इट्स नॉट पॉसिबल, इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। तो परमात्मा स्वयं इस सृष्टि पर आए और एक मानव तन का आधार लिया, एक ह्यूमन बॉडी, एक इंस्ट्रूमेंट जिसको हम रथ भी कहते हैं, दादा लेखराज जो हमने पिछली बार भी देखा, एक डायमंड मर्चेंट परिवार में रहने वाले, बहुत ही धार्मिक विचारों के, लेकिन एक परमात्मा की खोज, तो जैसे कि एक आइडियल इंस्ट्रूमेंट जिसके पास सारे जीवन का अनुभव भी था, क्योंकि उस समय उन्होंने 60 वर्ष की आयु को क्रॉस कर लिया था, और डायमंड मर्चेंट होने के कारण उनकी परखने की शक्ति बहुत अच्छी थी, वो डायमंड्स को बहुत अच्छा परख सकते थे। तो इतने अनुभवी रथ को परमात्मा ने जैसे सिलेक्ट किया ड्रामा अनुसार, वो उनका रोल था, और दादा लेखराज के द्वारा ये ईश्वरीय ज्ञान आत्माओं तक पहुंचना शुरू हुआ, और जिस आत्मा ने उस तन में बैठे हुए परमात्मा को पहचान लिया कि ये ज्ञान इस आत्मा का नहीं लेकिन इनके द्वारा कोई शक्ति दे रही है, वो परमात्मा खुद दे रहा है, उसकी फिर यात्रा शुरू हो गई, क्योंकि सारा ज्ञान मिला ना, मैं कौन, वो कौन, और समय कौन सा चल रहा है।
0: इनफैक्ट अगर हम देखें तो ये दादा लेखराज का ज्ञान नहीं है, ये डेफिनेटली हमें समझ में आ रहा है, और ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये भी उसका मकसद अगर देखें तो ज्ञान को पहुंचाना है।
1: क्योंकि समझ में आ गया ना, किसी व्हेन वी सो द साइकिल वी सो कि हम आत्माएं परम धाम से आई थी सत्युग में, जब हम आई थी तो हम कितनी प्योर थी और हमें नॉलेज थी कि मैं आत्मा हूँ, इस शरीर के द्वारा कार्य कर रही हूँ। आज 5000 साल के बाद मैं आत्मा अंदर सो गई और ये मशीन ही अपने आप काम कर रही है। परमात्मा का रोल आकर उस ड्राइवर को फिर से जगाना, यू नो, इनसाइड वेक अप एंड टेक कंट्रोल ऑफ योरसेल्फ, क्योंकि आने वाले समय की तैयारी। तो परमात्मा ने दादा लेखराज के मीडियम को यूज किया, उनके द्वारा आत्माओं को ये ज्ञान मिला, जिन आत्माओं ने अपने जीवन में वो परिवर्तन किया उन द्वारा फिर अनेक आत्माओं को मिला।
0: अगेन अनदर थिंग विच बिकम्स क्लियर इज की वो कुछ हमारी जिंदगी में नहीं ट्रांसफॉर्म कर रहे, ट्रांसफॉर्म मेरे अंदर ही होगा. वंडरफुल.
1: दिस इज वेरी क्लियर विच वी हैव बीन शेयरिंग राइट फ्रॉम द बिगिनिंग. व्हाट इज गॉड्स रोल? जो आज दिन तक हम कहते हैं भगवान ये कर सकते हैं, भगवान वो कर सकते हैं, नहीं, भगवान का इस सृष्टि पर रोल क्या है? आत्माओं को फिर से
0: उनकी अपनी सही पहचान देना. जैसे आई रिमेम्बर एक स्टोरी थी कि हनुमान जी को अपनी ही शक्ति के बारे में नहीं पता था, सो
1: तो वो अवेयरनेस लाना. सेम, हम ही तो वो आत्माएं हैं जिनको अपनी ही शक्ति के बारे में नहीं पता. तो परमात्मा आकर हमें ही वो शक्ति की जागृति लाते हैं, और फिर जो आत्माएं उसको पहचान लेती हैं, मैजिक नहीं है. देयर इज नो मैजिक कि परमात्मा आए और एक सेकंड में सब परिवर्तन हो जाए. नहीं, वो आकर परिचय देंगे, फिर हम सबकी अपनी अपनी यात्रा होगी. जो जितना उस परमात्मा महावाक्य को अपने जीवन में धारण करते जाएंगे, उनसे संबंध जोड़कर अपने आप को परिवर्तन करते जाएंगे और शक्ति को अपने अंदर इकट्ठा करते जाएं. सो ईच वन्स जर्नी विल बी देयर ओन. और इसी तरह इस पूरी यात्रा पर जहाँ इतने सारे लोग थे, तो दादा लेखराज भी उनमें से ही एक थे. लेकिन विशेष आत्मा तो विशेष रोल. तो दादा लेखराज ने उस यात्रा को बहुत ही खूबी से पूरा किया और वो सोल कॉन्शियसनेस की परफेक्शन की स्टेज को रीच किया. लेकिन उससे पहले जब उनके मीडियम को यूज किया गया, तो शिव बाबा ने उनका नाम रखा प्रजा पिता ब्रह्मा. ब्रह्मा क्योंकि ब्रह्मा सृष्टि का रचयिता. आज दिन तक हम जो सुनते हैं कि ब्रह्मा द्वारा सृष्टि की रचना हुई, तो रचना मतलब कोई नई सृष्टि क्रिएट नहीं हो रही है, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन इज ऑल्सो लाइक अ क्रिएशन ऑफ अ न्यू वर्ल्ड.
0: अवेयरनेस,
1: यू नो, यू आर क्रिएटिंग अ न्यू वर्ल्ड. शिव बाबा ने दादा द्वारा जो नई सृष्टि की रचना का कार्य किया, तो दादा का नाम रखा प्रजा पिता ब्रह्मा. मतलब प्रजा का पिता. ये सब बच्चे हैं, शिव बाबा के बच्चे हैं, लेकिन उनको भी जैसे संभालने के लिए ये प्रजा का पिता. तो प्रजा पिता ब्रह्मा, और ब्रह्मा के मुख द्वारा जो बच्चे अडॉप्ट हुए. ये हमारा एक नया जन्म था ना, एकदम नया ईश्वरीय जन्म हम इसको बोलते हैं. तो वो जो बच्चे अडॉप्ट हुए, वो हुए ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी. ब्रह्मा के जैसे जो बच्चा होता है, हम कहते हैं ना कुमार और कुमारी, मास्टर सो एंड सो, मिस सो एंड सो. तो ब्रह्मा के द्वारा जो बच्चे अडॉप्ट हुए, वो बने ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी. कई बार लोग कंफ्यूज कर जाते हैं और कहते हैं ब्रह्म कुमार, ब्रह्म कुमारी. तो इट्स नॉट ब्रह्म कुमारी, इट्स ब्रह्मा कुमारी. ब्रह्मा द्वारा जो कुमारी अडॉप्ट हुई. और फिर क्योंकि बहनों को आगे रखा एडमिनिस्ट्रेशन के कार्य में, तो इसीलिए विद्यालय के नाम में ब्रह्मा कुमारी जाता है कि प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय. लेकिन अदरवाइज इक्वल है within the administration, everything is equal. कि भाई और बहने कट्ठे मिलकर पूरे विद्यालय की संभाल कर रहे हैं, लेकिन फिर भी बहनों को आगे रखा, तो विद्यालय के नाम में वो ब्रह्मा कुमारी जाता है. तो दादा का नाम पड़ा प्रजापिता ब्रह्मा. और जो कराची में 14 साल भट्टी चली, तो उस समय जो छोटा सा संगठन था 350 का, उस समय उसका नाम था ओम मंडली, क्योंकि ओम की ध्वनि लगाते थे. आज भी ओम शांति जो हम कहते हैं. लेकिन फिर जब शिफ्ट हुआ 1952 में, तो ऑर्गेनाइजेशन का विधि पूर्वक नाम पड़ा, तब ब्रह्मा कुमारीज नाम ये हुआ. और फिर 1952 से तो कार्य फैलता ही गया, क्योंकि 14 साल की भट्टी पूरी हो चुकी थी, तो आत्माएं जैसे कि
0: परिपक्व हो गई, एकदम पक्की हुई, एकदम तैयार.
1: वो ज्ञान जो परमात्मा दे रहे थे, वो सिर्फ समझ नहीं आ गया था, लेकिन उसका स्वरूप बन चुके थे. मैं आत्मा हूँ वो समझ नहीं, लेकिन सोल कॉन्शियसनेस का स्वरूप, वो कॉन्शियसनेस आ गई थी. तब 1952 के बाद शिव बाबा के डायरेक्शन अनुसार, क्योंकि हर कार्य परमात्मा की श्रीमत के अनुसार होता, तब माउंट आबू से निकल अलग अलग शहरों में जाना शुरू हुआ. और किसके निमंत्रण पर? परिवारों के निमंत्रण पर. जो बहनें उस समय अपने परिवार से छूटकर आई थी और 14 साल उन्होंने अपने जीवन को परिवर्तन किया, जब वो इंडिया आ गए, तो उनके परिवार यही थे. वो भी शिफ्ट हो गए थे पार्टीशन के दौरान. तो उन्होंने अपनी बेटियों को इनवाइट करना शुरू किया कि हमारे घर पर आओ, इतने साल से घर नहीं आए हो। और तब ब्रह्मा बाबा, प्रजापिता ब्रह्मा, उनको हम प्यार से, क्योंकि वो भी फादर है तो हम ब्रह्मा बाबा कहते, तब बाबा ने उनको फिर अपने घर भेजना शुरू किया कि आपको जो मिला है अब जाकर सबसे पहले अपने परिवार के साथ ये शेयर करो। और ये कन्याएं जब अपने घर पहुंचे तो परिवार को लगा कि ये तो कुछ और ही बनकर आ गई है, यू नो, क्योंकि एक ऑर्डिनरी गर्ल एंड आज एकदम सोल कॉन्शियस स्वरूप में जब अपने परिवार के सामने पहुंचे तो उनको लगता जैसे तो ये वो है ही नहीं जिसको हमने भेजा था। और फिर उन्होंने ज्ञान शेयर जब उनके साथ किया तो परिवार वालों को अच्छा लगने लगा, आस पड़ोस संबंधी जुड़ने लगे, सबको अच्छा लगने लगा। तो जब बहनों ने कहा कि अब हमें वापस जाना है माउंट आबू, तो उन्होंने कहा ये ज्ञान सबके साथ कौन शेयर करेगा, आप यहीं रुक जाओ। और तब धीरे धीरे सेंटर बनना शुरू हुआ कि आप सब लोग अगर माउंट आबू चले जाओगे तो यहाँ हम सबको कौन संभालेगा, हम सबकी पालना कौन करेगा। तब सेंटर्स बने,
0: वहां तक पहुंचने के बजाय ज्ञान लोगों के घर घर तक पहुंचे,
1: क्योंकि वहां तक नहीं पहुंच सकते। परमात्मा स्वयं इस सृष्टि पर आए थे अपने बच्चों से मिलने के लिए, तो परमात्मा का ज्ञान घर घर तक पहुंचाना था। आप देखो आज दिन तक हमने भगवान को ढूंढने की बहुत कोशिश की है, जप तप संन्यास उपवास सब कुछ किया, एक क्षण का साक्षात्कार हो जाए, लेकिन जब परमात्मा स्वयं इस सृष्टि पर आएंगे और वो हमें ढूंढेंगे, वेरी इजी।
0: और वो 8,000 सेंटर्स में परिवर्तित हो गया।
1: कैसे हुआ? तो फर्स्ट सेंटर्स खुले दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, और बस दैट वॉज जस्ट द बिगिनिंग। एंड आफ्टर दैट देर वॉज नो स्टॉपिंग द ग्रोथ, इट जस्ट वेंट वन टू द अदर एंड टू द नेक्स्ट। एंड तब का शुरू हुआ 52 में, आज सिर्फ दिल्ली शहर में 150 सेंटर्स आर देयर, हर विद इन 5 to 10 किलोमीटर्स एक सेवा केंद्र है, क्योंकि बाबा ने कहा कि ये ज्ञान हर आत्मा तक पहुंचना है, हर आत्मा को पता लग जाना चाहिए कि परमात्मा आ चुके हैं। नहीं तो उनकी क्या गलती अगर उन्हें पता नहीं चला, और एंड में अगर उनको पता चला तो वो कहेंगे हमें तो पता ही नहीं था। अगर हमें पता होता तो फिर हम भी तो अपना पुरुषार्थ करते, हम भी तो आकर वो कनेक्शन जोड़ लेते।
0: वही है, पता होगा फिर उसके बाद डिसीजन उस आत्मा का है,
1: यस,
0: कि किस रास्ते पे चलेंगे।
1: आज भी तो ये संदेश क्या कर रहे हैं हम, ये संदेश हरेक तक पहुंचा रहे हैं। अब घर बैठे भी जो लोग सुन रहे हैं तो उन सबको ये परिचय मिल रहा है कि परमात्मा स्वयं इस सृष्टि पर आकर एक एक बच्चे को अपनी पहचान दे रहे हैं। अब उधर से आगे अपनी जर्नी शुरू करना, ये हर आत्मा की अपनी यात्रा होगी।
0: सिस्टर शिवानी, यहाँ से सिर्फ भारत तक सीमित न रहकर विदेश पहुंची ये यात्रा, इस पे बात करेंगे इसके बारे में, ऑर्गेनाइजेशन का किस तरह से ये फैलाव हुआ। लेकिन उससे पहले बहुत से सवाल हैं हमारे दर्शकों के जो कि इन सेंटर से ही जुड़े हैं, कि जब हमें ये ज्ञान यूं घर बैठे भी मिल रहा है, एक बार हमें पता भी चल गया, तो वो जो मेडिटेशन की जो टेक्निक है वो हम या एक जुड़ने की या एक यू नो सशक्त होने का जो पूरा रास्ता है वो हम घर पे आराम से कर पाते हैं। हाँ। तो फिर हमें क्या सेंटर का क्या महत्व है एक्चुअली?
1: जो ज्ञान ब्रह्मा बाबा के मुख द्वारा शिव बाबा ने दिया वो ज्ञान सारा नोट डाउन हो गया है, जिसको हम अपनी स्पिरिचुअल क्लास या ईश्वरीय महावाक्य कहते हैं। तो ये ईश्वरीय महावाक्य रोज सेंटर पर सुनाए जाते हैं, और जिसको हम मुरली क्लास भी कहते हैं। और इसकी विशेषता ये है कि ये सारे वर्ल्ड में, आज हमारे 8,500 सेंटर्स हैं सारे वर्ल्ड में, हर सेंटर पर सेम मुरली क्लास रोज होती है, क्योंकि ये माउंट आबू से हर सेंटर पर पहुंचती है, जैसे कि 15 दिन की क्लास पहले पहुंच जाती है, तो हर सेंटर पर सेम स्टडी रोज हो रही है, इतना वेल कोऑर्डिनेटेड वो पूरा सिस्टम है। अगर हमें सिर्फ एक बार ये मैसेज मिल जाए कि मैं आत्मा हूँ और मैं घर बैठे उसको प्रैक्टिस करूं, आई विल नॉट बी एबल टू डू इट फॉर मोर देन अ कपल ऑफ डेज, क्योंकि चारों तरफ का जो वायुमंडल है वो बहुत नेगेटिव है,
0: वो बार बार खींच
1: रहा है। यू नो इट्स लाइक द सेम थिंग कि अगर सब लोग सोए हुए हैं और मैं उठने की कोशिश करूं तो धीरे धीरे मुझे भी नींद आ जाती है फिर से, और नई भी आ रही हो तो चार लोग और मुझे खींच के सुला देते हैं। तो बीच बीच में आवश्यकता होती है ऐसे स्थान पर जाने की जहां और लोग भी जग रहे हैं, तो एक वायुमंडल बनता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि रोज जब हम सेंटर पर जाते हैं या जब भी समय मिले तो हमें वो ईश्वरीय महावाक्य सुनने को मिलते हैं। इन्फॉर्मेशन विल क्रिएट थॉट्स, वो पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन। तो जब तक हम वो इन्फॉर्मेशन नहीं लेंगे तो वो थॉट्स नहीं क्रिएट होंगे, कॉन्शियसनेस नहीं बनेगी। तो सिर्फ एक बार मैं आत्मा हूँ समझने से सोल कॉन्शियसनेस नहीं आएंगे। तो हम रोज जब क्लास में जाते हैं तो रोज शिव बाबा के महावाक्य के परमात्मा क्या कह रहे हैं हम आत्माओं से, वो रोज सुनने को मिलते हैं। तो इट्स लाइक गॉड्स लेटर विच कम्स फॉर मी एवरी डे एट द सेंटर। इट इज व्हाट गॉड हैज टू से टू मी, so obviously I would want to go to the center to listen to that. तो हम जब सेंटर पे जाते सबसे पहली बात हमें वो ईश्वरीय महावाक्य मिलते, which is the most valuable treasure, उससे ऊपर कोई और चीज नहीं। Second, हमें एक बहुत अच्छा परिवार मिलता, who are all on the journey together, you know, and वो ही परिवार जो हमारी तरह working है, family में है, बच्चों के साथ है, and they're all facing the same challenges which I am facing. So a lot of experience sharing, lot of learning, and a lot of, you know, everyone being on the journey together instead of alone. तो वो भी जाने से हमारा motivation level और बढ़ता है। और तीसरा, हमें बहनें मिलती हैं जो हमारी बहुत अच्छी पालना करती हैं। बहनें हर सेवा केंद्र पर होती हैं जो इतने सालों से इस राजयोग का अभ्यास कर रहे हैं, सो दे हैव दैट एक्सपीरियंस, दे हैव दैट नॉलेज, उन्होंने उस ज्ञान को बहुत अच्छी तरह से समझकर अपने जीवन में धारण किया है। सो दे बिकम आर गाइड्स, नॉलेज इज हिज, बट दे बिकम आर गाइड्स टू टेक

0: ब्रह्मा बाबा रीच द स्टेज ऑफ कंप्लीशन, जिसको हम कहते हैं परफेक्शन, जो एम था कि बॉडी कॉन्शियसनेस से 100% सोल कॉन्शियसनेस को जाना, उस एम को उस फर्स्ट आत्मा ने अचीव कर लिया। और उसके बाद शिव बाबा की ही श्रीमत से, शिव बाबा के ही डायरेक्शन से, दादी प्रकाशमणि जी को विद्यालय का चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव हेड घोषित किया गया। और 2007 दादी प्रकाशमणि जी ने भी अपना पुराना शरीर त्याग दिया और वर्तमान समय दादी जानकी चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन है। और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हम देखें कि जो फाउंडर है, जब वो अपना शरीर त्याग देते हैं तो कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन में एक थोड़ा सा परिवर्तन जरूर आता है,
1: क्योंकि ही इज दैट यू नो फोर्स व्हिच
0: हैज, ही इज द फोर्स व्हिच स्टार्टेड द ऑर्गेनाइजेशन, इट इज हिज नॉलेज व्हिच इज बीइंग शेयर्ड विद एवरीबॉडी। तो जब वो सोर्स हट जाए तो थोड़ा सा उथल पुथल जरूर आता है। लेकिन ब्रह्मा कुमारी इस विद्यालय में जब हम देखते कि ब्रह्मा बाबा गए, अभी दादी प्रकाशमणि भी गए और कई बड़े दादियां और भाई अपना पुराना शरीर त्याग दिया, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन ओनली ग्रोज एंड ग्रोज एंड ग्रोज बिकॉज इट इज नॉट द वर्क ऑफ अ ह्यूमन बीइंग। अगर ये ब्रह्मा बाबा का कार्य होता या दादी का होता तो उनके जाने के बाद परिवर्तन आता, लेकिन ये तो शिव बाबा का काम है। और इसीलिए कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी में भी आने का कोई क्वेश्चन ही नहीं होता, डायरेक्शन मिला एंड इट इज फॉलोड। सो दैट्स व्हाई द वर्किंग गोज वेरी वेरी स्मूथ। तो ब्रह्मा बाबा लेफ्ट द बॉडी इन 69 एंड 70-71 ऑनवर्ड्स इंडिया से बाहर इस विद्यालय का ज्ञान पहुंचता गया। इट स्टार्टेड फ्रॉम लंदन and London till date is the international coordinating office, and from London today it is in 120 countries. So 120 countries, religions, different cultures, different castes, everybody, kyunki raj yog gyan hai, iska koi dharm koi jati se koi connection nahi hai, har ek jis dharm ka hai wo usi dharm mein rehta hai, koi convert nahi ho jata, lekin apne satya dharm ko pehchan leta hai ki my original religion is the religion of purity, religion of truth, that's soul consciousness. So today it is in 120 countries, 8500 centers spread all over.
1: Amazing. So Shivani, if we talk about moving out of India, जो यूनाइटेड नेशंस के साथ जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका गठबंधन है, लाइक यूनाइटेड नेशंस अगर हम सोचते हैं तो एक पीस के लिए जो फॉर्म किया गया था वो एक ऑर्गेनाइजेशन सामने आता है, जहां कोई भी आध्यात्मिक ऑर्गेनाइजेशन कैसे जुड़ सकता है, क्या है ये रिश्ता?
0: 1980 में ब्रह्मा कुमारीज का अफिलिएशन हुआ UNDPI, यूनाइटेड नेशंस डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंफॉर्मेशन। फिर 1983 में इसे कंसल्टेटिव स्टेटस मिला इकोसॉक के साथ, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। एंड 1988 में फिर कंसल्टेटिव स्टेटस मिला यूनिसेफ के साथ। और तीनों में जो कार्य था, जो आपने कहा यूनाइटेड नेशन वर्क्स एट द लेवल ऑफ पीस एंड सो डज द ब्रह्मा कुमारीज, you know, and when the lot of groundwork goes into finding out what the organization is doing, but when they realized that they are genuinely working towards creating peace in the world, because self transformation difference sirf yahi tha ki bahar world mein you try to create peace in the world and raj yoga teaches us create peace in the self and when you create peace in the self you automatically creating peace in the world. If I am peaceless and I try to create peace in the world, it's not possible. तो वो एंड जब भी यूनाइटेड नेशंस का कोई भी प्रोजेक्ट होता है अबाउट यू नो अवेयरनेस ऑफ क्रिएटिंग पीस, ब्रह्मा कुमारीज इज ऑलवेज देयर विद देम एट एवरी स्टेप। एंड क्योंकि आज 120 कंट्रीज में इतने सारे सेंटर्स हैं, सो दीज सेंटर्स बिकम लाइक द हब, यू नो, फ्रॉम वेयर द प्रोजेक्ट इज कैरिड आउट ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो तब से दिस ऑर्गेनाइजेशन द ब्रह्मा कुमारी वेरी क्लोजली कनेक्टेड विद द यूनाइटेड नेशंस, एंड हर प्रोजेक्ट में उनके, जैसे 2000 में भी ईयर ऑफ कल्चर ऑफ पीस, तो उसमें ऑल ओवर द वर्ल्ड पीस क्या है एक्चुअली, ये अवेयरनेस

0: आत्माओं तक पहुंचाना। और यूनाइटेड नेशंस ने ये भी देखा कि कितनी बड़ी टास्क फोर्स है, यू नो द नंबर ऑफ पीपल हु हैव गॉट टुगेदर, क्योंकि आज लाखों परिवार हैं जो ब्रह्मा कुमारीज के साथ जुड़े हुए हैं, घर गृहस्थ में रह रहे हैं, बच्चे भी हैं, युवा भी हैं, फैमिलीज हैं, कपल्स हैं, एवरीबडी, एंड एवरीवन वांट्स टू शेयर विद द वर्ल्ड व्हाट दे हैव गॉट। क्योंकि जब आपका जीवन परिवर्तन होता है और आप देखते हैं कि आपके आसपास लोग दुखी हैं, अशांत हैं, यू वांट टू शेयर इट विद देम,
1: एक्चुअली इट्स नेचुरल,
0: यू नो, सो दैट इज द बिगेस्ट मोटिवेटर। एंड दैट डेडिकेशन जो हर आत्मा के अंदर है कि परमात्मा शिव बाबा आ चुके हैं, आई वॉन्ट टू टेल द वर्ल्ड, यू नो, सो एवरी इंडिविजुअल हियर सर्व्स द वर्ल्ड विद अ लॉट ऑफ डेडिकेशन, यू नो, all voluntary, koi bhi, nobody is paid to do what they're doing, but they're ready to do anything just to give the message to the world. So ek bahut badi task force hai, ek bahut bada infrastructure hai spread all over the world, and jo karya kar rahe hain wo bhi bahut hi purity aur bahut hi peacefully se ho raha
1: hai, and in fact wo possible hai. The biggest thing about the whole philosophy is that it is possible,
0: yeah.
1: You know,
0: because you practically can see the result.
1: ये impost, ऐसा नहीं लगता कि किसी और के लिए कही जा रही है बात, ये मेरे पर लागू होती है. इनफैक्ट जब मैं सिचुएशंस को देखूं तो वो वही सिचुएशंस है जो सबके साथ है, लेकिन उनकी ट्रांसफॉर्मेशन मुझ पे लागू, एंड इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट.
0: नो, इट्स वेरी इजी.
1: दैट्स द होल पॉइंट. ओके, वी मूव फ्रॉम UN टू मल्टीनेशनल, अगेन अ सेक्टर विच वर्क्स ऑन प्रॉफिट्स. मतलब उनका अगर मल्टीनेशनल्स की फिलॉसफी, जिस तरह का सिनेरियो क्रिएट होता है आज, कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है, दे आपको अगर ये कहा जाता है कि अगर आपको वो 5 लाख रुपए महीना दे रहे हैं तो आपसे 10 लाख का काम निकलवाएंगे, तभी दिया जा रहा है. और ये पूरे मल्टीनेशनल का जो सेटअप है, चाहे वो भारत में है या विदेश में, उनके साथ की कॉन्फ्रेंसेस, अगेन अ सेक्टर विच इज लाइक totally into profit making,
0: right.
1: And there is this sector which is so spiritual,
0: right,
1: which is talking about peace.
0: Till the 1980s, or let's say 1990 beginning, this was only hardcore spiritual knowledge. आत्मा की पहचान, परमात्मा का परिचय, समय, कार्मिक फिलोसफी, वी डिडंट गो एनीवेयर बियॉन्ड दैट, एंड वैल्यूज, वैल्यूज को अपने जीवन में कहां धारण करना. लेकिन जैसे जैसे लोग जुड़ते गए, कॉर्पोरेट्स जुड़ते गए, ऑन एन इंडिविजुअल लेवल वो जुड़ते गए, उनके जीवन में परिवर्तन आया, तो उन्होंने देखा कि ये सारा ज्ञान हमारी कंपनी के सब लोगों के लिए बहुत यूजफुल है, बट ये मालूम था कि ये इसको ऐसे का ऐसे हम नहीं शेयर कर सकते हैं, यू नो, द नॉलेज विल हैव टू बी इन अ वे विच इज एप्लीकेबल टू माई प्रोफेशनल लाइफ. तब कई कोर्सेज डेवलप हुए, जैसे कि सेल्फ मैनेजमेंट, लीडरशिप, स्ट्रेस मैनेजमेंट, रिलेशनशिप्स, लॉट इमोशनल इंटेलिजेंस, फिर अब स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस, एटीट्यूडनल ट्रांसफॉर्मेशन, ये सारे कोर्सेज क्या डेवलप हुए, ज्ञान वही था, बेसिक फाउंडेशन वही है, मेडिटेशन वही है, लेकिन इसको प्रोफेशनल लाइफ में कैसे अप्लाई करेंगे,
1: गॉड से इंस्पिरेशन लेके ही,
0: एब्सोल्युटली गॉड ने कार्य उसी की श्रीमत से,
1: जो भाषा आपको आती है उसी भाषा में मैं आपको बता रहा हूँ. फाइनली आगे आपने भी यही
0: उसी तरह से
1: जो भाषा उनको आती है उसी भाषा तक.
0: तो फिर बहुत सारे कॉर्पोरेट्स जुड़ गए, और मेन चीज ये थी क्योंकि नॉलेज को प्रैक्टिकली ट्राई किया था पहले, तब जब हम औरों के साथ शेयर करते हैं तो उनके लिए भी उसको अपने जीवन में अप्लाई कर पाना ईजी हो जाता है. और उन्होंने देखा कि कितना कल्चर ही बदल जाता था. आज बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बहुत सारे कॉर्पोरेट हाउसेज हैं, जिनका टोटल वर्क कल्चर बदल गया, जिनके इम्प्लॉयज की पर्सनल क्वालिटी ऑफ लाइफ चेंज हो चुकी है, टीम स्पिरिट. कई ऐसी कंपनीज हैं जहां बहुत हड़ताल हुआ करती थी, वो सब जब ठीक हो गया है, रिलेशनशिप्स ठीक हो गए हैं, प्रोडक्टिविटी जिसकी हम बात करते हैं वो ऑटोमेटिकली बढ़ गई है, जस्ट बिकॉज वी स्टार्टेड वर्किंग ऑन आवरसेल्व्स. तो सेल्फ मैनेजमेंट दैट बिकेम द टूल, यू नो दैट अनलेस यू मैनेज योरसेल्फ यू कैन नॉट मैनेज अ कंपनी, यू कैन नॉट मैनेज अ टीम. तब ये प्रोग्राम्स बने, और आज तो देश में भी और विदेश में भी बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस में ये प्रोग्राम्स रेगुलरली कराए जाते हैं, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ स्पिरिचुअलिटी इन योर प्रोफेशन. अंडर द राजयोगा एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन वी हैव 18 विंग्स, वी कॉल देम विंग्स, टू केटर टू डिफरेंट सेक्शंस ऑफ सोसाइटी. सो वी से एडमिनिस्ट्रेटर्स विंग, एजुकेशन विंग, मेडिकल विंग, कि उस प्रोफेशन में नॉलेज को कैसे अप्लाई करें.
1: देर आर लॉट ऑफ एस्पेक्ट स्टिल पेंडिंग, देर आर लॉट ऑफ क्वेश्चन स्टिल विद द ऑर्गेनाइजेशन, अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन, लॉट ऑफ यू नो दोज मिथ्स विच आर अटैच्ड. So there are still more questions, but वो हम अगली कड़ी में जरूर शामिल करेंगे. आज की इस पूरी बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद.
0: ओम शांति.
1: ओम शांति. सच पर अगर आधारित हो तो सचमुच, और एक जैसे कहते हैं कि बीच में अगर जान है या बीच में सच्चाई है, तो वो इतना बड़ा पेड़ बन सकता है. जिस तरह से ये पेड़ बना है, जिस तरह से फैला है ये ऑर्गेनाइजेशन, और किस तरह से उसी ईश्वर का वो ज्ञान वो स्वयं इन ऑर्गेनाइजेशंस, इन पूरे सेंटर्स के माध्यम से आप तक पहुंचा रहे हैं, इट्स अमेजिंग एक्चुअली. अगर हम ये जर्नी देखते हैं तो आपके पास कोई ऐसी बात है जो आप हमारे साथ शेयर करेंगे, या कोई सवाल जो अभी भी परेशान कर रहा है, स्वागत है. आप हमें मेल कीजिए या फिर फोन पर संपर्क कर सकते हैं. हमारे फोन नंबर है 9999 3445, 9999 3446, 9873 666 555, और हमारा ईमेल आईडी है omshantistudio@gmail.com. आंतरिक तौर पर अगर मैं उस सोल कॉन्शियसनेस पर पहुंचने का प्रयास कर रही हूं, कुछ लेवल तक पहुंच भी गई हूं, लेकिन बाह्य तौर पर बहुत सी ऐसी बातें हैं जो मुझे खुद को लगने लगा है कि मुझे ट्रांसफॉर्म करनी चाहिए, क्या है वो बातें, और कुछ और बातें जो इस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ी हैं, कुछ सवाल जो आपके ही हम तक पहुंचे हैं, उन्हें उठाएंगे अपनी अगली कड़ी में. अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी, इसमें फिर होगी आपसे मुलाकात. ओम शांति.

0: ऐतिहासिक, सामाजिक व सांस्कृतिक माहिती देणारे आपले झक्कास रेडिओ स्टेशन पुणेरी आवाज ऐकत रहा 107.8 FM. आनंदी रहा आणि आनंद लुटा.
1: क्यों रे शैतान, तुने क्यों बताया मैं गाना जानती हूँ?
2: जरा तारीफ करी थी वरना तुम गाती क्या हो?
3: रोती हो पिया बिन नाही चैना, रोती हूँ दिन रहना, हाय हाय हाय.
1: मैं ऐसा गाती हूँ?
2: मैं तो ऐसा ही सुनता हूँ.
1: और तुम?
2: मैं

0: किससे सीखा तूने ये?
1: अच्छा है?
0: हाँ बहुत अच्छा है।
1: हेडमास्टर साहब से?
0: तब तो बहुत बुरा है।
2: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
3: डिप्रेशन इज एंगर टर्न्ड इनवर्ड्स। जब आप औरों पे नहीं गुस्सा करते तो आप अपने पर ही करने लग जाते हैं, लेकिन शायद जब आप औरों पे भी गुस्सा करते हैं तब भी अपने पर गुस्सा कर रहे हैं। आपको गुस्सा देने के लिए वो मेरे से होते हुए ही गुजरेगा, वो एनर्जी पहले यहाँ क्रिएट करनी पड़ेगी। इट्स नॉट पॉसिबल कि मैं आपको कुछ भी दे दूं विदाउट क्रिएटिंग इट। पहले मुझे कूट कूट के गुस्सा अपने अंदर क्रिएट करनी पड़ेगी कि मुझे अपने आप को क्या देना है। नहीं, मुझे तो इसे गुस्सा करना ही है। कीजिए, बट ओनली रिमेम्बर द एनर्जी दैट एंगर आई क्रिएट देन आई गिव।
2: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: 0102 बोरियत की एरर, नएपन की कमांड रिजेक्टेड। अब हर चीज हर जगह तो नहीं मिलती, कुछ नयापन चाहिए तो सुनिए पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियां बांटो।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो। अभी सुनते हैं बच्चों की दुनिया ये कार्यक्रम।

0: हाय,
1: कैसे हो?
0: बस ठीक हूँ।
1: पता है भैया, स्कूल में मुझे एक एस्से लिखने के लिए बोला।
0: किस पे?
1: एक इंस्पिरेशन के बारे में।
0: अच्छा,
1: आपका इंस्पिरेशन कौन है भैया?
0: मेरे पापा।
1: पापा? तो आपके पापा के बारे में कुछ बोलो ना।
0: हाँ, मेरे पापा बहुत ईमानदार है और मैं उनकी तरह बनना चाहता हूँ।
1: तो आपको एस्से लिखने को बोला, तो आप लिख सकते हैं?
0: हाँ, एक दो पेज तो लिख ही सकता हूँ।
1: ग्रेट, तो चलो हमारे दीदी की एडवाइस भी लेते हैं।
0: हाँ, ये ठीक है।
2: हेलो बच्चों।
1: हेलो दीदी,
2: क्या कर रहे हो तुम लोग?
1: दीदी, आपको पता है मेरे स्कूल में एक एस्से लिखने के बोला।
2: एस्से? किस पे लिखना है बुबना?
1: एक इंस्पिरेशन के बारे में।
2: मतलब आपकी इंस्पिरेशन के बारे में? अच्छा, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि जीवन में ऐसी घटनाएं भी होती हैं और लोग भी होते हैं जो हमें बहुत इंस्पायर करते हैं और सिखाते हैं। तो बुबना, तुम्हारी इंस्पिरेशन कौन है?
1: मेरी बहुत सारी इंस्पिरेशन है। पहली इंस्पिरेशन मेरे पापा नरेंद्र मोदी जी, सुभाष चंद्र बोस।
2: अरे वाह, आपकी तीन तीन इंस्पिरेशन है। तो सुभाष चंद्र बोस आपके इंस्पिरेशन क्यों है, उनके बारे में हमें कुछ बताओ।
1: सुभाष चंद्र बोस सच में बहुत इंटेलिजेंट थे दीदी, बहुत अच्छी आदमी है, उनके बिना हमको फ्रीडम नहीं आती।
2: ठीक है, वो बहुत इंटेलिजेंट थे और उन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया, इसलिए वो आपकी इंस्पिरेशन है। आप उनसे क्या सीखते हो भावना?
1: कि किस टाइम क्या बात करना है। वो इतनी इंटेलिजेंस से बात करती, इतनी इंटेलिजेंस यूज कर भारत के लिए, हमारी इंडिया को यूनाइट करने के लिए इतना किया दीदी, मैं बोल नहीं सकती। बहुत, मैंने उनके बारे में एक डॉक्यूमेंट्री पढ़ा।
2: आपने उनके बारे में एक डॉक्यूमेंट्री देखी? अच्छा, और उनमें सबसे ज्यादा स्पेशल आपको क्या लगा?
1: मैं ये बोलना चाहती हूँ कि वो ब्रिटिशर्स ने बोलते हैं कि वो मर गए प्लेन क्रैश में, लेकिन उन्होंने बहुत सारे विलेजेस ये सोचते हैं कि वो तीन प्रकार की सोच सोचते दीदी। एक प्रकार वो प्लेन क्रैश में मर गए, दूसरा वो इतने इंटेलिजेंट है कि उनके ब्रेन को साइंटिस्ट रिसर्च के लिए ले गए, और तीसरा ब्रिटिशर ने उनको मेंटल टॉर्चर किया। फिर भी सुभाष चंद्र बोस ने कुछ भी नहीं कहा, और वो सच में होते ना दीदी, कांग्रेस के सारे कुछ भी हो, उनका क्या क्या ट्रूथ, उनके बारे में उनकी सच्चाई बाहर निकल आती।
3: हाँ भुवना, ऐसे मैंने भी एक बार सुना है कि सुभाष चंद्र बोस को ब्रिटिशर्स ने नजरबंद कर लिया था, तो उसके बाद सुभाष चंद्र बोस ने क्या किया, भेष बदल के जहाँ पे थे वहाँ से भाग गए। तो वहाँ से भाग गए, फिर बहुत टाइम से ब्रिटिशर्स को नहीं मिले, फिर जब मिले तो उनको काले पानी की सजा दे दी, कई दूर समुद्र में जाके उनको टापू पे छोड़ दिया, लेकिन फिर भी वो इतना बड़ा समुद्र खुद तैर के पार करके वापस आ।
1: और दीदी, आपको पता है, मैंने तो न्यूज़पेपर में देखा कि दो लोग सुभाष चंद्र बोस को मिल के आए, वो रशियन जेल में है, बोलते है कि अब तक जिंदा है, उनको इतना मेंटल टॉर्चर किया।
2: सुभाष चंद्र बोस के बारे में वैसे तो कई बातें चर्चित हैं, ये भी कहा जाता है कि वो कई जगह जाके बनारस में एक सेंट बनकर रहे।
1: हाँ,
2: काफी समय तक।
1: हाँ दीदी।
2: लेकिन जो उनकी देशभक्ति की भावना है वो सबके सामने है, भले उनके आगे की जिंदगी के बारे में कुछ लोग अलग बात करते हैं, लेकिन जो उनकी देशभक्ति की भावना थी और जो उनका इंटेलिजेंस था जो आपने बोला, वो किसी से नहीं छुपा, और ये बहुत ही अच्छी इंस्पिरेशन है भुवना।
1: हाँ दीदी, और बताए दीदी, नरेंद्र मोदी जी ने बोला कि वो सुभाष चंद्र बोस की फाइल खोलेंगे उनके बर्थडे,
2: और इससे आप बहुत खुश है?
1: हाँ दीदी, मैं जब छोटी थी सोच रही थी मैं बड़ी होकर जर्नलिस्ट बनूंगी, सुभाष चंद्र बोस को फाइल करूंगी।
2: अच्छा, अरे वाह, मतलब सुभाष चंद्र बोस से आप इतने इंस्पायर्ड हैं।
1: हाँ दीदी,
2: ये बहुत अच्छी बात है, और उनकी तरह बनने की कोशिश भी करना।
1: हाँ दीदी।

0: और सैंडी, आपकी इंस्पिरेशन कौन है?
1: मेरे तो सबसे पहले मेरे पापा।
0: आपके पापा? और आपके पापा आपको कैसे इंस्पायर करते हैं?
1: मेरे पापा ऐसे हैं कि कुछ भी हो जाए, कोई भी कंडीशन हो, वो अपनी ईमानदारी कभी नहीं छोड़ते।
0: उनकी ईमानदारी?
1: हाँ, और हमेशा सच बोलते हैं। कुछ भी हो जाए, कैसी भी कंडीशन हो, या बुरी कंडीशन हो या अच्छी कंडीशन हो, अपनी ईमानदारी कभी नहीं छोड़ते। और मुझे मेरे पापा इस बात पे बहुत इंस्पायर करते हैं।
0: वैसे ये तो एक बहुत अच्छी क्वालिटी है जो हम सबको अपनानी भी चाहिए, ईमानदारी। और अगर ये आप अपने पापा में देखते हैं तो आपको लाइफ लॉन्ग फॉलो भी करनी चाहिए।
1: हाँ, तो मैं कोशिश करता हूँ।
0: बहुत अच्छी बात है सैंडी, इसकी जरूरत आपको आगे भी पड़ेगी। और अगर आप अपने पापा के नक्शे कदमों पे चलेंगे तो सच में आप बहुत अच्छे इंसान बनेंगे।

0: और आप बताओ पंकज, आपकी इंस्पिरेशन कौन है?
1: दीदी, मेरा इंस्पिरेशन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम है।
0: अच्छा, तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की कौन सी ऐसी बात है जो आपको सबसे ज्यादा इंस्पायर करती है?
1: डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की कुछ बातें हैं जो मुझे इंस्पायर करती है, जैसे कि वो हमेशा पॉजिटिव सोचते थे। उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया, लेकिन जो वो अपनी लाइफ में जो चाहते थे उन्होंने सब हासिल कर लिया।
0: और जितना उन्होंने अचीव किया वो उतना ही डाउन टू अर्थ और सिंपल भी रहे।
1: हाँ दीदी,
0: है ना। अगर उनका जीवन हम अच्छे से देखें तो जिस तरह के वो व्यक्ति थे, वे आम इंसान से भी मिलने से कभी हिचकिचाते नहीं थे।
2: हाँ दीदी, उनके घर देखो तो हमसे भी बहुत छोटा और कोई भी सुविधाएं नहीं होती थी, और जो भी पैसे आते थे गवर्नमेंट से वो सारे लोग के लिए यूज करते, लेकिन उनकी सुविधाएं के लिए कभी नहीं यूज नहीं करते थे।
3: हाँ दीदी, मैंने भी एक बार APJ अब्दुल कलाम का नोबल पढ़ा था। उसके अंदर बताया था कि APJ अब्दुल कलाम एक मछुआरे के बेटे थे, उनको पढ़ने के लिए पैसे नहीं थे तो वो बाहर जाके जो स्ट्रीट लाइट होती है ना उसके नीचे जाके पढ़ते थे रात को।
0: पता है वो यहाँ पे माउंट आबू भी आ चुके हैं पहले?
3: हाँ दीदी,
1: शांतिवन में भी आए।
2: पता नहीं,
0: शांतिवन में भी आए? नहीं पता
1: मुझे।
0: वो शांतिवन भी आए हैं, ग्लोबल हॉस्पिटल भी आए हैं। वो जितनी लोगों की मदद कर सकते थे उन्होंने हमेशा की है, और चाहे वो किसी ऑफिस के बाहर खड़ा गार्ड हो या कोई बीमार व्यक्ति हो, कहते वो जाके सबसे पहले उसी से मिलते थे जो सबसे लो ग्रेड के जो एम्प्लॉयज होते हैं, वो जाते थे उनसे मिलते थे, बातचीत करते थे और फिर जाके वो अपना काम करते थे। वो सबका हाल चाल लेते थे, इसीलिए अचीवमेंट के साथ साथ एक अच्छे व्यक्ति के रूप में भी हम सब उन्हें हमेशा याद करते हैं, है ना। और उनकी तरह बनने के लिए हमें ये बात याद रखनी होगी कि चाहे हम कितना ऊपर भी क्यों ना पहुंच जाएं, एक इंसान की तरह हमें दूसरे इंसान को देखना चाहिए, है ना।
4: I learned every youth wants to be unique, but the world around you is doing its best day and night to make you just everybody else. Whether you want to be you or everybody else is convenient at the first glance, but not satisfying in the long vision. The challenge, therefore, my young friends, is that you have to fight the hardest battle which any human being can ever imagine to fight, and never stop fighting until you arrive at your destined place. That is the unique you. To get the unique you, it's a big battle. The battle means you don't need to take a gun. The battle means you have to have four unique things. Four unique tools you must have in that battle. One is you have to set the goal. The second one is acquire the knowledge continuously. And third one is a hard work with the devotion. And fourth is perseverance.
0: Akash, aapki inspiration kaun hai?
3: मेरे इंस्पिरेशंस मेरी मूवीज हैं।
0: मूवीज आपको कैसे इंस्पायर करती हैं?
3: दीदी, जब मैं फोर्थ फिफ्थ सिक्स क्लास में था तब मैं मूवीज देखता था, उसके अंदर देशभक्ति मूवीज ज्यादा देखता था। जो पुलिस ऑफिसर्स होते हैं वो गुंडों की जिस तरह से धुलाई करते थे, मुझे लगता था मैं भी बड़ा होके इन्हीं की तरह बनूंगा, ऐसे ही पूरे देश में करप्शन को कम करूंगा। लेकिन उसके बाद जब मैं बड़ा हुआ तो मैंने एक मूवी देखी थी। एक ऐसा बच्चा था जो बचपन में अपने माँ बाप से खो गया था, तो जिस स्कूल में पढ़ता था उस स्कूल के देने के लिए पैसे भी नहीं थे। उस बच्चे को स्कूल से निकाल दिया था, प्रिंसिपल ने बोला था जा पहले अपने माँ बाप को ढूंढ के ला, उसके बाद आना स्कूल में पढ़ने। तो उसको कोई पैसे भी नहीं देता था, बेचारा बहुत उदास उदास रहता था। तब उसने चाइल्ड लेबरिंग करनी स्टार्ट कर दी, और ऐसे करते करते 15 साल बाद वो बॉम्बे गया और बॉम्बे से इतना बड़ा बिजनेसमैन बन के आया। और जो प्रिंसिपल था वो बुढ़ा हो गया था, और उसके बेटे बहू सब ने उसको छोड़ दिया था, और उसकी स्कूल भी हड़प ली थी। तो उस प्रिंसिपल को जाके बोला, सर जैसे को तैसा आपने मुझे स्कूल से निकाला था कि मेरे पास पैसे नहीं थे, आपके बेटे बहू ने आपको निकाला है और आज आप मेरी स्थिति पे हो और मैं आज आपकी स्थिति पे हूँ। ऐसा ही मैं कुछ दिखाना चाहता हूँ।
0: मतलब आप ये कहना चाहते हो कि सबको हर किसी के साथ अच्छा करना चाहिए, इसीलिए आपको इंस्पिरेशन मिली। ये बात तो ठीक है, लेकिन हमें बहुत सी चीजें आकाश और भी इंस्पायर करती हैं, हम जिनकी तरह बनना चाहते हैं लाइफ में और जो चीजें करना चाहते हैं और जिसकी मदद करना चाहते हैं, है ना? तो हमें अपने आसपास और लोगों में भी ऐसी चीजें ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए जो हमें इंस्पायर कर सके।
2: हाँ दीदी,
0: भले वो किताबें हो, भले वो ऐसे लोग हो। वैसे भी भारत एक ऐसी भूमि है जहाँ की बहुत ही बड़े और नेक लोगों ने जन्म लिया है।
2: हाँ दीदी,
0: तो हम उनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे तो हमें बहुत सारी इंस्पिरेशंस हमारे आसपास ही मिलेंगी।
2: दीदी मैं एक बात बताऊं, इंस्पायर हम कैसे हो सकते हैं? देखो दीदी, जब कोई हमसे कुछ अच्छा करे, वो स्कूल में हो या एपीजे अब्दुल कलाम हो, हमसे बेहतरीन है और अच्छे है, जब हम वो एक्सेप्ट करेंगे ना, वो इंस्पिरेशन बन जाएगा। जब हम उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, वो जलसी बन जाएगी।
0: बात तो भुवना आपने बहुत सही कही। जब हम किसी की अच्छाई को एक्सेप्ट करेंगे तो वो इंस्पिरेशन बन जाएगा, नहीं करेंगे तो वो जेलसी बन जाएगी। और हमारे आसपास बहुत सी ऐसी घटनाएं और ऐसे लोग होते हैं जो हमें जीवन में मिलते हैं और छोटी छोटी बातों के लिए हमें इंस्पायर करके जाते हैं।
2: हाँ दीदी,
0: तो भुवना आप कभी अपनी लाइफ में ऐसा किसी से मिले हो जिसने आपको इंस्पायर किया?
2: हाँ दीदी, मैं अनूप जलोटा से मिली।
0: अच्छा, तो उन्होंने आपको कैसे इंस्पायर किया?
2: दीदी रेडियो पे एक क्वेश्चन पूछा विशाल भैया ने कि जब आपकी स्टेज पे कोई और आके गाए और आपको बुरा नहीं लगेगा, तो उन्होंने बोला कि मुझे कोई ईगो नहीं है, कुछ भी हो, अच्छा प्रोग्राम हो। वो बोल रहे थे मेरी वर्क कम हो गई, ऐसे अच्छे से बात करते हैं और उनकी ईगो भी नहीं है। उस फीलिंग में मुझे बहुत अच्छा लगा कि अनूप जलोटा ऐसे है और वो मेरी अच्छी इंस्पिरेशन है।
0: वो हमारे देश के बहुत ही जाने माने गायक हैं।
2: हाँ,
0: और उनके कई भजन हम लोग डेली सुनते हैं। और
2: वो एक गजल सिंगर भी है।
0: हाँ बिल्कुल, और इतने अच्छे गायक होने के बावजूद उनमें ईगो नहीं है, इसने आपको इंस्पायर किया। मतलब आप भी जब बड़े होके क्रिमिनल लॉयर बन जाओगे तब ईगो को कभी भी अपनी लाइफ में नहीं आने दोगे।
2: हाँ दीदी,
0: चाहे क्लास में फर्स्ट आओ, चाहे कुछ भी अजीब कर लो, तो ये तो बहुत अच्छी बात है भुवना। पंकज आप बताओ, आप अपने लाइफ में किसी ऐसे व्यक्ति से मिले हो या ऐसी सिचुएशन आई है जिसने आपको इंस्पायर किया हो?
1: हाँ दीदी, वैसे कल की ही बात है, कल हम मैच खेल रहे थे और हमारे विपक्षी जो टीम थी वो हमसे काफी अच्छी बॉलिंग कर रही थी, और जब मैंने उनकी बॉलिंग देखी तो मैं उनसे इम्प्रेस हो गया कि इतनी अच्छी बॉलिंग मैंने आज तक नहीं देखी। तो मुझे लगा कि काश मैं भी इनकी तरह बॉलर बन सकूं, और मैंने सोचा और मैंने कल से ही प्रैक्टिस करनी चालू कर दी कि उनके जैसा बॉलर बनूं।
0: अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, किसी ने आपको इतना इंस्पायर किया कि आपने तुरंत प्रैक्टिस भी शुरू कर दी। वेरी गुड पंकज। हाँ सैंडी, आप बताओ।
5: दीदी मैं, हमारे पास में एक भैया रहते हैं अभिषेक भैया, वो मुझे सबसे ज्यादा इंस्पायर करते हैं क्योंकि उन्होंने अभी जॉब कर रहे दिल्ली में और उनकी बीटेक भी पूरा हो गया। वो इतने अच्छे जॉब कर रहे हैं फिर भी वो हमेशा सिंपल रहते हैं, बच्चों से हमेशा प्यार से बातें करते हैं, इसीलिए मुझे वो सही लगते हैं।
0: अच्छा, तो वो भैया आपको इसलिए इंस्पायर करते हैं क्योंकि वो जॉब भी बहुत अच्छी करते हैं लेकिन सबसे बहुत प्यार से बात करते हैं।
5: हाँ।
0: ये तो अच्छी बात है कि हम कितना भी ऊंचाई पे क्यों ना पहुंच जाएं, हमेशा सबसे प्यार से बात करनी चाहिए, जो कि सैंडी ने सीखा। तो आकाश, आपने कभी किसी से कोई इंस्पिरेशन ली है?
3: हाँ दीदी, जब सर हमें पढ़ाते थे तब उनका एकदम एक्यूरेट ध्यान पढ़ाई में होता है और कुछ भी उनके दिमाग में उल्टा सीधा नहीं चलता, मतलब सबसे बहुत प्यार से बात करते हैं, सबके साथ फ्रेंडली रहते हैं। लेकिन जब पढ़ाई की बारी आती है तब वो थोड़े से स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, सबको अपने साथ ऐसे रखते हैं कि वो सर और हम भाई भाई हैं ऐसे।
0: अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है कि पढ़ाई में स्ट्रिक्ट होते हैं, उनका कॉन्सेंट्रेशन भी बहुत अच्छा है और सबके साथ बहुत ही फ्रेंडली तरीके से रहते हैं, ये बातें आपको इंस्पायर करती हैं।
1: और दीदी एक और इंस्पिरेशन मिलती है मुझे कॉमेडियन शो जो करते हैं वो कपिल शर्मा से। मैं उनका शो देखता हूँ तो हमेशा उनकी तरह कॉमेडी करने की कोशिश करता हूँ और मैं काफी हद तक करता भी हूँ, मेरे फ्रेंड्स को अच्छे भी लगते हैं।
0: अच्छा, मतलब आप भी इन फ्यूचर ऐसा कुछ करना चाहते हो पंकज?
1: हाँ दीदी।
0: इसके लिए तो आपको बहुत सारी प्रैक्टिस और उन्हीं की तरह मेहनत करनी होगी, क्योंकि उन्होंने भी अपनी लाइफ में इस मुकाम तक पहुंचने के लिए बहुत मेहनत की है।
1: हाँ दीदी, मैंने अभी से ही शुरुआत कर दी उनके जैसा बनने की।
0: ये तो बहुत अच्छी बात है। और एक स्पेशल क्वालिटी उनमें पता है और क्या है? उन्होंने कभी भी अपने जीवन में हार नहीं मानी। कई बार उन्हें रिजेक्शन का सामना भी करना पड़ा, कई बार ऐसा भी हुआ जब लोगों ने उन्हें पसंद नहीं किया, लेकिन उन्होंने अपने टैलेंट को छोड़ा भी नहीं और हार भी नहीं मानी। इसीलिए आपकी जो इंस्पिरेशन है, उन्हीं की तरह आपको भी जिंदगी में ऐसा ही करना है। और आप लोग किताबें पढ़ते हो कि नहीं?
3: हाँ दीदी।
0: तो कभी किताबों में ऐसा कुछ पढ़ा है या कोई ऐसी चीज आपने किसी के बारे में पढ़ा है जिसने आपको इंस्पायर किया हो?
1: हाँ दीदी, मैंने जैसे नॉवेल्स पढ़ी है, कुछ स्टोरी बुक्स भी पढ़ी है, तो स्टोरी बुक्स ज्यादा इंस्पायर करती है हमें।
0: स्टोरी बुक्स?
1: हाँ दीदी।
0: कोई ऐसी सीख आपको याद है जो आपको किसी स्टोरी से मिली हो?
1: स्टोरी से तो हमें बहुत सारी सीख मिलती है। किसी स्टोरी से ये सीख मिलती है कि हमें कभी जिंदगी में हार नहीं मानना चाहिए, तो किसी स्टोरी से ये सीख मिलती है कि हमें चोरी नहीं करना चाहिए, हमें हमेशा ईमानदारी दिखानी चाहिए, हमेशा बुरे के साथ भी अच्छा ही करना चाहिए। ऐसी बहुत सारी सीख मिलती है।
0: ये सीख तो बहुत अच्छी है। क्या ये सीख और इंस्पिरेशन आप लोग अपनी लाइफ में अप्लाई करने की कोशिश करते हो बच्चों?
1: हाँ दीदी, मैं तो करता हूँ।
0: करते हो? ठीक है, भुवना आप बताओ।
2: मैं बहुत सारे नॉवेल्स पढ़ती हूँ दीदी। एक नॉवेल पढ़ी मैंने, आराम दे वाली 90 डेज, फिर जर्नी टू द सेंटर ऑफ द अर्थ। ये दोनों नॉवेल्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। जर्नी टू द सेंटर ऑफ द अर्थ में हमें उस कैरेक्टर का पेशेंस पता चलता है और बहुत कुछ सीखने को मिलता है उनसे।
0: अच्छा, उनके पेशेंस से आपने बहुत कुछ सीखा। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। और आकाश आप बताओ, आपने कभी किसी बुक से, कहानी से, नॉवल से या किसी भी चीज से ऐसा कुछ सीखा है?
3: हाँ दीदी, मैंने बिल गेट्स जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का ओनर है उसकी बुक से सीखा है।
0: अच्छा, क्या सीखा आपने?
3: दीदी, उसकी बुक में ऐसा बताया था कि जब वो बच्चा था तब उसकी जो टीचर थे वो पहले पढ़ता लिखता कुछ भी नहीं था, कम पढ़ता था, तो उसकी टीचर ने बोला था, अरे तू तो पत्थर है पत्थर, तेरे दिमाग में तो भूसा है। तो वही बात उनके माइंड पे प्रिंट हो गई और ना मतलब थोड़ा पागल जैसे रहने लग गए, किसी से भी पूछते ये मैं पत्थर हूँ क्या, ऐसा ऐसा करने लगे। लेकिन उसके बाद ये बात जैसे जैसे वो बड़े होते गए, उन्होंने सोचा कि मैं सर को करके दिखाऊंगा कि मैं पत्थर नहीं हूँ, ना मेरे दिमाग में भूसा भरा हुआ है। तो ये उनकी स्ट्रगल थी जो आज वो वर्ल्ड के सेकेंड नंबर पे सबसे ज्यादा पैसे वाले आदमी है।
0: अच्छा, मतलब कोई अगर आपको ये कहे भी कि मैं नहीं कर सकता हूँ तब भी हिम्मत रखनी चाहिए, ये आपने इंस्पिरेशन ली।
3: हाँ दीदी।
0: और ये इंस्पिरेशन हमें लाइफ में बहुत आगे बढ़ाती है।
3: हाँ दीदी।
0: हाँ सैंडी, आप बताओ।
5: दीदी, मुझे अल्बर्ट आइंस्टाइन है, उनकी बातें काफी अच्छी लगती थी, क्योंकि जब वो छोटे थे, कम 7 साल के थे, तो उन्होंने 7 साल तक कुछ नहीं बोला, तो उन्हें उनके पेरेंट्स को ऐसा लगा कि शायद हमारा बच्चा कुछ बोलता वोलता नहीं है। फिर एक बार उनके खाना खा रहे थे सब लोग, तो सूप था वो गर्म था, तो उन्होंने पहली बार बोला कि सूप बहुत गर्म है, तो उनकी मम्मी पापा सब चौंक गए, बोले 7 साल तक कुछ बोला नहीं और आज अचानक। तो उनसे पूछा ना उनके मम्मी पापा ने कि तुम इतने से बोल सकते, बोलते क्यों नहीं थे? तो उन्होंने बोला हर मुझे जरूरत की चीज मुझे टाइम पे मिल जाती थी, मुझे जो चीज चाहिए वो मिल जाता था, तो मुझे बोलने की जरूरत ही कहाँ। तो लाइफ में ऐसी चीजें जहाँ जरूरत है वहीं बोलना चाहिए। और उन्हें स्कूल में कभी उनको जो रूल्स फॉलो करना अच्छा नहीं लगता था, मतलब स्कूल के रूल्स होते थे वो हमेशा फॉलो नहीं करते, तो खुद के रूल बनाते थे। उन्हें कभी स्कूल क्लास से मैम बाहर कर देती थी सब ऐसा, तो उन्हें स्कूल के प्रिंसिपल ने बोला था कि तुम लाइफ में कभी कुछ नहीं कर पाओगे, तो उन्होंने बोला सर ठीक है, पर उन्होंने आज वो आइंस्टाइन है, अपने वैज्ञानिक बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं। तो जरूरी नहीं कि रूल्स ज्यादा फॉलो करके कुछ कर सकते हैं, पर हाँ जो नियम है उनको तो मानना चाहिए, तो सबके लिए है, पर अपनी पढ़ाई के बारे में कभी छोड़ना नहीं चाहिए।
0: देखो, नियम तो हमारे लिए ही बने हैं, उनकी सिचुएशन और उनके सरकमस्टेंसेस थोड़े से अलग थे।
5: हाँ,
0: और उनकी तरह हमें बनना जरूर चाहिए, लेकिन उन्हीं की तरह मेहनत भी करेंगे तभी हम पर ये चीजें लागू होती हैं, है कि नहीं?
5: हाँ दीदी।
3: हाँ।
0: पर ऐसे एग्जांपल्स बहुत सारे हैं जिन्होंने लाइफ की कमी को एक्सेप्ट करने के बाद भी कभी होप लूज नहीं की और बड़े बड़े काम करके दिखाए।
3: हाँ दीदी।
0: ठीक है, तो आज की इस बातचीत को हम यही समाप्त करते हैं। एक बार फिर अगले एपिसोड में मिलेंगे आपसे नए टॉपिक के साथ, और इसी के साथ लेते हैं आपसे अलविदा। तब तक के लिए बाय बाय
5: बाय।

तो अभी हमने सुना बच्चों की दुनिया ये कार्यक्रम। मिलते हैं अगली कड़ी में, तब तक के लिए सुनते रहो रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: एक वाक्य ने मेरे थॉट्स को डिस्टर्ब किया, फीलिंग्स को डिस्टर्ब किया, मेरे शब्द डिस्टर्ब हुए, मैंने शायद वो चीजें बोल दी आपने जो बोलनी नहीं चाहिए थी, फिर आपका बिहेवियर डिस्टर्ब्ड हुआ, फिर रिलेशनशिप एनर्जी एक्सचेंज डिस्टर्ब हुआ एक घंटे के लिए। लेकिन मुझे अपने आप को ये चेक करना है कि ये जो मैं सोच रही हूँ इज इट कम्फर्टेबल फॉर मी। एक चीज हमने मिस आउट की कि ये सारी थॉट्स एंड फीलिंग्स जो हमने क्रिएट की उसका इफेक्ट हमारे शरीर पे भी पड़ा। व्हेन वी हैव अंडरस्टूड कि एवरी थॉट दैट वी क्रिएट, जस्ट द अदर डे एक डॉक्टर ने हमें एक्सप्लेन किया, एक साइकाइट्रिस्ट है, तो उन्होंने कहा ब्रेन के अंदर 10,000 crore सेल्स है, जस्ट द ब्रेन, ओके 10,000 crore सेल्स। एंड फिर उन्होंने कहा ये 10,000 crore सेल्स आर, ईच सेल इज कनेक्टेड टू एटलीस्ट 10,000 मोर सेल्स इन द बॉडी, 10,000 crore सेल्स इन द ब्रेन इंटू 10,000, दिस इज द ह्यूमन नेटवर्क, सो मेनी स्विचेस कनेक्टेड टू सो मेनी स्विचेस। अब जब इतने स्विचेस से कनेक्टेड होते हैं तो एक में भी अगर कुछ ऊपर नीचे होगा तो उसका इफेक्ट कितना लंबा जाएगा। तो जब ब्रेन में 10,000 crore सेल्स कनेक्टेड टू 10,000 सेल्स, ईच सेल कनेक्टेड टू 10,000 सेल्स इन द बॉडी, एंड हर थॉट जो हम क्रिएट कर रहे हैं उसका ब्रेन पर असर पड़ रहा है, ब्रेन से फिर वो केमिकल सीक्रेट होते हैं, फिर उसका असर शरीर पे पड़ता है। और हमने कितनी आराम से एक घंटा डिस्टर्ब रहे, अब हम अगर इस इक्वेशन को सिर्फ चेक करें तो एक घंटे में कितना इम्पैक्ट आया होगा हमारे शरीर के ऊपर, उस समय याद नहीं रहता ना, क्योंकि हमें शायद नॉलेज नहीं है।

लगी मस्त नजर की कतार, हा हा हा, मस्त नजर की कतार, दिल के उतर गई पार।

पर चिकटार, दिल के उतर गई पार इन प्यार की राहों में, हो इन प्यार की राहों में, दिल भी गया हम भी।

ख्यालों में, हाय दिल भर के ख्यालों में, हम तो मगन गाते चले प्यार के नगमे हजार, मस्त नजर की कतार।

गई बात, हाय हाय हाय, प्यार की राहों में वो इन प्यार की राहों में, दिल भी गया हम भी गए सब मिट गए, हम मस्त नजर की कतार, दिल के उतर गई पार, इन प्यार की राहों में वो इन प्यार की राहों में, दिल भी गया हम भी गए सब मिट गए, हम मस्त नजर की कतार, हा

संग हंस लो, तुम आज मेरे संग गालो, तुम आज मेरे संग हंस लो, तुम आज मेरे संग गालो, और हंसते गाते इस जीवन की उलझी राह संवारो, तुम आज मेरे संग हंस लो, तुम

0: अब मैं चाहती हूँ।
1: अजी ये क्या कह रही हैं आप,
2: अभी और जाइए।
1: चुप रहो भाई साहब, नाराज हो जाएंगे। और गाइए।
3: हाँ गाओ।
0: मैं और नहीं गा सकती।
3: गाओ,
1: आपको गाना पड़ेगा।

आकाश पर चमकते हुए उस प्रकाश पुंज में भी ईश्वर का अंश है और धरती की धूल के कणकण में भी वही समाया है। सच तो ये है कि हम प्राणियों को भी बस उसी शक्ति का साया है।

मटक मटक एक नार नवेली, गोरी गोरी ग्वाल नकी छोरी चली, चोरी छोरी मुख मोरी मोरी मुस्काए अलवेली। कंकरी गले में मारी कंकरी कन्हई, ये ने पकड़ी बांह और की अटखेली, भरी पिचकारी मारी सरा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा

तालियों के शोर में एक गुमसुम खामोशी भी थी, एक ऐसी खामोशी जो घटाओं के बरसने से पहले सुनाई देती है। आरती की छलकी हुई आंखों में वो खामोशी यूं ठहर गई थी जैसे कह रही हो, अब के न सावन बरसे, अब के बरस तो बरसेंगी अखियां, अब के न सावन बरसे।

अंधना निकला दस गया शब का अंधियारा, दस गया शब का अंधियारा। आओ आओ आते क्यों नहीं, जाओ जाओ जाते क्यों नहीं, भूल सर।

0: मुझे सच सच बता दो
1: क्या
0: कि कब दिल में समाए थे मुझे सच सच।